शांति के संस्कार का स्वमान लेकर के, जैसे मान लो कि क्रोध के संस्कार के ऊपर विजयी प्राप्त करना है तो क्या करो, शांति के स्वमान को अमृत वेले धारण करो और उस संस्कार के ऊपर अटेंशन दो, क्रोध के ऊपर नहीं, शांति के ऊपर अटेंशन दो। ये बाबा ने विधि बताई और उसका वरदान बाबा से ले लो। बाबा आगे उसको क्लेरिफाई करते हैं, आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो उस समय उस संस्कार के रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो उसके साथ साथ उसी समय यह भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी, होगी नहीं, वो संस्कार कार्य में आएगा नहीं। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर होता है, जिस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा के बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो यह भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने देखा फॉरेन वालों में से कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिस संस्कार के ऊपर अटेंशन देते हैं तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। विधि बता दी बाबा ने कैसे संस्कार जीत बनना है और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। वरदान मिल गया बाबा का, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। ये नहीं अलबेलापन में आ जाओ कि हो जाएगा बाबा ने कह दिया है। बाबा कहते हैं अटेंशन में जरूर आया तो हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में भी ये संस्कार निकलते हैं, कोई भी संस्कार कहाँ निकलते हैं, संगठन में निकलते हैं। क्यों? आपके चित्र में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं तो बने हैं, तभी तो वर्णन करते हैं, भक्त लोग भी वर्णन करते हैं। आप अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं, तो बाबा कहते अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं भक्त आत्माएं, क्या गाते हैं, ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना, करते हैं, हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है, तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना, और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश है
सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाबा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही है, वह तो अंडरस्टूड है, सभी एक समान तो नहीं होंगे, नंबरवार तो होते ही है, लेकिन पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती है, अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो बाबा की याद प्यार जरूर मिलती है, एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है, रोज याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना। यह है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली मिस नहीं, सिर्फ बाबा के मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। तो उमंग है इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? पूछते बाबा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता हो कारण से? नहीं, नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया है, बाबा उसको देख कर कहते अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना। चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी है पुराने भी है, तो ये पक्का पक्का पक्का नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है। क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें यह भी लिखो, फॉर्म में बाबा एडिशन कराते यह भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? सबको मंजूर है, वो हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो यह भी भोजन है ना, वो शरीर का भोजन या आत्मा का भोजन। अच्छा लगा, जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी यह नियम पालन करना है। जैसे और नियम है, वैसे यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना है, इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वह सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि छुट्टी लेते हैं। बाबा कहते साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। बाबा ने उस दिन कहा अभी समाप्ति। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद
प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया।

शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसे अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते, जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। आज का स्लोगन है रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। आज का व्यक्त इशारा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर वन की सिद्धि प्राप्त की। ब्रह्मा बाप ने भी सारथी बनकर के नंबर वन की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया के लेप छेप से निर्लिप्त रहेंगे। अच्छा,

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबका। अमृत धारा में मैं भक्ति दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकृति जो है वो भी हमें कितनी बातें सिखाती है। कहते हैं कि कोहरे से एक अच्छी सीख हमें मिल सकती है। कौन सी बात हम सीखते हैं? कि जब जीवन में रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है, परिस्थितियां ऐसी विपरीत होती है, लगता है कि रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास से जब हम एक एक कदम चलेंगे तब अपने आप वही विश्वास हमें एक एक रास्ता भी दिखाई देगा और वो रास्ता सही भी होगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम अपने स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, कोहरा और रास्ता बंद होना, रास्ता दिखाई नहीं देना, छोटे छोटे शब्द होते हैं, बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन विचार बहुत गहन होता है। देखिए, जिंदगी भी एक रास्ता है। जिंदगी में हम चलते हैं तब एक एक रास्ता जो है हम चुनते हैं और रास्ता पार भी करते हैं, लेकिन रास्ते पे बहुत बार हमें अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। ये लोगों की सही पहचान नहीं होती, कभी कभी हम फंस जाते हैं। तो ये कोहरे की जो मिसाल दी है तो जिंदगी में भी वो अप्लाई होती है। तो ऐसे कोहरे में जब हम चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तब क्या होता है, दो प्रकार की संभावना होती है। एक, हम ठीक तरह से चल रहे हैं लेकिन सामने से कोई आएगा और हमें टकराएगा वो भी मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हमारा हेडलाइट जो है, अगर कार में बैठे हैं हम, तब हेडलाइट जलाते हैं। हेडलाइट जलाने के बाद दूसरे को भी सावधानी मिलती है, लाइट आ रहा है तो सामने कोई है, और फिर हमारी स्पीड जो है वो भी हम धीमी रखते हैं। अभी ये जो हो गया लौकिक बातें, लेकिन कभी कभी ये कोहरा जो है वो मन में भी विचारों का द्वंद्व चलता है, विचारों का युद्ध चलता है, तब कोहरे समान हमारी अवस्था होती है, हमें रास्ता ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या करना है, जैसे कहते हैं कि आत्म प्रकाश, प्रकाश को आत्म प्रकाश भी कहते हैं। जब हमारी आत्मा की बत्ती जलती है तब आत्म प्रकाश आ जाता है और फिर रास्ता जो है वो सही दिखाई देता है। तो ऐसे ही अगर हम सावधानी रखें, हमारी आत्मा की ज्योत सदा जलती रहे, प्रकाशित रहे, तो जिंदगी का जो रास्ता है जो कठिन लगता है और कोहरे के कारण धुंधला लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। दृष्टि में दृष्टि स्वच्छ हो जाएगी और सामने वाला भी प्रभावित होगा और हम खुद भी प्रभावित होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच ये बातों को जब हम अनुभव करते हैं तो हम अनुभव से भी बहुत ही सीखते हैं। दोस्तों चलिए, अब समय हो गया है कहानी सुनने का, और आज की कहानी इतनी सुंदर है। बहुत से लोग तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, लोग कहते हैं यदि वो है तो उनको दिखाओ वो कहाँ है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि भगवान को देखा तो जा सकता है लेकिन भगवान को दिखाया तो नहीं जा सकता। बहुत शांत होकर, गंभीर होकर श्रवण करना, उसको देखना तो मुमकिन है पर उसको दिखाना नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर मिसाल है जो कहानी के रूप में हम सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक संत के पास एक जिज्ञासु आया और उस संत को कहने लगा, महाराज आप तो बड़ी तपस्या करते हो, सबको भगवान की बात करते हो, सबको सुनाते हो, अब आज मेरी इच्छा पूरी करो। संत कहते बताओ तुम्हारी इच्छा। तो वो इंसान कहता है, मुझे दिखाओ कहाँ है ये तुम्हारा भगवान, मुझे तो नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो संत उसको कहते हैं बड़ी प्यार से, अरे ये अनुभव की चीज है, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? मैं अनुभव कर सकता हूँ, मैं उनको देख सकता हूँ, मेरे भजन से प्रसन्न होकर वो मुझे अपनी झलक दिखाते भी है, पर बेटा मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? अब उस जिज्ञासु को तो ये सब बातें सुनने में अच्छी लगी, लेकिन फिर भी वो जिद करने लगा। वो कहने लगा कि महाराज, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे ये सब बातें नहीं चाहिए, ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, मुझे सुननी ही नहीं है। अगर तुम दिखा सकते हो भगवान को तो अभी के अभी दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान। दोस्तों, बहुत उत्सुकता से ये कहानी आप सुन रहे होंगे, लेकिन आपकी उत्सुकता को थोड़ा सा बनाए रखिए, क्योंकि समय हो गया है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कथा का अगला हिस्सा। संत ने, महाराज ने उसको बहुत समझाया, उसको बताया कि भजन, साधना, ये क्या बात है, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। बार बार कह रहा है, देखो महाराज, मुझे अपना भगवान दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। समय के लिए संत शांत रहे। उसके बाद उन्होंने एक युक्ति निकाली। दोस्तों, आपको मालूम है क्या किया होगा? संत ने तुरंत एक पत्थर जो पास में पड़ा था, वो पत्थर उठाया और जोर से उस जिज्ञासु के पैर पर मारा। इतनी जोर से वो पत्थर उसके पैर पर पड़ा कि वो व्यक्ति तड़पने लगा, चीखने लग गया, हाय मैं मर गया, हाय मुझे चोट आ गई, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो संत ने उसको मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा, कहाँ है तेरा दर्द, मुझे दिखा तो जरा। तो वो रोता रोता, तड़पता तड़पता, पीड़ा में कहता है, अरे महाराज, दर्द क्या दिखाया जा सकता है क्या? वो तो महसूस किया जा सकता है ना, उसको थोड़ी दिखा सकते हैं, मैं कैसे दिखाऊं कि मेरा दर्द कहाँ है। तब संत ने उसको कहा, पगले, इसी तरह से परमात्मा को, भगवान को दिखाया थोड़ी जा सकता है, पर उसको देखा तो जा सकता है ना, उसका दर्शन तो किया जा सकता है ना। जिस पर वो कृपा करता है वो उसको हमेशा ही महसूस करता है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए ये दो आंखें काम नहीं करती, उसके लिए चाहिए ज्ञान चक्षु, बुद्धि की आंख, दिव्य बुद्धि, और वो जब तुम्हें प्राप्त होगी तो तुम ऐसे सवाल ही नहीं करोगे। ये सुंदर बात है दोस्तों। कई बार जैसे आस्तिक और नास्तिक, उनकी भी चर्चा होती रहती है, आस्तिक अर्थात जो भगवान को या उस शक्ति को मानने वाले, और नास्तिक अर्थात कहते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, अगर भगवान होता तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है। लेकिन दोस्तों, सचमुच कुछ क्षण शांत होके समझने की बात है, महसूस करने की बात है कि हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है?
2: भक्ति जी, कथा बहुत सुंदर है और कथा विचार करने योग्य है। ये कथा सुनते समय हमारे श्रोतागण जो है वो भी उसके ऊपर कुछ सोचते होंगे, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है हमेशा लोगों के मन में आता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, उन्हें हम नास्तिक कहते हैं।

0: और कई लोग कहते हैं भगवान है, जो कुछ है वो भगवान ही है और भगवान ही सब कुछ करता है। ऐसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा करने वाला भी भगवान है और बुरा करने वाला भी भगवान है। तो ये भगवान का विषय ऐसा है कि कभी कभी बुद्धि लोगों की चकित हो जाती है, चकित हो जाती है, चक्कर में फंस जाती है, और इसलिए उसे थोड़ा सा अलग रीति से अगर हम देखें तो शायद विषय समझने में आसानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अर्थात ये मेरा विचार है, हमारे श्रोतागण भी विद्वान है, वो भी अपनी अपनी सोच हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम भगवान कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास, जो भगवान के ऊपर पूरा ही विश्वास रखते हैं और ये सोचते हैं कि जो अच्छा करने वाला भी भगवान और बुरा करने वाला भी भगवान, वो भी शायद अंधविश्वास कह सकते हैं। दूसरा, जो कहते हैं कि मुझे भगवान दिखाओ, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, उनके लिए मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि वो कहते हैं कि मेरा मन ही नहीं मानता भगवान है, और जब उनको हम पूछते हैं कि आपका मन नहीं मानता, वो तो मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन क्या आप दिखा सकते हो आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है? हम बोलते तो है मेरे मन में ऐसा आता है, मन में विचार आता है, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन ये मन कहाँ है और बुद्धि कहाँ है वो भी हम दिखा नहीं पाते। लेकिन हम मानते हैं, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं करता कि मेरे पास मन है ही नहीं, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं करता कि मेरे पास बुद्धि है ही नहीं, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं करता मेरा शरीर है ही नहीं, क्योंकि शरीर दिखता है और मन और बुद्धि है, ये हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन भगवान जो है, भगवान है, ये हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी, हम कहते हैं मेरी आत्मा तृप्त हो गई, इसकी आत्मा भटकती है, इसकी आत्मा को शांति मिले, तो ये आत्मा कहाँ है वो भी नहीं मानते और वो भी देख नहीं सकते, तो फिर बोलते कैसे है? जिस तरह से हम बोलते हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें वजह है, और इसलिए जब हम कहते हैं कि भगवान को दिखाओ मुझे, तब ऐसे एक विद्वान थे आस्तिक और नास्तिक, तो आस्तिक ने कहा कि ठीक है मैं आपको भगवान दिखाता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं किसको दिखाऊं। तब नास्तिक ने कहा कि मुझे दिखाओ, उसने अपना हाथ अपने छाती पे रखा और कहा मुझे दिखाओ। तो फिर आस्तिक कहता है कि अच्छा आपके छाती को दिखाओ, तो फिर नास्तिक थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, वो आंखों में हाथ रखा और कहा इधर दिखाओ, यहां दिखाओ। तो उसने कहा आपके आंखों को दिखाओ, तो बोलते हाँ मेरे आंखों को दिखाओ, तो लेकिन आप एक बात पकड़िए, आप कहाँ हो, या आपकी आंखें है, या आपकी छाती है, या आपके हाथ है, या आपके पैर है, लेकिन आप कहाँ हो ये मुझे दिखाओ, मैं किसे दिखाऊ ये मुझे दिखाओ, तो मैं भगवान दिखा सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर हम खुद को ही नहीं देख सकते तो हम क्या देखें। जब खुद को देखना है, इसका मतलब यह है खुद को आत्मा समझना है, आत्मा रूप में लीन होना है, तब भगवान परमात्मा दिखाई देता है, ऐसे भी लोग कहते हैं। और ये विचार तार्किक दृष्टि से, विवेक दृष्टि से मुझे ठीक लगता है, इसलिए ये मैंने आपसे शेयर किया।
1: बिल्कुल दोस्तों, बहुत सुंदर बातें हो रही है, और मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर हम हमेशा ही कुछ न कुछ चर्चा करते हैं या बहस होता है, लेकिन अगर शांति से उस बात को महसूस करें तो ये सारी छोटी छोटी कहानियां भी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम देख रहे हैं शास्त्रों की बातें, श्रीमद् भागवत, जिसमें बहुत ही सुंदर रीति से राजा परीक्षित और शुकदेव जी का संवाद है, जो हमारे लिए भी एक पथ प्रदर्शक है। दोस्तों चलिए हम जरूर इसका चिंतन करेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: गायक कलाकार रामशंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंद का जो 22वां और 23वां अध्याय है, बहुत सुंदर वर्णन किया है और उसको हर एक विचारवंत ने अलग अलग दृष्टि से भी स्पष्टीकरण करते हुए हमारी श्रद्धा को बढ़ाया है। तो यहाँ वर्णन है कि दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ती है। अध्यात्मवादी जो है वो श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को देखते हैं वृत्तियों के रूप में। अब वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना, इसको शास्त्रों में कहा है, भागवतकारों ने वर्णन किया है चीर हरण लीला, और उनका आत्मा में रम जाना यह है रास। रास लीला का कितना सुंदर वर्णन हम देखते हैं। और दोस्तों, बचपन से ही मुझे हमेशा एक बात बड़ी अचरज की लगती थी, जब भी वो चित्र देखते थे रास लीला का, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाया है, इसका मतलब श्री कृष्ण कितने हैं। तो यहाँ ये स्पष्टीकरण भागवतकारों ने किया है ताकि हमें एक अच्छे तरह से अध्यात्म का पहलू भी समझ जाए। यहाँ भागवतकार लिखते हैं कि इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति जो है वो बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से पूर्णतमा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह सब नित्य लीला विलास है। अनादिकाल से अनंत काल तक यह नित्य चलता रहता है और इसीलिए ये बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किया है, जैसे कि साधकों के लिए कृपा करके भगवान उनके अंतर्मल को विशुद्ध कर देते हैं। और इसीलिए ये बात गोपिकाएं और श्री कृष्ण के रूप में भागवतकारों ने वर्णन की है कि किस प्रकार से भगवान की कृपा जब होती है तो हमारी वृत्तियों का परिवर्तन होता है। और ये वृत्तियाँ जो है, संस्कार या वृत्तियाँ जो हम कहते हैं, उनका परिवर्तन होना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन भगवान के स्पर्श से, भगवान का स्पर्श मन बुद्धि को हो जाना, भगवान का स्पर्श जब मन बुद्धि को होता है तो भागवतकारों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाता है। और यही बात भागवतकार चीरहरण लीला से हमारे सामने प्रकट करते हैं। ये भगवान की लीला जो है ना, वो रहस्यमय है, इसीलिए उसका तत्व जानना चाहिए, उसका सत्व जानना चाहिए और फिर उस दृष्टि से उसको देखना चाहिए, तो अंतर मन जो है वो कितना विशुद्ध हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इन सब बातों को फिर से एक बार हम आपके सामने रखते हैं।
2: बिल्कुल भक्ति जी, भागवत ग्रंथ, भागवत कथा, उसमें जैसे हम ये भागवत कथा जो सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, उसमें सिर्फ कथा नहीं है लेकिन विवेचन भी है, चिंतन भी है, और जो महान विद्वान पंडित है उनके मन में जो विचार आते हैं इसके ऊपर, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये संस्कार की बातें जब होती है तो मेरे मन में एक विचार आया, ये देखिए संस्कार जो है वह हम बचपन से ही करते आते हैं। कैसे कैसे संस्कार होते हैं? जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, हम उसे गर्भाधान भी कहते हैं और गर्भ और गर्भ संस्कार भी कहते हैं। तो आत्मा के अथवा गर्भ के ऊपर संस्कार करना है, कैसे करते हैं गर्भ के ऊपर संस्कार? उसके लिए भी हम वाइब्रेशन का उपयोग करते हैं, वाइब्रेशन का प्रयोग करते हैं, जो मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो सुनती तो माता है लेकिन गर्भ में वो आत्मा भी सुनती है, ऐसी एक मान्यता है। उसके ऊपर क्या होगा? क्योंकि माता जो खाती है, माता जो विचार करती है, उसका परिणाम जो है वो गर्भ के ऊपर होता है। तो ये हो गया गर्भ संस्कार। उसके बाद जब जन्म होता है, जन्म होते होने के बाद जब बच्चा होता है तो बच्चे के ऊपर भी नामकरण संस्कार होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है और वो भी एक संस्कार है। फिर व्रतबंध है, वो भी एक संस्कार है। फिर विवाह है, वो भी एक संस्कार है। ऐसे अनेक प्रकार के संस्कार हम करते रहते हैं, लेकिन उसका असली मतलब यह है कि ये संस्कार हम आत्मा के ऊपर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई, मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य मकसद जो है, वो बाजू हो गया, वो साइड में चला गया और फिर हम रिचुअल्स में फंसे। हम शरीर के ऊपर संस्कार करना श्रेष्ठ मानते गए और फिर रसम और रिवाज जो है वो बदल गए। जैसे उपनयन है या व्रतबंध जो है वो भी एक संस्कार है, उसके लिए कुछ मंत्र है, लेकिन उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं रहा, वो एक रीति रिवाज हो गया, एक फेस्टिवल हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। जैसे शादी जो है, विवाह जो है, सप्तपदी है, सात फेरे है, मंत्रोच्चारण है, अग्नि है, वो भी एक संस्कार था, लेकिन अभी उसको भी हमने सेलिब्रेशन के रूप में डाला। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार है। इतना ही नहीं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके ऊपर भी संस्कार होते हैं, चाहे दशक्रिया हो या बारहवां दिन हो, वो भी एक संस्कार है। तो ये सब संस्कार शरीर छोड़ने के बाद भी है, शरीर लेने के पहले भी है। तो ये सब संस्कार होते हैं आत्मा के ऊपर, और जब तक हम ये पता नहीं चलता कि हम आत्मा के ऊपर संस्कार करते हैं, इसका मतलब जो पुराने संस्कार आते हैं, क्योंकि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब वो पुराने संस्कार लेके आती है, उस संस्कारों में परिवर्तन करने का विधि, उस संस्कारों में परिवर्तन करने का प्रयास इन मंत्रोच्चारण के द्वारा होता है। लेकिन जब यह समझ में आएगा तब असली संस्कार क्या है वो पता चलेगा, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। संस्कार और ये जो है संस्कार या वृत्तियां, वो बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होती। दोस्तों यहाँ संस्कारों की जो सात्विकता बताई है उसको हमें जरूर ध्यान रखना है, और ये सात्विकता बताने के लिए ही इतना प्रयास भागवतकारों ने किया है। दोस्तों चलिए, ये सब बातें शायद अभी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हैं, इस पर भी हम जरूर प्रयोग करेंगे रोज के जीवन में। इन्हीं बातों के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंद में प्रकृति का भी बहुत सुंदर वर्णन है। उस समय प्रकृति कितनी सतो प्रधान थी, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि वृंदावन कैसा था। कहते हैं कि वहाँ बलराम जी के साथ श्री कृष्ण और ग्वाल बाल अपने गौवे लेकर निकल गए थे एक दिन, और ग्रीष्म ऋतु था, घने घने वृक्ष बहुत ही सुंदर छत्ते का जैसा काम कर रहे थे, और वृक्षों की वो छाया वो सब देखते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, देखो तो सही, ये वृक्ष कितने भाग्यवान है। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही है ना। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप सब कुछ सहन करते हैं और हम लोगों की उससे रक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को कितना सहारा मिलता है, उज्जीवन का निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष, उसके घर से कोई याचक खाली नहीं लौटता, बिल्कुल वैसे ये वृक्ष जो है वो सभी को कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। ये पत्ते, ये फूल, ये फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, कोयला, अंकुर, कोपले, हर प्रकार से ये मनुष्यों की कामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके हर प्राणी अपने धन से, विवेक विचार से, अपनी वाणी से, अपने प्राणों से ऐसे कर्म करे जिनसे सबकी भलाई हो। देखिए ना दोस्तों, श्री कृष्ण जी चलते चलते खेल खेल में एक बहुत सुंदर तत्व ज्ञान हम सबके लिए रखते हैं, या कहो श्रीमद् भागवत कथा में भागवतकारों ने भी ये बात कितनी सुंदर बताई है। आज वृक्ष संवर्धन की बातें हो रही है, आज हम वृक्ष मित्र की बात करते हैं, लेकिन कितने पहले प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को अर्पण करना या प्रकट करना, ये भाव भागवतकारों ने हमें सिखाया है। हम अगर प्रकृति की रक्षा करते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया, तो प्रकृति तो कितने गुना हमारी मदद करती है। और आज इन बातों की बहुत सारी चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है ज्ञानेश्वर जी?
3: बिल्कुल भक्ति जी, भागवत कथा सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है। भागवत कथा में श्री कृष्ण के द्वारा बहुत सारी प्रेरणाएं भागवत कथा में हमें मिलती है, उसमें से भी एक है ये वृक्ष। वृक्ष भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है, वृक्ष की पूजा होती है। जैसे वट सावित्री है, उसमें वट सावित्री की पूजा होती है, तब वो वट सावित्री जो फेस्टिवल है, त्योहार है, उसमें भी वट वृक्ष की पूजा होती है। बहुत सारे वृक्ष है भारतीय संस्कृति में जिनकी पूजा हो होती है और जिनका महत्व है, उसमें से पीपल भी है और वट वृक्ष भी है, क्योंकि वो पर्यावरण को बहुत ही अच्छी मदद करते हैं। उसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन का प्रमाण भी बहुत है और जल संवर्धन भी है। भूमि में जो जल है उसको भी संभाल के सुरक्षित रखना यह भी बड़ा कार्य वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष करते हैं। बाकी बहुत सारे औषधीय वृक्ष भी है, जैसे आंवला है, नीम है, बहुत सारे वृक्ष है जिसे औषधियों के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। और देखिए, हर एक भाग वृक्ष का, चाहे पत्ते हो, चाहे टहनियां हो, चाहे जड़ हो या और कोई हो, हर भाग का मनुष्य की जिंदगी में उसका उपयोग होता है। एक वृक्ष काटेंगे तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ देते हैं। इसलिए आजकल पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सरकार ने भी वृक्ष काटने के लिए मना किया है। और एक दूसरी चीज यह है हमारी भारतीय संस्कृति में, वो है गाय। गाय और वृक्ष, इन दोनों का बड़ा संबंध है। गो माता, गाय को गो माता कहा जाता है, और वो गो माता जो है वो दूध भी देती है, उसका गोबर है वो भी पर्यावरण के लिए अच्छा है, खाद के लिए अच्छा है, और आजकल गोमूत्र है वो भी पवित्र माना जाता है। तो गोमय, गोमूत्र और दूध, ये तीनों चीजें जो है मनुष्य के सेहत के लिए, प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है। आजकल ऑर्गेनिक की खेती वो बहुत बड़ी चर्चा होती है। ऑर्गेनिक की सब्जी चाहे फल कोई भी हो, लेकिन वो महंगा भी होता है, लेकिन उसमें कोई मिलावट नहीं होती और इसलिए हर कोई पसंद करता है। भले वो महंगा है लेकिन फिर भी वो पसंद करता है। तो वो चीजें शायद भागवतकारों ने आज का जमाना देखा होगा, उस समय इतनी पुरानी भागवत है, लेकिन उस समय शायद ये परिस्थिति देखी होगी और उसे रक्षण करने के लिए श्री कृष्ण के मुख के द्वारा उन्होंने ये कहा कि वृक्षों का निर्माण और वृक्ष का महत्व अपनी जिंदगी में कितना अच्छा है। खुद को त्याग करके को जला के कोयला देना, खुद को तोड़ के फल देना, यह भी कितनी बड़ी बात है। ऐसे कहते हैं कि हम पत्थर मारते हैं वृक्ष के ऊपर, वो हमें फल देता है। तो संत जो है उनसे भी बड़े श्रेष्ठ वृक्ष है, ऐसे कई लोग कहते हैं। तो यह वृक्ष का महत्व हमारी जिंदगी में है और उसे अधोरेखित करने के लिए भागवतकारों ने उसका वर्णन किया है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सही बात है। और ये परंपरा के रूप में अगर हम माने तो हमें ये बहुत ही सुंदर एक प्रकाश मिलता है कि पहले जमाने से हम वृक्ष को, प्रकृति को कितना महत्व देते हैं। न केवल महत्व देते हैं लेकिन उसका पूजन करते हैं। चलिए दोस्तों, इन सब बातों को हम जरूर ध्यान में रखें और प्रकृति का संवर्धन करते रहे, कराते रहे और उनसे, और हमारे जीवन को भी बहुत ही सुंदर बनाते रहे। इन्हीं विचारों के साथ मैं भक्ति आज के लिए अपने वाणी को देते हुए विराम। फिर से मिलेंगे अमृतधारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे थे कि युवा वर्ग बहुत जल्दी मित्र बना लेता है और रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब बिना सोचे समझे इस प्रकार मित्रता की जाती है या संबंध निर्मित किए जाते हैं तो कई बार जीवन में अनेक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक तो उनका कैरियर भी कई बार चौपट हो जाता है और साथ ही इमोशनली वो हर्ट होते हैं, परिवार वालों को भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। तो यद्यपि हम समाज में हैं, लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, हम मित्र अवश्य बनाएं, हम संबंधों में अवश्य आगे बढ़ें, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हमें किसी प्रकार का धोखा ना मिले और एक हेल्दी कनेक्शन या हेल्दी रिलेशन हम क्रिएट कर पाएं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और इस चर्चा को हमारे साथ आगे आने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: प्रातः जी। जो हम चर्चा कर रहे थे संबंधों के, तो हमारी चर्चा के उपरांत बहुत सारे मेल भी आए हैं, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले हम ये चर्चा अवश्य कर लें प्रातः जी कि जब इस प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं या मित्र बनाए जाते हैं तो ये लंबे कैसे चल सकते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अन्य टकराव के, इस बात पर जरूर थोड़ा प्रकाश डालें।
1: पहली चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप बनाने से पहले ही हमारा जो उस समय लक्ष्य है उस पर हमें फोकस करना चाहिए।
0: जी,
1: अब मान लो कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, MBA कर रहा है, अभी दोनों ही फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट हैं, या कोई मेडिकल में है।
0: जी,
1: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड हैं, इससे उनके भविष्य कैरियर का बहुत गहरा संबंध है। तो अगर वो किसी और चीज़ में बीच में उलझ जाते हैं, निगेटिविटी उनके मन में आ जाती है, इससे उनकी बौद्धिक क्षमता क्षीण होने लगती है, मन डिस्टर्ब रहने लगता है, उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, तो ये निश्चित है कि जितने मार्क्स उनके आते हैं, जो ग्रेड उन्हें मिलता है, वो डाउन जाएगा। तो समय को महत्व देना, जो समय जिस कार्य के लिए है उसको महत्व देना, जिस लक्ष्य को हम लेकर चले हैं उसको महत्व देना, ये तीनों चीजें परम आवश्यक हैं। तो रिलेशनशिप तो पूरा जीवन चलेंगे और न जाने किस किस के संबंध में मनुष्य आएगा भी, अगर वो रोज रिलेशनशिप बदलता रहे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन युवकों के साथ बहुत होता है कि वो जल्दी जल्दी संबंध बनाते हैं और जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। इसका बहुत बुरा इफेक्ट उनकी भावनाओं पर, उनकी बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है
0: और बहुत सारा समय इसमें नष्ट भी हो जाता है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो बहुत ऊंचे लक्ष्य को लेके वो चल रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या MBA अपना क्लियर करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सचमुच बहुत पीछे रहते हैं।
1: बिल्कुल पीछे रहते हैं। मेरे पास ऐसे अनुभव हैं बहुत लोगों के, कोई स्टूडेंट MTech कर रहा है और मुझे फोन करता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने क्या पढ़ा मुझे पता ही नहीं। और वो बहुत दुखी हो जाता है कि क्या होगा मेरा, फाइनल एग्जाम है, फाइनल सेमेस्टर है, क्या होगा मेरा। फिर मैं उनसे जरा उनको निकलवाता हूँ कि कहाँ हो, मैं पूछता हूँ TV कितना देखते हो, नहीं TV बिल्कुल नहीं देखते, इंटरनेट का नहीं, नहीं वो भी बहुत कम। मैंने कहा फेसबुक पे किसी से नाता तो जोड़ा हुआ होगा, हाँ हूँ, टाल मटोल करते हैं, आखिर बता देते हैं भाई बात यही है सच्ची, हमने किसी लड़की को फ्रेंड बनाया था, अब वो रिलेशनशिप तोड़ रही है, हमने देखा उसका तो कोई और भी फ्रेंड है, अब मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ, नाता भी जा रहा है, पढ़ाई भी जा रही है, और इससे स्टूडेंट बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए वो समय एक सुंदर कैरियर बनाने का है, वो सुंदर वो समय अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करने का समय है, बाकी सब चीजें तो 4 मास के बाद भी हो सकती है।
0: बिल्कुल, वैसे भी ब्रह्मचर्य हमारे यहाँ जैसे आश्रम व्यवस्था है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टडी के लिए ही महत्व दिया गया है, उसके पश्चात तो गृहस्थ आश्रम है ही जहाँ आपको जा करके वो जीवन जीना है, तो पहले अपने कैरियर पे फोकस करें,
1: क्योंकि नहीं तो ना वो मिलता ना ये मिलता और मनुष्य फिर जीवन भर एक विशेष तरह के पश्चाताप में अपने अनमोल क्षणों को व्यतीत करता है। दूसरी बात के इन युवकों को अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना आवश्यक है. जैसे मैं पीछे एक बात बता रहा था कि लड़की शादी करके लड़के के घर चली जाती है, वहाँ वो देखती है कि इसको तो एक छोटा सा मकान है, एक रूम है केवल, और केवल उसकी सास है वहाँ और कोई नहीं है. लेकिन सास बहुत कटु व्यवहार वाली है, उसका स्वभाव बहुत तेज है. अब वो जाते ही से ऑर्डर करने लगती है और ये कहती है कि या तो माँ को छोड़ो या मुझे. अब लड़का कहता है माँ ने मजदूरी कर करके मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया है, उसको मैं नहीं छोड़ता, और ये छोड़ के उसे चल जाती है. तब तक 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 3 दिन में जब वो घर पहुंचती है तो सारा खेल बिगड़ा हुआ होता है. उधर माँ बाप उसे बहुत टेढ़ी नजर से देखते हैं, कहीं कहीं तो ये भी कह देते हैं क्यों आई तुम, वहीं जाओ. फिर मुश्किल से रोती धोती है तो घर ठहराते हैं. तो देखिए माँ बाप की भावनाओं का ध्यान रखना भी, उनकी कामनाओं को समझना भी, उनकी भी तो इज्जत का कुछ सवाल होता है. केवल अपनी इच्छाएं ही तो महत्वपूर्ण नहीं है ना, माँ बाप की इज्जत, समाज की व्यवस्था, समाज में उनका एक सम्मान भी है, उसको भी युवकों को ध्यान रखना चाहिए. इस तरह यदि ध्यान रखकर विवेक युक्त कदम उठाएंगे तो ये समस्या नहीं.
0: उन्हें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए भ्राता जी कि माता पिता उनके मित्र हैं, उनकी भलाई के लिए ही सोचते हैं, इसलिए हम उनकी बात भी अवश्य सुने या उनकी जो एक सम्मान है समाज में उस चीज का भी अवश्य ध्यान रखें. भ्राता जी ये तो हुई बच्चों की ओर से बात, लेकिन पेरेंट्स की भी क्या जिम्मेवारी नहीं बन जाती है कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनके मित्र बन के चलें? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बच्चे बाहर मित्र ढूंढ रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि घर में जो माँ और बाप जो हैं, माता पिता हैं, उनसे उनको मित्रवत व्यवहार नहीं मिल पा रहा है और ये अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं?
1: देखिए ये बात भी किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन संपूर्ण ठीक नहीं है. क्या है आजकल कहीं कहीं तो माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं
0: जी,
1: अब दोनों ही काम पर जा रहे, माता जी भी आ रही है फिर खाना बना रही, उनको बच्चों पर ध्यान देने का समय नहीं, वो खुद कहीं कहीं टेंशन में है या उसको कहीं कहीं कोई बीमारी लगी हुई है, तो वो अपने को संभाले, अपनी नौकरी को संभाले या बच्चों को संभाले. और दूसरी बात यह है कि जब ये बच्चे युवक हो गए हैं फिर ये माँ बाप के प्यार से संतुष्ट नहीं होते. ये एक बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक गति है. इनको फिर अपने बिल्कुल हम शरीक समान युवा वालों, आयु वालों का ही प्यार चाहिए, और वो भी एंटी सेक्स का चाहिए. इसलिए ये उस प्यार की ओर बढ़ जाते हैं, और क्योंकि बेसमझी से आगे बढ़ते हैं, इमोशनली केवल आगे बढ़ते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते, इसलिए जब ये उस फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं. मैंने आज तक कितने केसेस देखे, इसलिए मेरा मन तैयार हो गया ये कहने के लिए कि लव मैरिज कभी सफल होंगी ही नहीं. तो जब मैं लव मैरिज वालों से कहता हूँ तो वो कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में लव मैरिज सफल होती हैं. और फिर वो घर आते हैं परेशान होकर, माँ बाप फिर उन्हें उस तरह की तवज्जो देते नहीं, तो जीवन टोटल अंधकार में चला जाता है. अब एक ही तरीका है कि जिनसे उन्होंने प्यार किया था अब उसके साथ उन्हें निभाना ही चाहिए.
0: जी भ्राता जी, कई बार ये जो मूवीज हैं या इंटरनेट में जो फिल्में ये देखते हैं या अनेक प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब देख करके भी कई बार युवा, चूंकि अभी अपरिपक्व है, अभी वो बढ़ रहा है, चीजों को देख रहा है, सीख रहा है, तो जब इस प्रकार की चीजें वो मूवीज में, मीडिया में ये सब देखता है तो उसे लगता है कि शायद यही ट्रेंड है कि किसी लड़की को, किसी लड़के को एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए या गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो स्टेटस सिंबल भी ये बन जाता है और इसे लेकर के आगे चलते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो मूवीज में या मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या इसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है?
1: हाँ, बहुत बड़ा रोल है. और एक जो मान्यता हो गई है कि युवक जब 18 साल का हो गया, 19-20 साल का हो गया, वो बड़ा मैच्योर हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है.
0: बिल्कुल
1: वो इमैच्योर होते हैं, केवल इमोशनल होते हैं, किसी भी तरफ बह जाते हैं, और लव मेक्स देम ब्लाइंड. लव इज ब्लाइंड एक्चुअली ये लोग कहते ही हैं. तो यहाँ उनमें एक अंधकार छा जाता है, वो बिल्कुल परिपक्वता से सोच विचार के कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते. ये वेस्टर्न कल्चर है कि हर एक को फ्रेंड होना ही चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. वहाँ तो ये हो गया कि अगर किसी को नहीं है तो पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि इनका भविष्य कैसा होगा, शायद इन्हें कोई पसंद नहीं करता है, शायद इनके संस्कार संस्कार इनका व्यवहार बहुत रॉयल नहीं है तो ये मैरिड लाइफ कैसे आगे बिताएंगे. लेकिन भारत की तो अलग ही बात है ना, यहाँ अरेंज्ड मैरिज होती है, माँ बाप सब कुछ देख कर. देखिए हमारे यहाँ तो ज्योतिष का बड़ा महत्व है, तो समय काल उनकी राशि मिलाई जाती है,
0: 36 गुण मिलने चाहिए.
1: उसका मतलब यही है कि भविष्य में कोई समस्या ना हो, उनके संस्कारों का मिलन हो, आपस में बहुत प्यार से रह सके, एक दूसरे के सच्चे मित्र बन के रहें. तो ये सत्य है कि मूवीज ने और जो कुछ ये परोसा जा रहा है मीडिया की ओर से, उसने इस सब को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया ही है. लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा अटेंशन है युवा वर्ग का, वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, उसे ये ख्याल हो कि जो चीज़ वो दिखाने जा रहे हैं उसका युवकों पर, बच्चों पर या बड़ों पर भी क्या इफेक्ट होने जा रहा है, अगर वो इसको भी ध्यान में लाए तो काफी चीजें हल हो सकती हैं. क्योंकि हर एक को सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा है, वो अच्छाई भी सीखना चाहता है, पर अच्छाई उस तरह से दे नहीं जा रही है तो वो सीखे कहाँ से.
0: बिल्कुल प्रता जी, ये जो एक समस्या है, लेकिन युवा वर्ग इसे समस्या मानता नहीं. जब वो इस उम्र में होता है तो उसे लगता है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल वही ठीक है, वो किसी से राय आदि भी लेना नहीं चाहता है. और जब बाद में उसके साथ कुछ बुरी चीजें होती हैं तब उसको होश आते हैं.
1: बिल्कुल
0: तो ऐसी में खास करके जब उसे कुछ समझने को वो तैयार नहीं है या अपने आप को संपूर्ण रूप से परिपक्व मान करके ही चल रहा है, ऐसे में किसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उसे हम एक सही राह दिखाएं.
1: हाँ बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि युवक अपने को बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, ये माँ ये क्या जानती
0: है, ओल्ड जनरेशन का समझते हैं कि बिल्कुल कि अब हमें समय के साथ चलना
1: चाहिए. उन्हें क्या पता, हम अपने भविष्य के बारे में खुद निर्णय करेंगे. लेकिन बहुत ज्यादा मैंने जैसे कहा, केवल इमोशनल डिसीजन इज नॉट परफेक्ट डिसीजन. हमें बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, दोनों का बैलेंस लेना चाहिए. लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि लड़की का किसी से प्यार हुआ है और वो अपनी माँ को बताती है और वो कहती है कि मुझे इससे ही शादी करनी है. और माँ बहुत समझदार है, कम पढ़ी लिखी, लेकिन समय के प्रवाह को देखती है, जानती है, और वो अपनी लड़की को कहती है ठीक है तुम्हें उससे प्यार करना है ना, हम उसका सारा परिवार, उसकी सारी व्यवस्था कैसा है, सब कुछ आगे पीछे वो पता करते हैं, फिर हम तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे. और माँ बाप फिर कई ऐसे बातें हो गई कि माँ बाप ने सब कुछ देख दाख के खुद लड़की का वहाँ रिश्ता कराया और वो रिश्ता सदा चला. इसे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, उन्हें भी उन्होंने संतुष्ट कर लिया और वो दोनों भी पति पत्नी रूप में एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सके. और अगर वो केवल इमोशनल होके बिना किसी के पूछे ताछे कहीं भी कुछ कर लेते हैं तो आगे इसमें डिस्टरबेंस होता ही है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो भ्राता जी, ओवरऑल यदि देखा जाए कि ये जो एक समस्या जिससे जूझ रहा है आज का युवा वर्ग, जैसे तुरंत दोस्त बनाना या संबंधों की बात जो हम कर रहे हैं, तो ओवरऑल किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है ताकि युवा वर्ग भी सही दिशा में चलता रहे और साथ साथ माता पिता भी अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाएं.
1: देखिए दोनों को ही मैच्योर होना पड़ेगा. कहीं कहीं माँ बाप भी बहुत रिजिड हो जाते हैं. बात तो इंटरकास्ट की आती है प्राय, इंटर रिलीजन की भी आ जाती है कभी कभी. तो बहुत सारे पेरेंट्स किसी दूसरी जाति में अपनी लड़की की या लड़के की शादी करना ही नहीं चाहते. ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है जो इन समस्याओं को जन्म दे रहा है. और लड़के लड़की बिल्कुल तैयार हैं कि चाहे माँ बाप कुछ भी करें, उन्हें घर से निकाल दें, उन्हें साथ दें या ना दें, वो तो इस संबंध में जुड़ेंगे ही. तो इसका एक समाधान तो ये कि दोनों को थोड़ा विशाल दिल होना चाहिए, उनके विचार बहुत ब्रॉड हो जाने चाहिए. उसमें भी यहाँ मैं युवकों की अपेक्षा कहूँगा माँ बाप के, वो भले ही घर वर्ग को देख लें अच्छी तरह, और दूसरी जाति का भी है तो कोई ऐसा हर्जा भी नहीं है. ठीक है, जातियों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो तो ऐसा करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है. लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें थोड़े से ज्ञान लेने की भी आवश्यकता है, थोड़ा सा वो राजयोग भी सीखें ताकि उनके निर्णय परफेक्ट हों. क्योंकि राजयोग एक ऐसी विद्या है कि सवेरे उठकर अगर मनुष्य राजयोग मेडिटेशन करता है तो उसके निर्णय बिल्कुल परफेक्ट होते हैं. उस का जो ब्रेन है, उसका जो माइंड है, वो सही दिशा में काम करने लगता है। वो अपनी भलाई और बुराई, लाभ और हानि, आगे चलकर आने वाली कठिनाइयों को अच्छी तरह सोच सकता है। वो इतना इमोशनल नहीं होता कि अभी तो हम शादी कर लें, जो बाद में होगा देखा जाएगा, क्या है उससे बाद में निपटेंगे। वो इतना इमोशनल नहीं होता। ज्ञान और योग सीख लेने के बाद उसके विचारों में मैच्योरिटी आ जाती है और बुद्धि स्टेबल होने के कारण वो हर पहलू को अच्छी तरह से जांच के फिर कदम उठाता है। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर मान लो माँ बाप मना कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो उसमें माँ बाप के निर्णय को स्वीकार करने की शक्ति भी आ जाती है, वो अपनी जिद का त्याग भी कर देता है। तो ये थोड़े समाधान अगर अपनाए जाएं तो ये समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है।
0: भ्राता जी, आपने कहा राजयोग के अभ्यास से निर्णय शक्ति अच्छी होती है, परखने की शक्ति अच्छी होती है, तो युवा वर्ग को ये भी सीखना चाहिए। आमतौर पे मान्यता ये होती है उनकी कि ये सब चीजें तो बुढ़ापे के लिए है, ये योग करना, मेडिटेशन करना, लेकिन कहीं ना कहीं राजयोग का अभ्यास उनको वर्तमान जीवन में भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, उनके निर्णय शक्ति को बेहतर करने वाला है, उनके जीवन को बेहतर करने वाला है, इस बात को भी उन्हें अवश्य समझना
1: चाहिए। बिल्कुल, हमने तो ये देखा कि बूढ़े लोग तो राजयोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका मन इतना भटक चुका होता है, उनकी कई इच्छाएं ऐसी हो चुकी होती हैं जो उनके मन को स्टेबल होने ही नहीं देती। हमारे यहाँ आने वाले जो कई लाख युवक हैं, हम देखते हैं युवक और उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, सवेरे थोड़ा भी जल्दी उठकर अगर एक युवक राजयोग मेडिटेशन करेगा तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और ये बहुत सुंदर फिलोसोफी है कि जब मन शांत होने लगता है तो बुद्धि परफेक्टली काम करने लगती है, बुद्धि की एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है, बुद्धि में अनेक तरह के नए इंट्यूशंस आने लगते हैं, और इसमें जो मैच्योरिटी आती है तो वो कई तरह के भविष्य में होने वाले धोखों से बच जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर। भ्राता जी, एक बात जो आपने राजयोग के अभ्यास के पहले कही थी कि माता पिता के साथ बच्चों का एक सुंदर रिलेशन हो, ताकि बच्चे भी ओपन अप हो सकें और माता पिता भी थोड़ा से ब्रॉडली इस विषय पर विचार कर सकें, लेकिन जब बात युवाओं के बीच आती है या लड़के लड़की के बीच आती है, लड़के लड़के के बीच आती है, कि इनके संबंधों में आपस में जो तनाव या दूरी बढ़ जाती है, वहाँ किस चीज़ की कमी रह जाती है जो इस प्रकार की खटास पैदा हो जाती है?
1: हाँ, देखिए ये ऐसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और भिन्न भिन्न केसेज में इसके भिन्न भिन्न कारण भी हो जाते हैं, लेकिन एक मूल रूप की जो बातें हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कि एक तो वो जैसा मैंने कहा कि शुरू में बिल्कुल इमोशनल होकर रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं, उसमें कई वायदे कर लेते हैं, वचन दे देते हैं एक दूसरे को, अब मेरा जीवन तुम्हारे लिए, अब हम मरेंगे भी साथ तो जिएंगे भी साथ। अच्छा, जब ये संबंध आगे बढ़ता है, समय बीतता है, फिर क्या होता है, एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं।
0: बिल्कुल,
1: अभी मनुष्य अब वो पढ़ रहा है, अब वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूर्ण करेगा। एक कह रहा है अभी फलानी मूवी आई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो बाद में कर लेंगे, वहां चलना है देखने के लिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है, लेसन चल रहा है, हमें इस पे ध्यान देना, मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है। तो दोनों की जो कामनाएं अपूर्ण हो जाती हैं उससे आपस में टेंशन बहुत बढ़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होने लगते हैं, और लड़कियां विशेष रूप से बहुत सेंसिटिव नेचर की हो जाती हैं। अभी क्या होगा कि वो एक दूसरे को मनाने में लगे रहेंगे, आखिर मनुष्य एक दूसरे को कब तक मनाएगा, और फिर वो एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, फिर वो एक दूसरे को कहेंगे तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, लड़ाई झगड़ा होगा, और यहाँ समस्याएं विकराल हो जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इस प्रकार से वो जो एक उनकी फ्रेंडशिप है कह लें, या एक प्रकार से जो संबंध है वो टूट जाता है, ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं भ्राता जी। और वैसे भी एक सर्वे में आया था कि अभी जो युवा है उनमें 1/3 युवा इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं ये बातें जी, ईगो हर्ट होना, एक दूसरे की बात को नहीं सुनना, आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी, ये कहीं ना कहीं इनको एक दूसरे से दूर कर देता है और मन में खटास पैदा कर देता है। प्रताप जी, इसके साथ साथ एक बात विशेष करके और मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध को यदि वो आगे ले जाना चाहते हैं, हेल्दी रूप से ही आगे ले जाना चाहते हैं, चाहेंगे तो जरूर ही, तो किस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए?
1: इसमें यही कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, और ये जिद नहीं कि मैं जो कहूं अभी अभी तुम्हें वो करना ही है,
0: मतलब आपसी समझ।
1: हाँ, समझ और थोड़ा सा इजीनेस, एक दूसरे को समझना भी और एक दूसरे की समस्या को भी समझना। मान लो एक व्यक्ति उस दिन बीमार है और वो आपसे मिलने नहीं आ सकता है, तो कम से कम लाइटली उस चीज को छोड़ देना कि चलो भाई थोड़ी देर थोड़ा समय बाद मिल लेते, लेकिन तुम आओ ही, मैं वहां तुम्हारी वेट कर रही हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे तुम खाट पे हो या तुम्हें हार्ट अटैक हुआ, तुम्हें आना ही है। तो यहाँ जो है समस्याएं पैदा होती हैं, थोड़ा सा हल्के हो जाएं, एक दूसरे के सहयोगी बने। अब देखिए, कोई भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप तभी लंबा काल चलता है, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, दूसरा एक दूसरे को सहयोग देने की भावना हो, केवल स्वार्थ ना हो, पहले मैं ये ना हूं, एक दूसरे का अपमान न करें, ईगो न हो आपस में, तो कोई भी संबंध चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो, लंबे समय तक निर्विघ्न रूप से चलता रहे।
0: जी जी, बहुत सुंदर। प्रताप जी, कुछ हमारे पास मेल्स भी आए हैं, मैं वो प्रश्न लेना चाहूंगा। ये है आकृति चंडीगढ़ से, और लिख रही है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो अब मुझे धोखा दे रहा है। मेरी कुछ सहेलियों ने बताया कि वो दिल फेक किस्म का है और उसका और कई लड़कियों से भी ऐसा ही संबंध है, तो अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी दोस्ती उसके साथ खत्म कर दूं या उसमें सुधार लाने की कोशिश करूं?
1: देखिए, ये है कि जब उस लड़के की दोस्ती और कईयों से है
0: जी,
1: तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी के साथ भी लंबे काल की दोस्ती चलाएगा नहीं। उसकी दोस्ती टूटती रहेगी, उसको आदत पड़ गई है, आज एक से फ्रेंडशिप की, कल दूसरे से, तो परसों तीसरे से, कोई जाता है जाए, कोई परेशान होता है होए, मतलब वो इसको एंजॉय करता है। इसलिए मैं तो राय दूंगा कि ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती करनी नहीं चाहिए, अपना रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं होते हैं, मेरी राय तो ये है। और लेकिन अगर इनको उससे बहुत प्यार हो ही गया है तो ये देख लेना चाहिए, क्योंकि ये प्यार ऐसी चीज है कि वो दूसरे से प्यार होता देखकर सहन नहीं कर सकता है। तो आप उससे बात कर लें, और यदि वो तैयार हो आपसे प्यार करने के लिए, आपसे रिलेशनशिप जोड़ने
0: और
1: के
0: इसमें
1: लिए,
0: सच्चे रहने के लिए
1: तो ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, अन्यथा नहीं।
0: जी प्रताप जी, दूसरा मेल आया है अजमेर से, ये प्रिया राजपूत हैं, ये कहती हैं कि फेसबुक में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, हम हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, हम दोनों बहुत नज़दीक भी आ गए थे, अब कुछ दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं?
1: हाँ, यही बात उसके साथ हुई होगी कि उसका प्यार किसी और से हो गया होगा। तो प्यार एक ही तरफ पूर्ण रूप से चलता है, प्यार अगर बढ़ता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो इससे उसका प्यार निश्चित रूप से कम हो गया होगा। तो मैं तो हंसी की बात ये कहूँगा, जैसे उसने किसी और को दोस्त बना लिया, तुम भी किसी और को दोस्त बना लो। लेकिन बहुत अच्छी बात तो ये है कि भगवान से दोस्ती कर लो, अपना नाता उससे जोड़ दो जो कभी दोस्ती को, रिलेशनशिप को तोड़ता नहीं है और जिसके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुख है। तो ये सब चलता रहेगा, तोड़ना और जोड़ना, इसे इन लड़के लड़कियों को स्वीकार करना ही चाहिए। अगर सुख शांति से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, अगर अपनी पढ़ाई पर फुल कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो इस चीज को स्वीकार कर लो और सोच लो इतने ही समय के लिए उससे रिलेशनशिप होना था, ठीक है उसने किसी और से जोड़ लिया होगा, अब मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर पूरी तरह से लगाऊं, इस एक चीज से जो ब्रेक हुई है मैं कुछ सीख लूं, अच्छी बात यह है कि हर निगेटिव चीज से भी मनुष्य को कुछ सीख लेना चाहिए, मैं इससे कुछ बहुत अच्छी चीज सीख लेती हूँ और ये रिलेशनशिप पढ़ाई के बाद जोड़ूंगी, अब मैं पढ़ाई पर पूरा फोकस करूँ।
0: ये एक बहुत सुंदर चीज प्रता जी आपने कही कि ये तोड़ना जोड़ना तोड़ना जोड़ना यदि यही चलता रहा तब तो हमारा पूरा ही समय जो हमारी स्टडी का है, अपने भविष्य को बनाने का है, ये उसी में नष्ट हो जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और ये प्रक्रिया ये क्रम तो लगभग चलता ही रहेगा। तो सचमुच एक समझदार प्राणी की निशानी ये है कि वो ये मान ले कि मैं पहले अपने चरित्र पे अपने भविष्य पे फोकस करूं और बाद में इन चीज़ों पर ध्यान दूं, तो निश्चित रूप से इस चीज़ से भी मुक्त हो जाएंगे जो समस्या पैदा हो रही है और साथ ही साथ अपने भविष्य पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दाता जी कुछ ही प्रश्न हुए हैं और प्रश्न हमारे पास हैं, बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं, इसे भी आगे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे आपके आपके साथ। आज के लिए आपने जो विचार बहुत सुंदर रखे युवाओं के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों बहुत सारे प्रश्न ईमेल के जरिए हम तक पहुंचे हुए हैं और उन्हें हम अपने अगले कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, संबंध जिसके बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता, लेकिन यदि संबंध में खटास आ जाए, संबंध में टकराहट आ जाए तो वही संबंध मनुष्य के लिए बहुत दुखदायी बन जाते हैं और खास करके तब जब हम युवा काल में हैं, ऐसे समय में जब हम बहुत ज्यादा भावनात्मक पक्ष को महत्व देते हैं, विवेक को महत्व नहीं देते, ऐसे में जब हमें ठोकर लगती है तो हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जब संबंध बनाएं या मित्र बनाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमें किन्हें अपनी मित्रता या संबंध के लिए आगे इसे आगे बढ़ाना है और किस चीज को वहीं रोक देना है, ये समझ आगे भी विकसित होती रहेगी आदरणीय भ्राता जी के साथ। आज के लिए समाधान कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरजे शुभा। संडे के इस सुबह हाजिर हूँ आप सभी के साथ बात करने के लिए। पंचांग के अनुसार राष्ट्रीय शके 1948-04-10 आषाढ़ रविवार है। विक्रम संवत 2083 है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि आज के दिन। रविवार ज्येष्ठा नक्षत्र है। इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 से 11 सफर इतबार कल्ब है आज के दिन। और विस्तार से अगर जाने हम पंचांग के बारे में, जैसे कि शक संवत 1948 से और तारीख 26 जुलाई सन 2026 अंग्रेजी तारीख। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल, वर्षा ऋतु राहुकाल शाम को 5:30 से 7 तक है। द्वादशी तिथि दोपहर 1:57 तक उपरांत त्रयोदशी तिथि का आरंभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:34 तक उपरांत मूल नक्षत्र का आरंभ है। इंद्र योग रात्रि 10:05 तक उपरांत वैद्युती योग का आरंभ है। बालव करण दोपहर 1:57 तक उपरांत कौलव करण का आरंभ है। चंद्रमा प्रातः 7:34 तक वृश्चिक राशि पर उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय है 5:39 पर और सूर्यास्त का समय 7:16 पर। चंद्रोदय का समय शाम को 5:12 पर और चंद्रास्त का समय अगले दिन तड़के 3:09 पर। सूर्य और चंद्रमा की राशियां, सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित रहेंगे, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त 12 से लेकर 12:55 तक। अमृत काल का समय अगले दिन तड़के 3:18 से 5:05 तक रहेगा। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आज का पंचांग के साथ और इसके साथ साथ आज के दिन विशेष के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है? और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। और बारिश की क्या स्थिति है आपके अंचल में, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 9414-1415 इस नंबर पर। आइए चलते हैं हम वेदर रिपोर्ट्स की ओर, जानते हैं कि क्या कुछ हालचाल है हमारे आसपास के अंचलों में। सबसे पहले राजधानी जयपुर की ओर चले, यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश की हाल के बारे में अगर बात करें तो बारिश की संभावना 60% से ज़्यादा है दिन के समय, और रात्रि के समय भी लगभग 65% से ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ बात करें उदयपुर 29 डिग्री अधिकतम न्यूनतम 24 डिग्री, जोरदार बारिश होने की संभावना दिन के समय भी है और रात्रि के समय भी है। बात करें आबू रोड की, यहाँ पर बिजली की चमक के लिए नारंगी चेतावनी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। कभी कभी बारिश और कभी कभी जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बात करें आबूराज की, माउंट आबू में 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे और बिजली की चमक के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, और बारिश दिन में भी और रात्रि के समय भी जोरदार होने की संभावना है। पाली जिले में 27 डिग्री तक न्यूनतम अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक वर्षा की संभावना सुबह के समय है और रात्रि के समय भी है। जोधपुर में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना दिन के समय ज़्यादा है, रात्रि के समय थोड़ा सा कम है। सूरत में 30 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा की संभावना 73% रात को और दिन के समय 60% से ज़्यादा है। भारी बारिश के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है सूरत में। मेहसाना में 30 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री। मेहसाना में जोरदार बारिश होने के लिए लाल चेतावनी दिया गया है। 94% से ज़्यादा संभावना है दिन के समय जोरदार बारिश और रात्रि के समय भी। राजकोट में 30 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है, और जोरदार बारिश होने के साथ बिजली के साथ बारिश होने की संभावना रात्रि के समय ज़्यादा है और सुबह के समय 61% से ज़्यादा संभावना है अधिक बारिश होने की। गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री और रात्रि के समय दिन के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें, 35 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 29 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। बारिश की संभावना दिन के समय थोड़ा सा कम है, लेकिन रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है। बात करें कोलकाता के, कोलकाता में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है, और यहाँ पर 96% तक बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में 30 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है, और बादल तो छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना 55% तक है। मुंबई में 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है, और दिन के समय बारिश होने की संभावना 99% तक है और रात्रि के समय 97% तक है। बादल तो छाए रहेंगे आसमान पर दिन भर भी और रात्रि में भी। जोरदार बारिश होने के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक बारिश होने की संभावना है दिन के समय, रात्रि के समय बारिश होने की संभावना नहीं है फिलहाल। जिला सिरोही के बारे में बात करें, 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है हमारे जिला सिरोही में। रात्रि के समय कम बारिश होने की संभावना है, दिन के समय 58% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414-1415 पर।

0: दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। 8:03 रेडियो मधुबन की घड़ी पर चलते हैं हम आबू रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ। बारिश है तो कुछ गाड़ियाँ लेट चल ही रही है, तो वर्तमान समय आबू रोड रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस 1940 पहुंच रही है और ग्वालियर से साबरमती जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 2547 8:30 पर पहुंचेगी 5 मिनट की देरी से चलती हुई। अरावली एक्सप्रेस 1470 8:30 पर पहुंचेगी, संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 1246 संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर 9:05 पर पहुंचेगी और वहीं पर पोरबंदर दिल्ली एक्सप्रेस 20937 9:12 पर 2 घंटे 2 मिनट देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। जम्मू तभी साबरमती एक्सप्रेस 1924 9:45 पर ऑन टाइम चल रही है। अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 1609 10:10 पर पहुंचने वाली है। गरीब नवाज एक्सप्रेस 1653 1:23 देरी से चलती हुई 10:33 पर पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20496 कैंसल्ड है, ये ट्रेन रद्द हो चुकी है। योगा एक्सप्रेस 1903 10:51 पर पहुंचेगी। प्रयागराज से आने वाली स्पेशल ट्रेन 04111 11:00 ऑन टाइम आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये गाड़ी प्रयागराज से गांधीधाम तक चलती है। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचेगी। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 1942 7:54 देरी से चलती हुई 7:24 पर पहुंचेगी शाम को, जो 11:30 पर सुबह पहुंचने वाली थी। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 19412 7:24 पर पहुंचेगी 7:54 लगभग 8 घंटे देरी से चल रही है। जो 11:30 को पहुंचने वाली थी वो लगभग 7:30 तक आबू रोड रेलवे स्टेशन पर शाम को पहुंचेगी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूँ शुभा और मेरे साथ वर्तमान समय स्टूडियो में मौजूद है नायसा और वो आए हैं जोधपुर से। हेलो
1: हेलो,
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप कराटे सीखते हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब है आपके लिए? और आप इतनी छोटी सी उम्र में, एट क्लास में पढ़ रहे हैं आप, तो उसे पहले ही सीख रहे होंगे, तो क्यों सीखना शुरू किया?
1: सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी को ऐसे हंसी मजाक में मारना। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि खुद की प्रोटेक्शन और औरों की भी प्रोटेक्शन करना आपको आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस मैंने इसलिए सीखा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं लड़कियों को, रेप केसेस, और इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा कि ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं एंड मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। सेल्फ डिफेंस में तीन तरीके होते हैं कि इफ़ आपका अटैकर आपके सामने है, मेक श्योर दैट थिंग दैट योर वॉइस इज लाउडर देन द अटैकर। एंड ये बात है कि इफ़ आपको कोई प्लेस सेफ नहीं दिख रही है, प्लीज़ आप तुरंत वहीं से चले जाइए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने गट्स पे ट्रस्ट कीजिए आप। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़, कराटे इज द स्पोर्ट जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है बाकी लड़कियों से। बाकी लड़कियां दब के रह जाती है पर आपको कराटे एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है। सो प्लीज़ आप सभी से ये निवेदन है कि आप प्लीज़ कराटे या कोई भी स्पोर्ट्स जाइए क्योंकि इससे आपकी सेल्फ एबिलिटी बदलती है।
0: जी बिल्कुल,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू आपका। नायसा, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे आप कह रहे थे कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि कोई अंधेरे रास्ते में चले जाना, है ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ आता है तो मैं कहीं पे भी चले जाऊँ। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि बाकी लड़कियों से आप को स्ट्रॉन्गर बनाता है, आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो या फिर आप कराटे सीखते हो, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो?
1: अभी तो फ्यूचर में ये है दीदियों की तरह बाबा के लक्ष्य पे चलना है, और दूसरा ये है कि इफ़ कोई भी जैसे फ्यूचर में तकलीफ आई तो आई कैन बी अ टीचर ऑफ कराटे।
0: ओके, तो आप छोटे बच्चों को और सभी लड़कियों को सिखाना चाहते हो?
1: यस।
0: ओके, देश के लिए क्या करना चाहते हो?
1: देश के लिए सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लड़कियों को मजबूत बनाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज तो टाइम कम है और फिर कभी बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद नायसा। तो दोस्तों, यहीं पर रुकना नहीं चाह रहे हम, बस ब्रेक लेना चाहते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth. And after many, many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है। और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, और क्योंकि वक्त कम है तो बाद में आप ये मेडिटेशन करिएगा। आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी जैसे बता रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और हेल्थ का क्या वैल्यू है उसके बारे में बता रहे थे। आइए जानते हैं कुछ बातें जो हमारे आसपास के साथ जुड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आबू रोड क्षेत्र के सियावा गांव की 2.5 वर्षीय बच्ची की गुजरात के पालनपुर में इलाज के दौरान चांदीपुरा वायरस, जिसको CHBP कहते हैं, उससे मौत हो गई। ये राजस्थान में इस वायरस से मौत का दूसरा मामला है। इससे पहले डूंगरपुर जिले में भी एक बच्ची की मौत हो चुकी है। परिजनों के अनुसार बच्ची 12 जुलाई को तेज बुखार आने पर पालनपुर ले गया था बच्ची को। इलाज के दौरान उसे दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। 17 जुलाई को जांच रिपोर्ट में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई और 6 दिन तक उपचार के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 19 जुलाई को उसकी मौत हो गई। तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी ने चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट किया है। आबू रोड से स्वास्थ्य टीमों का गठन कर सियावा सहित आसपास के गाँव में घर घर सर्वे करा रहे हैं। अब तक 800 से अधिक घरों का सर्वे किया गया है, जिनमें शुक्रवार को ही 650 घरों की स्क्रीनिंग की गई। प्रभावित क्षेत्र में भी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। फिलहाल किसी अन्य ग्रामीण में संदिग्ध लक्षण नहीं मिले हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि तेज बुखार, उल्टी, दौरे और बेहोशी या फिर मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण मिलने पर मरीज को तत्काल अस्पताल भेजा जाए। चांदीपुरा वायरस एक घातक वायरस है जो और इसका प्रमुख कारण माना जाता है जो एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण है, और ये मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार कि लगभग 56% से 75% तक दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये जो सैंड फ्लाई का निवास स्थान है ये वायरस, और उससे बच्चों को फैलने की ज़्यादा संभावना है। वायरस के प्राकृतिक रिजर्वायर अगर कहा जाए तो ये जो जानवरों से भी फैल रहा है, और जानवरों के साथ साथ ये संक्रमित सैंड फ्लाई जो है उसके वजह से बच्चों के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करना है, बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाना है, मच्छरदानी और कीट रोधी दवाओं का उपयोग करना है, बच्चे को बुखार उल्टी या दौरे आए तो तुरंत अस्पताल ले जाना है, और घर और आसपास सफाई ज़रूर रखना है क्योंकि मस्तिष्क को भी प्रभाव करता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2024 में भारत ने पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा चांदीपुरा वायरस प्रकोप देखा गया। कई राज्यों में बच्चों में संक्रमण के मामले सामने आए। इसकी पहली पहचान 1965 में चांदीपुरा वायरस रेबडोविरिड परिवार के समूह का आसपास ये वायरस मिला था, और इसकी पहचान पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में चांदीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रखा गया है। इस मोड़ पर एक हमारे श्रोता मित्र फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका। हेलो
3: जी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ
2: दीदी। जी जी जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया हूँ दीदी जी, और चल रहा हूँ बारिश है
2: जी,
3: और देरी के बाद से चल रहा हूँ
2: जी,
3: और आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और मोबाइल लगाना चाहा मगर घर से निकला और बारिश है, ऑटो रिक्शा में रहता हूँ, मैंने फोन लगाया है।
2: जी जी जी,
3: आज रविवार है। चलो दीदी को
2: धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आज रविवार है, आप कहाँ जा रहे हैं?
3: जी जी, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार।
2: नमस्ते, मैंने पूछा मदन लाल जी आप कहाँ जा रहे हैं आज रविवार?
3: अभी इसी वक्त नौकरी जा रहा हूँ आज, मतलब
2: आज संडे छुट्टी नहीं है,
3: गुरुवार को भी छुट्टी नहीं रही,
2: गुरुवार को छुट्टी, ओके
3: रविवार को रखेंगे छुट्टी। तो रही बोले आप नहीं, और भी थोड़ा काम बढ़ गया है, तो दवाल दो दिन का पगार देंगे।
2: जी जी जी, ओके ओके।
3: हाँ तो हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, बस बढ़िया सा गाने पर हमारे।
2: धन्यवाद धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। ऑटो में जाते हुए भी आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, आपके साथ साथ आपके आसपास वाले जो हैं उनके भी दिन अच्छे हो, ये शुभकामनाएं कर रहे हैं हम। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं के दिन तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। और हम वायरस के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा बच के रहना है, अपने बच्चों को बचाना भी है। कुछ और सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं दैनिक भास्कर के जरिए। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में LEP योजना के तहत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत और गृह विज्ञान के व्याख्याता, अंग्रेजी गणित के वरिष्ठ अध्यापक तथा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई तक दस्तावेज सहित आवेदन जमा कर सकते हैं। आबू रोड में अमलसाड़ और बिली मोड़ा स्टेशनों के बीच जल भराव से ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन जी ने बताया कि ट्रेन संख्या 20496 हड़पसर जोधपुर एक्सप्रेस 28 जुलाई तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 20495 जोधपुर हड़पसर एक्सप्रेस 27 जुलाई तक रद्द रहेगी। सिरोही महाविद्यालय में विधि प्रथम वर्ष 2026-27 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 25 जुलाई थी, अब इसे बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया है। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश पत्र के साथ सभी दस्तावेज कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराएं। इस मोड़ पर एक हमारे श्रोता मित्र जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
4: नमस्कार दीदी, नमस्कार
2: जी, कैसे हैं भूलाल जी आप?
4: बहुत ही बढ़िया हूँ, कार्यक्रम
2: जी जी जी तो आज आप नाश्ते नाश्ते में क्या खाना चाहेंगे? जी
4: तो एक मेरा छोटा सा एक गाना है बढ़िया माता जी वाला है।
2: गाना अभी चलाने का टाइम तो नहीं है, क्षमा चाहूंगी मैं इस बात के लिए, क्योंकि अभी हम तो ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार भी सुनेंगे।
4: अच्छा,
2: तो आप कल खुशी के नगमे कार्यक्रम के अंतर्गत या नई नई किरण के अंतर्गत आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं। नमस्ते, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सभी दोस्तों को फिर से शुभकामनाएं। यहीं पर मैं रुकना चाहूंगी। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे, आपका स्वस्थ आपके हाथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
5: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:00 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इस दौरान कई विषम परिस्थितियों का सामना हमारे जवान हथियारों के साथ आत्मबल से करते रहे और आगे बढ़ते रहे। भारतीय थल सेना और वायु सेना के विभिन्न रैंकों के करीब 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें बताते कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा नंदा है, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और काफी समय से विशेष सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। आप जो है योगा एक्सरसाइजेस और विशेष रूप से बहुत सारे टिप्स आप लोगों को देते रहते हैं। लोग आपसे बातचीत करके, आपके आइडियाज को सुनकर, आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने लाइफ को हेल्दी बना रहे हैं और वेल्दी भी। तो डॉक्टर प्रतिभा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, स्वागत है आज के इस सेशन में।
1: थैंक यू।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया बढ़िया है। और मैं चाहूंगा कि आपका इस पेशे में कैसे आना हुआ वो थोड़ा सा बताइए, मेडिकल फील्ड में कैसे एंटर होना हुआ?
1: मेरी फैमिली में काफी डॉक्टर्स हैं और
0: अच्छा।
1: मैं अपने भाई बहनों में, मेरी बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, मेरी मौसियां भी डॉक्टर, और मेरी मदर की साइड में उनके चाचा जी भी डॉक्टर, और मेरे ग्रैंडफादर वैद्य थे, तो हमारी
0: अच्छा,
1: ब्लड में है। और
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: शुरू से ही मम्मी की जो ग्रूमिंग रही थी वो यही थी कि सेल साइड में ही जाना है, और मेरा अपना इंटरेस्ट भी था और इसीलिए सेवा भाव भी था। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और उसके बाद मैंने MD किया गाइनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, और LNJP हॉस्पिटल से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज विख्यात है, वहां से मैंने MD किया। और उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की जॉब ज्वाइन की, और तब से मैं वहां पे रही थी। और जब मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के गई एक दूसरे हॉस्पिटल में, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में, आज
0: जी
1: से
0: जी
1: कर 4 साल पहले, तो वहां मैंने ये काम शुरू किया। इससे पहले दीनदयाल में थी तो हम लोग, अब मैं वापस दीनदयाल में हूँ। उस समय तो काम इतना होता था कि फुर्सत नहीं होती थी कुछ भी और सोचने की, लेकिन जब मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के गई तो मेरे हाथ में मेरा डिपार्टमेंट जो था उसे मैं कह सकती थी, और उनका भी रुझान इस तरफ था। तो हमने फिर थोड़ा ये काम किया कि प्राणायाम के साथ प्रेगनेंसी में कैसे रिजल्ट्स आते हैं हमारे, तो जो नॉर्मल हम पैरामीटर्स देखते हैं
0: जी
1: मरीजों के,
0: जी
1: वो सारे हमने जज किए। कुछ पेशेंट्स को प्राणायाम कराया और कुछ जो थे वो बिना प्राणायाम के थे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें नजर आए। तो इस तरह से मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा। अब मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्राणायाम कराना शुरू करूँ। कहा है अभी, लेकिन मुझे खुद अब थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा तभी ये काम शुरुआत।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे काम के लिए खुद को ही आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके दूसरे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि
1: बिल्कुल। और
0: वो
1: मेरे
0: थोड़ा सा।
1: मैं आपको बताऊं, हमारे जो ब्रह्मा कुमार सिद्धू भाई हैं जो हरिनगर सेंटर से भी जुड़े हुए थे, वो
0: जी
1: पेशेंट्स को उन्होंने प्राणायाम सिखाया था बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में। वो आते थे सुबह और प्राणायाम करा
0: अच्छा।
1: करके और फिर जाते। अब यहाँ मैंने अभी उनको नहीं बुलाया है, शायद मुझे उनको ही बुलाना पड़ेगा। आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है मुझे इन्वॉल्व होने से ज्यादा अच्छा है मैं सिद्धू भाई को बोलूं कि आकर के शुरू कराएं, तो शायद जल्दी होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग इस पेशे में आते हैं तो स्पेशलाइजेशन की बात होती है, तो आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन, या आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है इसी मेडिकल फील्ड
1: मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ,
0: में?
1: गायनी में MD किया है मैंने गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, और मेरी स्पेशलाइजेशन गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स ही है। और मैंने उसके बाद MD करने के बाद मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में 26 साल मैंने गायनी डिपार्टमेंट में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम किया, और के बाद मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनी और अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी रही। अब वापस मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में आई हूँ, MS की सीट ऊपर हो जाती है, सुपर एनुएशन हो जाती है, तो मैं 6 4 years की हूँ, तो 62 पे हमारा सुपर एनुएशन हो जाता है। उसके बाद मैंने 3 साल और लिए हैं क्लिनिकल काम करने के लिए, तो मैं दीनदयाल में,
0: अच्छा,
1: अब दीनदयाल हॉस्पिटल में क्लिनिकल काम करती
0: अरे वाह,
1: हूँ
0: क्या
1: एज
0: बात है,
1: एज यूनिट हेड। मैं अपने यूनिट की हेड हूँ।
0: बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय में जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर,
1: जी
0: जैसे मेडिकल फील्ड की बातें हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूड हो जाती हैं और इंक्लूड करते रहते हैं। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेडिकल फील्ड में, या नई चीजों के तरीके, जैसे सर्जरी पहले जो है मैन्युअली की जाती थी, अभी कुछ चीजों का जो है टेक्निकल चीजों का, मशीनों का सपोर्ट ले रहे हैं। तो आपके टाइम पे, क्योंकि आपका पूरा फैमिली डॉक्टर वाला है, तो निश्चित तौर पे पूर्व में कैसी चीजें होती थी और आज कैसे हो रही है, वो जो बदलाव है वो आपने देखा है, तो मैं चाहूंगा कि उसमें
1: बहुत
0: कुछ चीजें
1: बहुत
0: बताइए हमें।
1: हाँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं हुआ करती थी। आजकल हम अल्ट्रासाउंड हर पेशेंट का करवाते हैं, और एक नहीं कई करवाते। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई तो वो लॉक एंड की में रखी जाती थी, उसका ताला लगा हुआ होता था और चाबी किसी एक व्यक्ति के पास होती थी। तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आप चाबी दे दीजिए, फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड मशीन को हम उससे काम
0: यूज
1: करते थे,
0: करेंगे।
1: यूज करते थे। इसी तरह से मैंने एमडी में जो थीसिस टॉपिक था मेरा, वो अल्ट्रासाउंड और लैप्रोस्कोपी के ऊपर था। फिर तो तब तक लैप्रोस्कोपी आ गया था। तो ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि मैंने किचन के अंदर अंगीठी से स्टोव और स्टोव से प्रेशर कुकर और उसके बाद गैस आते हुए देखा है। ठीक उसी प्रकार से मैंने मेडिकल फील्ड में बहुत बदलाव देखा है। हमारे टाइम में जब हम पढ़ रहे थे तो ये वाली मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, और अब ये है कि रोबोटिक सर्जरी तक होती है। यानी कि आप सिर्फ डिजिटली चीजें बाहर मूव करते हैं और अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो रोबोट होते हैं, छोटे छोटे, जो अपना
0: अच्छा
1: काम
0: अच्छा
1: करते हैं। तो बहुत बदलाव आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो हाथों का काम है वो कुछ कम हो गया है। कुछ चीजें अब सिजेरियन ऑपरेशन इतने ज्यादा होते हैं, बच्चा पैदा कर, हम लोग अपने टाइम में फॉर्सेप्स लगाते थे, फॉर्सेप्स की रिलीज होती थी, वैक्यूम एक नाम होता था एक इंस्ट्रूमेंट का, कि वैक्यूम क्रिएट करके और बच्चा डिलीवर होता था। लेकिन अभी धीरे धीरे ये चीजें जो हैं आउट ऑफ प्रैक्टिस जा रही हैं, ऑब्सोलीट होती चली जा रही हैं। अभी इंसिडेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे कहा गया, किसी मेरी कलीग थी, उनकी लैब टेक्नीशियन थी वो, तो फोन किया कि पेशेंट जो है उसको लेबर रूम से ओटी में ले गए हैं और ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही है, तो मैडम जरा आप जा करके देख ली। तो मैं जब देखने के लिए गई तो मुझे कहा गया कि नहीं मैडम, ये नहीं डिलीवर हो पाएगा, हमने बहुत कोशिश कर ली और मैंने बेबी डिलीवर करा दिया। तो मैंने शायद इतने सालों के बाद फॉर्सेप्स, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रही पिछले कुछ साल, तो मुझे याद नहीं कि मैंने इससे पहले फॉर्सेप्स डिक्कर लगाया, तो मुझे समझ में आया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ड्राइविंग सीख लेते हैं तो फिर कभी भूलते नहीं है, या तैराकी सीख लेते
0: बिल्कुल
1: हैं नहीं है, ठीक उसी प्रकार आपके हाथ जो सीख जाते हैं वो आप एंड तक कर पाते हैं। तो रिटायरमेंट से एक साल पहले भी मैं फोर्सेप्स लगा करके बच्चा डिलीवर करा दिया मैंने, तो मेरे को लगा कि अभी भी कुछ भूलता नहीं है। लेकिन ये वाली
0: बिल्कुल
1: नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस, अब नहीं सीख रहे हैं, उन्हें लगता है सिजेरियन कर देना चाहिए, ये रिस्क ही होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी ऑपरेशन अगर बचाया जा सकता है तो बचाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मोस्टली एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है, सीजरिंग क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन?
1: बहुत कारण है। फिजिकल काम जो पहले हुआ करते थे घर में, बहुत काम किया करती थी, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी रेट जो है वो बेटर होता है। जब आप बेड में ज्यादा रहते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं नॉर्मल चीजों से, नॉर्मल काम से, तो उसमें ऑपरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। उसका एक सीधा सीधा कारण है कि जब आप काम करते रहते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं, और उन्हें जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है मॉड्यूलेशन जो होनी चाहिए बॉडी की डिलीवरी के लिए, जो तैयार होनी चाहिए वो नॉर्मल होती रहती है। लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को, और ये रिस्ट्रिक्शन शायद अब इसलिए भी हो गया कि नॉर्मल जो पहले काम हुआ करता था, काम के तौर तरीकों में बहुत फर्क आ गया है। घर के जो घरेलू काम हुआ करते थे उसमें बहुत तरीके का अब चेंज आ गया है। सो जो पहले लेडीज किया करती थी अब वो नहीं करती है, तो ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की हो गई है। तो इसलिए लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत हो गई हैं, और बच्चा पैदा करने की जो ऑपरेटिव रेट है वो भी इस कारण भी बढ़ गया है। दूसरा कारण ये है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई हैं। फॉर
0: जी जी जी
1: एग्जाम्पल, हमारी कुछ साल पहले, आज से मैं कहूंगी 35 साल 40 साल पहले, प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज की जैसे है कम हुआ करती थी, ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी कम होती थी, लेकिन वो फिर भी होती थी, डायबिटीज कम होता था, थायराइड की प्रॉब्लम कम होती थी। अब ये चीजें बहुत ज्यादा देखने में आती, हालांकि थायराइड और डायबिटीज की वजह से ऑपरेशन पर से तो नहीं होता है, डायबिटीज में कभी कभी हमको करना पड़ता है, अगर बच्चा डायबिटिक मदर है और उसके बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें ऑपरेटिव रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उसमें हमको सिजेरियन करना पड़ता है। सो जैसे जैसे मेडिकल कंडीशंस कुछ इस तरह की हो जाती हैं और उनका रेट जो है वो सोसाइटी में इस समय बढ़ रहा है, तो इस कारण सिजेरियन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स अब इस समय देखी जा रही है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है, इसीलिए ये वाली चीजें हमको देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हमारा लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और पहले वाले जैसा काम पहले में हम लोग बहुत सारा काम भी कर लिया करते थे घर के, आजकल तो मशीन घर में काम कर रही है, इस वजह से भी ये
1: सही है
0: चीजें आ रही हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा मॉडरेट होते गई है, जिसके वजह से हम लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: अब फिर से वापस अगर नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग अगर लाना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हम सभी को कार्य अपने हाथों से करना पड़ेगा, अपने काम को
1: बिल्कुल,
0: मशीनों की
1: अपने
0: जगह
1: ऊपर भी
0: हमको।
1: कार्य करना पड़ेगा, हाथों से भी कार्य करना
0: जी
1: पड़ेगा और अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। हम अपने आप को
0: हाँ
1: बहुत निग्लेक्ट करते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत
0: बिल्कुल
1: निग्लेक्ट करते हैं, हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जो ईश्वर ने आपको मशीन दी है जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारी जो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने से पहले भी जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है वो हमको यही कहती है, ये आपकी एक बॉडी की मशीन है, बॉडी मशीन है और इसके अंदर सोल रहती है, और इस सोल का ये जो घर है इसको मेंटेन रखना ये हमारा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हम नहीं करते। हम सोचते ज्यादा हैं, हम परचिंतन ज्यादा करते हैं, हम स्वचिंतन नहीं करते, और उसका परिणाम यही होता है कि हम अपनी बॉडी को भी निग्लेक्ट कर जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग इन चीजों को वापस ला सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, शरीर एंड उसके अंदर चलने वाले विचार, दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। तो आइए इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर प्रतिभा जी से बातें करेंगे। सुभाष जी, सुनाओ ने ओम शांति वेलकम ऑल ऑफ यू करके लिख के भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहिबा से कोई सवाल आपको पूछना हो तो अपना नाम, उम्र और एज बता के आप सवाल पूछिएगा, तो डॉक्टर प्रतिभा जी से हम लोग वही सवाल का जवाब लेंगे अभी। तो वही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सभी के लिए, एक छोटा सा गीत डॉक्टर प्रतिभा जी।

0: विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए फिर से मैं जुड़ना चाहूंगा डॉक्टर नंदा जी से। डॉक्टर प्रतिभा नंदा हमारे साथ हैं, आप दिल्ली से हैं और बहुत ही सुंदर दीदी आपने गीत गाया, सुभाष जी ने याद किया आपको। तो आइए, अब मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, और काफी जो है समय के साथ साथ चीजें बदल गई हैं, हमारा खाना है और हमारा डाइट है, वो सारी चीजें भी चेंज होती गई, इसके कारण भी काफी कुछ असर पड़ रहा है। तो ऐसे में इस मॉडर्न में और चीजों का जो बहुत ज्यादा वस्तु और मटेरियलिस्टिक होने के बावजूद अभी भी हमारे पास हेल्थ अपने हाथ में है क्या, या फिर हम लोग कैसे अपने आप को या अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं?
1: हाँ, हेल्थ बिल्कुल अपने हाथ में है, क्योंकि सबसे पहले तो सोच विचार अपने हाथ में है। हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या खाना है, ये हमारी सोच पे ही निर्भर करता है। और हमने एक्सरसाइज करनी है, ये भी हमारी सोच पर है। हमने प्राणायाम करना है, ये भी हमारी सोच पर है। तो क्योंकि हमारी सोच हमारे हाथ में है, तो फिर सारी चीजें हमारे हाथ में ही है। तो बाकी कुछ चीजों पे ध्यान देना भी पड़ता है, जैसे कि प्लास्टिक जो है वो बहुत खराब चीज है। प्लास्टिक को किस तरह से अपनी लाइफ से निकालना है या उसका कम यूजेज करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। सो हम क्या खा रहे हैं, लेकिन हम उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं। हम गर्म चीज को बिल्कुल भी प्लास्टिक में न खाएं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी की बॉटल्स जो हैं, यूजुअली हमारी प्लास्टिक की होती हैं, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं। इनमें जो माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं प्लास्टिक की चीजों से, जो हमको नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पानी में घुलते रहते हैं और इसी पानी को हम पीते हैं। आप देखेंगे इस समय हमारा जो कैंसर रेट है, डायबिटीज तो बढ़ ही रहा है, हाइपरटेंशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कैंसर रेट बहुत बढ़ गया। हर परिवार के अंदर एक कैंसर का पेशेंट इस समय आपको नजर आ रहा है। और इससे निजात पाने के लिए हमें पहले तो प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकालना होगा। सो
0: जी
1: जिस तरह से मैं करती हूँ कि पानी जो है उसको बिल्कुल स्टोर नहीं करती हूँ। जो बिस्लेरी आपको मिलता भी है, अनलेस कि बहुत आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। पर रूटीन भी आप घर के अंदर बॉटल्स में पानी न रखें, ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो इसको फिर हम अपने लाइफ से निकालें। और स्टोरेज भी, गर्म चीजें जो हैं, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और टोकती भी हूँ, चाय लेकर के जाते हैं प्लास्टिक के पॉलिथीन के बैग में कि वो गर्म रहेगी। सब्जी गर्म पॉलिथीन के बैग में लेकर के और कहीं तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे करना है तो उसके अंदर करते हैं। और मैं कहीं पे भी चलते हुए भी सड़क पर लोग हैरान भी होते होंगे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन मुझसे देख करके रहा नहीं जाता है। फिर लोग प्लास्टिक को जलाते हैं सर्दी के दिनों में और उसका धुआं लेते हैं, गर्माइश उससे आता है। खैर, ये तो अब मैंने इतना फैला दिया अपने चारों तरफ कि अब मेरे को कम से कम अपने आसपास तो नहीं नजर आता है, लोगों को समझ आ गया है। इतना उसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है जो आप इनहेल करते हैं,
0: जी
1: और बिल्कुल उसके सामने बैठ करके कि हमारे पास और कुछ है नहीं जलाने के लिए, इसलिए हम प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैलियां जला रहे हैं। सो ये अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है कि आप क्या कर रहे हैं और इन चीजों का कितना असर आपके ऊपर बुरा पड़ रहा है, ये लोगों को अंदाजा भी नहीं है। पहले प्लास्टिक नहीं हुआ करता था। आपको कभी, मुझे मालूम नहीं कितने लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मेरे ख्याल में 90s में भी इतना प्लास्टिक नहीं था हमारे। मुझे जहां तक याद है, हम प्लास्टिक सेव करके रख लेते थे अपने पास कि भाई काम आ जाएगा, हम उसे, हमको नहीं मिलता था। उसके बाद फिर ऐसी अचानक बाढ़ आई है, इतना प्लास्टिक है इस समय, हर सब्जी वाला आपको हर आइटम जो है वो नए प्लास्टिक की थैली में दे देता है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक ही थैली के अंदर सारा सामान डलवाती हूँ, मैं नहीं वेस्ट करती हूँ उसके बाकी के पॉलिथीन बैग्स। वो डाल रहे होते हैं, मना कर देती हूँ कि नहीं डालिए, आप एक ही बैग में सब कुछ डालिए। और फिर मैं उन बैग्स को अभी भी फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको संभाल करके रखती हूँ और उसको मल्टीपल टाइम यूज करती हूँ, और नहीं तो सब्जी वाले को वापस कर देती हूँ जब इकट्ठे हो जाते हैं काफी सारे और ठीक ही होते हैं। ऑब्वियसली एक सब्जी आई और आपने कितना खराब वो होता है, और उनको वापस उसी सब्जी वाले को दे देती हूँ और वो उसको एटलीस्ट एक बार तो और ये रीयूज करेगा। और मेरी ये मंशा रहती है, मैं उनसे ये भी कहती हूँ, आप जिसको भी देते हैं उसको ये कहिए कि एक यूज के बाद इसको ना फेंका जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक हमारी जो अर्थ है उसको कंटामिनेट इतना ज्यादा कर रहा है कि जो आप ग्रेन जो खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, वो उसी मिट्टी से आता है, और अगर वो मिट्टी दूषित हो जाती है प्लास्टिक के कारण, तो ये प्लास्टिक आपके अंदर शरीर में जा रहा है मिट्टी के द्वारा भी। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का और सोचने का कि हम कितने घिरे हुए हैं इन चीजों से जो बीमारी की जड़ है। सो इसी तरह से पानी, आप पहाड़ों पर अगर कभी जाते हैं, वहां पर लोगों ने ऐसे पॉलिथीन फेंके हुए होते हैं, उसी के ऊपर आपकी बर्फ गिरनी है, वही बर्फ जो है वो पानी बनकर के नदियों और झरनों में आनी है, वही नदियों का पानी आपके घर में पीने के लिए पानी बनकर के आना है। तो अगर इतना प्लास्टिक आप पहाड़ों पर फेंक देंगे, तो ये सारा जो है ये जहर है, एक तरीके से जहर है जो हमारे अंदर जा रहा है, और हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारी चीज क्रिएट करने। तो नेचर बहुत हेल्प करती है हमको कि कंटामिनेशन कम हो, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं, प्लास्टिक हमारी क्रिएशन है, नेचर ने नहीं क्रिएट किया है ये हमारे लिए, ये हमारी क्रिएशन है, और हमें यूज करना नहीं आ रहा है, हम जरूरत से ज्यादा इसको मिसयूज कर रहे हैं, और इसके लिए उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं। ये सबको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। एक प्लास्टिक को डिसइंटीग्रेट होने के लिए 500 साल लगते हैं, 500 ईयर्स एक प्लास्टिक की थैली। तो आप सोचिए कि ये किस तरह से डिसेमिनेट होगा और कहाँ जाएगा, ईश्वर जानता है। जो भी चीज हमें यूज करने के लिए मिलती है, हम उसे मिस यूज करते, हम उसे यूज नहीं करते, मिस यूज
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सही कहा आपने। प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता और उसको लंबा टाइम लगता है खत्म होने में, और जलता भी नहीं है और वो फेंका भी नहीं जाता, और कहीं भी फेंकेगा तो इकट्ठा ही रहता है, उसका डिस्पोजिबल नहीं होता। तो नेचुरली ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा सोचनीय है। हम जितना ज्यादा हो सके कपड़ों का थैली का इस्तेमाल करें, या कम यूज करें, उसको रीयूज करें, ऐसा कुछ हो सकता है तो उसके बारे में चिंतन जरूर करना चाहिए। और आइए दयाल जी हमारे साथ मिलकर, उन्होंने मैसेज किया है। सुभाष जी लिखते हैं, पहले हमारी माता बहनें प्रेगनेंसी पीरियड में कोई ना कोई हल्का फुल्का काम घर के किया करते, आज वो नहीं करते हैं। सही बात है। और जी रमेश जी, मैं दयाराम जी लाखनी से, आपका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। तो क्या हमें प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे क्या नुकसान होता है, ये पूछा है दया। प्लास्टिक में सब्जी रखना चाहिए कि नहीं, दो सवाल आए हैं। दयाराम जी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि प्लास्टिक के पानी का बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में जो पानी आता है उसे पीना चाहिए या नहीं, क्या कर
1: कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है और पानी का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वाटर बॉटल अपने पास रखें, तो फिर हाँ, लेकिन आप घर में रूटीनली इस चीज को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप स्टोरेज जो पानी की है उसको प्लास्टिक में न रख करके, और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, यूजुअली आजकल स्टील यूज होता है घरों में, तो स्टील के बर्तन में आप उसे स्टोरेज करिए, आप बिल्कुल प्लास्टिक की बॉटल्स न इस्तेमाल करें। और जहां तक सब्जी का है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जी ठंडी हो चुकी है तो हाँ, आप उसे फिर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्म चीज कोई भी प्लास्टिक में डालना बहुत खतरनाक। आप गर्म चीज को खाने के लिए प्लास्टिक के जो कटोरियां या दूसरी चीजें हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना, आप स्टील की कटोरी लें गर्म चीज के लिए, और स्टोरेज के लिए अगर ठंडी हो चुकी है तो फिर हाँ, प्लास्टिक में आप तो
0: बिल्कुल बिल्कुल प्लास्टिक में सब्जी रखना चाहिए कि नहीं, ये पूछा है उन्होंने।
1: आप फ्रेश वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, अगर वेजिटेबल काट करके सिर्फ रख रहे हैं तो हाँ, आप रख सकते हैं, लेकिन आप बनी हुई सब्जी अवॉइड
0: बनी
1: करें।
0: हुई सब्जी ना रखे उसमें।
1: हाँ, बनी हुई सब्जी को अवॉइड करें, लेकिन गर्म सब्जी तो बिल्कुल नहीं रखनी है,
0: बिल्कुल
1: वो
0: भी
1: तो
0: नहीं
1: 0%
0: रखा। नेताजी बहुत अच्छी बात आपने पूछा है, प्लास्टिक में सब्जी रखना है या नहीं। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल लेके आ रहे हैं तो प्लास्टिक में आ जाएगा, उसको फ्रिज में रख सकते हैं, बाद में आप बनाएंगे और बनाने के बाद उसे प्लास्टिक में नहीं रखना है, या गरम गरम कहीं पैक करने किसी देना है तो गरम सब्जी प्लास्टिक में डाल के ट्रेवलिंग में लेके गए वो भी नहीं लेना है, उसको एक अच्छे अपने स्टील के टिन में आप लेके जा सकते
1: जी।
0: हैं।
1: अगर आप ट्रैवल कर रहे
0: थोड़ा
1: हैं और आपने स्टोर उसमें करना है तो ठंडी करके उसमें डालिए, गर्म चीज बिल्कुल मत डालिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कच्ची सब्जी तो आप रख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: जी
0: आजकल प्लास्टिक की जगह वो जाली वाला भी आ गया है, फ्रिज में रखने वाली चीजें होती हैं, डॉट डॉट वाली थैलियां आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो लंबा टाइम यूज कर सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। और अब एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, आज के समय में जैसे प्रेगनेंसी के समय में किन किन बातों का डाइट रखना है, क्योंकि इंडिया में डाइट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और प्रेगनेंसी में किन किन तरह का खाना, एक फीमेल को कहते हैं डबल खाना है, तो किस तरह का डबल खाना होना चाहिए और उसमें कौन सा खाना होना चाहिए?
1: पहली बात, हमारी डाइट में प्रोटीन जो है वो बहुत कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होती है। हमारी लेडीज दाल नहीं खाती हैं, दूध नहीं पीती हैं, तो आप दाल का जो खाने का समय होता है वो यूजुअली मॉर्निंग और आफ्टरनून, यानी कि आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और लंच में ले सकते हैं। रात को दाल खाना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उसको हजम होने में वक्त लगता है और रात को दाल अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन एक एक कटोरी दाल की आप सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच टाइम पर जरूर खाएं। दूध जो है वो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। आयरन की गोली प्रेगनेंसी में जरूर खानी चाहिए, सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, जब तक मदर बच्चे को दूध पिला रही है, चाहे 6 महीने पिला रही है या 1 साल पिला रही है, बच्चे के अंदर आयरन जो जाना है वो माँ के दूध से ही जाना है। इसलिए माँ को दूध पिलाने के टाइम भी आयरन खाना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली मदर्स एंटीनेटल पीरियड में तो खाती हैं, यानी जब तक बच्चा पेट में रहता है तब तक आयरन खाती हैं और उसके बाद छोड़ देती हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि नहीं, आयरन को छोड़ना नहीं है, आप जब तक फीड कर रही हैं बेबी को तब तक आपको आयरन खाते रहना है। दूसरी बात, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो दूध से आता है, बच्चे की हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है बनने के लिए, तो दूध से आना है और कैल्शियम की गोलियां अलग से भी हम देते हैं। तो कम से कम 500 मिलीग्राम की कैल्शियम की गोली दिन में 2 या 3 बार अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की हड्डियां अच्छी मजबूत बन सके। तीसरी चीज, ओमेगा फैटी एसिड्स की बात आजकल होती है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स अच्छे माने जाते हैं, तो वो भी कुछ लोग देते हैं। रेगुलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ओमेगा नहीं मिलता है, लेकिन अपने आप से आप ले सकते हैं, ओमेगा
0: ले
1: फैटी
0: सकते
1: एसिड करके मिलते हैं, हाँ कैप्सूल।
0: जी।
1: और कभी कभी प्रोटीन पाउडर एडवाइस किया जाता है, जो अनिमिक पेशेंट होते हैं जिनके खून की कमी होती है, उनको प्रोटीन पाउडर दूध में घोल करके खाने के लिए कहा जाता है, पीने के लिए कहा जाता है। और आयरन भी जो पेशेंट्स अनिमिक होते हैं उनको कई बार हमें दिन में 2 बार भी टैबलेट देनी पड़ती है, अदरवाइज अगर अनिमिक नहीं है पेशेंट तो 1 आयरन की टैबलेट सफिशियंट है। और आयरन के साथ विटामिन सी लेना अच्छा रहता है, एक विटामिन सी 500 मिलीग्राम की गोली अगर आयरन की टैबलेट के साथ ली जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो आयरन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टिन से अंतनी।
0: जी
1: और हरे पत्तेदार सब्जियां अच्छी रहती हैं, लेकिन उसमें ये है कि हरे पत्तेदार सब्जियां आपको अच्छे से धोनी पड़ेगी। बिना धोए क्या होता है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़ों के अंडे अक्सर पाए जाते हैं, जो कि अगर अंदर चले जाते हैं तो फिर वो व्याधि क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, स्पेशली पालक, सरसों का साग, बंद गोभी, बंद गोभी के लोग बंद की बंद ही काट करके और उसे चढ़ा देते हैं, तो बंद गोभी के जो पत्ते हैं उनको खोल करके, उनको धो करके और तभी उनकी सब्जी बनानी चाहिए, अदरवाइज बंद गोभी के अंदर बहुत अंडे होते हैं, कीड़ों के अंडे जो आपके शरीर के अंदर जाते हैं। और हमेशा सब्जी जो है काटने से पहले धोनी चाहिए, काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे सब्जी वालों के पास कटे हुए साग बिकता है, लोग कटा हुआ साग खरीद करके लेके जाते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, खुद नहीं काटना चाहते हैं, तो कटा हुआ लेकर के जाते। कटे हुए सब्जी जो होती है जब उसको आप धोते हैं तो उसमें से सारा तत्व जो है
0: निकल जाता है।
1: निकल जाता है, तो इसलिए कटने से सब्जी हमेशा काटने से पहले अच्छे से धोनी चाहिए और उसके बाद ही काट। और फ्लोइंग वाटर में आपको एक बार आप किसी बड़ी चीज में उसे सबमर्ज करके, किसी यानी भिगो करके अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसे रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के लिए भी मैं कहूंगी कि पानी हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जो रनिंग वाटर चला रहे हैं, पानी नल का चला दिया, अब आप उसमें साग धो रहे हैं, तो नीचे एक कंटेनर रख लीजिए जिसमें वो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाए, फिर उसको आप उसी पानी को यूज कर सकते हैं अपने गमलों में पानी देने के लिए या वॉशिंग करने के लिए। तो पानी भी हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें धोने पर भी ध्यान देना चाहिए हम किस तरह से धो रहे हैं, धोना अच्छा रहता है, लेकिन उस पानी को आप वेस्ट नहीं करें, आप उसको रीयूटिलाइज।
0: बिल्कुल, चलिए डॉक्टर नंदा, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, सही बात बताई प्रतिभा जी ने है। सुभाष जी ने भी याद भेजा है कि आपने जो विषय लिया है उस विषय पर बहुत अच्छी तरह से बातें बताई करके। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा प्रतिभा जी एक छोटा सा मैसेज सबके लिए क्या देना चाहेंगे।
1: मैसेज में ये देना चाहूंगी, हमने जो टॉपिक रखा था प्राणायाम के ऊपर वो हम शायद नहीं कवर कर सके, तो वो कभी फिर कवर करेंगे, मैं आपको उसके ऊपर भी बताऊंगी। लेकिन आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं तो उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपनी एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके और अपने शरीर को भी ध्यान में रख करके कुछ जो चीजें मैंने कही हैं उस पर विचार करें। मेरे कहने से ही आपको सिर्फ इतना है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा मैंने शायद जागृत की हो और सोचना आपने है कि इसको किस तरह से कार्यरत किया जाए, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं सिर्फ आपको मोटे तौर पे बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे होना चाहिए और किस तरह से करना है ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरे घर से कूड़ा नहीं निकलता है, मैं अपना जितना सामान है उसको रीयूटिलाइज करती हूँ, या जैसे छिलके हैं वेजिटेबल्स के बची हुई जो चीजें हैं वो सारी मैं खुद अपने हाथ से गाय को खिलाने के लिए जाती हूँ, गाय को खिला करके। तो मेरे घर से कूड़े की जनरेशन बिल्कुल नहीं होती। ये हमारा बहुत बड़ा एक नेशनल मुसीबत होने वाली है कि हम अपने कूड़े को क्या करें, तो कम करना चाहिए। सो मेरा मैसेज यही है कि हम अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, हम कूड़े का जनरेशन कम करें, हम जो भी चीज हमारे हाथ में आती है उसको दोबारा से यूज कैसे करना है ये सोचें, और छोटी से छोटी चीज अगर आपके जैसे कुछ बिखर भी गया है किचन के अंदर या कहीं पे भी कुछ है, वो किसी चीज में यूटिलाइज हो सकता है, आप उसे उठा करके अपने घर के बाहर मुंडेर के ऊपर ही रख देंगे तो चिड़िया ही खा करके चली जाएगी। रूटीन है मेरा कि मैं चिड़ियों के लिए अलग से रोटी या दाना रखती हूँ, पानी रखती हूँ। इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि मैं काउज को जाकर के घर का ये सब कुछ साथ में एक रोटी और खिला देती हूँ, तो हमारे आसपास जो पक्षी जानवर ये सब हैं, ये हमारे प्लैनेट के ऊपर ही हैं और हमारे साथ, हम इनके बगैर भी नहीं एग्जिस्ट कर सकेंगे, और ये हमारे बगैर हम सोचते हैं हम इनके लिए कर रहे हैं पर शायद ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे। प्लांट्स हैं, हम आसपास में देखते हैं जिस समय गर्मियों के बहुत दिन होते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं, मुझे लगता है जब तक बारिश आएगी ये मर जाएंगे, तो मैं जाकर के वहां पे पानी जरूर डाल के आती हूँ, चाहे पब्लिक पार्क में ही जाकर के डाल के आती हूँ, उठा के लेके जाती हूँ घर से। तो हमें अपनी एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, हमें इन पशु पक्षी, इन अपनी वेजिटेशन, अपने पेड़ पौधे, इन सबको बचा करके और फिर हम अपने शरीर का भी ध्यान रखें, तो ये मेरा मैसेज है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है, बहुत सही कहा आपने। और नीता जी लिखते हैं मैं भी गाय को ही जाके खिलाती हूँ। चलिए, कचरे का नियोजन करना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को अपने घर का कचरे का अगर नियोजन करना आ जाए तो बहुत सारी बीमारियां भी बच सकती हैं और गंदगी से हम मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए हमें हर व्यक्ति को अपना कचरे का नियोजन करना चाहिए। हम लोग अभी पूरा कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं आज के इस एपिसोड में, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर प्रतिभा नंदा से जानने की कोशिश की, जो टेक्नोलॉजी है और जो नई बातें हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसको कैसे इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और फिर पहले वाला जो चीज है वो हम लोग मैनुअल जो चीजें हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही। तो ऐसे में हमें जो है निश्चित तौर पे दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और प्लास्टिक में गरम सब्जियां वगैरह लेके नहीं घूमना चाहिए, जितना हो सके आप उसका जो है अवॉइड करें, जहां जरूरी नहीं है वहां पर उनका इस्तेमाल ना करें। और अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो ठीक है, मजबूरी में आपने प्लास्टिक बॉटल का पानी पी लिया, बाकी आप अपने घर में जैसे पीते हैं रेगुलर अपने ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के बॉटल से पानी रेगुलर ना पिए, ये भी आपको ध्यान में रखें। तो फिर से एक बार डॉक्टर प्रतिभा नंदा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। एंड सुभाष जी, नीता जी, दयाराम जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़कर बहुत बहुत मैसेज करके याद किया हमें, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत।

इस बड़े युद्ध में भारत की शान को कायम रखने की कीमत हमारे 500 से अधिक वीरों ने अपने रक्त से चुकाई। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वो तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, आपकी अपनी उषा के साथ। वंदे मातरम उस मात्र शक्ति को नमन जिसके आंचल से संस्कार मिलते हैं, जिसकी ममता से जीवन सवर जाता है। आज का ये मंच केवल शब्दों का नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, नारी के साहस, समर्पण और शक्ति का वंदन है, क्योंकि नारी केवल सृजन नहीं, वह संकल्प है, वह संस्कृति है, वह राष्ट्र की आत्मा है। इसी भाव के साथ नारी शक्ति को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का स्नेहिल स्वागत है। और आज फिर से आपको मिलवाने जा रही हूँ ज्योति पाल से, जिनका आपने गए रविवार भी सुना और इस रविवार भी आप इनको ही सुनेंगे। तो ज्योति जी के हमने काफी बातें बताई थी। उम्र तो आपकी 45 वर्ष की है, आप ने बीएससी किया हुआ है, आप जर्नलिज्म है, साथ ही साथ अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि है, आप पढ़ने में हर एक बात में सबसे आगे रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भी आप हमेशा दूसरों को टक्कर दे करके आगे बढ़ जाते थे, और आपने टीवी चैनल में भी काम किया हुआ है, टीवी जर्नलिस्ट भी है। बहुत सारी विशेषता है जो आपने गए रविवार भी सुनी और इस बार भी सुनेंगे, तो आपके ही द्वारा। ज्योति जी पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उषा जी, वंदे मातरम आपको भी। और पिछले रविवार को हमने बात की थी,
0: हाँ, तो आपके स्टूडेंट लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में, आपको पढ़ाई में किस तरह रुचि थी, कौन से गेम्स आप ज्यादा खेलते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है आपने ज्योति जी। तो अब आपके सफर की बात करेंगे, फिर आप कैसे आगे बढ़ते गए जरा।
1: जी, तो जैसा कि हमने बात की थी कि कॉलेज लाइफ की, कॉलेज के बाद मैंने बीएससी की, और बीएससी के बाद फिर मैं एक ऐसा कोर्स ढूंढ रही थी, मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी इन जियोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उसमें एक्चुअली पत्थरों का अध्ययन होता था जियोलॉजी में, हिंदी में उसे बोलते हैं मुझे भूगर्भ विज्ञान, हाँ राइट, तो भूगर्भ विज्ञान, तो उसमें पत्थरों का अध्ययन होता था। और वो एमएससी में मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, तो मैंने अपने पापा को भी बोला, और मैं जर्नलिज्म का कोर्स ढूंढ रही थी। मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि आप, मैंने कहा भैया मुझे कुछ हटके करना है, अपनी आइडेंटिटी एक नई बनानी है, ऐसा कुछ करना है, रूटीन है या नहीं कि बीएससी कर ली फिर एमएससी कर लिया, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज की भी सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे हिसाब से आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी जर्नलिज्म का, कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मुझे मिल जाए तो मैं उसमें एमए इन जर्नलिज्म कर सकूं, बट उस वक्त मुझे दिखा नहीं। और मैंने एमएससी में एडमिशन लिया और मैं 15 दिन गई, रेगुलर क्लास भी की, और पढ़ने में तो अच्छे थे, तो सारे प्रोफेसर लाइक करते थे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। लेकिन अचानक उस समय मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैंने तो 4-5 जगहों पर केमिस्ट्री में भी अप्लाई किया था, एमएससी इन केमिस्ट्री में भी, लेकिन मेरा तो 3-4 जगह हो गया, उसका कहीं नहीं। तो उसको फिर बाद में पता चला कि अभी इस तरीके का एक कोर्स रन कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की। तो मैंने सोचा कि अरे ये कोर्स तो मैं ढूंढ रही थी, तुमने इसमें एडमिशन ले लिया, और मुझे तो एमएससी बिल्कुल करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे ये कोर्स मिला नहीं यहाँ लोकल में, इसलिए मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। फिर मैंने अपने पापा से कंसल्ट किया, मैंने कहा पापा मुझे तो एमएससी बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे तो जर्नलिज्म ही करना है, और मैं चाहती हूँ मैं यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अपनी फीस ट्रांसफर कर लूँ। तो हालांकि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब ने अपोज किया, कहने लगे कि नहीं नहीं इसमें आपको बहुत स्कोप है, को बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलेंगी, और आपको विमेन कैटेगरी से आपको उसका भी फायदा मिलेगा। पर मैंने फिर उनको भी नो नो करते हुए फाइनली फिर मैंने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो वहां से हमने फिर, वो बहुत अच्छा रहा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हम जाते थे जगह जगह, हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो हमको कई बारी भेजते थे कहीं पे रिपोर्टिंग करने के लिए, लोकल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कहते थे जाओ वहां पे जाके प्रेस रिलीज लिखो, तो प्रैक्टिकल भी करते थे। उसी दौरान फिर मैंने जी न्यूज में इंटर्नशिप भी करी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में, जब मैं एमए इन जर्नलिज्म कर रही थी, तो दिल्ली में जाके मैंने की। तो एक छोटे स्मॉल टाउन था, मतलब उज्जैन, 2001 की बात मैं बता रही हूँ, वहाँ उस टाइम पर मीडिया में, अखबारों में या लोकल टीवी चैनल में कोई भी लड़की नहीं काम करती थी। रेयर ऑफ द रेयर केस में एक या एकाधी कोई फीमेल होगी। पूरी तरीके से जर्नलिज्म फील्ड छोटी जगहों में ऐसे ही होता है।
0: जी जी हाँ, पुरुष लोग ही ज्यादा हाँ, सम्मिलित होते हैं।
1: तो ऐसे टाइम पे फिर मैंने वहां पे कहा कि भाई हमने काम भी शुरू किया नवभारत पेपर में, साथ में मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी, एक नवभारत पेपर अच्छा नेशनल पेपर था। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड से कहा कि मुझे आप ये दीजिए इंटर्नशिप की परमिशन, मैं दिल्ली जाके जी टीवी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। भाई हमारे डिपार्टमेंट हेड ने कहा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट से तो इंटर्नशिप के लिए भेजा नहीं जाता है आपको, तो हम कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये लिख के दे दो कि ये लड़की करना चाहती है इंटर्नशिप आपके यहाँ जी टीवी में, तो ये हमारे यहाँ से कोर्स कर रही है और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको इंटर्नशिप करने दीजिए। तो भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो लेटर दिया इंटर्नशिप का, क्योंकि डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप का रूल नहीं था कि बाहर जाके इंटर्नशिप करे।
0: हाँ, वही करने का होता है।
1: हाँ, वहीं पे।
0: बाहर क्यों जाना चाहते थे?
1: बाहर इसलिए मैं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे ये था कि एक टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हमारे इसमें एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उस टाइम पर सिर्फ प्राइवेट चैनल्स में एक सिर्फ जी न्यूज ही था, बाकी अच्छा। तो न्यूज के फील्ड में डीडी न्यूज और दूसरे थे सरकारी, लेकिन प्राइवेट कोई इतने न्यूज चैनल्स नहीं हुआ करते थे। तब बस शुरू में एक आज तक शुरू हुआ था, जी के बाद फिर एक आज तक शुरू हुआ था। तो मुझे ये था कि टीवी में मुझे टीवी जर्नलिज्म ही करना है, मैंने ये स्पेसिफिक जर्नलिज्म करना है, लेकिन मेरा गोल भी फिक्स था कि नहीं मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है, टीवी जर्नलिस्ट बनना है। तो इतना आसान नहीं था क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं थी, मेरी कोई कजन वगैरह सब लोग शादीशुदा थे और कोई भी जॉब नहीं करता था। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है पाल कम्युनिटी, तो उसमें फीमेल्स को इतना और जॉब के लिए इतना नहीं अलाउ किया जाता था। एक तो घर में इकलौती बेटी और उसके बाद उसको भी बाहर पढ़ना है और
0: हाँ, दिल्ली जैसे शहर
1: हाँ, और वो भी जर्नलिज्म फील्ड, जो कि मेरे पूरे परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कि किसी तो, का सपोर्ट मिले।
0: जी जी, तो फिर आपके पापा मान गए आप कोर्स करने के?
1: हाँ, तो मैंने कोर्स भी किया, फिर डिपार्टमेंट हेड को भी मनाया, उनसे इंटर्नशिप लेटर भी लिया, फिर मैं दिल्ली गई। अब फिर दिल्ली जाना है तो भाई खर्चा भी है काफी, दिल्ली आना जाना, वहां रहना, पेंगेस रहना। वहां गई मैं, हमारा कोई इतना नहीं, मेरा कजन था तो उसने थोड़ा सपोर्ट किया, वो वहां गुड़गांव में जॉब करता था, तो शुरुआत में मैं 2-3 दिन उसके यहाँ रही। फिर मैंने एक पेंगेस्ट वहां पे होता था, तो उसमें आपको 2 टाइम का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर देते हैं, लंच आप अपने ऑफिस में ही करते हैं। ऐसे एक पेंगेस्ट में रही वहां पे उनके यहाँ 1 महीने, और 1 महीने मैंने इंटर्नशिप की नोएडा में जी न्यूज में फिल्म सिटी में, बड़ा अच्छा रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं इंटर्नशिप करके दिल्ली से आई तो जैसे हमारा छोटा सा उज्जैन शहर, वहां के सारे न्यूज़पेपर में मेरे ही सीनियर्स हुआ करते थे हमारे ही जर्नलिज्म फील्ड के, तो सब लोग बड़े शॉक्ड हो गए, अरे एक अपने डिपार्टमेंट की लड़की है वो है ना दिल्ली में इंटर्नशिप करके आ गई, वो भी जी न्यूज में इंटर्नशिप करके आ गई।
0: अच्छा।
1: तो बड़ा पूरा जैसे एक एक खबर बन गई सारे मीडिया में।
0: और वहां आपको चांस हाँ, मिल गया?
1: हाँ, वहां इंटर्नशिप कहा मुझे चांस मिला, लकीली मुझे चांस मिल गया, मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसके थ्रू ये मेरा हो गया। क्योंकि कहते ना जहाँ दिल की भावना
0: हाँ, वो
1: बिल्कुल हो, जहाँ आप लक्ष्य रखेंगे वहां लक्षण खुद ही खुद ब आ जाते हैं
0: जी।
1: तो बड़ा ही अच्छा रहा। तो जो मेरे सीनियर्स थे वहां पे, तो लड़कों को ये लगा, खास करके उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया आपको लोकल मीडिया में कोई भी फीमेल नहीं थी
0: जी।
1: मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम मास्कॉम में भी थे, तो हम ही कुछ ऐसी इंटर्नशिप टाइप के वहां पे कर रहे थे, तो बड़ा सब शॉक्ड हो गए, अरे लड़की करके आ गई दिल्ली से, तुम तो लड़के हो। तो लड़कों में भी बड़ा स्पार्क आ गया कि अरे हमारे उज्जैन की लड़की कौन है मतलब। तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि तुम जब से इंटर्नशिप करके आई हो तब से बड़ा, मतलब दैनिक भास्कर, नई दुनिया, बड़े बड़े पेपर में बड़े बड़ा हल्ला है, लड़के तो बड़े शर्म से डूब मर रहे हैं।
0: क्या बात है ज्योति जी, चलिए आपके तो बड़े सुंदर अनुभव है जिसका हम फिर से सुनेंगे, परंतु पहले एक ब्रेक का समय हो चला है तो एक ब्रेक ले लेते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, ज्योति जी के बहुत ही गहरे अनुभव है जो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सुनते हैं गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी हमारे साथ बने हुए हैं और ज्योति जी के वास्तव में अनुभव आपने सुने हैं जो काफी गहरे थे। आइए इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। तो ज्योति जी, आपने तो जैसे अपने कॉलेज का नाम कर दिया, अपने शहर का नाम कर दिया, तो लोग भी आपसे प्रेरित हुए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम बड़ा अच्छा रहा। तो उसके बाद कुछ लोगों ने फिर जाके दिल्ली में आज तक में भी जाके कोर्स किया, आज तक का कोर्स होता है आज तक टीवी का, तो वहां भी गए। तो मतलब एक तरीके से एक बड़ा मेरे लिए अपने आप में ये अच्छा अनुभव रहा।
1: उज्जैन शहर में आप पहली बेटी ऐसी है जिन्होंने दिल्ली में जाकर के जर्नलिज्म किया।
2: हाँ, जर्नलिज्म में इंटर्नशिप की और जॉब भी पहली ही मैं हूँ। अच्छा। जिसने दिल्ली जाकर जॉब की।
1: अरे वाह, क्या वाह।
2: तो फिर ये हुआ कि मैं इंटर्नशिप करके 2001 में आ गई, फिर दो साल मुझे टीवी मीडिया में इंटर करना है। और ऐसे में जब जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और दिल्ली में कोई लिंक नहीं है, बस वही लिंक बनी थी मेरी जो जी टीवी में मैंने एक महीने इंटर्नशिप की थी, तो कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट बना था। ऐसे में आपको फिर से जाना है दिल्ली और जॉब सर्च करना है, बहुत ही डिफिकल्ट था। और वहां रहना खाना बहुत महंगा होता है और घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे बिना जॉब के, तो वहां क्या आप अकेले रहें। तो ये बहुत चैलेंजिंग थे ये दो साल मेरे लिए, 2001 से लेकर 2003। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं टीवी के आगे बैठती थी, दिन भर टीवी चैनल देखती थी।
1: अच्छा।
2: और मेरा भाई मजाक करता था क्योंकि एडवर्टाइज में कुछ कुत्ते बिल्लियों को भी ऐड आते हैं, ऐसे कुछ होता था, तो कहता था देख अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तू कब आएगी।
1: क्या बात है।
2: तो भाई लोग तो भाई तो ऐसे ही होते हैं, है ना, शरारत थी। तो मुझे बहुत परेशान करते थे घर वालों के टोन। फिर हम मेरे कॉलेज के जो भाई मैं मास्कॉम किया था, तो हमारा जो ग्रुप थी, हमारी बैच थे, तो मुझे टोन मारते थे, ये देखो जी टीवी रिटर्न ऐसे करके। मुझे जब हम पब्लिकली सोशली हम मिलते थे किसी के फंक्शन में पार्टी में, तो वो कहते थे, तो इंट्रोड्यूस मुझे कहते थे ये हमारी फ्रेंड है जी टीवी रिटर्न। तो बड़ा मुझे लगता था कि मैं जा नहीं पा रही हूँ दिल्ली, और मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास टाइप की थी और मैं कुछ भी जो मुझे करना है मैं दिल से खुलकर बोल देती थी। मैं कहती थी मैं तो टीवी जर्नलिस्ट बनूंगी भाई, मुझे किसी चाय वाले अखबार में काम नहीं करना है। कि जो चाय के स्टॉल्स पे छोटे छोटे अखबार नहीं जाते हैं, शाम के पेपर है वो, तो मैंने कहा तुम लोग करो भाई, मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट ही बनना है। और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ सबको बोलती थी। अब चूंकि 2003 में सहारा टीवी शुरू हुआ, तो उस टाइम सहारा ने अपना नेशनल चैनल स्टार्ट किया और कई सारे रीजनल चैनल्स भी स्टार्ट किए, उसमें एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी। मैं कई लोगों को कांटेक्ट करती रहती थी दिल्ली में, फोन करती थी, बस फोन के थ्रू मैं करती थी उन्हें बातें। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम ट्राई कर रही हो, तो सहारा वालों ने अपना, और पेपर में भी एडवर्टाइज भी काफी आया था, तो उसमें ट्राई करो तुम्हारा हो जाएगा। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स वहां पे निकली हुई है, मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया। और ऐसे ही एक दिन मैंने वहां का पता चला कि कौन हेड कर रहा है उसको, तो मुझे पता चला विनोद दुआ जी बहुत जाने माने जर्नलिस्ट माने हुए थे। तो मैंने सोचा कि 5-6 लोगों को जिनको मैं बड़े बड़े नाम जानती थी टीवी के, सबके नाम से, जिन्होंने मुझे पता चला जिन्होंने सहारा ज्वाइन किया है, तो मैं सबके नाम से अपना रिज्यूमे उनको ड्राफ्ट करके अच्छे से और उनको पोस्ट कर दिया नोएडा में। और लकीली जिसे कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि क्या चीज होती है, तब मुझे पता चला कि अगर आपके सच्चे में कोई ड्रीम है, और विनोद दुआ जी के हाथ में मेरा वो रिज्यूमे लग गया और उन्होंने मुझे कॉल कर लिया लकीली। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ सितंबर 2003 की।
1: अच्छा।
2: हाँ जी
1: जी।
2: उस वक्त मुझे कॉल आया और बोला कि आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है। फिर मैं इंटरव्यू देने गई, और वहां लकीली मेरा इंटरव्यू, उन्होंने मेरा थोड़ा बैकग्राउंड देखा कि मैंने नव भारत में भी करा है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया है, मेरे फर्स्ट क्लास के नंबर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और मैंने 1 अक्टूबर 2003 को सहारा टीवी में मेरी ज्वाइनिंग हो गई।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे घर में तो किसी को नॉलेज नहीं था,
2: हाँ जी,
3: आपको
2: जी।
3: अपने अंतःकरण से ही निकलता था कि मुझे इस फील्ड में जाना है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो फिर घर वाले भी खुश हो गए होंगे जो आपके भाई चिढ़ोते थे।
2: हाँ बहुत चिढ़ाते थे, मेरा भाई तो लिटरली इतना बुरी तरह से कहते थे, देख कुत्ते बिल्ली के भी एड आ रहे, तू कब टीवी में दिखेगी। तो मुझे ये बड़े बात बड़ी चुभती थी। और फिर मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे प्रोफेसर लोग जो मुझे ये भी बोलते थे कि भाई तुम तो जी टीवी रिटर्न हो, उन्हें जब पता चला अरे सच में उसकी तो टीवी में जॉब लग गई, तो दे आर लाइक शॉक्ड। फिर वो कहने लगे अरे हमें तो पता था आपका उज्जवल भविष्य। तो मुझे लगा देखिए दुनिया कितनी जल्दी अपने थॉट चेंज करती है।
3: दुनिया तो चढ़ती के साथ सलाम करती है,
2: बिल्कुल
3: जब उगता है तो उसको सभी सलाम करते हैं।
2: और वो सारे मेरे फ्रेंड मास्टर जर्नलिज्म के सब मुझे अप्रिशिएट करने लगे, कॉल करने लगे, मुझे बधाइयां देने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगा कि मैंने जो ड्रीम सोचा था जब मैं दिल्ली में पहली बार मैंने कदम रखा था इंटर्नशिप के दौरान, तब मैंने कहा था दिस इज माई सिटी, यही मेरी सिटी है और मैं यही रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फिर वहां रहने भी लगी और मुझे जॉब भी मिल गई, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और सहारा ग्रुप बहुत अच्छा था, वो भी एक परिवार की तरह था, सहारा इंडिया परिवार। और मतलब बहुत उस टाइम पे तो एयरलाइंस भी होती थी काफी सारी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नई नई चीजें वहां सीखी, बोलना सीखा, कंप्यूटर तो मैं जानती थी पहले ही, मैंने डिप्लोमा एप्लीकेशन कर रखा था कंप्यूटर में 1 ईयर का, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां हमको सीखने को मिली। और जब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे ग्रूम होती है। और स्पेशली जब जर्नलिज्म फील्ड में होते हैं तो हम इतनी वैरायटी न्यूज सुनते हैं, तो अवेयरनेस का भी लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा था।
3: जी जी जी। तो जैसे आप दिल्ली रहने लगे, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आप अकेले रहते थे, तो घर वाले चिंता तो नहीं करते थे कि अब अकेली बेटी शहर में रह रही है इतने बड़े?
2: नहीं, परमात्मा की कुछ ब्लेसिंग कह दीजिए कि हम लोगों के एक कास्ट के ही थे अंकल, उन्होंने ही अपने घर पे मुझे, उनकी बिल्डिंग थी दिल्ली में बहुत बड़ी और हमारे कास्ट के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने एक रूम मुझे रेंट पे दे दिया था। तो ये था कि उन लोगों की पूरी फैमिली थी, उनके 2-3 बेटे थे, बहुएं थी, और वो तो एक फैमिली एनवायरनमेंट मुझे मिल गया था, तो उनका सहयोग मुझे बहुत मिला। तो जैसे कहते हैं कि बहुत जहां आपकी चाह होती है वहां राह मिली जाती है, तो मुझे एक फैमिली एनवायरनमेंट मिला और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। फिर धीरे धीरे तो फिर ऑफिस में भी जान पहचान हो गई, तो हम 2-3 लड़कियां मिलके हमने एक फ्लैट ले लिया, फिर हम उसमें रहने लगे, ऑफिस के पास ही फ्लैट लिया, तो ऐसा हो गया कि ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, तो उसमें फिर हमें बहुत इजी हो गया।
3: और जर्नलिज्म के नाते तो आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ा होगा?
2: फील्ड वर्क था, मैं कभी कभी जाती थी रिपोर्टिंग करने, पर मैंने देखा फिर वहां पे भी मैंने कंपेयर किया कि जो रिपोर्टर होते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कब वो खाना खाएंगे, कब सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, कब किस मंत्री से मिलेंगे, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है। तो मैंने बोला वो और टू मच स्ट्रगल वाला हो जाएगा, तो मैंने ऑफिस ही प्रेफर किया। तो मैं, वो लोग रिपोर्टिंग करते थे और मैं वो जो लिख कर लाते थे अपनी स्टोरी, मैं उसको फाइनल एडिटिंग कर दी, तो मैं एज ए एडिटर उसके लिए काम करने लगी ऑफिस में ही। तो मैंने बोला अच्छा एसी में बैठ के ये लोग करके लाते हैं मेहनत, और मैं ही उसको वॉइस ओवर करती थी, उसमें आवाज देती थी, स्क्रिप्टिंग लिखती थी, फिर हम बुलेटिन बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे सीखी, लेकिन मैं ऑफिस ही वर्क करती थी, एज ए प्रोड्यूसर मैंने वहां पे काम किया।
3: जी जी जी, बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती रहूं, आप सुनाते रहे। जी, फिर आपने ऐसे भी बताया था कि 6 साल इधर काम किया।
2: हाँ हाँ, सहारा टीवी में 6 साल काम किया, और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कुछ चेंज भी करना चाहिए, तो फिर मैंने कंपनी भी चेंज करी और फिर वहां पे भी अच्छा काम मिला, वहां पे भी कुछ वैरायटी वैरायटी चीजें मुझे करने की मिली।
3: तो कंपनी चेंज की, फिर आपने कहाँ काम किया?
2: हाँ, फिर मैंने एक CVB, मैंने आपको बताया ना, वो UNICEF के साथ उस टाइम टाई अप था, तो सीवीवी में मैंने काम किया, जो सी वोटर करके जो एग्जिट पोल होते हैं हमारे चुनाव के, उसके लिए वो काम करती है। तो उसमें थोड़े टाइम के लिए काम किया, फिर मुझे 6 महीने बाद ही एक और अच्छा न्यूज एक्सप्रेस करके चैनल नया लॉन्च हुआ था, तो हमारे पुराने सहारा के बॉस वहां पे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आ सकती हैं यहाँ पे, तो फिर मैंने न्यूज एक्सप्रेस चैनल ज्वाइन कर लिया।
3: जो आप छोड़ करके दूसरी तरफ जाते तो उसमें आपका प्रमोशन होता या फिर?
2: हाँ बिल्कुल, आपका फाइनेंशियली भी और आपका डेजिग्नेशन वाइज भी प्रमोशन होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और आपकी पदोन्नति तो होती है।
3: जी जी, तो ये 3-4 चैनल में आपने काम किया, आपको विशेष क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव हुआ? कहीं देखिए ये तो बाहर की दुनिया है, मतलब कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे ये जर्नलिज्म लाइफ हो,
2: हाँ ग्लैमर वर्ल्ड कहलाता है। जी बिल्कुल,
3: तो इसमें आपको कभी बुरी नजरों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय तो लड़कियां बहुत कम इस फील्ड में जाती थी, तो कभी आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ या फिर आप कभी नर्वस हुए या कभी ऐसा लगा कि छोड़ो मुझे नहीं करना है?
2: देखिए अब हम हर सोसाइटी में जिसमें रहते हैं उसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह की होती है आपकी तरफ वही लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो होते थे, लेकिन कभी हम में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी और इतना किसी से बहुत ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा, और कोई मान लीजिए आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात है इस फील्ड की, सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी जर्नलिज्म में, इसमें सब लोग बहुत ओपन है। मान लो किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ ऑफर करना है, मान लो किसी को किसी लड़की को प्रपोज ही करना है तो वो डायरेक्ट कर देगा। अच्छा, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कि गोलमाल करके बोलेगा या उसको कुछ करेगा, मतलब ऐसे किसी तरीके से इंडिकेट करेगा या उसको परेशान करेगा, ऐसा नहीं। जर्नलिज्म फील्ड में बहुत चीजें ओपन है, तो अगर किसी को ये था कि भाई किसी को प्रपोज, तो आपको अगर नहीं स्वीकार करना है तो ना स्वीकार करिए। तो इस फील्ड में ये था कि सब लोग ब्रॉड माइंडेड बहुत होते हैं पढ़ने लिखने वाले, तो ऐसा ही थे, कुछ लोग मिलते थे ऐसे कि कुछ प्रपोजल भी दे देते थे,
3: जी,
2: कुछ कर देते थे, तो हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सबको फ्रीडम है, लेकिन कुछ लोग होते होंगे, पर इस तरीके का मुझे तो कभी माहौल मिला नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी थी, तो बहुत ओपन थे वो लोग, तो जो हमको समझ में आता, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है या कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है या ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं लगा। और हम लोग नाइट में भी जॉब करते थे, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया मेरे बॉसेस भी बहुत अच्छे थे, और जहां मैंने देखा कि जो लोग अच्छे नहीं थे तो मैंने खुद ही किनारा कर लिया।
3: जी जी, वो समझ आ जाती है,
2: वो हमें समझ आ जाती है, जब मुझे लगा जॉब में कि मेरे बॉस चेंज हो गए हैं और वहां का एनवायरनमेंट खराब हो गया, तो मैंने जॉब स्विच कर ली।
3: बहुत अच्छा।
2: कुछ चीजें जहाँ हमारे कंट्रोल में होती है वो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं।
3: जी जी, बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
3: सुनने के बाद पुनः लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नहीं वरदान है, बेटी बोझ नहीं वरदान है, ये सोच बदलनी आज की पहचान है। जिस घर में बेटी हंसती है, जिस घर में बेटी हंसती है, वही सच्चा सुख समाधान है, वही सच्चा सुख समाधान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी के बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी एबिलिटी है, और कितना आप भले कहीं पर भी आप नर्वस नहीं हुए, और हर क्षेत्र में आप जैसे झरन लीजिए में आपने काम किया है। इस चैनल में आपको ऐसा लगा तो चेंज करके आप दूसरा आपने पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं कि एक अकेली बेटी जिसका किधर से भी सपोर्ट नहीं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और खुद ही सपोर्ट का रास्ता ढूंढना, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो ज्योति जी, आप जैसे निडर होकर के काम करते रहे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जबकि वहाँ कुछ के कुछ सुनने को मिलते रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कभी माता पिता ने भी टेंशन नहीं लिया, उनको पता है कि बेटी बिंदास है?
1: कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता था ये समझदार भी है, इसको पता है कहाँ किससे कैसी बात करनी है। खासकर मेरा भाई जो मुंबई में रहता था, तो वो जब दिल्ली आया पहली बार मुझे छोड़ कर गया, फिर दोबारा मुझे लेने भी आया। पापा ने भेजा, पहली बार में तो भेजते हैं, तो लेने आया तो उसने देखा। मैंने भाई को बोल रही, तू ये वाली बस लेना भाई, और ना ये वाले नंबर पे लेना, इस वाले जगह पे आना, फिर वहां से ये करना। तो मेरे भाई ने ये कहा कि तुझे जब सब कुछ पता ही है तो पापा ने मुझे क्यों भेजा है लेने के लिए। मैं अपना जॉब छोड़ के 2 दिन की छुट्टी लेके तुझे लेने आया हूँ बस यहाँ पे। कहता अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। तो अगली बार से मैं फिर अकेले ही दिल्ली गई। सबसे बड़ी बात बता दूं, जब मुझे जॉब पहली बार ज्वाइन करना था सहारा में, तो मैं अपने रिलेटिव के ही रुकी हुई थी, तो मुझे 2 पैन कार्ड भी उनको सबमिट करने थे एज ए प्रूफ। तो एक तो मैंने किसी का दे दिया था ऑफिस में ही, और एक उन अंकल का ले लिया जिनके यहाँ मैं रहती थी, हमारे रिलेटिव ही थे वो, तो वो मेरे बहुत पीछे पड़े। हाँ, मैं अपने बेटे की ज्वाइनिंग कराने वो मुंबई गया था, तो मैं खुद गया, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए। तो मैंने कुछ बहाना बनाया कि मेरे घर, उस वक्त में हमारा घर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो मैंने कहा हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, वो नहीं, अपनी बेटी को कोई ऐसे अकेले ज्वाइनिंग के लिए भेजता है क्या? पर ऐसे ही है, हमने करा लिया, कोई वो नहीं था ज्वाइनिंग में, क्या होता है एक फॉर्म ही, तो परमात्मा ने कराया, परमात्मा के भरोसे हम पहुंच गए, और हमें अच्छे अपने जैसे लोग मिले, और मेरे काम भी सहज होते गए, ऑफिस के लोग भी सपोर्टिव थे, किसी ने अपना पैन कार्ड दे दिया सपोर्ट के लिए, ज्वाइनिंग में जो चीजें चाहिए होती है छोटी मोटी, मतलब रेफरेंस के लिए, या तो वो सारी चीजें हो गई।
0: जी जी जी, इस तरह आपकी यात्रा शुरू हुई।
1: जी बिल्कुल।
0: फिर कितने समय आपने काम किया, और फिर छोड़ने का डिसीजन आपने क्यों लिया?
1: हाँ, तो जैसा कि आपने पहले एक लाइन बोली थी कि मैं बहुत ही शुरू से खुशनुमा बिंदास टाइप की, ओपन रहने वाली, बहुत सोशल टाइप की थी, लेकिन लाइफ में हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो बीच में रिसेशन आया था, 2009 की बात मैं बता रही हूँ, उस कंपनी से कुछ लोगों को हटाया भी गया, तो उस लिस्ट में मेरा भी शायद नाम था, तो मुझे तब तो नहीं हटाया गया, लेकिन फिर किसी कारण से मैंने ही फिर वो जॉब को छोड़ा, फिर नई कंपनी ज्वाइन करी। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हमने रिसेशन में जॉबलेस भी रहे, उस वक्त फिर स्ट्रगल किया, फिर से नए नए, टीवी इंडस्ट्री इतनी छोटा एरिया होता है, वही 4-5 चैनल होते हैं घूम फिर के, तो ऐसे टाइम में फिर से जॉब को रीगेन करना, अपने पॉजिटिव रह के फिर से, तो वो चीज तो खैर हो गई, दोबारा जॉब लगा, CV भी ज्वाइन किया, फिर न्यूज एक्सप्रेस ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, हमारी लाइफ जैसे आगे बढ़ी, तो लाइफ में फिर आया शादी वाला फेस। तो शादी मेरे पेरेंट्स ने की, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, वो लोग बिल्कुल रिजर्व टाइप के, ना सोशल, और जितना हमारे घर में फ्रीडम था वो सारा फ्रीडम था नहीं,
0: उधर बंदिशें,
1: वो बहुत सारी बंदिशें थी, हर चीज पूछ के करना है, किसी चीज का फ्रीडम नहीं, आप मतलब अपने पसंद से खाना भी नहीं खा सकते, इतना तक रिजर्व था। तो वो मेरे लिए, आप सोचिए कि जो एकदम ही ओपन और जर्नलिज्म फील्ड में जॉब भी करते हुए सब चीजें, और जहां आपको स्वीकार ही ना करे कोई, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा निराशा का पीरियड था, और उस वक्त मेरी लाइफ में डिप्रेशन टाइप की चीज हो गई, तो उस चीज से मुझे कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जॉब भी कर रही थी लेकिन फिर छोड़ा भी मैंने, मैं नहीं कॉप अप कर पाई। मुझे लगा कि मैं दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, उन लोगों की विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी। हालांकि वो लोग भी पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग इस तरीके से थी। फिर मैंने सोचा, एक बार मैंने ब्रह्मा कुमारी में मेरा जाना हुआ
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ मेडिटेशन या इस तरह की चीज है। तब मैं इंदौर में शिफ्ट हो गई और एक मैं ऐसी नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करने लगी।
0: तो इंदौर पूरा परिवार या आप अकेले आए?
1: नहीं, मैं और जो हस्बैंड थे वो हम लोग इंदौर गए। एक डेढ़ साल हम वहां रहे तो उसी दौरान जहां मेरा फ्लैट था हमने रेंट पे लिया था उसके नजदीक ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। और चूंकि उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी और फैमिली में मेरा ट्रांजिशन पीरियड था और उस वक्त विचार मैच नहीं कर रहे थे, एक अलग फैमिली थी, अलग सोच थी, और दबा के रखना, फाइनेंशियली भी आपसे ही सपोर्ट लेना, तो सारी चीजें वो बहुत सारी मतलब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई थी। फाइनेंशियली भी मुझे घर में खर्च करना पड़ रहा था, इमोशनली भी टाइम देना पड़ रहा था, घर का पूरा वो गृहस्थी वाला चीज भी जो मैंने कभी की नहीं थी, मतलब खाना वाना बनाना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी निभाई नहीं थी, वो सब मुझे करना पड़ रहा था। तो उस वक्त कॉप अप करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ऐसे में फिर मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गई, मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन सीखना शुरू किया, स्पिरिचुअल स्टडी करी, तो फिर साथ में डॉक्टर को भी दिखाया कि क्यों मुझे ऐसी निराशा सी हो रही है, क्योंकि मेरे जीवन में ये चीजें थी नहीं कभी,
0: तो मेरे लिए वो आ जाती है तो स्वाभाविक है, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है।
1: हाँ, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी सोशल रहने वाली लड़की और मैं किसी का फोन पिक नहीं कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे रात दिन फोन करते, मुझे मन ही नहीं करता था बात करना, मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इवन मैं शुरुआत में मेडिटेशन सेंटर में जाती थी, मैं सबसे पीछे बैठती थी क्लास में भी, और जब कोई नहीं रहता था तब मैं अकेले जाके सिस्टर से मिलती थी, उनसे बात करती। फिर मैंने एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया इंदौर में, अपोलो में बहुत रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, उनको भी दिखाया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काउंसलिंग की कि हो जाता है कभी कभी लाइफ में जब आप इस तरीके नए रिलेशन में जाते हैं तो। लेकिन ये हुआ मेरे पास परमात्मा की कुछ ऐसी होगी दिव्य शक्ति कि मैं उससे धीरे से फिर एक मैंने और एक नई जॉब ज्वाइन की वहां पर रहते हुए। इंदौर तो छोटा शहर है, तो मैंने जर्नलिज्म में तो नहीं लेकिन एक मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने एज ए ज्वाइन कर लिया एज ए सेल्स पर्सन ही, ताकि मैं बिजी रहूं, क्योंकि उन्हें लगा आप खाली मत रहिएगा। तो मैं खाली नहीं रहती थी, मैं सिस्टर शिवानी को भी मैं सुनती थी, तो मैंने वो भी किया, मेडिटेशन भी किया, और फिर दोबारा मैं वापस दिल्ली आ गई और मुझे एक फिर और बहुत अच्छी जॉब लग गई।
0: क्या बात है।
1: तो तब मैंने न्यूज नेशन चैनल में ज्वाइन किया, तो मुझे फिर लगा नहीं अब मुझे कम बैक करना चाहिए, मुझे अपने प्रोफेशन पे फिर से ध्यान देना चाहिए। चलो वो चीजें नहीं हैंडल हो रही है, कोई बात नहीं अभी छोड़ो, मैंने ये सोचा। थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर था कि भाई इस रिश्ता लड़कियों को ही चलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं फैमिली में भी मेरी ऐसी सोच थी, मेरी मदर की खास करके बहुत थोड़ी सी रिजर्व थी वो, तो वो कहती थी नहीं सिचुएशंस ऐसी आती है कई बारी पर उसमें लड़कियों को ही हैंडल करना पड़ता। तो ये मेरे लिए बड़ा वो लग रहा था क्योंकि मुझे मैंने कभी अपने माइंड में सोचा ही नहीं था कि लड़कियों को इतना भी सब हैंडल करना पड़ता है। तो पूरी लाइफ मेरी 360 डिग्री घूम चुकी थी और मतलब एक तरह से मैंने थोड़ा हंसना भी बंद कर दिया था
0: जी।
1: और लोगों से मिलना जुलना
0: बहुत
1: निराशा सी आ गई थी, सेपरेट रहने लगी थी।
0: तो आपके हस्बैंड आपके फीलिंग्स को नहीं समझते थे?
1: हाँ, वो नहीं समझ रहे थे, या कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के प्रेशर में थे, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को नहीं लड़कों को भी अपने फैमिली के प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उनकी अपब्रिंग मुझसे बिल्कुल अपोजिट हुई थी, उनकी मदर ने अपब्रिंगिंग की थी, उनके फादर फौज में थे, तो वो कभी ना कभी मतलब उन्होंने कभी वो वैसा फ्रीडम देखा नहीं था मदर फादर को एक साथ। तो मदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग थी, उनको फोर्स करती थी तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से चलना है, तो थोड़ा उनको प्रेशर था फैमिली का। मेरे अपोजिट था, जैसे मैं अपने डिसीजन जिंदगी में खुद लेती आई और उनका ये था कि उनके डिसीजन सारे उनकी मदर ने लिए।
0: अच्छा।
1: तो वो मतलब एक हमारी केमिस्ट्री जम नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं तो मुझे जो सही लगता था मैं वो करती थी, जो जॉब किया, जो फैसले लेने थे अपनी जिंदगी के, और उनके जिंदगी के सारे फैसले किसी पर डिपेंड थे, तो वो चीजें बहुत क्लैश कर रही थी। तो इस वजह से फिर वो रिश्ता चल भी नहीं पाया। वो उसका भी कोई बात नहीं, ये तो अभी आजकल कॉमन बात है। तो मुझे ये लगता है मेरी लाइफ से जो मैसेज देना चाहूंगी खासकर फीमेल्स को, कि कई बारी हमारे रिश्तों में ऐसा होता है या लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां हम खुद तो कॉन्फिडेंस होते हैं और हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती है। मुझे जब मेरी मैरिज हुई मुझे ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी कुछ। हाँ, अच्छी बात ये रही, आप बिलीव नहीं करेंगे, जॉब के दौरान मैंने एक छोटा सा दिल्ली में फ्लैट भी खरीद लिया
0: था। क्या बात है,
1: बिफोर मैरिज। तो ये भी मेरा एक बहुत अचीवमेंट था। सबको जब मैंने लिया तो जॉब में, जब मैं न्यूज एक्सप्रेस में थी तो मैंने सबको ऑफिस में भी मिठाई बांटी कि मैंने एक फ्लैट लिया है, तो तब भी वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि तुम इतनी कम एज में, क्योंकि मेरे फादर का भी सपोर्ट था, उनकी भी विश थी कि तुम लो, क्योंकि मैं बहुत जितना कमाती थी मैं उससे चार गुना खर्चा करती थी। तो मेरे घर में तो कपड़ों की अलमीरा और जूतों की अलमीरा ही हुआ करती थी। तो मेरे पापा आए, 15 दिन मेरे साथ रहे, तो उन्होंने देखा कि इसने कभी 15 दिन में एक भी दिन ड्रेस कभी रिपीट ही नहीं की है। तो कहते तुम करती क्या हो, तुम मुझे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसों को बचाओ। तो फिर उन्होंने कहा तुम एक फ्लैट लो और मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प करूंगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा, तुम्हें रेंट वेंट भी नहीं पे करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए भविष्य में अच्छा होगा। हम तो इतना सोचते नहीं थे, हम तो बस लाइफ में पता ही नहीं था दुख चीज क्या होती
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी,
1: हाँ
0: जी।
1: लेकिन जब ये वाली चीज हुई लाइफ में, जब मेरा सेकेंड फेज आया आफ्टर मैरिज, तो वो मुझे तोड़ गया एक तरह से, क्योंकि मैं इतना कॉप अप ही नहीं कर पा रही थी, फैमिली अपोजिट। बस फिर ये था परमात्मा की ब्लेसिंग थी कुछ, और मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ब्रह्मा कुमारी मिला जहां मैंने स्पिरिचुअल लर्निंग की, स्पिरिचुअल स्टडी की, और फिर से अपने माइंड की जो कंडीशनिंग की कर दी थी दुनिया वालों ने। मतलब मैं निराश इसलिए नहीं थी, मुझे लगता है कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ये देखती थी मेरे आसपास जो लोग थे मुझ पर प्रेशर बनाते थे। मैं ऑफिस में जाती थी, अरे मैरिज हो गई अब बच्चे कर लो, मतलब एक रूटीन लाइफ ही जीना था उनको, या फैमिली वाले भी यही बोलते थे कि क्या कर रहे हो, कैसे क्या चल रहा है, और ये तो होता ही है। मतलब वो एक घिसी पिटी बात है जिसको मेरा माइंड स्वीकार नहीं कर पा रहा था, मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी कि ऐसी जिंदगी क्या मैंने प्लान की थी अपने लिए। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, अब मुझे इस चीज से निकलना है, और इसके लिए मुझे बहुत स्पिरिचुअल स्टडी ने बहुत हेल्प की, मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। मेडिटेशन से मैंने अपने मन को हील किया, मेरी सारी निराशाएं चली गई। उसके बाद फिर से मैंने फिर अपना धीरे धीरे आध्यात्मिक स्टडी के थ्रू, इसी को मैंने सोचा कि अब जैसे एक योगा वाले नहीं होते, फिजिकल योगा करता है तो किसी को उसको लगता है कि ये फिजिकल योगा इसको मैं प्रोफेशन बना सकता हूं, तो मुझे सेम ये वाली फीलिंग आ गई कि ये जो मेडिटेशन है जो मैंने ये सीखा है, कई लोग मेरे जैसे निराशा में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, लाइफ में टूटे होंगे, क्यों ना मैं इस मेडिटेशन को और लोगों तक सिखाऊं। और स्पिरिचुअल स्टडी कितनी जरूरी है, क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि स्पिरिचुअल चीज भी हमारी लाइफ में इतनी वैल्यू रखती है।
0: जी जी, तो इस तरह आपका डिवोर्स हो गया और फिर आप अभी स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं।
1: हाँ, फिर मैंने इसको ऐसे एज ए स्पिरिचुअल टीचर मैंने सोचा अब मुझे स्पिरिचुअल, और मैं साथ में मीडिया का भी काम करती हूँ, तो मैं अभी यहीं ब्रह्मा कुमारीज के भी यूट्यूब चैनल हैंडल करती हूँ, इनकी न्यूज भी लिखती हूँ और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखती हूँ, मीडिया विंग से भी जुड़ी हूँ, कई तरह की मैं मीडिया में सेवाएं करती रहती हूँ, ये ड्यूटीज मैं निभाती हूँ, प्रोफेशनल भी करती हूँ कुछ चीजें। तो इस तरीके से ये जर्नी रही। तो मैं लेकिन यही मैसेज देना चाहूंगी हर फीमेल को कि अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक किरण हमें जरूर मिलती है जो हमें आगे जीवन में ले जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे आप भी निराश हो गए थे लेकिन फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया।
1: हाँ बिल्कुल, रीगेन किया जी, बिल्कुल।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी, जो आप अपने ही रेडियो मधुबन में, क्योंकि आपने तो रेडियो मधुबन में भी कार्य किया है, तो कभी हम ये बात भी बताएंगे अपने श्रोता बंधुओं को।
1: बिल्कुल जरूर
0: जी, तो बहुत बहुत आभार आपका कि पुनः आप पधारे और आपने

प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: दुश्मन से नफरत फर्ज है घर की।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूँ, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंगफ्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: आज गालो मुस्कुरा लो।
2: आज न कोई त्योहार है न उत्सव, पर आज का दिन हम सभी का भारतीय होने पर गर्व करने का दिन है। किसी ने क्या खूब लिखा है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। आज का दिन है भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक विजय को याद करने का और साथ ही उन सभी शहीदों की महानता को नमन करने का जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए।

0: मई का महीना था सन 1999। भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा में तैनात थे और आने वाला समय उनके जज्बे और हिम्मत की एक बड़ी परीक्षा लेने वाला था।
1: देश मेरे मेरी जान है तू।
0: बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक व पाक समर्थित आतंकवादी LOC यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर घुस आए। उनका उद्देश्य था कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर करना और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा कर कश्मीर के कारगिल जिले से युद्ध प्रारंभ किया। भारतीय सैनिक अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए निकल पड़े।

विजय दिवस पर सभी श्रोताओं को कैप्टन यशपाल भाई का नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को याद होगा, भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत पाकिस्तान के बीच यह जंग मई 99 में शुरू होकर करीब 2 महीने से भी ज्यादा 70 दिन चला था, जिसमें भारत के 530 जाबाज सैनिक शहीद हुए थे। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया है। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ाइयां जो लड़ी गई है उन घटनाओं में शामिल है। प्यारे श्रोताओं, हम सब कारगिल दिवस क्यों मनाते हैं? यह दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आज का दिन उन महान वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए बलिदान कर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है, जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। कारगिल युद्ध में 500 से ज्यादा वीर शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए।

मई का महीना था सन 1999। भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा में तैनात थे और आने वाला समय उनके जज्बे और हिम्मत की एक बड़ी परीक्षा लेने वाला था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक व पाक समर्थित आतंकवादी LOC यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर घुस आए। उनका उद्देश्य था कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर करना और हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा कर कश्मीर के कारगिल जिले से युद्ध प्रारंभ किया। भारतीय सैनिक अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए निकल पड़े।

0: इस दौरान कई विषम परिस्थितियों का सामना हमारे जवान हथियारों के साथ आत्मबल से करते रहे और आगे बढ़ते रहे।
1: 6 महीने पहले मैं करगिल फोर्ट पे जाके आया था, वहाँ इंडियन आर्मी के जो कमांडर थे उन्होंने हमें सारा दिखाया। तो एक बार वहाँ जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि लाइफ जो इंडियन आर्मी की है इतनी मतलब क्रिटिकल है, कितने दुख और कष्ट से भरे हुए हैं। हमें पता नहीं चलता, हम यहाँ आराम से चैन से सो रहे हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन जिंदगी उन लोगों की कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। -30 टेम्परेचर, -27 टेम्परेचर में वो लोग बर्फ में रहते हैं, जहाँ हम कुछ समय बिताना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, वहाँ वो सालों साल गुजारते हैं सिर्फ हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए, देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। वो हमने वहाँ देखा जाके, और जो करगिल के जो करगिल का हादसा हुआ था वो बहुत ही मतलब एक दुखदायक था। जब हमने देखा उसे और सुना तो एक बार तो हमारी रोंगटे खड़े हुए कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे वहाँ इतने बड़े बड़े बंकर्स बना लिए थे, पूरी सेना वहाँ उनकी वहाँ तैनात थी, और उसमें हमारे इंडियन आर्मी के बहुत सारे जवान जो हैं वो सही

भारतीय थल सेना और वायु सेना के विभिन्न रैंकों के करीब 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया और देश की सुरक्षा पर बने खतरे को खदेड़ बाहर किया।

इस बड़े युद्ध में भारत की शान को कायम रखने की कीमत हमारे 500 से अधिक वीरों ने अपने रक्त से चुकाई। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वो तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर

0: शहीदों के परिवारों ने उसके बाद से लेकर आज तक जितनी परेशानियां झेली हैं, सरकार उनकी परेशानियों पर गौर करें। जो उनको भूमि आवंटन हुआ या अन्य प्रकार का कोई भी सहायता राशि उनको दी गई या नहीं दी गई, या उनकी जो पेंशन वगैरह के जितने भी मामले हैं, आज के दिन में यह कामना करता हूँ, सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वे जो जो बकाया है शहीदों की, जो कारगिल की युद्ध में हमारे सीमाओं पर रक्षा करते हुए जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को पूरी सहायता मुहैया कराई जाए। मैं सरकार से ये अपेक्षा आज के दिन करता हूँ कि उनको ईश्वर हिम्मत दे, शहीदों के परिवार को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, ढेर सारी हमारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और जो ऑपरेशन विजय 1999 में इनके द्वारा किया गया, वह जीवन भर हमारे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यादगार रहेगा। हम उन शहीदों की शहादत को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने उस छदम युद्ध को आसानी से जीता। मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा इस आज के दिन पर, ये दिन हमेशा आता रहेगा और शहीदों की चेताओं पर हर्ष वर्ष लगेंगे, यूं ही मिले वतन पर मरने वालों का, बस यही अमर निशा होगा। जय हिंद।
1: सुनते हैं भारत के वीरों की कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे लिए हिम्मत की मिसाल हैं।
2: ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी।
1: हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक हैं, जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया और उन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ एक चोटी पर हमला किया, मगर एक घायल साथी और अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में माँ भारती का लाडला विक्रम 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया।

जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुकुम आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया।

राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्म पाणी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मन के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना के साथी को पीछा न छोड़ने की परंपरा को मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत की आन और हम सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने जो कुर्बानियां दी उसे हम जितना नमन करें वो कम होगा। हम अपने दिल से सलाम करते हैं हर एक उस वीरता की मूरत का जो हमारे बीच अब यादों के रूप में है और हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आइए जानते हैं ज्ञानमृत पत्रिका के प्रशासक और संपादक आत्म प्रकाश भाई से उनके विचार।
1: वैसे तो जब से ब्रिटिश भारत से गए तभी से पाकिस्तान कई बार युद्ध कर चुका है कश्मीर पर, हर बारी उसको मुंह की खानी पड़ी और कारगिल युद्ध में भी बड़े धोखे से ये पाकिस्तान के फौजी हमारे इलाके में घुस आए, कई चोटियों पर कब्जा कर लिया, परंतु हमारी भारत की फौज ने, सिपाहियों ने और ऑफिसर्स ने अपने जीवन का बलिदान दे करके उन सभी चोटियों को और सारे इलाके को खाली कराया, शहीद हुए और पाकिस्तान को सबक सिखाया। आज के दिन ये तो हम अपने इन शहीद सिपाहियों के लिए श्रद्धा सुमन पेश करते हैं, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके हमारे देश की रक्षा की। देशवासियों को ये संदेश है कि देखो भारत के हमारी फौजें तो अलर्ट हैं, चारों तरफ सरहद पर खड़ी हुई हैं और भारत की रक्षा के लिए तत्पर है, परंतु हमको भी उस जो वो इतनी शहादत दे रहे हैं तो हमको अपने भारत में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे देश का नाम बदनाम हो और भिन्न भिन्न जो ये समस्या है या जो भिन्न भिन्न ये बातें हो रही हैं उसको हम समाप्त करें और भारत की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम उनमें सहयोग करें और उनको अश्योर करें कि हम आपके साथ हैं, उनको उसमें हमारी ओर से ताकत भरें कि देखो सारा देश हमारे साथ है।

0: नमस्कार। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार का नमस्कार। यह युद्ध 1999 में हुआ था, जिसमें अपने भारत के काफी जवान शहीद हुए थे। मैं उन शहीद जवानों के परिवार वालों को, विशेष माताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने पुत्रों को सेना में भर्ती करवाया और देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हमारे जेहन में वो यादें आज भी ताजा हैं। हमें अपने देश के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो ये बॉर्डर पर ही जाकर हमें कुर्बानी देनी है। एक विकास के पथ पे अच्छा नागरिक बनने का योगदान देना चाहिए। हम ये जो कार्य कर रहे हैं, हमें उसको पूरी निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ये भी एक हमारे भारत को विकास के पथ पर ले जाने का एक मार्ग है। जो 1999 में शहीद हुए हैं, उनके लिए तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके परिवारों को इतनी शक्ति दे, जो त्रासदी उन्होंने झेली है वो उससे उभरें। कितनी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं, उन सबको ईश्वर इतनी शक्ति दे, इन चीजों से ऊपर उठें और अपने जो निजी जीवन में भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए श्रेष्ठ कार्य करते रहें।
1: तो आज इस करगिल डे पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे लता जी का एक गीत है कि ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वाकई आज बहुत ही श्रद्धांजलि का दिन है उन शहीदों के लिए, उन जवानों के लिए, उन बहादुरों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हम लोग को ये सुरक्षा दी, जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और हमें ये पीसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आज जो है वो यादगार दिवस है, उन जवानों को श्रद्धांजलि दीजिए। वो जवान शहीद होकर भी अमर है, क्योंकि ऐसे लोग कभी मरते नहीं है जिनके लिए पूरा देश या वतन आज जिंदा है। बहुत ही दिल से आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत को प्यार करने के लिए उसकी गहराई के साथ साथ एकांत भी आवश्यक है, क्योंकि वहां सप्त सुरों का प्रकाश अविरत चलता रहता है, जैसे सात समंदर, सात रंग, सात दिन और उसके साथ साथ आत्मा रूपी शक्ति के भी सात गुण, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। वैसे ही संगीत के सात सुर को भी हम कभी भी बंधन में बांध नहीं सकते। एक संगीत शिल्पी इसी माधुर्य से अपनी कला प्रदर्शित करता है, इसलिए सात सुरों को जानना, सुनना और परिवेशन करना भी दायित्व हो जाता है। कैसे हो सकता है उनका ये दायित्व एक संगीतकार के लिए, ये हम सुनते हैं हर बार की तरह। श्यामली जी हमारे साथ मौजूद है। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, संगीतकार के दायित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो संगीत शिल्पी जो इतनी मेहनत करता है, संगीत को अपनाता है,

0: उसकी गहराई में जाकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देता है अपना।
1: हाँ जी, वो तो ये है ही,
0: क्योंकि उसके बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है।
1: हाँ,
0: संगीत को जानना सुनना
1: अपने से ही किया है।
0: तो सुनने के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि संगीत कला, इसको अगर अपनाना है, सीखना है, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है।
1: हाँ, सुनना तो अगर 80% सुनना है,
0: अच्छा
1: 20% हमको परवेशन करना है।
0: ओके,
1: देखिए पिछले जमाने अगर हम मीराबाई की कहानी सुनते हैं, मीराबाई जैसे एक संगीत जो है झरना जैसी है, झरना को कभी आप रोक नहीं सकते हो।
0: जी,
1: अगर संगीत प्रेमी है जो संगीत को जिंदगी बना लिया, उसको कभी आप बंद नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बताया ना कि 7 स्वर को हम बंद नहीं सकते, क्योंकि मीराबाई के अंदर 7 स्वर की जो है सप्तक की जो रचना ही था अंदर की, उसके अंदर में तो कभी बांध नहीं सके।
0: 7 सुरों का रस जो उनके अंदर
1: हाँ,
0: था,
1: तो वही निकल आए थे ना, योगिनी बन गए थे बाद में, राजा की राज दुलारी बाद में योगिनी बन गए। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं कि संगीत एक प्रेमी जो होता है ना, 7 स्वर के अंदर ही वो रहते हैं सारा दिन, इसलिए ज्यादा सुनते हैं। किसी के होता है अंदर में छुपा रहते हैं, पिछले संस्कार होते हैं, लेकिन अगर जो प्रेमी होता है जितना गहरे में जा रहे हैं तब भी उसका जो प्यास नहीं बुझते हैं।
0: जी जी
1: तो इसलिए ज्यादा सुनना है। अगर कोई अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ, कोई अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं उसको पहले सुनना है।
0: पावर टू लिसन,
1: यस, पावर टू लिसन, श्रुति, इसलिए इसका नाम श्रुति भी है संगीत का नाम, क्योंकि सुनना है। सुनने के बाद उसको अपनाना है, 7 सुर का, सारे गामा पाधानी, ये तो सुनने का चीज है, सुन कर अपनाना है। अगर नहीं तो बेसुरा कहते हैं ना। तो इसलिए जो पिछले हम जितने सारे उस्ताद जी ने हमारे सामने दायित्व पेश किए हैं, तो हमारा भी दायित्व है ऐसे कि सुनने के बाद पेश करना है
0: जी,
1: सुनने के बाद जानना, उसके बाद सुनाना।
0: ओके,
1: होता है ना, पहले हमको सुनना है, जानना है, समझना है, उसके बाद सुनाना है, तब जाके एक संगीत प्रेमी सफल होते हैं।
0: अच्छा श्यामली जी, लास्ट एपिसोड में हमने तिलक कामोद के स्वर लिपि देखी।
1: हाँ जी,
0: और उसकी बंदिश भी छोटी सी देख ली थी। आज आप हमें उसमें क्या सिखाने वाले?
1: हाँ, स्वर लिपि हमने दे दिया, तो अभी बंदिश बाकी है
0: जी,
1: तान बाकी है, वो आज हम दिखा देंगे। ठीक है
0: जी,
1: तो बंदिश अगर लिख लेते हैं लिसनर, बहुत अच्छा है, 3 ताल के ऊपर है। नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब,
0: अच्छा
1: राधा कह रहे हैं। आपको बताया ना प्रकृति थोड़ा चंचल है। नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब, डगर चलते मुझसे करते रार में।
0: ओके,
1: किशन जी तो रार करते हैं हर टाइम राधा के साथ, तो इसका भाव जो है, नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब, डगर चलते मुझसे करते रार में, नीर भरने कैसे जाऊ अब। अंतरा है, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, तन्ने काहू की बात बिनती करते मैं गैर हार, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, तन्ने काहू की बात बिनती करते मैं गैर हार, नीर भरन कैसे जाऊ सखी अब, मैं नीर भरन कैसे जाऊ, करके सुनाती हूँ।

0: तिलक कमोद की जो बंदिश आपने सुनाई,
1: हाँ जी,
0: इसी के साथ हम भी अपने श्रोता मित्रों को इसी राग का एक सुंदर सा गीत सुनाना चाहेंगे ब्रेक में। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आप सभी ने तिलक कमोद राग से संबंधित गीत का आनंद लिया। श्यामली जी से ब्रेक से पहले हमने बंदिश सीखी, अब श्यामली जी हमें आगे क्या सिखाएंगे?
1: हाँ, बंदिश सिखा दिया तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा बिस्तर सिखाएंगे, थोड़ा तान वगैरह सिखाएंगे। तो करके सुनाती हूँ।

0: बहुत प्रैक्टिस के बाद ही ये कर सकते हैं।
1: हाँ, इसमें थोड़ा इधर उधर थोड़ा है ना
0: जी,
1: स्वर जी हमने प्रयोग किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, करना है, शिक्षा लेना है गुरु के पास
0: जी,
1: ठीक है, मेहनत करना है थोड़ा।
0: ओके, जाते जाते श्यामली जी, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए?
1: आज तो बहुत सुंदर एक गीत हम लाए हैं, आशा जी का
0: जी,
1: सारंग फिल्म का गीत है, सारंगा
0: सारंगा
1: हाँ, फिल्म का गीत आशा जी का, कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
0: ओके

0: गीत के साथ साथ हमको भी चलना पड़ेगा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
1: आशा जी,
0: चलने से पहले बहुत सुंदर गीत
1: आशा जी ने बहुत अच्छा
0: निभाया
1: है
0: जी। श्यामली जी, इसी के साथ आज लेते हैं हम इजाजत, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं संगीत के विषय में या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

इस दौरान कई विषम परिस्थितियों का सामना हमारे जवान हथियारों के साथ आत्मबल से करते रहे और आगे बढ़ते रहे। भारतीय थल सेना और वायु सेना के विभिन्न रैंकों के करीब 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया और देश की सुरक्षा पर बने खतरे को खदेड़ बाहर किया।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई सा, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई सा, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं, नहीं।
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसे कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मैं वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए? कोई जमाई साहब को तो देखो, अब तक आए नहीं। हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप। मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं भाई, उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है। वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई सा, मैं कुछ कहूं?
2: भैया आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
8: जमाई सा आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
5: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
2: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
8: जमाई सा आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है वो भी चुपचाप।
5: इसी बात पे अर्ज किया है।
8: बोल भाई बोल।
5: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
8: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
5: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
8: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
6: जमाई सा अब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
7: जमाई सा रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
6: माँ सा मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
9: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना ले, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
10: दीदी मैं चुप बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
9: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
10: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
9: शांति, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
11: शांति।
10: पर पापा ये।
11: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा की भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
10: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
6: और तुझे आती है?
11: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
6: हल चाहिए।
11: तो बस हो गया अब।
4: शांति, रागिनी, नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
12: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
5: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
5: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
4: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाईसा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
6: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह ला ला, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
1: वाह राजकुमारी आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
6: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
8: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
1: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
8: शांति गेट खोलो।
6: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
9: अरे अरे गेट खोलो ना।
10: जाइए गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
9: अरे गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
8: शांति गेट खोल दो।
10: अरे गेट खोलो तो कोई।
9: हाँ, किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते, बस यही पे ऐसे ही
8: लेकिन अब पता। अरे कोई देखो, बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
8: पुलिस।
11: पुलिस?
8: अरे
13: कौन पुलिस?
9: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
10: क्या दीदी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
8: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
5: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
14: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
8: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
0: क्या लगता है आपको, पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में, भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता। ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात, मेरी परेशानी, मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी खम्मा दोस्तों।
15: घरोनेर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादीजी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊजी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताईजी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और रेडियो मधुबन पर हमारे सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ गए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है सलामे जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मधुबन पर हम आप सबके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो मंच देता है हमारे समाज में रहने वाले वरिष्ठ जनों को। और आज ऐसे ही एक गरिमामय जीवन के धनी वरिष्ठ जन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है गुलाब सिंह देवड़ा। आप आबू रोड के और गाँव के रहवासी हैं और आपने पोस्ट मास्टर के पद से अवसर प्राप्त किया है और अभी अलग अलग प्रकार के समाज सेवा तथा अन्य कार्यों में अपना जीवन समर्पित करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जीवन यात्रा में। और आज उनको हमने रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आमंत्रित किया है आप सबसे बातचीत करने के लिए। हमारे सभी श्रोताओं के ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: मधुबन रेडियो ने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
0: जी, रेडियो मधुबन तो है ही एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कार्य ही होता है कि समुदाय के अलग अलग अंगों से विभिन्न वर्गों के लोगों को बुलाना और बातचीत करना ताकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। जैसे ये कार्यक्रम सलामे ज़िंदगी हमारा डेडिकेटेड है हमारे वरिष्ठ जनों के लिए जी। और हम कोशिश करते हैं जब हम बात करें जिनको भी हम यहाँ बुलाते हैं इस कार्यक्रम में कि उनके जीवन से कुछ ऐसी शिक्षाएँ सामने निकल कर आए इस वार्तालाप में जो हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के अंदर एक चेतना पैदा करे। कैसे हम वरिष्ठ जनों ने हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए हर प्रकार से अपना त्याग तपस्या करके बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया है, और अभी जब वो अवसर प्राप्त जीवन जी रहे हैं तो किस प्रकार से हम उनका सम्मान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया।
0: तो चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करने का प्रयास करेंगे आपके बचपन के बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बचपन कैसा रहा आपका, कहाँ पर आपका जन्म हुआ और कितने भाई बहन थे, और अपने माता पिता के बारे में भी कुछ बताइए।
1: जी, मेरा जन्म सिरोही ज़िले के ओर ग्राम में जी 30 दिसंबर 1962 को हुआ। और मेरे परिवार में मैं एक इकलौता पुत्र और चार बहनें मेरे से छोटी थी। मेरे पिताजी किसानी करते थे

0: अभी मेरा परिवार में मेरा एक पुत्र है और मेरी तीन बेटियां हैं
1: जी।
0: तीनों बेटियों की शादी हो गई है और वो अपनी जगह पे खुश है, वेल है। बेटा सरकारी सेवा में शिक्षक है और बेटी की पत्नी बहू भी शिक्षक है सरकारी सेवा में।
1: और धर्म पत्नी के बारे में तो कुछ बोला नहीं?
0: धर्म पत्नी मेरी हाउस वाइफ है और
1: क्या नाम है उनका?
0: ओम कुंवर है।
1: क्या कहना चाहेंगे उन्हें आज इस मंच से?
0: वो उसने हमेशा मुझे प्रेरित किया
1: जी
0: अपनी लाइफ में, हमेशा कभी भी जब भी कोई निराशा भाव या हताशा भाव आने की ऐसी नौबत आई तो उन्होंने उससे उभारा मेरे को
1: बहुत। तो उन्हें भी आज इस मंच से सलाम करते हैं।
0: उस समय जो आज के ज़माने की जितनी सुविधा है, उन सुविधाओं के अभाव में जीवन जी के बड़े हुए और शिक्षा प्राप्त की। हमारा जो शैक्षणिक स्टार्ट जो कैरियर था
1: जी,
0: वो गांव की प्राइमरी स्कूल में हुआ।
1: तो उस समय आपके गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था?
0: प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, इवन मिडिल स्कूल भी था 8th क्लास तक। और उसके बाद का जो हमारा शिक्षा का था, तो हम आबू रोड शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिडिल के बाद हमारे गांव के पहले के छात्र भी और मेरे समय के सहपाठी वगैरह भी आबू रोड से 6 किलोमीटर दूर, और गांव से 6 किलोमीटर दूर आबू रोड आना जाना करते थे। तो उस जमाने में जब ये बात है 1973-74-75 की
1: जी,
0: तो उस समय ये सड़कें आबू रोड और गांवों के बीच में ये जो नेशनल हाईवे वगैरह ये नहीं थे,
1: तो कैसे आना जाना होता था?
0: तो हम पैदल आते थे जिसमें 2 बार नदी को क्रॉस करके आना पड़ता था।
1: ओके।
0: नदी में पानी रहता था बारिश के दिनों में। हम लोग उस गांव से स्कूल तक पहुंचने में 2 बार उसी एक ही नदी को पार करना पड़ता था।
1: अच्छा, मतलब वो ऐसे घूम घूम के जाते थे?
0: हाँ। तो हम क्या करते थे, बारिश के दिनों में नदी में पानी ज्यादा होता तो हम अपना कपड़े जो नेकर वगैरह होता था उसको उतार लेते थे, बस्ते को ऊपर सिर के ऊपर रख लेते थे और फिर उसमें से पार कर जाते थे।
1: वैसे अभी आप जब बता रहे हैं तो हम हंस रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये थोड़ा डरावना भी होता था।
0: डरावना होता था, तो हम क्या तैर के निकल जाते थे जो पानी होता था, बस्ता वगैरह जो ऊपर बस किताबों का होता था वो एक थैला होता था, थैले में डाल के फिर ऊपर रख के आप रोड पहुँचते स्कूल में।
1: ये तो थोड़ा मैं आपको आगे लेकर आ गया। एक सवाल जो हमारे अतिथियों से मैं अक्सर पूछता हूँ कि अपने माता पिता से ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो आप अपने जीवन में महसूस करते हैं कि ये मैंने पिताजी से सीखा है और ये मैंने माता जी से सीखा है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। मेरे माता जी बताती है कि मेरे दादाजी का देहावसान मेरे पिताजी की 10-12 साल की उम्र में हो गया था। तो मेरे पिताजी ने उनके 2 भाई और 1 बहन थी, तो उनको पालन पोषण करने के लिए बड़ा संघर्ष किया। बचपन की उम्र में 12-15 साल की उम्र में आबू रोड सिटी में आके जो मिष्ठान की दुकानें होती है उनके यहाँ काम किया और मिठाई बनाना सीखा,
1: खेती के अलावा।
0: खेती के अलावा
1: जी,
0: और उससे परिवार पालन पोषण किए। और फिर जब हमारा जन्म हुआ वगैरह तो मेरे पिताजी ये शादी ब्याह में कैटरर्स का काम उस जमाने में करते थे।
1: तो कौन सा गुण आपने कौन सा सीखा?
0: मैंने उनसे कड़ी मेहनत करना सीखा,
1: मेहनत का जो गुण है सीखा। और तो माताजी से?
0: माताजी से ये कि ये माताजी का एक सिद्धांत था कि जैसे कि गांव में रहते हैं तो जमीन जायदाद के लिए या किसी खेत वेत के लिए भाइयों में झगड़े होते रहते हैं। तो मेरी माता जी हमेशा ये शिक्षा देती थी कि बेटा सहन शक्ति रखो और झगड़े फसाद से दूर रहो, और जो तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा तकदीर में वो कोई नहीं छीन सकता है
1: जी।
0: जो जमीन वगैरह वारिस पुश्तैनी जमीनें वगैरह है,
1: कई बार परिवार
0: इनका
1: में झगड़े
0: तो बंटवारा हो सकता है, परंतु जो तुम शिक्षा और तालीम हासिल करोगे उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारे लिए ही रहेगा और उसमें कोई दूसरा हिस्सा नहीं ले सकता है, इसलिए आप इसकी तरफ ध्यान दो। तो मैंने उन झगड़े फसाद और जमीनों में से हटके बचपन से ही माता जी की शिक्षा को ग्रहण करके पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। मेरी पढ़ाई देने के 10वीं का जो मैंने एग्जाम था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें सन 1989 में 1979 में प्रथम श्रेणी से पास किया।
1: अरे वाह।
0: और 70% के अंक से मेरा वो रैंक रहा था उस समय,
1: तो जैसे इस कार्यक्रम का नाम ही है सलामी ज़िंदगी, तो मैं आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके माता और पिताजी के दोनों को भी सलाम करना चाहूँगा। थोड़ा नाम बताना चाहेंगे उनका?
0: हाँ, मेरे पिताजी का नाम वो अभी इस नहीं है, अभी स्वर्गवासी है,
1: जी
0: भीक सिंह जी देवड़ा। और मेरी माता का नाम दरिया कुंवर, जो
1: जी
0: आज भी मौजूद है 90 साल की उम्र में
1: अरे वाह,
0: और मेरे साथ रहती है, और मैं उनकी इस उम्र में देखभाल करता हूँ
1: बहुत
0: जी।
1: खुशी हुई। तो
0: हाँ,
1: माता जी को और पिताजी को
0: और
1: दोनों
0: माता
1: को हम यहाँ
0: जी
1: से
0: अभी
1: सलाम
0: भी
1: करते हैं।
0: वो अपना सारा काम सेल्फ ही करती है
1: खुद करते हैं।
0: इस 90 साल की उम्र में भी।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: किसी मतलब खुद की दैनिक दिनचर्या के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है।
1: नहीं रहते हैं।
0: और मैं
1: तो
0: एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे जब हमने शिक्षा प्राप्त की 10वीं तक गांव में रह के आबरू रुज आ गए, तो उस समय हमारे गांव में बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हम पढ़ाई करते रात को, तो जो केरोसिन वाली चिमनी होती है, केरोसिन की चिमनी जला के और जो आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके ऊपर जो जिस पे बैठ के वो आटा पीसा जाता है,
1: जी
0: एक छोटी सी कुर्सी टाइप जिसको
1: जी
0: कहते
1: जी
0: हैं, उस पे बैठ के और एक पीपे के ऊपर वो चिमनी रख के रात को पढ़ाई करते थे, 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के।
1: तो कोई आपको उठाता था या आप स्वतः उठ के
0: ना,
1: पढ़ाई?
0: हम सब प्रेरणा से उठ जाते थे। तो एक मदर की सीख मिल गई थी कि तुमको कुछ पढ़ाई करके आगे बढ़ना है।
1: आगे बढ़ना है,
0: हाँ, और ये
1: लक्ष्य दे
0: खेत,
1: दिया था।
0: हाँ, लक्ष्य दे दिया था। ये जो खेत जमीन वगैरह किसानी है, इसमें भाइयों के झगड़े होते रहते हैं, अपना जीवन इसमें बर्बाद नहीं करें और दूसरी तरफ ध्यान दे रहे।
1: वैसे काफ़ी सीरियस बातें कर रहे हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा और फन पार्ट की ओर लेके चलना चाहूँगा कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं उस समय बचपन जो आपका जो था।
0: बचपन हमारा बहुत ही कहते हैं एक उल्लासपूर्ण जीवन से जिया हमने।
1: अच्छा, बेफिक्र एकदम।
0: जो आजकल जो नई जनरेशन है, जो उस समय देहाती गेम होते थे खेल, वो तो आजकल कहीं देखने को भी नहीं मिलते हैं।
1: जैसे
0: जैसे कि हम गुल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, संतोलिया खेलते थे, और संतोलिया है, गुल्ली डंडा है, और दूसरे गेम से देहाती गेम, एक पेड़ के ऊपर लकड़ी से खेलते थे, इसमें दूर लकड़ी फेंकी जाती थी, एक लड़का लेके आता था, तो पेड़ पे चढ़ जाते थे सब।
1: तो अभी
0: और
1: नहीं खेलते बिल्कुल बच्चे ये
0: अब
1: गेम्स?
0: ये गेम गांव में कहीं दिखने को भी नहीं मिलते हैं। जो हमारे समय में जो गेम्स बच्चे जो खेला करते थे, वो गेम कहीं बच्चे जानते भी, नाम भी नहीं
1: क्या
0: जानते।
1: कहना चाहेंगे, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उस समय बहुत अभाव और अभी वर्तमान जो सुविधाएं मिल जाती हैं उसके अभाव में जीवन जिया है आप लोगों ने, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस समय अच्छी थी और अभी अच्छी नहीं है?
0: मुझे आजकल का जो जो जो बालकपन में जो बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे मोबाइल पे चिपके रहना वगैरह, बच्चे बचपन से ही 2-4 साल 5 समझ में आते ही पेरेंट्स लोग भी उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो मोबाइल में अपना गेम खेलते हैं, तो ये एक कृत्रिम लाइफ है लगती है मुझे, आर्टिफिशियल लाइफ लगती है, नेचुरल लाइफ नहीं लगती है।
1: वैसे वो मोबाइल
0: और
1: की दुनिया
0: वो,
1: को वर्चुअली कहते हैं।
0: हाँ एक्चुअली, और उस जमाने में एक बचपन वास्तव में प्राकृतिक रूप से नेचुरली जिया जाता था, और नेचुरली गेम खेले होते, सारे गेम्स नेचुरली होते थे, और उससे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता था, तो कहीं उसको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी
1: हाँ,
0: और उसका
1: जैसे
0: विकास अच्छी ढंग से
1: टीम
0: होता था,
1: भावना से काम
0: टीम भावना
1: करना
0: से,
1: है, जोड़ कर
0: बच्चों
1: काम
0: में
1: करना,
0: मित्रता का भाव होना ज़्यादा गांव में खुला। हम बचपन में
1: समझना
0: जैसे
1: सीखना।
0: स्कूल का हमारे प्राथमिक स्कूल गांव में होता था, तो हम सुबह जब स्कूल जाते, बस्ता लेके जब स्कूल की छुट्टी होती, तो हम हमारे साथियों सहित हम सीधे घर नहीं पहुंचते थे। बारिश के दिनों में क्या नदी में पानी होता था, तो हम उसमें कपड़े वपड़े उतार के बस्ता एक तरफ नदी किनारे रख के उसमें पानी में कूद पड़ते थे,
1: तो
0: और
1: कोई डांट पड़ती
0: घंटों
1: थी कि नहीं?
0: डांट तो पड़ती, घंटों खेलते रहते थे पानी में। तो उसका एक अच्छा ये था कि बच्चे खेलते भी थे पानी में, तैरना सीखते थे।
1: मानसिक शारीरिक सर हर प्रकार
0: हाँ,
1: से दृढ़ होती
0: मेरे मेरी समय के जो भी मेरे गांव में जो विराजते हैं
1: है
0: या जो
1: दोस्त
0: जहाँ
1: आपके।
0: दोस्त थे या जो उस उम्र के या उसके बाद, वो सभी लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो तैरना जानते हैं, और आज की पीढ़ी के लड़के, नदी आज भी है, पानी आज भी है, परंतु आजकल बच्चे नहाते नहीं है, बाथरूम में नहाते हैं, तो वो तैरना नहीं जानते हैं। कभी वो संकट में फंसे तो, कभी मुसीबत में पानी में गहरे पानी में हो, तो तैर नहीं कि अपना जीवन नहीं बचा सके ना। हम ऊपर से बड़े बड़े ऊंचाई की जगह से अंदर पानी
1: कूदना,
0: में गोता
1: पानी में
0: मारते थे।
1: पेड़ पे चढ़ के पानी में कूदना।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा जीवन।
1: दोस्तों की बात आपने कही, तो दोस्त कौन कौन है आपके अभी मिलते
0: हमारे
1: हैं?
0: दोस्त अभी भी है जो अलग अलग व्यवसाय में है, कोई बिजनेस में है।
1: नाम लेना चाहिए?
0: एक में एक अमृतलाल जैन करके है जो अभी अहमदाबाद में सेटल है।
1: अच्छा,
0: तो वो मेरा बचपन का अच्छा साथी है और
1: साथ में पढ़ते थे आप?
0: साथ में पढ़ते थे, रहते भी साथ में थे गांव मोहल्ले में। तो मेरे घर पे सुविधा वगैरह कई बार नहीं होती थी तो अलग से सेपरेट कमरा वगैरह, तो मैं पढ़ाई के लिए उसके मकान पे जाता था। परंतु वो सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी वो पढ़ाई में अव्वल इसलिए नहीं रहा कि उसके अंदर कुछ बैड हैबिट्स, गंदी आदतें आ गई थी।
1: ओके।
0: जैसे कि क्या होता है, गांव के चौपाल पे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो वो बैठते हैं बातचीत करते हैं, तो धूम्रपान बीड़ी वगैरह पीते हैं, सिलम लगाते हैं, तो वो क्या करते, बच्चों को कहते थे जब भाई ये सिलम भर के लेके आ जा, बीड़ी लेके आ जा। तो वो जो बीड़ी हम लोग दुकान से ला के देते थे, फिर वो पी के जो पीछे इतना रहता फेंक देते थे। तो
1: बच्चे
0: लोग उसको क्या, उसको उठा के
1: ट्राई करते,
0: फिर खुद उसको पीना शुरू करते, धुआं निकालते। तो धीरे धीरे उसमें वो आदत डेवलप हो गई।
1: एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है बड़ों की कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे हमको देख रहे हैं।
0: तो मैं तो इस चीज से बच के रहा, परंतु मैं उसको नहीं बचा पाया, उसके अंदर वो आदत आ गई। धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ाई में वो कमजोर रहा, और भी बुरी आदत उसके अंदर शराब पीने वगैरह की भी आ गई बाद में। परंतु हाँ, आज की तारीख में वो व्यवस्थित है।
1: संभाल लिया
0: आगे जाके उसने अपने आप को संभाल लिया। अभी वो बिजनेस अपने व्यापार के अंदर।
1: चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो जैसे आपने बताया कि साहसी भी थे आप लोग, पानी में जाना, तैरना, नदी में जाना, नदी पार करके स्कूल जाना।
0: एक और अच्छा उसमें शैतानी टाइप जिसके एक्टिविटी कहते हैं, हम क्या करते थे कि नदी में ये जो गर्मी के दिनों में लोग खरबूजा टमाटर वगैरह ये किसान
1: नदी किनारे लगाते,
0: नदी में लगाते, पानी रहता था, तो हम क्या चोरी छुपके उसको टमाटर खरबूजे खाने जाते थे। तो उसकी वजह से कई बार पकड़े भी जाते थे।
1: कौन से गांव में? वही और
0: गांव में पास में जो बनास नदी है इधर आ जाए।
1: तो पकड़ने में से कौन सा प्राइज मिलता था? पिटाई होती थी या
0: हाँ, वो पकड़ के क्या करते थे, हमको रख लेते थे वहीं, और फिर थोड़ा बहुत पिटाई तो नहीं करते, हमारे माता पिता घर वालों को खबर कर देते कि तुम्हारे ये चोर शैतानी करके,
1: तो फिर घर पे चोरी होती होगी।
0: हाँ, घर पे आते कि तुम ये गलत आदत कर रहे हो, चोरी से क्यों खा रहे हो, खाना हो तो हमसे कह दी, हम खरीद के आपको खिला देंगे।
1: देखिए, ये भी कितना एक मोरल सपोर्ट होता है बच्चे,
0: परंतु उसमें हमको आनंद आता था चोरी छुपे
1: मिल करके। खुद की उपलब्धि लगती होगी ना, जबकि वो बाकी चीजें मम्मी पापा ने ले आए तो ठीक है, लेकिन ये जैसे खुद हम लेके आए,
0: ये 10-15 साल की उम्र से पहले पहले के,
1: कहीं ना कहीं समझ की भी उतनी थोड़ी सी कमी होती है, इसको हम कैसे और मैच्योरली कैसे डील कर सकते थे।
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब सिंह देवड़ा जी, जो और गाँव से आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद है, और आप सब दोस्तों 107.8 FM पर उनको सुन रहे हैं। तो कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में हम अभी लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी, और ब्रेक में आपको सुनने को मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा गीत। तो दोस्तों, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।

0: आप हबरेरिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, 107.8 FM पर सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मधुबन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे वरिष्ठ जनों के साथ के अनुभवों को बताता हुआ कार्यक्रम सलामी जिंदगी। और आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब सिंह देवड़ा जी, जो कि पोस्टमास्टर के पद में सेवानिवृत्त हुए हैं और गाँव के निवासी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमने कुछ देर पहले उनसे जाना उनके बाल्यकाल के बारे में, फिर युवा का समय और जो उनके कार्यमय जीवन है जहाँ पर वो डाक विभाग में सेवाएं देते रहे, तो उस बारे में भी काफ़ी विस्तार में उन्होंने बताया हमें। आपका फिर से स्वागत है सर रेडियो मधुबन पर। इस गीत के बाद जैसे मैं थोड़ा सा आपके जीवन में झांकना चाहूँगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एकल फैमिलीज बहुत हो गए, एकल परिवार जिसे कहते हैं, कि माता पिता कहीं और रह रहे हैं, बच्चे कहीं और रह रहे हैं, कोई शहरों में रह रहा है, एक दूसरे को चेहरा देखने का भी समय नहीं मिलता है कभी कभी, इतनी व्यस्तता ज़िंदगी में आ गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जब बात होती है तो एक और शब्द सामने आता है कि जॉइंट फैमिली कहते हैं, मतलब एक परिवार के जो अलग अलग भाई बहन हैं और उनके जो परिवार हैं छोटे छोटे, तो सारी इकाइयाँ एक ही जगह पर रहती हैं। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मूल्यों का समावेश है, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को सहयोग करना और एक दूसरे की कमी कमजोरियों के ऊपर ध्यान ना देते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बनना, इस बारे में क्या कहना चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल, ये जो संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है ये हमारे उस समय के समाज की एक आवश्यकता थी, मैं थी, और वह एक परिवार के जो जितने संयुक्त परिवार के जो लोग होते थे उन सबको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, इसलिए उस समय की
1: हर प्रकार की
2: सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, और इसलिए ये संयुक्त परिवार की अवधारणा काफ़ी विकसित थी भारत के अंदर हमारे गाँवों में देहातों में। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि एक दूसरे के ऊपर कभी कोई संकट आ जाता था या परिवार के ऊपर संकट आता था, या जैसे कि किसी का कोई लड़का शादी हुई और उसका देहावसान हो गया, तो उसके पीछे जो पत्नी बच्चे वगैरह जो छोटे छोटे बच्चे पत्नी वगैरह होती थी, तो उनका संयुक्त परिवार में रहने से एक पूरे संबल मिल जाता था। हाँ, उनको ये कि जीवन बोझ नहीं लगता था, एक बड़ा बोझ या बर्डन जिसको जिसके बाद में कि भाई अब हम क्या करेंगे, हताशा जीवन, उनको परिवार में बड़े बुजुर्ग भाई
1: दिलासा भी मिल जाता और सहयोग भी मिलता था।
2: हाँ, जेठ वगैरह देवर वगैरह सब हुआ करते थे, भाभियाँ वगैरह जो भी है, तो वो इन सबको एक सामूहिक कलेक्टिव की भावना होती थी,
1: समावेशी।
2: तो सभी परिश्रम करते और अपने जो भी खेत वगैरह खलिहान वगैरह होता था वहाँ जाके सब परिश्रम करते, मजदूरी करते या उसमें कोई नौकरी लगा हो नौकरी भी करते, तो सबका जो योगदान होता था अपने वो शाम लाके जो सबसे परिवार में बड़ा बुजुर्ग होता था उनको समर्पित किया जाता था और वो पूरे परिवार को मेंटेन कर रखते थे। तो
1: उनके
2: उसमें क्या होता था कि सबके अंदर एक समभाव भी रहता था सामाजिक, जिसके चार भाई है, एक परिवार में चार भाई है, एक सेवा में मान लो सेना में है गया हुआ है, उसके बच्चे बच्चियां वगैरह है, एक खेती कर रहा है, कोई एक मजदूरी कर रहा है, तो ये होते थे। अब सबके अलग अलग कार्य क्षेत्र हुआ, प्रकृति कार्य का प्रकृति अलग अलग है, परंतु क्या होता था जब वो अपनी जो कमाई जो होती थी लागे एक बड़े बुजुर्ग परिवार के मुखिया को सौंपते थे और उसके बाद से जो मुखिया उस आय से सबको मेंटेन करता था तो वो एक जैसा रखता था सब।
1: सही बात।
2: तो उसके अंदर सबके अंदर किसी
1: मेरा ज्यादा
2: नहीं, नहीं। और परिवार के दूसरे सदस्यों में हीन भावना का प्रवेश नहीं होता था, सब अपना स्वाभिमान एक जैसा बना रहता था।
1: सही बात,
2: ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और संरक्षण तो मिलता ही था उनको, चिंता मुक्त जीवन रहता था। यदि मान लो किसी की विधवा हो गई परिवार में, विवाही की बनी या बच्चे छोटे, पूरा पालन पोषण
1: पुरुष भी अगर देह त्याग कर दिया तो उनके उनके बच्चों को भी पिता का
2: संरक्षण मिलता था। और दूसरा एक प्लस पॉइंट में बताऊं कि जैसा जो संयुक्त परिवार होता था, जितना सुदृढ़ होता था संयुक्त परिवार, उसकी गांव में उतना ही मान सम्मान ज्यादा रहता था।
1: ओके,
2: क्यों रहता था कि इस परिवार में ज्यादा मेंबर है और एक सुदृढ़ है और एक साथ रहते हैं, तो
1: मूल्यों
2: के आधार पे। तो दूसरे जो परिवार कहीं कमजोर परिवार होते थे वो ये सोचते थे कि हमारे ऊपर को भी कोई जरूरत पड़ी संकट तो इस परिवार से हम रिश्ता रखेंगे तो ये हमारे संकट में काम आएगा।
1: बिल्कुल सही बात है। और मैं एक्चुअली और... ये खाली परिवार की बात नहीं है, पूरा गांव एक परिवार के रूप में भी
2: सिंह परिवार के रह रहता,
1: पूरा गांव भी एक जैसे परिवार,
2: पूरा गांव भी एक सिंह फैमिली की तरह।
1: देखते हैं कहीं सड़क में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार कई वीडियो वगैरह आते रहते हैं, लोग बाजू से गुजर रहे हैं, कोई उधर देख नहीं रहा है या सहायता कर नहीं रहा है या कुछ अन्याय हो रहा है कहीं पर, तो लोग सोचते हैं चाहिए पता नहीं हमारा क्या, हमको क्या लेना देना, हम तो इसमें नहीं घुसना है, हमको ऐसे सोच के निकल जाते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था,
2: पहले लोग आगे बढ़ के उसके अंदर उसमें बचाव करते थे,
1: बचाव कर,
2: और भाईचारे की भावना बहुत ज्यादा थी, किसी के साथ कोई गलत होता देख रहे थे या कोई रस्ते में जा रहे हैं कोई वाकया
1: देख जाएंगे जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं।
2: तो हम अभी हमारी जितना विकास हुआ है, इस विकास की यात्रा के साथ में हमारे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। अभी
1: क्या
2: हमने शिक्षा के बारे में हमने हमारे आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति कर ली, आर्थिक विकास भी खूब कर लिए, हमने अपने आप के स्तर को भी अच्छा जमाने के हिसाब से सुधार लिया
1: लिविंग स्टाइल,
2: परंतु हम वैल्यू एडिड सर्विसों को अपने जीवन में समावेश नहीं कर पाए,
1: मूल्य कम हो गया।
2: हाँ, मूल्य कम हो गया, वैल्यू एडिड जो सर्विस।
1: क्या कारण रहा
2: इसका? कारण एक ही रहा कि एक तो जो मैंने बताया एकल संयुक्त परिवार की अवधारणा का टूटना और एकल परिवार की अवधारणा का
1: आरंभ
2: बलवती होना, तो ये जो आज के ज़माने से एकल परिवार बलवती हो रहे हैं, और ये आज के ज़माने की कह सकते हैं आवश्यकता भी हो कि लोग संयुक्त परिवार में नहीं रह के एकल रहना पसंद करते हैं।
1: आवश्यकता
2: नहीं,
1: तो आज की बात हो गई,
2: आज का परिवेश जो जो जो जैसा परिवेश बना है चारों तरफ माहौल,
1: क्या क्या ये कह सकते हैं आपके लोगों के अंदर ताकत नहीं कि एक दूसरे को समावेशी कर,
2: हाँ, या उनको उनकी वो क्या कहते हैं
1: अपने में सीमित रहना चाहते हैं,
2: एक सोशल उनकी जो जिम्मेदारी होती है अकाउंटेबिलिटी समाज के प्रति वो पूरा नहीं करना चाहते, वो अपना अपनी पत्नी अपने बच्चे परिवार में ही मस्त रहना चाहते हैं।
1: तो इसका बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: बुजुर्गों की इसकी वजह से प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती है, जो परिवार संयुक्त परिवार में बुजुर्ग होते थे
1: कई बार ऐसे देखने में चार चार बच्चे हैं लेकिन माता पिता जो हैं खुद ही
2: एकाकीपन जीवन जी रहे हैं, एकाकीपन जीवन जी रहे हैं। तो पहले तो संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का काफी ख्याल रखा जाता था और उनकी देखभाल वगैरह उचित ढंग से होती थी, जब वो 50-60-65 साल की उम्र के बाद काम करने में अक्षम होते थे तो परिवार इतना लंबा छोड़ा, उनके 4-5 बेटे वगैरह हुआ करते थे, 5 परिवार में भी बड़े परिवार की लोग गौरवपूर्ण मानते थे ज़्यादा लड़के लड़कियां होना, आजकल तो बस हम दो हमारे एक या दो तो इस भाव इस तरह की धारणा की वजह से अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। एक समय के बाद में जब वो बुजुर्ग माता पिता काम करने में अक्षम हो जाते हैं तो वो अपने आप अपने जो उनकी जो संतानें हैं उनको एक बोझ मानने लग जाती
1: है, बोझ करना पड़ रहा है,
2: बोझ मानने लगती है, जो उन्होंने संतान के प्रति जो कर्तव्य निभाया या जो उन्होंने ड्यूटी दी उस चीज़ को नज़रअंदाज करके जब उनका टाइम आता है माता पिता के प्रति उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए या क्या कर्तव्य बनना चाहिए
1: भूल जाते,
2: तो वो जब पूरा करने का समय आता है तो उसको नज़रअंदाज करके एक बोझ मानने लग जाते हैं, और यही कारण है कि हम वृद्धाश्रम जो होते हैं ये जो
1: खोलने पड़ रहे
2: हैं, हाँ, ओल्ड होम वगैरह, हाँ, उसके अंदर उनको माता पिताओं को वहाँ रखा जाता है,
1: रखना पड़ता
2: है। हाँ, अच्छी अच्छी फैमिलियों का ये मैंने देखा है, मैं शांतिवन पोस्ट मास्टर के पद पर रहा, यहाँ के कई बुजुर्ग लोग मेरे संपर्क में आते थे और मैं जैसे आपने मुझे मधुमन रेडियो में बुलाया तो मेरी भी एक आदत थी कि मैं उनके पर्सनल जीवन को कुरेदना बातचीत के जरिए
1: समझने
2: की कोशिश करता कि वो कैसे यहाँ रह रहे हैं, क्यों हैं, क्या। तो मैंने एक दो अनुभवी आदमी, एक नाम नहीं इसको डिस्क्लोज करूँगा, वो कोई ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर्ड थे और रहते थे, तो उनकी दो बेटियां थी, लड़का था नहीं, तो दोनों बेटियां USA में थी, वो पति पत्नी यहाँ रहते थे शिवरणी होम में। अब उनकी पत्नी की देहावसान हुआ तो देहावसान की खबर उन्होंने अपने बेटियों को
1: बताई,
2: USA में बताई, तो उस समय वो जब देहावसान हुआ तो उस समय अंतिम संस्कार में तो हिस्सा लेने नहीं आ पाए, परंतु 12 दिन के अंदर उनका फर्ज बनता था कि वो यहाँ आके अपनी माँ बा माता पिता श्रद्धांजलि देवे या वो जो भी है रीति रिवाज के अंदर। तो ये चीज़ मुझे उन्होंने बताई बुजुर्ग ने, कि वो बेटी मेरी आई नहीं 12 दिन में भी, बिल्कुल नहीं आई। तब वो उनकी कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ फिक्स डिपॉजिट एफडियां वगैरह थी, तो जो एफडियां कराने के बाद जो वारिसदार का नाम लिखते हैं, तो उनके मकान में जो किराएदार रहता था उसका उसने अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाया, अंदर
1: चेंज करवाया,
2: दर्ज करवाया जब नई एफडी कराई थी। तो मैंने पूछा आपकी बेटी होते हुए भी आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि जब उसकी माँ का देहावसान हुआ, जब वह बेटी ने आगे संभाला नहीं, तो अब मेरा कभी होगा देहावसान तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो आगे मुझे संभालेगी। तो ये कितना बड़ा मूल्य ने
1: एक सामाजिक दुर्घटना कहेंगे,
2: हाँ
1: इस स्तर पे हम लोग जा पहुंचे,
2: हाँ कि वो वहीं अपने विदेश में यूएसए वगैरह में वहाँ से मस्त है अपनी जिंदगी में, माँ बाप क्या हो रहा है भले कुछ भी नहीं देखे, तो कम से कम अंतिम समय में तो हर अपने संतान को उपस्थित होना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
1: चलिए बातें तो काफी गहरी जा रही हैं, लेकिन घड़ी भी इशारा दे देती है कि हमारे इस कार्यक्रम का जो समय है 1 घंटा है, तो और
2: अभी मैं जो एक दो शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, मेरा सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2022 को शांतिवन पोस्ट मास्टर पद से हुआ है, और आफ्टर सेवानिवृत्ति मुझे 10 महीने हुए। मैं अभी मेरे पुश्तैनी जो गाँव ओर में है, वहाँ मेरी कुछ पुश्तैनी जमीन है 5-6-10 बीघा, तो उसके अंदर मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और सब्जियाँ वगैरह सब जो है ऑर्गेनिक उगाई जाती है, और गेहूँ वगैरह भी घर के खाने के लिए ऑर्गेनिक ही करते हैं, और गाय पालन करते हैं, गोपालन, तो गाय का दूध वगैरह उनकी सेवा हो जाती है, और गाय का दूध वगैरह भी घर में असली मिल जाता है।
1: तो आपको जो खाने के लिए चाहिए वो आप खुद उगाने का प्रयास।
2: हाँ हाँ,
1: ये बहुत ही अच्छी बात है कि पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। माँ प्रकृति जब से हमने जन्म लिया तब से हमको दे रही है, लेकिन हमने भी उसमें कुछ अपना भी रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा उत्पन्न हो जो लोगों के पेट तक जाए और लोगों को पालना मिले, तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं देवड़ा जी जो और गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं, और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो काफ़ी जीवन के अलग अलग पहलुओं पर और क्या होना चाहिए क्या हो रहा है इन चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला, और कहीं ना कहीं ये बातें आपके भी कानों द्वारा जब अंदर पहुंच रही हैं तो आप भी इस बात पर हम विचार करेंगे, और कुछ ऐसा लगता है कि हमें भी अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ सुधार भी आप ज़रूर करेंगे, ऐसी शुभ आस रखते हैं। देवड़ा जी, आप आज का इस कार्यक्रम पूरा होने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों को, जो हमारे बुजुर्ग सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं इस मधुबन रेडियो के माध्यम से मेरे सभी श्रोतागणों को तय दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और ये मैं कहना चाहूँगा जो मेरे से बुजुर्ग हैं या मेरी उम्र के हैं उनके लिए कहूँगा कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की लाइफ के बाद में भी अपने आप को एक्टिव रखें, क्रमशील रखें।
1: जी जी,
2: ये अपने ऐसा नहीं समझे कि हम सेवानिवृत्त हो गए अब किसी काम के नहीं रहे हैं, तो इससे जीवन में अवसान आ जाएगा। आप जितने एक्टिव रहेंगे, कार्यशील रहेंगे
1: जी,
2: हाँ स्फूर्तिवान रहेंगे, आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मैं भी इसी को फॉलो कर रहा हूँ।
1: आपकी रूटीन क्या रहती है?
2: मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और फ्रेश वगैरह होके 1 घंटा पर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ।
1: अरे वाह।
2: और उसके बाद आके 1/2 घंटा कोई योगा वगैरह करता हूँ
1: जी,
2: फिर चाय वाय पी के फिर नहाना धोना होके फिर मैं नहा धो के हमारे गाँव में विट्ठल जी का मंदिर है, विट्ठल भगवान जो महाराष्ट्र में विष्णु, तो उनके यहाँ मैं दर्शन करने जाता हूँ, और विट्ठल जी के दर्शन के बाद में मैं अन्न ग्रहण करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात।
2: उसके बाद में मेरा जो भी कार्यक्रम है उसके अनुसार संचालित करता हूँ।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कैसे एक वरिष्ठ जन के गौरवों में जीवन के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे थे, और उनके द्वारा ही सुन रहे थे आज जिस पड़ाव पे हैं उस पड़ाव पे पहुंचने के लिए क्या क्या उन्होंने प्रयास किए हैं, और बहुत सारे गौरव के क्षण भी उनके जीवन में आए हैं, और कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष तो रहता ही है, तो ऐसे ही संघर्ष और गौरव के जीवन को आगे बढ़ाते रहें, और रेडियो मधुबन से आपकी ज़िंदगी को सलाम करते हैं। तो दोस्तों, समय हो गया है कि हम इस कार्यक्रम से विदा लें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलाम है ज़िंदगी, और रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ऐसे ही सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई अतिथि के साथ और एक नई कहानी के साथ।
2: धन्यवाद।

0: नमस्कार, 107.8 FM पर सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मधुबन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे वरिष्ठ जनों के साथ के अनुभवों को बताता हुआ कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी। और आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब सिंह देवड़ा जी, जो कि पोस्ट मास्टर के पद में सेवानिवृत्त हुए हैं और गाँव के निवासी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमने कुछ देर पहले उनसे जाना उनके बाल्यकाल के बारे में, फिर युवा का समय और जो उनके कार्यमय जीवन है जहाँ पर वो डाक विभाग में सेवाएं देते रहे, तो उस बारे में भी काफ़ी विस्तार में उन्होंने बताया हमें। आपका फिर से स्वागत है सर रेडियो मधुबन पर। इस गीत के बाद जैसे मैं थोड़ा सा आपके जीवन में झांकना चाहूँगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एकल फैमिलीज बहुत हो गई, एकल परिवार जिसे कहते हैं कि माता पिता कहीं और रह रहे हैं, बच्चे कहीं और रह रहे हैं, कोई शहरों में रह रहा है, एक दूसरे को चेहरा देखने का भी समय नहीं मिलता है कभी कभी, इतनी व्यस्तता ज़िंदगी में आ गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जब बात होती है तो एक और शब्द सामने आता है कि जॉइंट फैमिली कहते हैं, मतलब एक परिवार के जो अलग अलग भाई बहन हैं और उनके जो परिवार हैं छोटे छोटे, तो सारी इकाइयाँ एक ही जगह पे रहती हैं। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मूल्यों का समावेश है, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को सहयोग करना और एक दूसरे की कमी कमजोरियों के ऊपर ध्यान ना देते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बनना, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, ये जो संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है ये हमारे उस समय के समाज की एक आवश्यकता थी, मैं थी, और वह एक परिवार के जो जितने संयुक्त परिवार के जो लोग होते थे उन सबको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी, इसलिए उस समय की
0: हर प्रकार की
1: सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, और इसलिए ये संयुक्त परिवार की अवधारणा काफ़ी विकसित थी भारत के अंदर, हमारे गाँवों में देहातों में। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि एक दूसरे के ऊपर कभी कोई संकट आ जाता था या परिवार के ऊपर संकट आता था, या जैसे कि किसी का कोई लड़का शादी हुई और उसका देहावसान हो गया, तो उसके पीछे जो पत्नी बच्चे वगैरह, जो छोटे छोटे बच्चे पत्नी वगैरह होती थी, तो उनका संयुक्त परिवार में रहने से एक पूरे संबल मिल जाता था। हाँ, उनको ये कि ये जीवन बोझ नहीं लगता था, एक बड़ा बोझ या बर्डन जिसको जिसके बाद में कि भाई अब हम क्या करेंगे, हताशा जीवन, उनको परिवार में बड़े बुजुर्ग भाई
0: दिलासा भी मिल जाता और सहयोग भी मिलता था।
1: हाँ, जेठ वगैरह देवर वगैरह सब हुआ करते थे, भाभियाँ वगैरह जो भी है, तो वो इन सबको एक सामूहिक कलेक्टिव की भावना होती थी,
0: समावेशी।
1: तो सभी परिश्रम करते और अपने जो भी खेत वगैरह खलिहान वगैरह होता था वहाँ जाके सब परिश्रम करते, मजदूरी करते या उसमें कोई नौकरी लगा हो नौकरी भी करते, तो सबका जो योगदान होता था अपने वो शाम लाके जो सबसे परिवार में बड़ा बुजुर्ग होता था उनको समर्पित किया जाता था और वो पूरे परिवार को मेंटेन कर रखते थे। तो
0: उनके
1: उसमें क्या होता था कि सबके अंदर एक समभाव भी रहता था सामाजिक, जिसके चार भाई है, एक परिवार में चार भाई है, एक सेवा में मान लो सेना में है गया हुआ है, उसके बच्चे बच्चियां वगैरह है, एक खेती कर रहा है, कोई एक मजदूरी कर रहा है, तो ये होते थे। अब सबके अलग अलग कार्य क्षेत्र हुआ, प्रकृति कार्य का प्रकृति अलग अलग है, परंतु क्या होता था जब वो अपनी जो कमाई जो होती थी लागे एक बड़े बुजुर्ग परिवार के मुखिया को सौंपते थे और उसके बाद से वो मुखिया उस आय से सबको मेंटेन करता था, तो वो एक जैसा रखता था सब।
0: सही बात।
1: तो उसके अंदर सबके अंदर किसी
0: में मेरा ज्यादा नहीं,
1: हाँ, नहीं। और परिवार के दूसरे सदस्यों में हीन भावना का प्रवेश नहीं होता था, सब अपना स्वाभिमान एक जैसा बना रहता था।
0: सही बात,
1: ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और संरक्षण तो मिलता ही था उनको, चिंता मुक्त जीवन रहता था। यदि मान लो किसी की विधवा हो गई परिवार में, विवाही की पत्नी या बच्चे छोटे,
0: पूरा पालन पोषण पुरुष भी अगर देह त्याग कर दिया तो उनके उनके बच्चों को भी पिता का
1: संरक्षण मिलता था। और दूसरा एक प्लस पॉइंट में बताऊं कि जैसा जो संयुक्त परिवार होता था, जितना सुदृढ़ होता था संयुक्त परिवार, उसकी गांव में उतना ही मान सम्मान ज्यादा रहता था।
0: ओके,
1: क्यों रहता था कि इस परिवार में ज्यादा मेंबर है और एक सुदृढ़ है और एक साथ रहते हैं, तो
0: कभी
1: मूल्यों के आधार पे, तो दूसरे जो परिवार कहीं कमजोर परिवार होते थे वो ही सोचते थे कि हमारे ऊपर कभी कोई जरूरत पड़ी संकट तो इस परिवार से हम रिश्ता रखेंगे तो ये हमारे संकट में काम आएगा।
0: बिल्कुल सही बात है। और मैं एक्चुअली ये खाली परिवार की बात नहीं है, पूरा गांव एक परिवार के रूप में भी
1: सिंह परिवार के रहता था,
0: पूरा गांव भी एक जैसे परिवार,
1: पूरा गांव भी एक सिंह फैमिली की तरह
0: देखते हैं। कहीं की सड़क में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार कई वीडियो वगैरह आते रहते हैं, लोग बाजू से गुजर रहे हैं, कोई उधर देख नहीं रहा है या सहायता कर नहीं रहा है या कुछ अन्याय हो रहा है कहीं पर, तो लोग सोचते हैं चाहिए पता नहीं हमारा क्या, हमको क्या लेना देना, हम तो इसमें नहीं घुसना है, हमको ऐसे सोच के निकल जाते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था,
1: पहले लोग आगे बढ़ के उसके अंदर उसमें बचाव करते थे,
0: बचाव कर
1: और भाईचारे की भावना बहुत ज्यादा थी, किसी के साथ कोई गलत होता देख रहे थे या कोई रस्ते में जा रहे हैं कोई वाक्य देख
0: जाएंगे जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं,
1: तो हम अभी हमारी जितना विकास हुआ है इस विकास की यात्रा के साथ में हमारे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। अभी
0: क्या
1: हमने शिक्षा के बारे में हमने हमारे आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति कर ली, आर्थिक विकास भी खूब कर लिए, हमने अपने आप के स्तर को भी अच्छा जमाने के हिसाब से सुधार लिया,
0: लिविंग स्टाइल,
1: परंतु हम वैल्यू एडिड सर्विसों को अपने जीवन में समावेश नहीं कर पाए,
0: मूल्य कम हो गया।
1: हाँ, मूल्य कम हो गया, वैल्यू एडिड जो सर्विस।
0: क्या कारण रहा
1: इसका? कारण एक ही रहा कि एक जो मैंने बताऊँ कि एकल संयुक्त परिवार की अवधारणा का टूटना और एकल परिवार की अवधारणा का
0: आरंभ
1: बलवती होना, तो ये जो आज के ज़माने से एकल परिवार बलवती हो रहे हैं, और ये आज के ज़माने की कह सकते हैं आवश्यकता भी हो कि लोग संयुक्त परिवार में नहीं रह के एकल रहना पसंद करते हैं।
0: आवश्यकता नहीं, स्वार्थ की बात हो गई,
1: आज का परिवेश जो जो जो जैसा परिवेश बना है चारों तरफ माहौल,
0: क्या क्या ये कह सकते हैं आपके लोगों के अंदर ताकत नहीं कि एक दूसरे को समावेशी कर,
1: हाँ, या उनको उनकी वो क्या कहते हैं
0: अपने में सीमित रहना चाहते हैं,
1: एक सोशल उनकी जो जिम्मेदारी होती है अकाउंटेबिलिटी समाज के प्रति वो पूरा नहीं करना चाहते, वो अपना अपनी पत्नी अपने बच्चे परिवार में ही मस्त रहना चाहते हैं।
0: तो इसका बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: बुजुर्गों की इसकी वजह से प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती है, जो परिवार संयुक्त परिवार में बुजुर्ग होते थे
0: कई बार ऐसे देखने में चार चार बच्चे हैं लेकिन माता पिता जो हैं खुद ही
1: एकाकीपन जीवन जी रहे हैं, एकाकीपन जीवन जी रहे हैं। तो पहले तो संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का काफी ख्याल रखा जाता था और उनकी देखभाल वगैरह उचित ढंग से होती थी, जब वो 50-60-65 साल की उम्र के बाद काम करने में अक्षम होते थे तो परिवार इतना लंबा छोड़ा, उनके 4-5 बेटे वगैरह हुआ करते थे, 5 परिवार में भी बड़े परिवार की लोग गौरवपूर्ण मानते थे ज़्यादा लड़के लड़कियां होना, आजकल तो बस हम दो हमारे एक या दो तो इस भाव इस तरह की धारणा की वजह से अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं। एक समय के बाद में जब वो बुजुर्ग माता पिता काम करने में अक्षम हो जाते हैं तो वो अपने आप अपने जो उनकी जो संतानें हैं उनको एक बोझ मानने लग जाती
0: है, बोझ करना पड़ रहा है,
1: बोझ मानने लगती है, जो उन्होंने संतान के प्रति जो कर्तव्य निभाया या जो उन्होंने ड्यूटी दी उस चीज को नजरअंदाज करके जब उनका टाइम आता है माता पिता के प्रति उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए या क्या कर्तव्य बनना चाहिए, तो वो जब पूरा करने का समय आता है तो उसको नजरअंदाज करके एक बोझ मानने लग जाते हैं, और यही कारण है कि हम वृद्धाश्रम जो होते हैं ये जो
0: खोलने पड़
1: रहे हैं, ओल्ड होम वगैरह, हाँ, उसके अंदर उनको माता पिताओं को वहाँ रखा जाता है,
0: रखना पड़ रहा
1: है। हाँ, अच्छी अच्छी फैमिलियों का ये मैंने देखा है, मैं यहाँ शांतिवन पोस्ट मास्टर के पद पर रहा, यहाँ के कई बुजुर्ग लोग मेरे संपर्क में आते थे और मैं जैसे आपने मुझे मधुबन रेडियो में बुलाया तो मेरी भी एक आदत थी कि मैं उनके पर्सनल जीवन को कुरेदना बातचीत के जरिए
0: समझने
1: की कोशिश करता कि वो कैसे यहाँ रह रहे हैं, क्यों हैं, क्या। तो मैंने एक दो अनुभवी आदमी, एक नाम नहीं उसको डिस्क्लोज करूँगा, वो कोई ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर्ड थे और रहते थे, तो उनकी दो बेटियां थी, लड़का था नहीं, तो दोनों बेटियां USA में थी, वो पति पत्नी यहाँ रहते थे शिवरणी होम में। अब उनकी पत्नी की देहावसान हुआ तो देहावसान की खबर उन्होंने अपने बेटियों को
0: बताई,
1: USA में बताई, तो उस समय वो जब देहावसान हुआ तो उस समय अंतिम संस्कार में तो हिस्सा लेने नहीं आ पाए, परंतु 12 दिन के अंदर उनका फर्ज बनता था कि वो यहाँ आके अपनी माँ बा माता पिता श्रद्धांजलि देवे या वो जो भी है रीति रिवाज के अंदर। तो ये चीज मुझे उन्होंने बताई बुजुर्ग ने कि वो बेटी मेरी आई नहीं 12 दिन में भी, बिल्कुल नहीं आई। तब वो उनकी कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ फिक्स डिपॉजिट एफडियां वगैरह थी, तो जो एफडियां कराने के बाद जो वारिसदार का नाम लिखते हैं, तो उनके मकान में जो किराएदार रहता था उसका उसने अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाया, अंदर
0: चेंज करवाया,
1: दर्ज करवाया जब नई एफडी कराई थी। तो मैंने पूछा आपकी बेटी होते हुए भी आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि जब उसकी माँ का देहावसान हुआ, जब वह बेटी ने आगे संभाला नहीं, तो अब मेरा कभी होगा देहावसान तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो आगे मुझे संभालेगी। तो ये कितना बड़ा अवमूल्यन है,
0: एक सामाजिक दुर्घटना कहेंगे।
1: हाँ,
0: इस स्तर पे हम लोग जा पहुंचे।
1: हाँ, कि वो वहीं अपने विदेश में USA वगैरह में वहाँ से मस्त है अपनी जिंदगी में, माँ बाप क्या हो रहा है भले कुछ भी नहीं देखे, तो कम से कम अंतिम समय में तो हर अपने संतान को उपस्थित होना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
0: चलिए, बातें तो काफी गहरी जा रही हैं, लेकिन घड़ी भी इशारा दे देती है कि हमारे इस कार्यक्रम का जो समय है 1 घंटा है, तो और
1: अभी मैं जो एक दो शॉर्ट में कहना चाहूँ, मेरा सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2022 को शांतिवन पोस्ट मास्टर पद से हुआ है, और आफ्टर सेवानिवृत्ति मुझे 10 महीने हुए। मैं अभी मेरे पुश्तैनी जो गांव ओर में है, वहाँ मेरी कुछ पुश्तैनी जमीन है 5-6-10 बीघा, तो उसके अंदर मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और सब्जियाँ वगैरह सब जो है ऑर्गेनिक उगाई जाती है, और गेहूँ वगैरह भी घर के खाने के लिए ऑर्गेनिक ही करते हैं, और गाय पालन करते हैं, गो पालन, तो गाय का दूध वगैरह उनकी सेवा हो जाती है, और गाय का दूध वगैरह भी घर में असली मिल जाता है।
0: तो आपको जो खाने के लिए चाहिए आप खुद उगाने का प्रयास।
1: हाँ हाँ,
0: ये बहुत ही अच्छी बात है कि पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। माँ प्रकृति जब से हमने जन्म लिया तब से हमको दे रही है, लेकिन हमने भी उसमें कुछ अपना भी रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा उत्पन्न हो जो लोगों के पेट तक जाए और लोगों को पालना मिले, तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं देवड़ा जी, जो और गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं, और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो काफ़ी जीवन के अलग अलग पहलुओं पर और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इन चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला, और कहीं ना कहीं ये बातें आपके भी कानों द्वारा जब अंदर पहुंच रही हैं तो आप भी इस बात पर हम विचार करेंगे, और कुछ ऐसा लगता है कि हमें भी अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ सुधार भी आप जरूर करेंगे, ऐसी शुभास रखते हैं। देवड़ा जी, आप आज का इस कार्यक्रम पूरा होने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों को, जो हमारे बुजुर्ग सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इस मधुबनी रेडियो के माध्यम से मेरे सभी श्रोतागणों को तय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और ये मैं कहना चाहूँगा जो मेरे से बुजुर्ग हैं या मेरी उम्र के हैं, उनके लिए कहूँगा कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की लाइफ के बाद में भी अपने आप को एक्टिव रखें, क्रमशील रखें।
0: जी जी,
1: ये अपने ऐसा नहीं समझे कि हम सेवानिवृत्त हो गए अब किसी काम के नहीं रहे हैं, तो इससे जीवन में अवसान आ जाएगा। आप जितने एक्टिव रहेंगे, कार्यशील रहेंगे
0: जी,
1: हाँ, स्फूर्तिवान रहेंगे, आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मैं भी इसी को फॉलो कर रहा हूँ।
0: आपकी रूटीन क्या रहती है?
1: मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और फ्रेश वगैरह होके 1 घंटा मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ।
0: अरे वाह।
1: और उसके बाद आके 1/2 घंटा कोई योगा वगैरह करता हूँ
0: जी,
1: फिर चाय वाय पी के फिर नहाना धोना होके, फिर मैं नहा धो के हमारे गाँव में विठल जी का मंदिर है, विठल भगवान जो महाराष्ट्र में विष्णु, तो उनके यहाँ मैं दर्शन करने जाता हूँ, और विठल जी के दर्शन के बाद में मैं अन्न ग्रहण करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात।
1: हाँ, उसके बाद में मेरा जो भी कार्यक्रम है उसके अनुसार फिर संचालित कर रहा हूँ।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कैसे एक वरिष्ठ जन के गौरवमय जीवन के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे थे, और उनके द्वारा ही सुन रहे थे आज जिस पड़ाव पे हैं उस पड़ाव पे पहुँचने के लिए क्या क्या उन्होंने प्रयास किए हैं, और बहुत सारे गौरव के क्षण भी उनके जीवन में आए हैं, और कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष तो रहता ही है, तो ऐसे ही संघर्ष और गौरव के जीवन को आगे बढ़ाते रहे, और रेडियो मधुबन से आपकी ज़िंदगी को सलाम करते हैं। तो दोस्तों, समय हो गया है कि हम इस कार्यक्रम से विदा लें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी, और रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ऐसे ही सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई अतिथि के साथ और एक नई कहानी के साथ।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हों, कठपुतलियों से कहानी।

0: या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो।
1: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
2: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम 69 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में तीन तीन तालाब बना दिए आज भी।
3: तो सेवा तो सर ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
4: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून। जुनून हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आज के आपके फेवरेट शो को लेकर आया हूँ फिर से आपके बीच। और शो का नाम है जुनून और आप मेरी आवाज पहचान ही रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और आज के शो का होस्ट शरद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और आप इसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। और मेरे साथ है आज एक फिर से एक नए जुनून के साथी और उनका जुनून है रूरल डेवलपमेंट, उनका जुनून है ट्राइबल वेलफेयर, उनका जुनून है रेडियो कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ उनका जुनून है कि वो कैसे अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो बादल फिल्म का गीत आपको याद है ना, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो वही बात है और ऐसे ही जुनूनी जो इस गीत को सच्चा साबित करते हैं। हमारे साथ हैं विनोद। विनोद आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में, आप तो जानी बानी आवाज हैं और मुझे लगता है श्रोता आपको जानते ही होंगे। जी विनोद
6: जी बिल्कुल, रेडियो मधुबन से मेरा पुराना रिश्ता है और मेरी शुरुआत जो है वो रेडियो मधुबन से ही हुई है क्योंकि रेडियो मधुबन में से ही मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी अपनाया और अब अपनाते हुए जो है वो मेरे अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ।
5: जी आपसे शुरुआती दौर की बातचीत में मालूम चला और साथियों बता दूं कि दुनिया के नक्शे में जब कोटड़ा में भूख से कुछ मौतें हुई थी पिछले सालों में और इसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया, सरकारें जागी, प्रशासन चेता और लोगों को मालूम चला कि क्या हमारे देश में एक ऐसा इलाका भी है जो इतना पिछड़ा हुआ है। कोटड़ा उस तहसील का नाम है जहाँ से विनोद आते हैं और कोटड़ा की आबादी आदिवासी आबादी है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान किए हैं और इन विशेष प्रावधानों के बावजूद आजादी के इतने सालों बाद भी उस इलाके का विकास ना हो पाना, उसका ह्यूमन इंडिकेटर उसके पीछे रह जाना हम सबको सब सोचने पर मजबूर करता है। और विनोद से हम चर्चा करेंगे इस इलाके के बारे में, आदिवासी जनजीवन के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में, विनोद की क्या योजना है। तो विनोद आपको ये जुनून कैसे लगा कि आप आदिवासी समाज में काम करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के मानव इंडिकेटर से ह्यूमन इंडिकेटर से उनके विकास की बात करते हैं, ये विचार कहाँ से आया, ये जुनून कहाँ से आया?
6: जी वो कहते हैं ना कि स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे होते तो आसपास बहुत कुछ दिखता है और मेरी जो पढ़ाई है वो आधी गुजरात में हुई और आधी राजस्थान में। तो 10 तक जब मैं पढ़ रहा था गुजरात में, मैंने 11 12 जो है वो आबू रोड में एडमिशन हॉस्टल में लिया जो कि रेडियो मधुबन के थोड़ा सा सामने ही है और उसी के जरिए मैं रेडियो मधुबन से भी कनेक्ट हुआ 2011 के बाद से, जब मैं 12वीं में या फिर 11वीं में था तब जुड़ा था और वहीं से फिर मुझे लगा। और मेरे अंदर ये और बहुत सारी कविताएं हैं, गीत है या फिर जानकारी है, वो इकट्ठे करने का शौक था और इकट्ठी करके जानकारी रखता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मैं करूंगा क्या या फिर बाद में काम आएगी, केवल यही एक मुझे लग रहा था मन में। लेकिन रेडियो मधुबन के टीम जो है वो हमारे हॉस्टल में स्कूल में आते थे तो उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई रेडियो में आकर बोलना चाहता है तो बोल सकता था। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि रेडियो में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार गया तो फिर मुझे बताया गया और उस समय मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या प्रस्तुत किया था लेकिन मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कविताएं थी, कहानियां थी और जो जानकारी अखबारों में आती है वो इकट्ठी कोई वो थी। जो मैंने प्रस्तुत की थी, और फिर धीरे धीरे रेडियो मधुबन से जुड़ा। और उस समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, मेरा एक घर गुजरात में भी है जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो गांव में नहीं रहता था। तो जब मैं गांव में नहीं आता था, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ा तो गांव में आ गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमारे गांव में जो है वो बिजली नहीं थी, और गांव के अंदर बोर्ड लग चुका था कि विद्युतीकरण हो चुका है। तो फिर मुझे लगा कि बिजली लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सरपंच को लेटर लिखा कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, लेकिन बिजली का बोर्ड लग गया है, तो वो बिजली आने चाहिए। और फिर सरपंच ने कुछ नहीं किया। 7 दिनों के बाद फिर मैंने वो जो लेटर है उसको अटैच करके विकास अधिकारी के नाम से लिखा बीडीओ को। बीडीओ ने भी 7 दिन तक कुछ नहीं किया। फिर सीधा मैं कलेक्टर के नाम से लेटर लिखा, और सरपंच वाली, विकास अधिकारी वाली, वो एप्लीकेशन ले जाकर कलेक्टर ऑफिस में दी। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में उदयपुर जब मैं गया मिलने के लिए, तो उधर पहले लिख के देना पड़ता है पर्ची में कि मिलने के लिए कौन कहां से आया है। तो जैसे ही वहां पर जो पियोन या फिर जो भी होगा, उन्होंने देखा कि कोटड़ा से आया है, तो मुझे फिर कलेक्टर से मिलने दिया। और उस समय कलेक्टर से क्या बात हुई ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस आबू रोड चला गया था, लेकिन मुझे फोन आता है कि गांव में बिजली का काम शुरू हो चुका है। तो वो एक पहली शुरुआत थी, गांव के अंदर बिजली नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है, रात को अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सके। तो वो एक पहली शुरुआत थी लाइफ का, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बिजली लाने की स्टार्टिंग की, और उसके बाद फिर हैंडपंप के लिए भी प्रयास किया। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ का, काम का। और उसके बाद फिर रेडियो से जुड़ने के बाद तो बहुत सारे कई जो प्रोजेक्ट रेडियो के थ्रू भी चले। और एक और चीज की, मैं भील समाज से आता हूँ, तो मेरी अपनी भाषा तो मैं जानता था, भील भाषा में बात करना, और अबू रोड एरिए में ग्रासी समुदाय के लोग रहते थे, उनकी भाषा हालांकि मिलती जुलती है लेकिन अलग थी। तो मुझे वहां के रेडियो मधुबन की जो दीदी है कृष्णा बहन जी, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ की लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर जब गांव में जाकर लोगों से, ग्रासी भाषा मुझे उस समय नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने वो सीखा और स्टार्टिंग की लोगों के साथ बातचीत करना था। और लोगों को भी लगा कि ये हमारा ही एक अंदर समाज का है और हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और लोगों को भी अपनापन लगने लगा। तो जैसे स्कूलों में जाता था, स्कूलों में रिकॉर्डिंग करना, गांव में जाके लोगों से उनकी खेती के बारे में बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में, वो लोग कैसे रहते हैं, या फिर उनका जो भी गांव की जैसे समस्या है, सड़क की है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, तो जब वो लोग अपनी भाषा में बातचीत करके रिकॉर्डिंग करवाते थे तो उन्हें एक अलग खुशी होती थी। समस्या का समाधान तो शायद सेकंड नंबर पे था, पहला तो उन्हें ये लगता था कि कम से कम हमारी बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और जब वो लोग शाम को सुनते थे तो उन्हें एक अलग ही खुशी होती थी, और इस वजह से वहां के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ, जो कि वो जो जुड़ाव तब हुआ था वो जुड़ाव आज तक है। और केवल वहां नहीं, आबू रोड में, मेरे अपने कोटड़ा में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, और एक अलग ही पहचान छोटी सी उम्र में। और मुझे उस समय इतना ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि जब मैं रेडियो में था तो अपनी एक अलग पहचान बनी थी, और वही पहचान आज भी मेरे बहुत काम आती है। और उस रेडियो में ही रहते हुए मैंने साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल चलाना तब सीखा, जो कि आज भी मैं साइकिल ही चलाता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और उधर के गांव में साइकिल चला के जाके लोगों के बीच रिकॉर्डिंग करना ये होता था। और यहाँ के कोटड़ा के तो लोग ये बोलते हैं कि साइकिल वाला आया, साइकिल वाला लड़का, मतलब वो खुशी ही अलग है
5: जी।
6: आज भी मुझे अंदर लगता है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन होना तब सफल होता है जब आप कुछ कर पाते। एक तो है कि सोच कर कुछ करना, और एक ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ हो रहा है और आप करते जा रहे करते जा रहे। मेरे साथ वैसे हो रहा था, और कभी लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब बस अपने जीवन को जी रहा हूँ और जो जरूरी लग रहा है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है। ऐसा कभी ये नहीं कि मतलब मैं बदलाव के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो रहा, बदलाव की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ ऐसा
5: जी। ये बदलाव कैसा था, कि जुनून किस तरह के बदलाव के लिए है?
6: वो जो बदलाव है कि जैसे लोगों की एक प्रॉब्लम्स है कि अगर पानी की समस्या है तो रेडियो में लोग अपनी बात रख पा रहे मेरे जरिए, और मुझे ये लगता था कि हाँ रेडियो में बात जाएगी, प्रशासन तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो समाधान होगा ही। और जैसा कि गांव के अंदर सरपंच से भी तो मुलाकात होनी ही है, अगर गांव के लोग बता रहे कि ये समस्या है तो सरपंच भी समस्या के समाधान के लिए शायद कुछ प्रयास करेगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसी समय ऑन द स्पॉट या फिर बाद में भी हो पा रहा था, क्योंकि सरपंच को भी पता चल रहा था कि लोगों की समस्या है, अगर रेडियो पे जा रही है तो गांव की एक अच्छी इमेज या कैसी इमेज जाएगी अगर समस्या रहती है तो।
5: जी देखिए, मैं ये सोचता हूँ ये जो विकास का बदलाव की जो बात आपसे हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव किस दिशा में है, अगले 20 साल बाद आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं अपने इलाके में।
6: जी मैं हालांकि एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, हालांकि लाइफ में अब थोड़ा सा मुझे अभी जून महीने में ही एक वर्कशॉप कहूँ या फिर कार्यशाला कहूँ संविधान प्रचारक की हुई, उसको मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ा एक और नजरिया बदला है। उससे पहले मेरा नजरिया ये था कि जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय है, और एक और पॉइंट ये था कि जो पीड़ित लोग है उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के जितने भी लोग है और जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं उन्हें मिल पाए, क्योंकि उन सुविधाओं को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में और उनके साथ जितने भी संविधान निर्माण करता आए थे या फिर जो भी उनका सहयोग करने वाले थे उन लोगों ने इतना प्रयास किया कि संविधान बने हुए जितना टाइम हुआ है 1950 में बना, लेकिन आज भी उन संविधान में इतना कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो सारे नियम और वो सुविधाएं लोगों को अब भी अगर कहा जाए तो अगर वो सारी सुविधाएं मिल जाती है तो बेहतर होगा। और वो सारी सुविधाएं एक तो मूलभूत सुविधाएं जो है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन है, क्योंकि जितने अधिकार संविधान में दिए हैं वो सारे इंसान की अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। केवल मैं पहले ये सोचता था कि आदिवासी समुदाय और पीड़ित पक्ष, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि भारत के वो सारे लोग जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होनी चाहिए वो मिल पाए।
5: जी तो युवाओं को जब आप चलते हैं कि आपने जब एकला चालों को थामा है तो एकला चालों के आपकी गति के साथ और लोग जुड़े हैं आपसे, युवाओं ने कैसी प्रतिक्रिया दी आपको आपके क्षेत्र में?
6: हाँ, जैसे कि आपने एकला चालों की बात की तो जब मेरे अपने खुद के कोटड़ा टाइम्स की मैं बात करूँ तो जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब इसका नाम भी कुछ और था कि आदिवासी क्षेत्र की जो खबरें वो लोगों तक पहुंचे, और मैं अकेला ही जहाँ कहीं कुछ घटना हो जाती है खुद चले जाता रिकॉर्डिंग करता। कई बार तो लोग ये भी कहते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा कुछ गलत कर दोगे, तो खतरे जैसे भी डर लगते थे, क्योंकि अगर कहीं पर हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक मौताना नाम से प्रथा है और अगर किसी का मर्डर हो गया तो फिर वो लाश जो है वो बहुत दिनों तक रहती है और जब तक उस लाश का फैसला नहीं होता वो रहेगी ही। और अगर मैंने एक पक्ष की बात रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे चला दिया और दूसरे पक्ष की बात को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर ऐसा भी हुआ है कि एक जगह पर मैं गया हूँ तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा है कि हम अपनी बात नहीं रखना चाहते, लेकिन उन लोगों को मैंने समझाया कि अगर आपकी बात को मैं रखूंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसके बाद फिर मैं दूसरे पक्ष के पास भी गया और उनकी भी बात को रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई तब मैं अकेला था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं हम भी इनके साथ जुड़े और वो भी फिर अपने क्षेत्र की खुद की जो खबर है वो देने लगे। और एक और मैं बताऊं तो मेरे साथ एक मेरा साथी था प्रकाश डामोर करके, तो पहले वो मेरे साथ काम करता था, कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वापस जिस तरीके से मैं अपना खुद का चला रहा हूँ कोटड़ा टाइम्स, वैसे उसने भी अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है जैसे गुजरात के दांता तहसील करके वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि जो यूथ मेरे साथ जुड़े थे वो पहले केवल मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो अब एक साथ 3-4 मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, केवल गांव की जो खबरें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसके अलावा वो दूसरा भी काम करते हैं जिसके जरिए उनकी अपनी इनकम भी होती है। और जो लोग कोटड़ा टाइम्स के साथ जुड़े थे वो सारे वॉलेंटियर थे, और वॉलेंटियर इसलिए थे क्योंकि मेरी अपनी जो सोच थी वो ये थी कि आदिवासी समुदाय जो है वो अपना खुद का विकास कर सके, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोगों तक पहुंचा सके। और इसको शुरुआत करने के पीछे एक कारण ये था कि हमारी जो अपनी खबरें हैं मैं अगर दूसरे मीडिया को देता हूँ मेन स्ट्रीम को तो वो उनका मन होता तो या तो आगे उनको जगह मिल पाती तभी वो खबरें छपती थी, और इस कारण क्या होता था कि वो खबरें प्रशासन तक भी नहीं पहुंचती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं इसके लिए खुद का ही होना चाहिए ताकि मैं उसको अपने मेन स्ट्रीम में डालूं, और आज ऐसा टाइम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो मेरे पास न्यूज मांगते हैं कि आप गांव की अपनी जो खबरें हैं वो हमें भेजिए।
5: तो आपके इस टाइम्स आपके अखबार में, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि लोगों तक पहुंचना है तो अखबार निकाल, तो ये बात है। और गांधी जी ने तो कितने सारे अखबार चलाए, भगत सिंह जी ने काफी सारे अखबार निकाले, तो हर क्रांतिकारी का अपना अखबार रहा है। आपके अखबार में कितने लोगों की टीम है और क्या?

0: छपता है?
1: मेरा अखबार तो नहीं है, कोटड़ा टाइम्स जो है वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है और यूट्यूब चैनल है कोटड़ा टाइम्स के नाम से। और शुरुआत में इसमें 11 लोग थे, सारे वॉलेंटियर थे। अभी कुल 5 लोग हैं, वो वॉलेंटियर हैं और अपने अपने क्षेत्र की न्यूज भेज रहे हैं। और फ्यूचर में तो ऐसा भी प्लान है कि जो कोटड़ा टाइम्स यानी कि उसके अंदर केवल कोटड़ा की न्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे आबू रोड हो गए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र आसपास के हैं, करीबन 6-7 तहसील और 4-5 जिले हैं, उनको मैंने शामिल किया हुआ है।
0: आप इस कम उम्र के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं विनोद जी?
1: मैं शुरुआत रेडियो मधुबन की बात से करना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो मधुबन में रहते हुए ही बहुत सारे जगह ट्रेनिंग में भी गया, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा और समझा है। और रेडियो में रहते हुए ही मैंने कैसे लिखना है, कैसे ऑडियो एडिटिंग करनी है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सब कुछ सीखा था। अगर रेडियो मधुबन नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, अपना खुद का चैनल बनाया है और लोगों का इंटरव्यूज ले पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि बड़े पोस्ट पर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना सामान्य होगा, लेकिन आज मैं आराम से अगर कोई भी बड़े पोस्ट का व्यक्ति है तो उससे मिलके उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया, तो रेडियो में रहते हुए जितने जो प्रोजेक्ट थे जो कि आदिवासी समुदाय को लेकर भी कुछ बनाए थे, एक तो पेशा एक्ट की जानकारी वाला था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उसमें टोटल 11 शक्तियां थी और उनके ऊपर आदिवासी भाषा में गीत, आदिवासी स्टोरीज बनाई गई और आदिवासी नाटक उसमें कार्यक्रम के लिए शामिल किए गए। और इसके अलावा जो है वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारे कार्यक्रम किए थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप की जागरूकता, तो आबू रोड में और कोटड़ा में दोनों जगह आदिवासी समुदाय भील और ग्रासे दोनों में ये देखने में मुझे उस समय लगा था, अब भी है लेकिन अब थोड़ा वो कम हुआ है क्योंकि एजुकेशन बढ़ा है इसीलिए, तो तब उसकी जागरूकता की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा जो है वो एक जो सामाजिक कुप्रथा है उसको लेकर ही पूरा एक अभियान चलाया गया था, जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की लिव इन रिलेशनशिप, कुप्रथा, नशा मुक्ति और बाल विवाह तो नहीं होते थे लेकिन अगर हो भी रहे हो तो उसकी जानकारी जो है वो लोग जो है वो प्रशासन तक पहुंचाए ताकि उसे रुकवाया जा सके
0: जी।
1: और इसके अलावा हमारी आदिवासी समाज की जो संस्कृति है वो बची रहे उसको लेकर रेडियो मधुबन में सिंगिंग का कार्यक्रम हुआ था, मेरी आवाज ही पहचान नाम से। तो फिर मुझे खुद को भी लगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो तो हिंदी गीत का हुआ है, तो हमारे आदिवासी गीतों का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस समय रेडियो मधुबन की टीम और हम सब लोगों ने मिलकर मुझे लगा तो वो हम लोगों ने डिजाइन किया कि आदिवासियों के गीतों का कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिशन होना चाहिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उस कार्यक्रम का नाम रखा था मेरी आवाज आदिवासियों की पहचान, इस नाम से था और वो पूरा आदिवासी भाषा में ही था। और उसके जो गीत है वो उस समय रिकॉर्डिंग किए गए थे और कई बच्चों को कैसे गीत बनाने हैं उसकी भी जानकारी नहीं थी, मुझे खुद को भी नहीं थी क्योंकि मैं भी गांव में ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन मैंने खुद ने भी फिर गानों को सीखना शुरू किया और लिखना शुरू किया। और फिर जो बच्चे ऑडिशन में सिलेक्ट हुए फिर राउंड में आए, उनको फिर मैंने देशभक्ति गीत है, संस्कृति का गीत है, प्रकृति का गीत है, वो सब कुछ कैसे लिखना है वो उन्हें गाइड करके करवाया और फिर ये कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम जब मैंने रेडियो में किया तो उसके बाद जैसे ही मैं रेडियो से 2017 में गांव लौट जाता हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपने ही क्षेत्र में यहाँ की स्कूलों के साथ एक दूसरा नया कार्यक्रम डिजाइन करके करवाना शुरू किया था। हालांकि कोरोना आने की वजह से फिर वो बीच में ही अटक गया था, लेकिन शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ते पर चलते हैं तो चुनौतियां तो आती ही है और उन चुनौतियों के बीच में जो है वो प्रयास जो है वो जारी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जारी रहते हैं। तो हालांकि काम तो उस समय सिंगिंग का ये सब कुछ रुक गया क्योंकि मैंने एक ये भी सोचा था कि हमारे जो आदिवासी अपने गीत है वो ये जो टैक्सी वगैरह चलती है उसमें भी बजने चाहिए। तो उस समय मेरी कल्पना थी और मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि वो टैक्सियों में गीत बजेंगे, क्योंकि जब भी मैं टैक्सियों में गुजरता था तो हिंदी गाने, गुजराती गीत यही बजते थे। और आज ऐसा समय है कि आबू रोड में भी और हमारे इस एरिया में भी और गुजरात का भी जो आदिवासी एरिया है वहां पर हमारे आदिवासी कलाकारों के जरिए आदिवासी गीत जो है वो प्ले हो रहे म्यूजिक वाले, तो वो भी एक बदलाव मेरी वजह से तो नहीं आया लेकिन आया है, ये मैं देख पा रहा हूँ।

0: मेरे रेडियो के साथियों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रिक्वेंसी है 107.8 FM। और हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी विनोद, और विनोद ने अपनी यात्रा, अपने जुनून के बारे में भी कुछ कुछ बातें हमसे की हैं, लेकिन हम उससे उसके बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे विनोद से। और विनोद से जानना चाहेंगे, विनोद, आदिवासी समाज में कौन सी चुनौतियाँ हैं जो अभी भी युवाओं के मध्य हैं, और उनके विकास में क्या महत्वपूर्ण बाधा आपको लगती है, और सरकार उसमें कैसे सहयोग कर सकती है?
1: तो मैं अपने जितने भी रेडियो मधुबन के श्रोता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोहताणा जो है वो आदिवासी समाज में बहुत पहले से चलते आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण लोगों को अपने घर बार छोड़ के चले जाना पड़ता है। और इसका अर्थ ये होता है कि मौत का मुआवजा, यानी कि किसी की मौत हो गई है तो उसका मुआवजा देना, यानी कि जब तक उस मौत का मुआवजा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी। और मौत होने का कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी है, डिलीवरी हो रही है उसकी, और अचानक उसकी मौत हो गई, तो उसके पीर पक्ष के जो लोग हैं वो उसके पति से पैसे की मांग करेंगे, और जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो या तो अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खेत में है खड़ा और सांप ने काट लिया और वो खेत किसी और का हुआ, तो जिसका खेत है उसको मौत का मुआवजा भरना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमारे एरिया में एक केस हुआ था जिसमें जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु बिजली के संपर्क में आने से हुई, बिजली लगने से, तो उसका जो मुआवजा है वो सरकार से मांग की लोगों ने, और सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ा। तो तब तक कुछ नहीं होता है जब तक लाश को उठाया नहीं जाता। ये है मोहताणा, और ये जो परंपरा वो पहले से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, और इसे रोकने के लिए समाज के जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन इतनी सफल नहीं रही। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं रेडियो में था तब कोटड़ा SDM कार्यालय से मुझे इसी के लिए सम्मानित किया गया था, मोहताणा की कुप्रथा को हटाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है इसीलिए, और मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ये अभी भी लग रही है। तो वो सम्मान मुझे नहीं लगता है कि सही था, और क्योंकि केवल प्रयास करने से ये नहीं हो रहा है, हर एक इंसान के अगर ये अंदर ये जागरूकता आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जागरूकता कुछ नहीं आई है। अभी जैसे एक रिसेंटली केस मैंने बिजली वाला बताया, तो एक केस ऐसा है जिसमें बाइक और टैक्सी का एक्सीडेंट होता है जिसमें टैक्सी वाले ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरा परिवार होता है वो सामने वाले पक्ष को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उनसे वो बात करता है कि जो बीमा राशि है उसके जरिए इसका समाधान किया जाए। क्योंकि अगर मोहताणा की बात भी होती है हमारे समुदाय में, तो केवल इतना होता है कि 1,50,000 या फिर 50,000 केवल राशि दी जाती है, बाकी अगर 14-15 लाख या 3 लाख की बात भी होती है तो वो राशि टुकड़ों में बटती है, लेकिन जो पीड़ित परिवार होता है उसको नहीं मिलती है। एक और बात ये कि मोहताणा में ऐसा भी होता है कि अगर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति का मामला है तो दूसरे गांव के जो लोग हैं वो उस गांव पे जाके चढ़ाई भी करते हैं, यानी कि पूरा गांव खाली भी हो जाता है, उस गांव के अंदर जो परिवार होता है वो परिवार, या फिर उस परिवार के अंदर भी जो उसी जाति के लोग होते हैं, उन लोगों को पूरा अपना घर बार छोड़ के चला जाना पड़ता है, दूसरा पक्ष आके लूटपाट करता है, घर बार तोड़ देता है। और रिसेंटली ऐसा ही केस गिरवर में एक महीने पहले देखने को मिला है, पुलिस भी वहां पर थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया था। तो बदलाव की काफी जरूरत है, ये जो एक प्रथा है वो अभी भी चल रही है।
0: तो इसके लिए आपने क्या अभियान शुरू किया और कैसे आपने युवाओं को जोड़ा इस प्रथा को रोकने के लिए?
1: स्टार्टिंग में जब किया था तो गांव में जाकर मीटिंगें करते थे और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस बारे में बताते थे, और सामाजिक संस्था के साथ भी मिलकर इसके लिए प्रयास किया। और प्रयास ऐसे थे कि उसमें हम लोगों को इकट्ठा करके केवल हम नहीं बात करते थे, लोगों से ही पूछते थे कि अगर ये चीजें घट रही है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, और उन बातचीत में लोग ये भी बताते थे कि कैसे एक गांव पूरा खाली हो जाता। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर तो गांव के अंदर बहुत सारे घटनाएं घटी हुई है, लोग गए हैं 10-10, 12-12 साल से और उनकी पीढ़ियां भी निकल गई, वो दूसरी जगह बाग की खेती में जाकर रह रहे हैं। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। और जो आपने पूछा युवाओं को जोड़ने की बात, तो युवा उस समय जुड़ा था और वो युवा जुड़ा था जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, और वो सारे युवा उस समय मेरे साथ मिलकर, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपना खुद का दुकान थी, बिजनेस था, वो भी मिलकर साथ में जागरूकता का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर मैं पीछे हटा, और पीछे हटने के पीछे कारण ये था कि मेरे अपने परिवार में भी मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो फिर मुझे घर आना पड़ा और फिर मैंने एक कदम पीछे लिया, तो फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि सबकी अपनी एक जिंदगी होती है। और जो युवा जुड़े हुए थे वो खुद का अपने बिजनेस नौकरी में भी चले गए। अभी इस प्रथा के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो कुछ संस्थाएं काम कर रही है, और मैंने ये भी देखा है कि जो सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए बैठक आयोजित कर रहा है और कोशिश ये करता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाइश करता है और जो भी मुआवजे वाली बात होती है वो बीमा के जरिए उन्हें दिलवाने की कोशिश की जाती है, ताकि जान हानि एक तो हुई है लेकिन दूसरी ना हो।
0: जी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक लॉजिक क्या है, मतलब इस बात को लेकर, इस परंपरा को इतने सालों तक लोग चला रहे हैं, मुआवजे का अपना स्थानीय कानून बना रखा है, जबकि देश दुर्घटना बीमा है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, न्यायालय के माध्यम से क्षतिपूर्ति भी होती है, इसका लॉजिक क्या है, इतने सालों से ये कैसे चल पाए?
1: लोगों के चलाने के पीछे का लॉजिक यही है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर हमने सामने वाले पक्ष को जवाब नहीं दिया तो ये और ऐसी घटना कर सकता है, केवल इतना सा लॉजिक है, और लॉजिक जो है वो पहले से चलता आ रहा है। और इसमें ऐसा भी हो रहा है कि अगर मैं कोटड़ा रहता हूँ तो मुझे स्वरूपगंज जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो अगर कुछ उस समुदाय के लोग बीच में रहते हैं तो वो पूरा रास्ता भी बंद कर देते हैं, कहीं आने जाने भी नहीं देते, ये भी हो रहा है। और लॉजिक बस इतना सा ही है कि अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारे और किसी व्यक्ति को ये मार सकते हैं। जैसे राजा महाराजाओं का बदला लेने की जो भावना रहती थी, वो भावना मतलब अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है उस पे समझ पाया हूँ।
0: तो ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये पूरे क्षेत्र में है या कुछ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का समुदाय के साथ ये समस्या है? ये परंपरा
1: केवल समुदाय में नहीं, अगर दूसरे समुदाय का भी व्यक्ति है तो उस समुदाय के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाता। कि हालांकि होता यह है कि उसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है, जिस वजह से वो दूसरे समुदाय को समुदाय नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन ऑन द स्पॉट तो उस व्यक्ति को वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि जो तुमने किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हालांकि जान हानि का नहीं करते, लेकिन पैसों की बात जो है वो पहले रहती है। और इसमें ये जो परंपरा चल रही है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के पंच है उन्हें उसमें 2 पैसे मिलते हैं और पंच अपनी रोजगारी चलाने के लिए भी इसको चला रहे हैं, ये भी देखा गया है।
0: तो ये जो विवाद है, ये पंचायत में का निर्णय लिया जाता है, पंचायत का समझौता करवाया जाता है, या ये है कोई भी पक्ष इसमें पक्षकार हो सकता
1: है? पंचायत में इसका निर्णय नहीं होता है, ये जो है वो गांव के सरपंच होते हैं, और गांव का सरपंच को हालांकि उसमें शामिल जरूर किया जाता है, लेकिन उस गांव के जो दूसरे लोग होंगे, उस परिवार से भी हो सकते हैं और उस गांव के भी लोग हो सकते हैं, वो लोग और दूसरे गांव के लोग, वो दोनों आपस में मिलकर इन बातों को समझाइश करते हैं। एक पक्ष बात करता है, फिर दूसरे पक्ष को सुनाने जाता है कि उस पक्ष का ये कहना है, और आपस में पूरे दिन चर्चा चलती है, पूरे दिन भी चर्चा हो सकती है, और ऐसा अगर एक दिन में चर्चा नहीं हुई तो 10 दिन भी चर्चा चलती है, और तब तक जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी, ना पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी तो पुलिस क्योंकि लाश ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इसीलिए इसका निपटारा करने की कोशिश जो वो है वो जल्दी करती है। और ऐसे भी देखा गया है कि पुलिस कई जगह पर अगर एक्टिव नहीं होती है तो लाश जो है वो करीबन 1-1 महीने तक भी रहती है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दों को अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा है, जहां पर करीबन 41 दिन तक लाश बर्फ की पेटी में रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, सामने वाले पक्ष पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा भी हो रहा है। और जब इन सब चीजों को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तब प्रशासन को लग रहा है कि नहीं, इसमें हमारी भी बदनामी हो रही है, तब जाकर प्रशासन जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो अभी तक अगर ये परंपरा चल रही है तो प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि लोगों की भागीदारी उसमें नहीं रहती है। और यहाँ के प्रशासन की बात की जाए तो फिर प्रशासन जो है वो दोनों पक्ष से निपटारा लोगों से ही करवाती है और उसका अपना बेनिफिट भी निकाल देती है, वो यही सच है। और फिर इस वजह से परंपरा जो वो चली जा रही है क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि परंपरा खत्म हो जाए क्योंकि उनकी अपनी रोजी रोटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये एक्यूरेट बात है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली चल भी रहे हैं और अगर कोई नया व्यक्ति आ गया पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो थोड़े दिन प्रयास करेगा कि ये बंद हो जाए, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ की यही परंपरा है और इसे ऐसे ही चलाना होगा, तो फिर वो चलते ही रह रही है।
0: तो इस विकृत परंपरा को लेकर सरकार ने कोई कानून बनाया है या इसके लिए प्रशासन ने कोई नियम बनाए हैं जिससे कि इस पर रोक लगाई जाए?
1: प्रशासन ने तो नियम बनाए हुए हैं लेकिन जिस तरीके से आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी अपनी परंपरा है और उनके अपने नियम है। एक तो रूढ़िगत परंपरा जो कि पांचवी और छठी अनुसूची में जिसका वर्णन है और पीस एक्ट में भी जिसका वर्णन है कि उनके अपने निपटारे जब वो खुद करेंगे तो पुलिस भी हस्तक्षेप करती है लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने कायदे हैं। हालांकि समुदाय नहीं जानता है उसके बावजूद भी उसके अपने निपटारे वो खुद करता है और इसीलिए ये नहीं रुक रहा है और पुलिस ने भी कोई नियम जो है वो लागू नहीं कर पाती है।
0: आपको क्या लगता है पूरे इलाके में जिसमें आप काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल स्थानीय समुदायों की क्या चुनौतियां हैं?
1: स्थानीय लोगों की चुनौतियां तो अगर देखा जाए तो हालांकि आबरूड क्षेत्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो बढ़ रही है क्योंकि वहाँ की अधिकतर स्कूलों में टीचरों की कमी नहीं है। और कोटड़ा एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर कई स्कूल ऐसे है जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, केवल जो पंचायत सहायक है उनके जरिए स्कूलें चल रही है और स्कूल भवन नहीं है, बच्चे आ रहे तो वो किसी और भवन में बैठ रहे हैं। एक से लेकर करीबन 4-5 क्लासे जो है वो एक साथ बैठ रही है, रोजाना जो पीरियड होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे। तो एजुकेशन की अगर ये हालत है तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो वैसे ही मैं जिस एरिया में रहता हूँ कोटड़ा एरिया में, यहाँ पर बांध बनाकर यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के प्लान भी चल रहे हैं। प्लान विस्थापित करने के हैं ये यहाँ के लोगों को लग रहा है और सरकार को लग रहा है कि वो दूसरी जगह के लोगों को डैम बनाकर पानी बचाकर रोक कर पानी पिलाना चाहती है। तो ये भी एक यहाँ पर चुनौती देखने को मिल रही है और इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ काम भी कर रहे हैं कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे। और जो बांध वाली बात की तो उसको लेकर मैं और मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि डैम जो है वो यहाँ पर नहीं बने क्योंकि दो डैम बनने से करीबन 10-12 पंचायत के बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं विस्थापित, और उनके पुनर रखने की वापस जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं की गई है। हालांकि उनको जमीन दिखाई गई है लेकिन जिस तरीके से लोगों से वापस अनुमति भी लेनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चुनौतियां तो यहाँ पर ऐसी है कि लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही मतलब कंप्लीट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरी चीजें तो उन्हें मिलने से ही रहे क्योंकि कई गांव में ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली पहुंच गई है लेकिन आज भी गांव के कुछ घरों में बिजली नहीं है और कुछ बड़ी पोस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के पास से, हालांकि कहने का मेरा भावार्थ यह है, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज भी चलाई थी उसको लेकर कि एक सरपंच है उनके घर बिजली कनेक्शन जा रहा है लेकिन जहां से कनेक्शन जा रहा है उसके वायर ऊपर से जा रहा है लेकिन नीचे वाले घर में बिजली नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा कि सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, या तो लोग उस सुविधाओं को लेने का तरीका नहीं जान पा रहा है या फिर उनको सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही है।
0: इस पूरी यात्रा में विनोद भाई आपने बताया कि आपने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा है, मोहताना की जो परंपरा है, जो कुरीति है उसको लेकर आपने अभियान अपने इलाके में चलाया है, आपने पुलिस और प्रशासन का भी साथ लिया है, लेकिन इस पूरे अभियानों के साथ आपने एक संविधान प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं और एक फेलोशिप की आपने कई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? आपको लगता है ये सारे प्रोजेक्ट निरंतरता में हैं या इनको हम ये एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कुछ बदलाव होने का संभव है?
1: जो प्रोजेक्ट है वो निरंतर अगर चलाए जाए तो चल सकते हैं और उन्हीं के जरिए बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में हर एक व्यक्ति के अपने टर्निंग पॉइंट आता है। जब तक मैं एक्टिव था कुछ काम कर रहा था तब तक यूथ भी जुड़ा हुआ था, वो भी करने के लिए प्रयासरत था, अभी मैं अगर अपनी जीवन की बात करूं तो मेरा पूरा जो शेड्यूल है पहले से अब चेंज हो चुका है। मुझे अपने समुदाय में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि अपने खुद की एक अपनी शॉप है, सुबह स्कूल जाना, शॉप पे रहना, लोगों का ऑनलाइन कुछ काम है तो वो करना, और अगर मेरी अपनी लाइफ बदली है तो लोगों की अपनी लाइफ भी बदली है। और जो लोग पहले सोचते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए और कर रहे थे, तो वो जो बदलाव है वो मैं अभी सोच भी रहा हूँ, करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। पहले प्रोजेक्ट के रूप में हो रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि सिस्टम में आना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ बदलाव होंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, उनको बेसिक, मैं 8-9-10 के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं संविधान प्रचारक की जो कार्यशाला थी उसमें जाके आया, मुझे खुद को समझ में आया कि संविधान जो है वो बहुत सरल है और हमें आसानी से समझ में आ सकता है और हमारे जीवन के लिए है। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि संविधान जो है वो हमारे जीवन के लिए है, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुझे केवल यही लगता था कि संविधान में हमारे अपने अधिकार है और कर्तव्य है, और कर्तव्य का ये मतलब है कि मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और अधिकार का मतलब है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। लेकिन संविधान के अंदर तो मुझे कैसे जीना है उसका भी वर्णन है, और मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करूँ ये भी वर्णन है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरा व्यवहार लोगों के साथ बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी समझ में आएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और अगर संविधान के मूल्यों को, वैल्यू को, लोग ऐसा नहीं कि संविधान के मूल्य इसीलिए उन्हें करना है, लेकिन अगर वो खुद उन चीजों को समझेंगे कि मुझे सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबको अगर कोई चीज मिल रही है बेनिफिट तो मुझे जितना मिल रहा है उसको भी उतना मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे इसका समाधान किया जाए ताकि किसी को ठेस नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे। तो प्रोजेक्ट जो पहले थे वो हालांकि सीमित थे, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट को अगर वापस भी स्टार्ट किया जा सके, लेकिन उनमें वैल्यूज को शामिल करके, वैल्यू के साथ साथ ये है कि लोग उसको महसूस कर सके, क्योंकि पहले केवल ये था कि चीजें खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है, इसलिए कार्यक्रम स्टार्ट किया सिंगिंग वाला, या फिर समाज में कुछ कुरीति है और वो बदलनी चाहिए इसीलिए कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन नहीं, लोगों को अपना जीवन एकदम सुंदर बने उसके लिए अगर ये सोच बना के अगर वापस ये सारी चीजें स्टार्ट की जा सकती है तो बदलाव होंगे। और ये मैं अपने से शुरुआत जब से मैंने ये समझा है तब से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि शॉप में रहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार एक समान सा, या फिर वो लोग अगर दूसरे तरह का व्यवहार भी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जानकारी वैसे देना ताकि वो जो व्यक्ति दूसरा उसे नहीं दे पा रहा है उससे भी वो उसी व्यवहार में बातचीत करके उसको ले पाए, ताकि कुछ गलत ना हो, सब प्रेम भाव से समझ पाए।
0: तो आपकी आगे क्या यात्रा है, अब आप अपने जीवन में क्या देखते हैं, आप कैसे और इस बदलाव को परिपक्व करने, पल्लवित करने और इसको स्थायी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
1: स्थायी करने के लिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अपनी छोटी बच्ची है, अगस्त में उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और मैंने खुद से भी मतलब सोचा कि एक छोटे बच्चे का जो मैसेज है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, वो और मैं हम दोनों मिलकर कैसे लोगों तक एक जो संविधान की जानकारी है, अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, और इस तरीके से हमारे अपनी स्वतंत्रता है, या फिर जो कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता, या फिर हमारे समुदाय में भी जब किसी की मौत हो रही है, अगर मुआवजे की बात हो रही है, मौताने की बात हो रही है, तो तुरंत ही अगर वो भावना आ रही है तो लोग उस चीज को बदल पाए, वैसे कुछ विज्ञापन या फिर वैसे कुछ कार्यक्रम डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। और साथ साथ में स्कूल के जो जिन बच्चों के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उन बच्चों के साथ कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मैं कैसे इन चीजों को शामिल करूँ ताकि बच्चे कंप्यूटर तो सीख ही रहे, लेकिन साथ साथ में मूल्य को भी समझे, अधिकार को भी समझे, और उसको अपने जीवन में अपनाते हुए उन्हें जो चाहिए वो भी मिल पाए। क्योंकि अगर मैंने इन चीजों को अभी समझा है तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसकी शुरुआत अभी कर दूं तो जो अभी तक नहीं समझ पाए वो लोग भी इन चीजों को समझ पाएंगे। और समझने का मतलब यही है कि अगर मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं भी सीधा उस पर गुस्सा करूंगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो स्वभाव कैसे बदले, ऐसी चीजों के ऊपर भी मैं काम करने का सोच रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे शॉप है तो कैसे मतलब ऐसी कुछ चीजें वहां पर रहे, क्योंकि विजिटिंग तो रहता ही है, तो बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं तो चीजों को देखकर भी उसको केवल पढ़ते हैं तो भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, ये चीजें करने का प्लान है। और अपनी खुद की वेबसाइट जो है, न्यूज चैनल यूट्यूब, तो उसमें अपनी जो न्यूज चला रहा हूँ मैं, उसमें भी उन मूल्यों को शामिल करो ताकि समस्या के साथ मूल्य जाए, कौन से अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी समस्या है ये।
0: जी, कोटड़ा में बताते हैं कि कोटड़ा में कई सालों पहले सड़क भी नहीं पहुंचती थी और कोटड़ा में आज का जो जनजीवन है वो अब विकास की जो मूलभूत संरचनाएं हैं वो उनका विकास हुआ है। कुछ विद्यालय भी बने होंगे, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बने होंगे, लेकिन फिर भी जो ये बुराइयां हैं ये सामाजिक चेंज और सामाजिक आंदोलन से ही होगा और सामाजिक आंदोलन के लिए किसी एक व्यक्ति को ही आगे आना होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो बुराइयां हैं लगभग सभी समुदाय में वहाँ एक जैसी बुराइयां हैं, तो इसका क्या कारण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो और ये पंच पटेल जो है समाज के वो को लेकर आगे क्यों नहीं आते।
1: जैसा कि मोहताड़ा के ऊपर बदलाव करने के लिए मैंने इस पे जब रिसर्च किया तो देखा ये कि मोहताड़ा जो है वो शुरू करने के पीछे उद्देश्य अच्छा था, लेकिन समय के साथ इसका जो उद्देश्य है वो पूरा बदल चुका। केवल इतना ही था कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए वो बदले की भावना थी। और उस समय कुछ और, यानी कि मौत का मुआवजा यानी कि पैसे की बात नहीं थी, ताकि व्यवहार जो है वो बना रहे और अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिले, इस उद्देश्य के साथ पहले का था। लेकिन वो समय के साथ बदल गया, अब केवल बदले की भावना रह गया। और अभी के जो पंच पटेल की बात करें तो उनका इतना ज्यादा बदलाव को लेकर नहीं है, लेकिन आज के जो युवा है वो इससे काफी प्रभावित है। प्रभावित होने का मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि नहीं बदल रही है इसलिए वो अपना खुद का पैसा सेविंग करके अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे, क्योंकि घर बनाएंगे कुछ घटना घटे उन्हें घर बार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। और इसको लेकर हमारे कोटड़ा में भी कुछ जो युवाएं हैं उनका अपना ग्रुप बना के वो बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांव के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। और अगर आबू रोड क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर भी ये चीजें प्रचलन में है, तो वहां पर भी वहां का जो आदिवासी ग्रुप है वो अपने खुद की अपनी टीमें बनाकर अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहा है, उनकी अपनी मंथली मीटिंग भी होती है, पैसे भी सेविंग हो रहे हैं और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और अपनी संस्कृति भी बची रहे, साथ साथ में जो परंपराएं समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है उन्हें रोका जा सके। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग गए हैं।
0: लेकिन एक बात तो है कि इस सबके बावजूद क्या जो नए कानून हैं या जो हमारे मुआवजे का कानून है या बीमा कंपनियों के से मुआवजा प्राप्त करने का जो कानून है, दुर्घटना बीमा का प्रावधान है, तो ये सब बदलते समय के साथ जो नई वित्तीय सेवाएं सरकार ने शुरू की हैं और एक व्यवस्था बनाई है, एक जिला न्यायालय बनाया है, जिला पंचायत बनाई है, तो क्या इस सरकार के नियमों को फॉलो करने का आदिवासी समाज तैयार है?
1: आदिवासी समाज तैयार है मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अगर उनके साथ, आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो अभी का यूथ है या उनके माता पिता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी अपनी शॉप है और स्टेशनरी भी है, तो दिन में करीबन 10-12 लोग रिपोर्ट के जो पेज होते हैं वो खरीदने के लिए आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर गांव में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मामला पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस तक जाने से उसका समाधान जल्दी हो सके, ये सोच लोगों में आई है, क्योंकि गांव से उसका निपटारा नहीं हो रहा है। और गांव से निपटारा नहीं हो रहा है ये भी है, प्लस गांव के लोग गांव की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो लोग भी अब चाहने लगे हैं कि समाधान जो है वो प्रशासन के पास जाए और उसी तरीके से हो, कानून के दायरे में रहकर हो।
0: एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो लिविंग की परंपरा है, इसके क्या ऐसे फायदे थे जो ये एक प्रचलन में आया कुछ समुदायों के बीच, और ये क्या सभी समुदाय में है या किसी व्यक्तिगत या किसी पर्टिकुलर समुदाय में ही ये परंपरा देखी गई है?
1: लिविंग रिलेशनशिप बाकी समुदाय का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरे अपने आदिवासी समुदाय में और जहाँ मैं रहता हूँ और आबू रोड क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पहले बहुत ज्यादा था कम उम्र का लिव इन रिलेशनशिप, अब भी जो है लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है लेकिन 18 या फिर उससे प्लस में। और इसके पीछे के जो कारण है वो ये भी है कि समुदाय के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो उस की जो शादी है वो तुरंत करवा सके, और इसीलिए कुछ समय तक लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर जो लड़का होता है वो खुद ही अपने पैसे कमाता है, और फिर पैसे इकट्ठे होने के बाद शादी होती है। और अगर कुछ शादी हो भी जाती है तो फिर उसकी ये भी

0: रहती है कि लड़का और लड़की साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले अगर वो रहते हैं तो उसके बाद शादी करनी है या नहीं करनी वो भी उनके माता पिता को समझ में आता है, और लड़के लड़की उन्हें भी समझ में आता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जितना ये मैं समझ पाया हूँ, ये अपना मेरा विचार है, लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से शायद मेरा अपना समुदाय वो ये भी सोच सकता है कि मैंने ऐसी क्यों बात की, तो मेरा अपना ये विचार है, मैं ये समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने देखा है। अगर किसी को ठेस पहुंचे हो तो इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ।
1: नहीं जी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो भी अपनी तरीके से सोचने के लिए आजाद है, लेकिन बात यह है कि हमें सोचना होगा संविधान के दायरे में और समाज की बेहतरी के लिए और समुदाय की बेहतरी के लिए। तो अभी शिक्षा को लेकर या नौकरी को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर क्या एक चेतना विकसित हुई है आदिवासी समाज में, उदयपुर के इलाके की जो आदिवासी समाज है उसके अंदर?
0: जी बिल्कुल, जागरूकता आई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही है जो कि केवल शिक्षा का नहीं समुदाय के बीच में जाकर भी। और रिसेंटली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बात में यहाँ बांध बनने का जिक्र किया था, और उसे रोकने के लिए यहाँ का समुदाय काफी विरोध कर रहा है। इसकी घोषणा जो है वो 2022 में हुई थी, 2026 हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन डैम बनने की शुरुआत अभी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध के पीछे यही है कि विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते हैं ये। और मैं अपनी बात करूँ तो इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बनी रहे और सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, और वो ऐसे किया गया है कि जब घोषणा हुई थी तब भी किया गया और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और सूचना के अधिकार के तहत ही लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसको बनाने को लेकर कहां कहां से अनुमति ली गई है और कौन से प्रावधान के तहत क्या मुआवजा मिलेगा, या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे चलने वाला है। ये जो सब बातें हैं वो सूचना के अधिकार के तहत जो डिपार्टमेंट है उनसे मांगी है लोगों ने। और सूचना के अधिकार को भी मैंने समझा तो मेरे साथ के कुछ युवा है वो भी समझ रहे, उनके खुद के नाम से RTI लगा रहे, और यही जो बात है वो एजुकेशन पर भी लागू होते हैं, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने खुद के नाम से RTI लगा के कि कोटड़ा में आखिर शिक्षकों की जो कमी है या फिर स्कूल भवनों की कमी है वो क्यों, मतलब पूरी करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर अभी चर्चाएं हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चा खुद सूचना के अधिकार को जानेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए जवाब मांग सकता है, और जवाब मांगेगा तो उसे जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो फिर उसे क्या करना है और कैसे अपनी बात को लोगों के बीच में रखना है ताकि लोगों की जागरूकता भी बढ़े, लोगों की एकता भी हो और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। प्रयास जारी है।
1: हाँ, कोशिश करने वाले की हमें और प्रयास जारी रहना चाहिए। आपको फेवरेट रेडियो स्टेशन मधुबन 107.8 FM बहुत ही रुचिकर और आनंददायी बात चल रही है, हमको गहराई में समझने को मिल रहा है एक समुदाय, एक स्थिति के बारे में और एक युवा जीवन के बारे में, एक जुनूनी के बारे में, जिनका एक जुनून है कि वो अपने समुदाय को विकसित करना चाहते हैं और विकसित भारत 2047 के सपने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हम से जानना चाहेंगे कि अब उनकी क्या कार्य योजना है और संगठन को तैयार करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं।
0: मेरे आगे की जो योजनाएं हैं वो संविधान को लेकर ज्यादा है, क्योंकि संविधान के मूल्य लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए मेरी अपनी जो कोटड़ा टाइम्स की टीम है मैं उसके साथ भी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में क्योंकि केवल एक कार्यशाला अटेंड करने से मुझे ये समझ में आया कि संविधान से ही मेरा जीवन है, अगर संविधान नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ शायद मैं वहां नहीं होता, जितना मैं कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। और एक इंसान की जिंदगी जो अभी चल रही है उसमें संविधान का अपना रोल है, और वो रोल लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान है तब हम है, और तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, तभी मैं नौकरी जा पा रहा हूँ, तभी मैं गाड़ी में सफर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुली हवा ले पा रहा हूँ, क्योंकि जब संविधान नहीं बना था तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी और अब की परिस्थितियाँ कुछ और है। तो आगे का जो मेरा खास भविष्य में सोच रहा हूँ वो संविधान की अवेयरनेस को लेकर ही ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे अभी 32-33 ईयर्स चल रहे हैं, 33वें साल में मुझे थोड़ा सा ये समझ में आए कि ये मेरे जीवन से है, तो वो लोगों को भी समझ में लोगों को समझ में नहीं, मतलब लोगों को एहसास हो, और वो मैं एहसास दिलाने के लिए युवाओं के साथ, गांव के लोगों के साथ फील्ड में, हालांकि जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन कैसे भी मुझे वो टाइम निकालना है, क्योंकि सप्ताह में अगर मैं 1-2 घंटे भी समुदाय के बीच जाता हूँ तो इससे यही होगा कि मैं उनके साथ बातचीत कर पाऊंगा और जान पाऊंगा। और मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि संविधान ने हमें ये सब कुछ दिया है, केवल मेरी नॉर्मल बातचीत में वो सब कुछ आए और लोग समझ पाए।
1: जी, चलते चलते आपसे विनोद जी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है कोटड़ा का और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आबू रोड पे, अभी आधारभूत संरचनाएं जो है उसके विकास की क्या स्थिति है, और सरकारों ने क्या सफलतापूर्वक अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को कर पाया है?
0: आधारभूत संरचनाएं तो जो गवर्नमेंट की कहे या फिर क्षेत्र की कहे, जो थी पहले वो बदल रही है, और गवर्नमेंट भी जो है वो अपना देखा जाए तो 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि गांव के अंदर शिविरें हो रही है, और जो शिविरें है वो करीबन 3 महीनों में 6 महीनों में, और उनके अधिकारी जो है, चाहे सरपंच हो, पटवारी हो, विकास अधिकारी हो या तहसीलदार, SDM, सबका अपना रोल जो है वो गांव में, क्योंकि हर पंचायत में कैंप लगाकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, उस पर प्रयास चल रहे हैं, और लोग वंचित ना रहे उसके लिए उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो या फिर उससे नीचे के जो अधिकारी हो उन्हें भी, और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं सारी मिल पाए, और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि कौन से दिन कैंप है, कौन से दिन क्या कुछ हो रहा है, पर सरकार का जो प्रयास है वो पूरा चल रहा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है तो वो जागरूक युवाओं की बनती है, जिन तक मैसेज पहुंचता है कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है, वो युवा के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचे तो, और जितना मैं देख पा रहा हूं तो बहुत कम युवा जो है वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत कम युवा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे दूसरे युवा उसमें जुड़ेंगे, और जुड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि जो युवा नहीं जुड़े हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका लाभ कैसे लेना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वही युवा एक पुरुष बन रहा है, अपना परिवार बना रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन अधिकारों की जरूरत है, वो जानेगा तो फिर उसके जरिए लोगों तक भी पहुंचा सकता है।
1: जिम्मेदारी युवाओं की है, और ये आपकी फाइनल बात, ये हम लेते हैं आज का टेक अवे हमारे श्रोताओं के लिए, और ऐसे ही चुनौनी के साथ फिर मिलते रहेंगे। विनोद जी, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आम जन तक अपने विचार और अपनी बात आपने पहुंचाई, और एक विशेष समुदाय जिसके लिए संविधान ने भी विशेष प्रावधान किए हैं उनके साथ किए गए छोटे से विशेष प्रयासों पर की चर्चा, और ये आज का हमारा जुनून था। फिर मिलेंगे ऐसे ही साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सन 1833 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर राज करने के लिए 20 साल का पट्टा दिया था। इस पट्टे के नवीनीकरण के विरोध के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी के पहले राजनीतिक संगठन मुंबई एसोसिएशन का गठन हुआ। हालांकि पट्टे का नवीनीकरण तो नहीं रुका, लेकिन संगठन के अग्रणी के रूप में भारत को ऐसी शख्सियत मिल गई जो ब्रिटेन में भारत के हितों की सशक्त व प्रमुख पैरोकार बनी। उस शख्सियत का नाम था दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी महिला शिक्षा के अग्रदूत, महान देशभक्त, समाज सुधारक, क्रांतिकारी और चिंतक थे। दादाभाई को उनके प्रशंसक, मित्र और अनुयायी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहकर पुकारा करते थे। 4 सितंबर 1825 को जन्मे दादाभाई कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने इंग्लैंड को भारत का सर्वाधिक अनर्थकारी और विध्वंस करने वाला विदेशी हमलावर बताया था। उन्होंने ब्रेन ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसका तात्पर्य था शासक देश शासित देश के धन को चूस लेता है। सन 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि अच्छा शासन कभी भी लोगों के अपने शासन का विकल्प नहीं हो सकता। उनका मानना था कि स्वराज भारत की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। भारत के लिए स्वशासन की सिंह गर्जना करने वाले दादाभाई ने अपने सपने को लाखों भारतीयों की आंखों का सपना बनाकर सन 1917 में इस दुनिया से विदा ले ली।
3: नमस्कार काका।
4: नमस्कार बेटा, नमस्कार। आओ, अरे आओ आओ, कहो क्या हाल है।
5: काका, आज आपके ऊपर एक शर्त रखी है हमने।
4: मेरे ऊपर? अरे भाई, मैं भी तो सुनूं कि मेरे ऊपर क्या शर्त रखी है।
3: काका, हमारे एक हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो हिंदी भाषा के बहुत अच्छे जानकार तो हैं ही, और हिंदी के अलावा वो तीन और भाषा भी जानते हैं।
4: वाह भाई, ये तुम लोगों का सौभाग्य है कि इतने गुणी व्यक्ति तुम्हारे प्रोफेसर हैं।
5: हाँ काका, वो तो है ही, पर हमारे कॉलेज के फंक्शन में उन्होंने गाना गाया था, वो भी इतना अच्छा कि अच्छे अच्छे गायक शर्मा जाएं।
4: वाह।
3: और काका, अभी हम उनके घर गए थे तो उन्होंने खुद इतना अच्छा बगीचा लगाया है कि देखते ही बनता है, एक एक पौधा खुद अपने हाथों से लगाया है।
4: वाह वाह वाह, तुम्हारे ये प्रोफेसर साहब तो हरफन मोला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उतने अच्छे इंसान भी होंगे।
3: हाँ काका, उनका तो पूरा कॉलेज फैन है। इन्होंने

0: बहुत गरीब होते हुए भी अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है।
1: अरे भाई, ये प्रोफेसर साहब वाली बात तो ठीक है, मगर इसमें वो शर्त वाली बात तो वही की वही रह गई। उसका क्या हुआ?
2: हाँ हाँ काका, उसी बात पर आ रहे हैं।
0: दरअसल हमने जब इन प्रोफेसर साहब को देखा तो हम इनसे बहुत प्रभावित हुए। हमने सोचा कि शायद इनके जैसा कोई और नहीं होगा।
2: पर तभी हमें याद आया कि यदि हम आपको इनके बारे में बताएंगे तो आप जरूर किसी ना किसी क्रांतिकारी से इनको जोड़कर
0: वैसे ही किसी महान शख्सियत के बारे में हमको जरूर बताएंगे।
1: और शर्त क्या है? कि मैं बता पाऊंगा कि नहीं, है ना?
2: नहीं। हाँ हाँ।
1: अरे बेटा, हमारा इतिहास तो ऐसे आदर्श महापुरुषों की गाथाओं से भरा पड़ा है। पता है, जब तुम इन प्रोफेसर साहब की बात कर रहे थे ना, तभी मेरे दिमाग में एकाएक दादा भाई नौरोजी जी का नाम आ गया। उनका जीवन भी ऐसा ही था। अच्छा बताओ, कौन जीता शर्त?
0: आप?
1: मैं?
0: हाँ काका, शर्त तो आप ही जीते हैं। क्यों?
1: तो मेरा इनाम क्या है?
2: गर्मा गर्म समोसे और स्पेशल चाय।
1: अरे छोटू बेटा, यहाँ समोसे और चाय तो ला।
0: तो काका, अब कुछ दादा भाई नौरोजी के बारे में बताइए।
1: हाँ बेटा, दादा भाई नौरोजी पारसी जाति के रत्न थे। 12वीं शताब्दी के पूर्व बहुत पारसी भारत के गुजरात में आकर बस गए थे। उनमें दादा भाई नौरोजी के पूर्वज भी थे। वे लोग नवसारी के धर्मपुरा में खेती का काम करते थे। कालांतर में उनके पिता नौरोजी पंजी और माता मानकबाई बंबई आ गए। उनके पिता खेती के साथ पुरोहिती भी करते थे, किंतु आय बहुत कम होती थी, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और फिर 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। एक कमरे का छोटा सा घर और 3 प्राणी, आमदनी बहुत कम, गुजारा होना मुश्किल। तभी दादा भाई नौरोजी के पिताजी का देहांत हो गया।
2: फिर उनकी माताजी तो एकदम अकेली पड़ गई होंगी।
1: हाँ बेटा, मगर मानकबाई गरीब तो थी, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। उन्होंने अपने बेटे के मन में ऊंचे विचारों की ऐसी बगिया तैयार की जो समय के साथ साथ विकसित होकर उपवन हो गई। अनेकों कष्ट उठाते हुए उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया और वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल आते हुए अपनी मां के सपनों को साकार करने में जुट गए।
3: मां, मां कहां हो?
4: हाँ बेटा, क्या बात है, बहुत खुश हो आज?
3: मां, ये मुझे स्कूल में इनाम मिला है।
4: वाह बेटा वाह, मुझे तुमसे यही आशा है, तुम्हारी मेहनत सफल हुई।
3: माँ पता है आज क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: आज एक लड़के को मुझसे ज्यादा नंबर मिले, मगर मास्टर जी ने कुछ और प्रश्न पूछे तो वो बता ही नहीं पाया, मगर मैंने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। तो मास्टर जी ने कहा कि रटने से ज्ञान नहीं आता, बल्कि विषय को समझना जरूरी है, और उन्होंने मुझे पहला इनाम दिया।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम खूब मन लगाकर पढ़ो और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करो।
3: माँ, मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और पढ़ लिख के व्यापार करूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा।
4: बेटा, पढ़ाई लिखाई करके तुम एक अच्छे इंसान बनना, और कमाना ही है तो धन नहीं ख्याति कमाना। लोग तुमको एक धनी आदमी नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में जाने, यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है।
3: ठीक है माँ, मैं आज से प्रण लेता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा।
4: शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तुम चरित्रवान बनो और अपना काम ईमानदारी से करो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भले ही कोई भी काम करो, मगर उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो।
3: हाँ माँ।
5: अरे दादा भाई, तुम तो इतने गोरे चिट्टे और सुंदर हो, एकदम अंग्रेज लगते हो।
6: हाँ, क्यों ना हम दादा को अंग्रेजी लिबास पहनाकर बारात में आगे आगे चलाए।
5: हाँ, और लोग देखेंगे कि हमारी बारात में अंग्रेज साहब है।
6: हाँ, हम सबको कहेंगे कि ये एडमिरल है या जनरल साहब है, क्यों दादा भाई?
7: हाँ चलो, मुझे क्या एतराज है।
5: तो तेरा?
6: हाँ तेरा।
1: लोगों को क्या मालूम था कि आज जिन दादा भाई को अंग्रेजों की नकल बनाया जा रहा है, वो एक दिन अंग्रेजों के देश लंदन में जाकर रहेंगे और उनकी नींव हिलाकर रख देंगे।
0: तो क्या दादा भाई लंदन चले गए थे?
1: हाँ, मगर उसके पहले यहां भारत में उनका विवाह गुलबाई से हुआ, जो रुस्तम जी सराफ की पुत्री थी। तब उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी।
0: 11 वर्ष?
1: हाँ, तब इसी उम्र में शादी हो जाया करती थी।
0: फिर
1: क्या था, दादा भाई एक होनहार विद्यार्थी तो थे ही, और गणित विषय में उनको दक्षता प्राप्त थी, और उनकी योग्यता को देखते हुए उनको गणित का प्रोफेसर बनाया गया। वे पहले भारतीय थे जिनको गणित का प्रोफेसर बनाया गया था।
0: अच्छा, तो तब तक क्या प्रोफेसर केवल अंग्रेज ही होते थे?
1: हाँ बेटा, बस इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर दादा भाई ने 1852 में एल्फिंस्टन कॉलेज के एक कमरे में एक संस्था बनाई, जो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जिसका नाम था बंबई एसोसिएशन।
5: साथियों, आज बंबई एसोसिएशन की इस मीटिंग में अब दादा भाई नेहरू जी आपसे मुखातिब होंगे।
8: सम्मानीय सभासदों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग के कारण आज हम सर उठा के अपनी बात ब्रिटिश सरकार के सामने कह सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज जो भी हूं, उसके मूल में मेरी मां का तप और उनकी साधना है। यदि वो मेरे चरित्र को बनाने में इतनी मेहनत ना करती तो आज शायद मैं सड़कों पर घूम रहा होता, मगर उनकी साधना के कारण मैं आज यहां आपके सामने खड़ा हूं। और इसी नाते मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी शिक्षा मुफ्त दी जाए, ताकि देश के गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस देश के अच्छे नागरिक बने, क्योंकि शिक्षा सबके लिए है। साथियों, हमने ब्रिटिश सरकार को अपने कुछ सुझाव दिए थे, जिनमें दो मुख्य थे। पहला, शासन को उदार बनाना चाहिए, और दूसरा, भारतीयों को भी इस बात का अधिकार देना चाहिए कि वे व्यवस्थापिका सभा के सदस्य के रूप में जा सकें। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ब्रिटिश सरकार ने इन सुझावों को गंभीरता पूर्वक स्वीकार किया है। श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
9: आइए आइए दादा भाई, प्लीज बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ?
8: सर, मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं।
9: क्यों, क्या आपको कोई तकलीफ है? देखिए, आप एक योग्य और विद्वान प्रोफेसर हैं, और हमें आप जैसे जीनियस की बहुत आवश्यकता है। आपको कोई भी तकलीफ हो तो निसंकोच कहिए।
8: नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे कामा कंपनी की तरफ से ऑफर आया है और मैं सोच रहा।
9: क्या आप प्रोफेसर हैं और ये जॉब छोड़कर आप व्यापारिक संस्था में काम करेंगे?
8: सर, मैंने फैसला कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं उस संस्था में जाकर देश सेवा के लिए ज्यादा धन और बल जुटा पाऊंगा।
9: देख लीजिए, मुझे लगता है आपको प्रोफेसर ही होना चाहिए।
8: सर, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, मगर मेरा फैसला अडिग है। आप कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें।
9: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। वैसे आप जब भी चाहें संस्था में आपका स्वागत है, हमें आपके आने से खुशी ही होगी।
8: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा, तो दादा भाई ने बिल्कुल अलग लाइन पकड़ ली।
1: हाँ बेटा, वो सचमुच जीनियस थे, और उन्होंने जो भी काम किया उसको दक्षता के साथ किया।
2: काका, फिर क्या हुआ?
1: फिर उसी कामा कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेजा, मगर वहां भी उनका जल्द ही मोहभंग हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
0: क्यों काका?
1: बेटा, वो कामा कंपनी अफीम और शराब का धंधा करती थी, जो दादा भाई की रुचि के विरुद्ध था। बस उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया।
10: मिस्टर नरोजी, आप ये कंपनी छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं?
8: सर मैंने बहुत सोचा और जब अपने देश भारत और इंग्लैंड का मुकाबला किया तो मैंने पाया कि मुझे भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है। उसके लिए मुझे लगता है कि मैं स्वतंत्र होकर काम करूं।
5: ठीक है।
1: और इस तरह दादा भाई ने 1859 में अपनी खुद की फर्म खोली और एंड के नाम से उस कंपनी के द्वारा कपास का धंधा प्रारंभ किया।
0: अच्छा, लेकिन काका, देश का आर्थिक उत्थान हो जाए, इतना धन उन्होंने एक कंपनी से कमा लिया होगा।
1: बेटा, उन्होंने जो धन कमाया ना, वो इस कंपनी के आर्थिक लाभ के आगे कुछ भी नहीं था।
2: क्या मतलब?
1: बेटा, दादा भाई वहां रहकर बिजनेस तो कर ही रहे थे, लेकिन उन दिनों जो भी भारतीय विद्यार्थी इंग्लैंड में पढ़ने जाता था, दादा भाई उसकी यथासंभव सहायता करते थे और साथ साथ उनके अंदर देश सेवा का मंत्र फूंक देते थे। पता है, गांधी जी उन दिनों बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी दादा भाई के पास जाया करते थे।
0: अच्छा?
1: हाँ, और गांधी जी तो उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों की देखभाल करता है, उसी प्रकार दादा भाई भारतीय विद्यार्थियों की देखरेख करते थे।
2: अच्छा, तो दादा भाई ने और क्या क्या किया काका?
1: बेटा, असल बात तो अब बताता हूँ। दादा भाई ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि उन्होंने शेर की तरह दहाड़ते हुए अपनी बात विश्व के सामने रखी। उन दिनों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना संभव नहीं था, मगर दादा भाई ने एक ऐसी विचारधारा का सूत्रपात किया कि सारा विश्व चौंक गया। और उन दिनों बहुत से अंग्रेज भी दादा भाई के विचारों से सहमत थे। दादा भाई ने एक नई संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया।
8: साथियों, आजकल इंग्लैंड में सभ्यता आंदोलन का बड़ा जोर है और अंग्रेज अपने आप को सर्वाधिक सभ्य बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत को उन्होंने सभ्य बनाया है। मगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मंच से मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने सभ्यता के नाम पे जो भी भारत के लिए किया है वो कलंक के अलावा कुछ भी नहीं है। साथियों, भारत बहुत गरीब देश है, इतना गरीब कि भारत में प्रति व्यक्ति आय आज भी 20 रुपए से ज्यादा नहीं है, और इस गरीबी की जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार है, जिस तरह रोग का कीड़ा भीतर ही भीतर रक्त चूसकर शरीर को खोखला बना देता है, उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत का धन चूसकर उसको कंगाल बना दिया है। सभ्यता की बात करने वाले शासन में शिक्षा तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात को कहने में कोई हिचक महसूस नहीं करता कि अंग्रेजों के शासन में ही हमारे भारत में गरीबी बढ़ी है। मैं ब्रिटिश सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों को भी सिविल सेवा में लिया जाना चाहिए। और एक बात और, हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखाएं मद्रास, मैसूर और बंबई में भी सफलतापूर्वक कार्यरत हैं।
9: मिस्टर नौरोजी, हमने आपकी बुक पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ी। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में बहुत गलतियां की हैं।
8: धन्यवाद श्रीमान, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। मेरा मकसद भारत की सही स्थिति विश्व के सामने रखना था, बस।
9: मिस्टर नौरोजी, मैं और मेरे बहुत से ब्रिटिशवासी आपकी बात से सहमत हैं। हमें आपके विचारों का सम्मान करना ही होगा।
8: धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान।
1: और 1881 में दादा भाई की फर्म बंद हो गई और वो भारत लौट आए।
0: काका, दादा भाई के विचारों से अंग्रेज सहमत थे तो क्या ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया?
1: बेटा, दादा भाई एक शरीर नहीं थे, वो थे एक विचारधारा, और विचारधारा को कोई बांध नहीं सकता। उन दिनों वायसराय रिपन ने यहां तक कह दिया कि ये बात अंग्रेजों के हित में होगी कि भारत को स्वायत्त शासन के लिए तैयार किया जाए। और तो और, दादा भाई की लोकप्रियता इतनी थी कि 1886 में जब इंग्लैंड पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो दादा भाई बहुमत से जीते। दादा भाई पहले भारतीय थे जो पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की बैठकों में उनके भाषणों से अंग्रेज कांप उठते थे।
8: माननीय सभासदों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं भी कोई सुधार विकास नहीं हो रहा, हो रहा है तो बस भारतीयों का शोषण। भारत गरीब होता जा रहा है और इंग्लैंड अमीर। ये कहां का न्याय है कि भारत का धन इंग्लैंड में लाकर अंग्रेज तो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करें और भारतीय शिक्षा चिकित्सा जैसी मौलिक सुविधाओं से भी वंचित रहें? क्या अपने आप को सर्वाधिक सभ्य कहने वाले इंग्लैंड को यह अनुचित नहीं लगता? आखिर कब तक आप जैसे सभ्य लोग इस सत्य से नजरें चुराएंगे? ब्रिटिश सरकार को यह जान लेना चाहिए कि यह अत्याचार भारतीय अब और नहीं सहेंगे। हमें स्वराज चाहिए।
1: और इस तरह शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने वाले दादा भाई नौरोजी ने अपने विचारों से लोगों के दिलों में जगह बना ली, और वो भारत और इंग्लैंड दोनों जगह आते जाते रहे। और 1891 और 1906 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1891 में उनका ऐसा स्वागत हुआ कि जैसे कोई बादशाह हो। बंबई से लाहौर तक लोग उनका स्वागत करने को उमड़ पड़ते थे।
9: आइए आइए दादा भाई। अरे हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, आपको सुनने का मौका मिलेगा। आइए इधर आइए।
5: ओह भाग्य हमारे दादा भाई जो हमारे लाहौर में है। आपके दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया।
6: दादा भाई आपका नाम इतना सुना था, आज दर्शन हो गए।
8: मेरे भारतीय भाई बहनों, जब तक हर भारतीय ये स्वीकार नहीं करता कि स्वराज प्राप्ति में उसका व्यक्तिगत सहयोग आवश्यक है, तब तक स्वराज की कल्पना साकार नहीं होगी। हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। यदि हम अपनी बात पुरजोर तरीके से नहीं कहेंगे तो ये समझ लो कि ब्रिटिश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। आओ हम सब मिलकर इस ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लें और बता दें कि भारतीय सम्मान से जीने के लिए कृत संकल्पित हैं।

0: उन दिनों दादा भाई के भाषणों ने ऐसी आग लगाई कि आज के दौर में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।
1: काका, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि विचारों से भी क्रांति हो सकती है।
2: फिर क्या हुआ दादा भाई का?
0: बेटा, दादा भाई नौरोजी अपने विचारों की मशाल से इस देश को प्रकाशित करते रहे और लोग उनसे जुड़ते गए।
3: पौधों को सींचना, उनमें फल फूल उत्पन्न करना, उन्हें रोगों और कीड़ों से बचाना सरल होता है, लेकिन पौधों के लिए भूमि तैयार करना, मिट्टी को उपयुक्त बनाना और बीज को बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार करना कठिन है। रक्त को पानी बनाना पड़ता है, प्राणों को स्वेद बनाकर मारना पड़ता है, और शीत, गर्मी, वर्षा जैसी

0: कठिनाइयां झेलना पड़ती हैं, ऐसा कठिन तप और साधना करनी पड़ती है कि सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। लेकिन यदि स्वराज पाना है तो इन सारी कठिनाइयों को पार करना होगा। मैं भले ही ना रहूं, मैं शायद पौधों को पेड़ बनता ना देख सकूं, मगर मुझे विश्वास है कि जो जमीन मैं आज तैयार कर रहा हूं उसमें स्वराज का फल जरूर लगेगा। ये बीज जो आज मैं लगा रहा हूं, यह वृक्ष जरूर बनेगा। बस हमें अपना आज देना है आने वाले सुनहरे कल के लिए।
1: आज हमारी स्वाधीनता का जो फल हमें मिला उसकी जमीन दादा भाई ने ही तैयार की थी। यही कारण है कि हम जब भी स्वाधीनता का इतिहास लिखते हैं तो दादा भाई का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है।
2: काका, फिर दादा भाई नौरोजी का क्या हुआ?
1: दादा भाई नौरोजी का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था। वे 90 वर्ष की अवस्था में भी इतने सक्रिय थे कि लोग आश्चर्य करते थे।
3: अरे दादा भाई की चुस्ती फुर्ती देखकर तो अच्छे अच्छे जवान भी शर्मा जाए।
4: हाँ भाई, इस उम्र में तो लोग खाट पर बैठे बैठे दिन गिनते हैं, मगर दादा भाई तो जैसे आयु को चुनौती दे रहे।
3: अरे भैया, वो दादा भाई हैं, उनके एक भाषण से अंग्रेज सरकार की नींव हिल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कमजोरी जैसा शब्द दादा भाई ने सीखा ही नहीं है।
0: क्या विचार विमर्श चल रहा है?
3: कुछ नहीं दादा भाई, हम बात कर रहे थे कि आप हमेशा स्वस्थ कैसे रहते हैं।
0: हाँ हाँ, देखो भाई, मैं नियमित और संयमित जीवन व्यतीत करता हूँ। अपना सारा काम समय से करता हूँ, शुद्धता और स्वच्छता में विश्वास रखता हूँ। बस।
1: और समय बीतता गया। दादा भाई ज्यादा समय तक इंग्लैंड में नहीं रह सके, क्योंकि इंग्लैंड का खान पान उनकी प्रकृति के अनुसार नहीं था। 1917 में 92 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके विचार आज भी हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
2: सच काका, ऐसा शायद ही कोई और उदाहरण होगा जहां इतनी क्रांति केवल विचारों से की गई हो।
1: हाँ बेटा, दादा भाई नौरोजी ने ना सिर्फ देश की आजादी के लिए बल्कि देश के चरित्र निर्माण के लिए जो काम किया है ना, उसके कारण वो युगों युगों तक भारतीयों के दिल में बसे रहेंगे।
5: सच काका, ऐसे व्यक्ति तो सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं।
2: हम धन्य हैं कि आज हम दादा भाई नौरोजी के विचारों को जान सके।
5: हाँ काका।
1: बेटा, अपनी भारत भूमि ऐसे ही कई लालों की माँ है। यहां बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए हमें इसको सहेज कर रखना चाहिए ताकि दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों का स्वराज का सपना सचमुच वैसा साकार हो जैसा उन्होंने चाहा था। उन शहीदों को यही सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: ठीक कहते हैं काका, अब हम चलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार बेटा, नमस्कार। नमस्कार।
6: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
7: हेलो, मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
8: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जागृति में आप सभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो हमारे जीवन शैली में दिखता है। वो कैसे है, क्या है, इसीलिए हमें हमारी मनोरोग विशेषज्ञ है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है, इन सभी से चर्चा करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में अनिद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और ये भी सीखा कि हमें नींद करना कैसे है, स्लीप हाइजीन कैसे करना होता है और वो प्रिपरेशंस करना कितना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे जो ओवर स्लीपिंग है, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा सो जाते हैं, या फिर जब एक बार हम सोते हैं तो फिर उठने का कोई समय नहीं रहता है, कभी भी उठते हैं, और उस कारण से हमारी बहुत दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। घर वाले बोलते रहते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी उठो उठो, दोपहर हो गया है, दिन चढ़ रहा है, बट देन हमारा मन नहीं करता है कि हम उठें और थोड़ा सो जाएं। लेकिन क्या वाकई में वो नींद हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हम वाकई में वो नींद से रिलैक्सेशन प्राप्त कर रहे हैं, या फिर हम कुछ और चीज़ों को हमारे जीवन में इनवाइट कर रहे हैं? तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारियाँ लेंगे, और हमें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ है हर्षिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप दोनों हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आप दोनों को जागृति इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है
9: जी। नमस्कार।
8: नमस्ते सर। नमस्ते हर्षिता जी।
10: तो
8: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप हाइजीन, जिस तरीके से आपने पिछली बार हमें अवेयर किया है हमारे श्रोताओं को, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम रात को लेट हो गया इसीलिए सुबह कभी भी उठेंगे, 12 एक बजे 2 बजे तक भी सोते रहते हैं, या फिर शाम को अगर जल्दी भी सो जाते हैं तो भी हम दिन में लेट उठते हैं। तो जैसे पिछली बार ये कहा गया कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन जब देर रात में सोए हैं, पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क रहा है या हॉलीडेज हैं, इसलिए हम ओवर स्लीपिंग कर लें, या फिर कोई काम नहीं है इसलिए हम सो जा रहे हैं, किताब पकड़ लिया नींद आ गई सो गए हैं, फिर इस तरीके की जो स्लीप की कोई साइकिल नहीं है या फिर टाइम नहीं है, और जब मर्जी सो रहे और जब सोते हैं तो उठने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके की जो स्लीप साइकिल रहती है वो क्या ये सही है, और इसके कारण भी हमारे जीवन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं?
9: पिछली बार जब हमने बात करी थी नींद नहीं आने या निद्रा के ऊपर में, उस समय मैंने कुछ बातें आपको अगर याद हो तो बताई थी कि नींद 7 से 8 घंटे की नॉर्मल है, कुछ लोग होते हैं जिनको उससे कम नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिनको उससे ज़्यादा नींद आती है, उनको हम लॉन्ग स्लीपर्स या शॉर्ट स्लीपर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 10 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है और कुछ लोगों के लिए 5-4-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बट अभी जब हम नींद के बाकी डिसऑर्डर्स या बाकी बीमारियों की बात करते हैं निद्रा के अलावा, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ नींद से जुड़ी हुई आती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन, जिसके भी हम बात कर रहे हैं, ओवर स्लीपिंग, जिसको हम एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, हम डॉक्टरी भाषा में उसको हाइपरसोमनियाज और पैरासोमनियाज बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा आ रही है, मनुष्य जो है वो 10 घंटे से बहुत ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं, तो उनके जगने का समय बहुत कम रह गया है, एक तो ये हो गया। और दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब आपकी स्लीप साइकिल का पैटर्न पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब जब आप सुबह के 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं और उसके बाद सीधा शाम को 4-5-6 बजे उठते हैं, या अक्सर जो पार्टी करते हैं लोग वो बहुत बार ऐसा करते हैं, यानी जिनके लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि उनकी नाइट लाइफ ही बहुत ज़्यादा है और डे लाइफ उनकी बहुत कम हो गई है, कुछ उस तरह के लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो ज़्यादा रहे हैं या सो तो नॉर्मल रहे हैं, बट जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो दिन में भी सोए सोए से महसूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, रात को तो ठीक से सो गए हैं पर जब सुबह उठ के कहीं भी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे तो आँख की झपकी लग गई, कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव चल रही है पीछे गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मूवी चल रही है कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है, काम पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए भी, तो उस तरह नींद की बीमारी, नींद बीमारी, तो इनको हम बारी बारी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहेंगे वो हाइपरसोमिया या अधिक नींद आना जिसको बोलते हैं। देखिए अधिक नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे पहले अधिक नींद आने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। डायबिटीज़ के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको डायबिटीज़ या शुगर अनकंट्रोल होती है उनकी नींद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और ये मतलब विशेष साइकिल है, आप वो ज़्यादा देर तक सो रहे हैं उसकी वजह से शुगर और बढ़ रही है, उनकी शुगर और बढ़ रही है, उसकी वजह से वो और ज़्यादा देर तक। उसके अलावा कोई अन्य बीमारी तो नहीं है उनको, शुगर के अलावा कोई और मेडिकल इलनेस जिसमें नींद उनको ज़्यादा आ रही है, या वो किसी तरह की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें उनको नींद ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे खांसी के सिरप जो हमारे होते हैं उनके अंदर में ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी नींद आती है, या कफ कोल्ड लगा, कुछ लोग एलर्जी की दवाई बहुत रेगुलर लेते हैं, सिट्रिजिन की दवाई, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो महीनों महीनों सालों सालों खाते ही जा रहे हैं, उस दवा के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा, तो उन लोगों में भी नींद ज़्यादा आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सब दवाइयाँ हमारे उन एरियाज में काम करती हैं जो नींद को इंड्यूस करते हैं, जो नींद को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उन केसेस को हम लोग हाइपरसोमनिया बोलते हैं। तो हाइपरसोमनिया केसेस के अंदर हमें सबसे पहले उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि सिर्फ नींद ही ज़्यादा आ रही है और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है उनको, और भी कोई या कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो ऐसे केसेस को हमें अलग ढंग से ट्रीट करना होता है। तो जिन केसेस में जो मेडिकल इलनेस है जिनको कोई जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, उनकी उस दवाई को टेपर डाउन करके कम करके बंद करना है ताकि उनकी नींद ठीक हो। पर जो लोगों को नेचुरली ये हाइपरसोमनिक हो रखे हैं, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन केसेस के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्लीप को रेगुलेट किया जाए। उनकी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है, जनरली हम उनको अचानक से कि आप वो 10 बजे सोते हैं और फिर सुबह 11 12 बजे उठते हैं, तो उनकी नींद जो है वो 16 17 घंटे की हो रही है, तो हम अगर उनको अचानक से बोलेंगे कि आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो एक दिन हो पाएगा, दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में हम जो करते हैं, हम उनको ग्रेजुअली टेपर डाउन करते हैं, स्लीप को ग्रेजुअली कम करते हैं, कि जैसे अभी आपके उठने का समय अगर अभी 12 बजे आप रेगुलर उठ रहे हैं रात को 10 बजे सोने के बाद, तो उसको कोशिश करें कि पहले उसको 11 पे करें, फिर उसको 10 पे शिफ्ट करें, फिर उसको 9 पे शिफ्ट करें, ऐसे करते करते हर हफ्ते एक एक घंटा कम करते जाएं, और अगले एक डेढ़ से दो महीने के अंदर में अपनी नींद को 10 से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक ले आएं, तो उस कंडीशन में आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। जब आप ग्रेजुअली कम करेंगे तो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बहुत समय से बहुत देर तक सो रहे हैं तो आपके शरीर को उस प्रकार की नींद की आदत पड़ जाती है, तो अगर ग्रेजुअली बदलेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, बहुत समय तक रहेगी, और वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
8: जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कई बार हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या बीपी शुगर या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, उस कारण से भी हमारी नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर नाइट पार्टीज कर रहे हैं उस कारण से, बट देन इसमें हम ये जानना चाहते हैं, जब ओवर स्लीपिंग होता है, क्या वाकई में वो इंसान नींद कर रहा होता है, या जो वो डीप स्लीप या फिर साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोया हुआ है लेकिन वो गहरी नींद नहीं है जो बॉडी को हील कर रहा है, या फिर जो स्लीप साइकिल जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए होता है।
9: इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि नींद की प्रकार, नींद में दो तरह की नींद होती है, आरईएम स्लीप और एमडीएम, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, उस समय वो हिल रही है, वो नींद हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, और बहुत सा सीन में नींद का ऐसा होगा जब हमारी आंख की पुतलियां नहीं हिल रही होती, उसको हम एनआरईएम स्लीप बोलते हैं। तो इसमें जो एनआरईएम स्लीप होती है उसको हम जनरल अधिकतर गहरी नींद या फिर डीप स्लीप बोलते हैं। उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, एनआरईएम 1, एनआरईएम 2, एनआरईएम 3, एनआरईएम 4, कि आप कितना गहरी नींद के अंदर में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम जैसे ही हम सोने गए तो हमारी एनआरईएम स्लीप सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है, और उसके 45 मिनट बाद पहली आरईएम स्लीप की बाउट आती है। हमारे जो सारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमें आरईएम स्लीप के अंदर में दिखाई देते हैं, और एनआरईएम स्लीप में हमारा ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर में और एकदम गहरी गहन अवस्था के अंदर में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अपने उसने सिर्फ कुछ जरूरी काम छोड़कर बाकी सब काम करना उसने बंद कर दिए हैं, तो उस समय ब्रेन जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहे 8-10 घंटे सो रहे हैं या 15 घंटे सो रहे हैं, आपकी एनआरईएम की स्लीप की टोटल जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि आपको पूरे रात के अंदर में 3 घंटे की एनआरईएम स्लीप आनी है, जो कि डीप स्लीप है, वो 3 से 3.5 घंटे की आनी है, वो आपकी फिक्स है। अब अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, आप 10 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, और आप 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएंगे। तो जो एक्चुअल नीडेड स्लीप है, हालांकि दोनों नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरईएम स्लीप की जरूरत है, बट जो ब्रेन को एक्चुअल रिलैक्स कर रही है, जिसको हम डीप स्लीप या गहन निद्रा बोलते हैं, उसका टाइम बहुत फिक्स है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप है, क्योंकि अगर जब आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं पर आपकी एनआरईएम स्लीप उतनी रह रही है, तो आपकी बाकी स्लीप है वो बेसिकली उसमें आपका बॉडी फंक्शन और आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं जा रहा है। तो हमें अपनी डीप स्लीप को बढ़ाना जरूरी है कंपेयर टू आरईएम स्लीप।
8: जी, कि कई बार लोगों का ये होता है कि वो नींद हमें क्यों रिड्यूस करना है, वो 10-12 घंटा 15 घंटा जो भी है, हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं और हमको कोई काम नहीं है इसलिए हम सो रहे हैं, तो नींद तो अच्छी होती है, हम क्यों कम करें। ऐसा भी लोगों का विचार होता है, खास करके जो यंग जनरेशन्स हैं, हॉलीडे है या फिर हमने रात को पूरा काम किया है तो अभी दिन में सोएंगे, और वो ऐसा कंटिन्यू होता है कि दिन की 10, 12, 1, 2 भी बज रहा है लेकिन उठने का वो नहीं होता है उनसे। तो हम कैसे वो मेंटल प्रिपरेशन करें कि नहीं, मुझे कितना भी काम करे मुझे इस टाइम तक सोना है, इसके बाद नहीं सोना है।
9: ये सबसे जरूरी है जानना यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके जगने में होती है, सोने के अंदर में नहीं होती। नींद हम अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं, और नींद का कोई काम नहीं। नींद का काम यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में जाए, और उसको एक लेवल तक की रिलैक्सेशन चाहिए। उसके बाद वो रिलैक्सेशन चाहिए इसलिए कि वो दोबारा काम कर सके। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो जगने के अंदर में है, सोने के अंदर में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सोने से हम कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया में सारे काम सब मेहनत चक्कर ही होती। तो इसमें जो लोगों का कहना है कि हम क्यों जागें, तो सबसे पहले तो इसमें जानना ये जरूरी है कि अधिक सोने से आपको कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना आपको ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके मन को, ना आपकी बुद्धि को, ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा अधिक सोने से। उल्टा उसके नुकसान जरूर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शुगर अनकंट्रोल हो रही है, आपका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल होने लग पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब हम जगेंगे तभी हमें, अगर हम 10-12 बजे तक 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो हम अपने जो सुबह के रूटीन है, जो मॉर्निंग वॉक है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जिम जाना है, जॉगिंग करना है, मेडिटेशन करना है, वो कब करेंगे अगर हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अधिक सोने से हमें कोई अधिक सोने से हमारे को अब नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहे हैं, वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए सोने के समय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सोने के शुरुआत का समय, जब हमने सोने का समय निर्धारित करना जरूरी है, इस समय सोने चले जाना है, 10 बजे मैं बेड पर जाऊंगा, और उसको रोजाना वैसा ही रखना। जब आप वैसा रखेंगे और उसके बाद सुबह उठकर बेड से उठना, जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग गए और उसके बाद बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जगने का मतलब जब सोने के लिए आप बिस्तर पर जा रहे हैं, तो जब आप जग रहे हैं तो आपने बिस्तर छोड़ देना है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाना है और अपने नित्य कर्म करने हैं। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे, एक बार जब बिस्तर छोड़ देंगे, तब फिर दोबारा नींद आने की संभावना कम है। बट अगर आप जग गए और बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद कर दिया, आप गए और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर आप दोबारा नींद एक गई। तो हमें उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम ये समझना होगा कि हमें बिस्तर को छोड़ देना है, नित्य कर्म जो करने हैं, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, या पढ़ाई करनी, पढ़ने की जो चीज जो है वो सुबह का होता है, उस समय सबसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं। तो उठते हैं तो आपके पास आपको 1-1.5 घंटा मिलता है दिन के सब काम निपटाने के लिए, तो आपके पास में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
8: जी सर, ये तो ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग आवर्स की बात हो गई है। इसमें नींद की जब हम बातचीत करते हैं तो और चीज़ें हैं, एक तो खर्राटे मारते हैं, क्या उनकी नींद उतनी ही गहरी और रिलैक्सिंग होती है, और दूसरा जब वो खर्राटे मारते हैं उस कारण से दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर वो लोग नींद ना होने के कारण इरिटेशन है वो सभी चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या खर्राटे का भी कोई इलाज होता है, ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, इसका क्या कारण है?
9: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बात करनी चाहिए बेसिकली, कि हम लोगों को क्या लगता है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में ये मिथ है कि खर्राटे वाली नींद जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर खर्राटे मार के सो रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा खासा तो एकदम खर्राटे ले रहा था, इतना अच्छा सो रहा था। ये बात जनरली हम लोग आपस में, जो पब्लिक जनरल पब्लिक है वो ये बात हमेशा करती है आपस में, एकदम गहरी नींद में सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि खराटों वाली नींद अच्छी नींद नहीं होती।
8: ओके।
9: अच्छी नींद वो है जो बिना खराटों के आ रही है। खराटों वाली नींद बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं होती। जो व्यक्ति खराटे लेकर सो रहा है हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। वो खराटे किस लिए आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। खराटों का कारण क्या है?
8: जी,
9: खराटे एक फिजिकल फिनोमिना है। वो इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई
8: जी,
9: तो दिमाग ने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी बाकी शरीर के साथ। तो दिमाग जग गया, दिमाग सो रहा था, अचानक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जग गया, उसके सारे पार्ट अलर्ट हो गए, उसने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी। अब उस ऑक्सीजन की डिमांड के लिए वो छाती के ऊपर में प्रेशर सिग्नल भेजता है कि आप मुझे और हवा सोख के दीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो छाती है वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है और उस समय जो आवाज पैदा होती है वो खराटे हैं। तो बेसिकली वो ब्रेन डिमांड कर रहा है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। और वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसको जनरली जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ज्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है वो लोग बहुत खराटे मारते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। उनमें क्या होता है कि जो जीभ है जब वो सो रहे हैं वो पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक की नाम होता है, वो जीभ पीछे चली जाती है और वो सांस की नली के रास्ते को रोकने लग पड़ती है। इसलिए हवा फेफड़ों में ठीक ठाक नहीं जा रही। तो जब हवा ठीक ठाक फेफड़ों में नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही खून के अंदर में, और खून में जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसीलिए खराटे का फिनोमिना आता है। तो खराटों का मतलब यह है कि जब जब खराटे लग रहे हैं तो एक्चुअली ब्रेन जो है वो गहरी नींद में नहीं जा रहा है, वो एकदम कच्ची नींद में रह रहा है, वो नींद अच्छी नहीं है। खराटों वाली नींद बहुत बहुत खराब है। और जिन भी श्रोताओं को खराटे आ रहे हैं उनको जरूर अपना इवेल्यूशन कराना चाहिए। खराटे साथ वाले मनुष्य के लिए तो जो नुकसान, उसकी नींद तो डिस्टर्ब होती है बट आपकी नींद की क्वालिटी भी एक्चुअली खराब है और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो परेशान होता जा रहा है। और जो लोग रात को खराटे लेकर सोते हैं उन्हीं को दिन में डे टाइम स्लीपीनेस आती है। जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि बैठे बैठे नींद के झटके लग जाना, वो उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होते हैं जो रात में खराटों वाली नींद ले रहे हैं, जिनको रात में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपने टेस्ट करवाने चाहिए, आगे जांच करवानी चाहिए कि ये खराटे क्यों आ रहे हैं, कि इनका कारण नाक या मुंह में है या शुगर की वजह से हो रहे हैं या ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से खराटों वाली नींद, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर में नींद के सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं या फिर जीभ नीचे जा रही है या वजन बहुत अधिक है। खासकर मैंने जैसे बताया कि मोटे लोगों में खराटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वजन अधिक है उनमें खराटे निकलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खराटों वाली नींद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं।
8: जी, तो इसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है खराटे वालों से?
9: खराटे की नींद का न्यूरोलॉजी से संबंध है, बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी से संबंध है उसका। बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, साइकेट्री और न्यूरोसाइकेट्री से संबंध है उसका। नसों का काम है सिर्फ कि ब्रेन जो है वो रात को बार बार जाग रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम मरीज को वजन कम करने की सलाह देते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। उसके बाद भी अगर चीजें ठीक नहीं हो रही तो बाईपास बोल के एक मशीन आती है जनरली, वो यूज करने के लिए दी जाती है जो ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ में नाक से अंदर की ओर भेजती है ताकि रात की नींद गहरी हो। तो जब एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलने लग पड़ती है तो चीजें ठीक होने लग पड़ती है। बट मरीज से हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर ठीक रहे, उसका वजन कम हो, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये एक प्योरली मेडिकल इलनेस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें कि खराटे की दिक्कत आती है।
8: जी सर, दूसरी प्रकार की जो नींद है जिसमें हम सपने बहुत देखते हैं, कई बार ये कहावतें भी सपनों के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं या फिर वो जो मृत वेले के टाइम पे जो सपने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों की सपने ऐसे होते हैं वो नींद खराब कर देती हैं, हॉन्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। और वो सपने किसी को सुकून की नींद देती है तो किसी की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन क्या ये जो सपने हम देखते हैं उसमें भी हमारी नींद और नींद से जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलनी है वो हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी है लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, या जो भी हम फिजिकली यहाँ पे सो रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कहीं और हैं एंड देन वी आर नॉट, वो नींद फुलफिल नहीं हो रही है।
9: देखिए, सपने हमारी नींद का बहुत जरूरी हिस्सा है। मैंने जैसे आपको बताया कि नींद के दो पार्ट होते हैं, NREM और REM। तो REM स्लीप के अंदर में सपने आते हैं क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पुतलियाँ घूम रही होती हैं। तो उस समय जो भी दिन में या उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ है, जो दिमाग में स्टोर हुआ है, दिमाग उसी को आसान फॉर्म में रिलीज करने की कोशिश करता है, और वही चीजें जो है वो सपने की फॉर्म में आ रही है। आप जब जैसे कि आप किसी पुराने अपने मृत रिलेटिव की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों से, तो आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आपको सपने में वो व्यक्ति दिखाई देने लग पड़ा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी बात करी कि दिमाग में जो उस व्यक्ति की छवि थी वो एक्टिवेट हो गई, तो वो सपने में हमें वही छवि दिखाएगी और हम उस व्यक्ति के बारे में जो जो सोच रहे थे वो वैसा वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, बट उससे जुड़ा जुड़ा कुछ ना कुछ आपके सपने में आएगा। तब अब जो सपने, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि जिनको सपने में भूतों के सपने आते हैं वो डर जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग एंग्जाइटी की बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों को सपने अत्यधिक आते हैं, क्योंकि उनका दिन ब्रेन जो है वो सारा दिन बहुत बेचैन और बहुत कोशिश करता रहता है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है उनका ब्रेन। तो सपनों की फॉर्म के अंदर में आती है, जिसमें उनको ऐसे सपने आएंगे कि जैसे कि आपको बहुत बारी सपना आएगा कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा है, हालांकि अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा, फिर भी मुझे रात को ये सपना आता है कि मैं अपने एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, मेरी ट्रेन छूट रही है। वहाँ बहुत बारी सपना आता है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल चुकी है। इस तरह के सपने आते हैं, उससे उन सपनों से आदमी घबरा के आदमी की नींद खो जाती है। तो बेसिकली वो हमारी इनर एंग्जाइटी को शो करते हैं। तो अगर एंग्जाइटी के ऊपर में काबू पाया जाएगा वाए JPMR करके या दवाई के साथ में या मेडिटेशन के साथ में, जैसे भी एंग्जाइटी में जब कंट्रोल किया जाएगा तो सपनों की नींद जो है वो कम होने लग पड़ेगी और सपनों की क्वालिटी अच्छी होने लग पड़ेगी। मतलब आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। स्वप्न आने तो जरूरी है, स्वप्न आएंगे ही आएंगे, उसको बंद नहीं किया जा सकता। बट अच्छे स्वप्न आएंगे तो हमको दिन के समय वो याद नहीं रहेंगे, बट अगर डरावने सपने आए जिसमें हमारी नींद खुल गई अचानक से, तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहते हैं, अगर हमारे REM स्लीप वाले स्वप्न आ रहे हैं।
8: तो जिस तरीके से आपने एक स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है अनिद्रा के लोगों के लिए, तो इज देयर एनी मेथड या फिर कोई प्रिपरेशन जो ओवर स्लीपिंग या फिर ये सपने हैं, ये सभी तरीके के जो डिजास्टर्स हैं आज जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है, उसके लिए भी कोई तरीका है या प्रिपरेशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए?
9: ओवर स्लीपिंग के लिए तो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि सबसे पहले है जैसे नींद सोने जाने का समय निर्धारित करना है, वैसे ही उठने का समय भी हमें फिक्स करना है। पहला पॉइंट है ये कि हमें उठने का समय हमेशा फिक्स करना है, और उठने के बाद हमें बिस्तर को छोड़ देना है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बिस्तर पे नहीं रहना है। जब सोने जाना है स्लीप हाइजीन के समय, तब बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। तो जैसे ही आपको उठने का समय हुआ, आपको बिस्तर को छोड़ देना है, बिस्तर का त्याग कर देना। तीसरी चीज, रात के समय शराब या इन सब का सेवन नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, वो हमारे को हाइपरसोमिया इनको बढ़ा देते हैं या नींद को कम भी करते हैं, पर बहुत केसेस में वो नींद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम नशे से दूर रहें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चौथी, हाइपरसोमिया का हमें कारण निकालना पड़ेगा कि कहीं कोई शारीरिक परेशानी की वजह से, कोई मेडिकल इलनेस की वजह से तो नहीं आ रहा। अगर वैसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और जो लोग ऑलरेडी हाइपरसोमिक हैं, जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उन्होंने तरीका बताया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आधा आधा एक एक घंटा कम करते करते अपने आप को 2 से 3 महीने में नॉर्मल लेके आना है। बनिस्पत की आप एक दिन में कोशिश करें कि मैं सुबह 4 बजे कल से उठना शुरू कर दूं, वैसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि एक एक घंटे अपनी नींद को ठीक करते करते आप 1 से 1.5 महीने में अपनी नींद का समय को ठीक करें। और जहाँ तक स्वप्न की बात है, तो स्वप्ने जो जैसे मैंने बताया कि उसमें वो जो डरावने सपने और ये सब डिसऑर्डर आते हैं, वो एंग्जाइटी की वजह से बहुत बार होते हैं। तो हमें एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, हमें जड़ के ऊपर में काम करने की कोशिश करनी है। तो एंग्जाइटी के लिए जैसा डॉक्टर हर्षिता ने बताया था कि JPMR एक टेक्निक होती है, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, वो मैम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। ये हो गया, या फिर एंग्जाइटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन, सोने से पहले थोड़ा ध्यान लगाकर सोएं, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपके सपने जो हैं वो अच्छे स्वप्न रहेंगे और ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको सुबह याद रहें या आपकी रात की नींद में खलल डालें।
8: जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है जहाँ पर हम महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी इस प्रकार की स्लीप साइकिल्स को देखने को मिलता है, वो जो रेस्ट चाहिए, या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्लीपिंग की जो आदत पड़ जाती है, घंटों तक वो सोने की इच्छा होना या नींद करने की, तो इज इट समथिंग डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी की टाइम पे या महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है?
9: देखिए, प्रेगनेंसी के समय डेफिनेटली नींद कभी कुछ लोगों की बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि नींद जो है प्रेगनेंसी के समय भी हम 8 से 10 घंटे के बीच की नींद रखें, इससे ज़्यादा की नींद ना लें, ठीक है? क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के अंदर में दिन के सारे कार्य भी करने हैं, नॉर्मल कार्य भी करने हैं अपने, तो अगर आप नींद बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसका एज सच तो कुछ असर नहीं करता पटवाड़ता, पर जब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, क्योंकि उस समय जब बच्चा आएगा तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो उसके बाद में अचानक से आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो रात को भी जगेगा, रात को बहुत बार रोएगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो उस समय आपकी नींद जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय 15-15 घंटे सो रही हैं आखिर में जाकर, तो फिर जब अचानक से आपकी नींद 5-4 घंटे की रह जाएगी तो आप फिर बहुत डिस्टर्ब फील करने लग पड़ेगी, तो जैसे पोस्टमार्टम की इस तरह की बीमारियां सिर उठाने लग पड़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी के समय अपनी नींद को निर्धारित रखें, और पोस्टमार्टम समय में जो मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बच्चे ने तो रात को जगना ही है, तो मैं हमेशा ये माँ जो पोस्टमार्टम मदर होती है उनको सलाह देता हूँ कि आप अपने सोने का समय अपने बच्चे के साथ निर्धारित करें। जिस समय बच्चा सो रहा है आप उस समय कोशिश करें कि आप अपनी नैप ले लें, क्योंकि आपको कभी भी इकट्ठी 5 घंटे सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे को 2-2.5 घंटे में भूख लगनी ही लगनी है, और उसके बाद वो उठेगा, रोना शुरू करेगा, तो आपको जगना पड़ेगा। उसमें जो जीवन साथी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी वाइफ की मदद करे, कि जिस समय वाइफ आराम कर रही है तो उस समय बच्चे की देखभाल वो करे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड आजकल जैसा कि बोलते हैं कि सिर्फ महिला का नहीं पति का भी साथ में होता है, उसको भी साथ में पूरा का पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में अपनी नींद को ठीक ठाक रखना है, 8 से 10 घंटे सोना है, उसी शेड्यूल को सारी प्रेगनेंसी में मेंटेन करना है, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना, और जब पोस्टमार्टम पीरियड आना है तो उस समय कोशिश करनी है कि अपनी नींद को बच्चे की नींद के साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पहले 3-4 महीने सोने का समय बहुत कम मिलने वाला है।
8: जी, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशंस या फिर कोई बातें हैं जो नींद को रिलेटेड खासकर महिलाओं के लिए?
9: डॉक्टर हर्षिता अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो वो बता सकती हैं।
8: जी
10: हाँ, श्योर। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक रिलेटेड टू जब हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक स्लीप केयर है वो वुमेन की लाइफ में अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, उसका जो साइकिल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन जनरल से वहाँ पे PMS के सिम्टम्स अगर आते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी वजह से वुमेन की जो स्लीप डिस्टर्बेंस फील वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पीरियड्स के पहले जिनको हम PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स के दौरान स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, कि जैसे हीट पैड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो सकती है उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टीज आती हैं, चाय आती हैं, अगर वो उनका सेवन करें बेड टाइम पर तो वो बहुत रिलैक्सिंग, एक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। सो एक ये चीज़ हम स्पेसिफिकली वेमेन के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जब टाइम आता है मेनोपोज का, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो रात को वेमेन फील करती हैं कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से गर्मी लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी स्लीप का उस समय पर भी ध्यान रखें, अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखें, AC या फैन का यूज़ करें, और अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स करें, और एक एक्सरसाइज जो है वो उसमें स्पेसिफिकली ऐड ऑन करें, क्योंकि डेली एक मॉडरेट एक्सरसाइज से हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऐड कर सकते हैं।
8: थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर हर्षिता जी। हमारी जो नींद जीवन का सबसे प्यारी चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में एक संतुलन और एक सही तरीके से सोना और क्यों ज़रूरी है और उसको ठीक कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर आज प्रकाश डाला और हमारी श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को जागरूक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
9: जी शुक्रिया, धन्यवाद
8: जी। तो दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियाँ मिली हैं और जहाँ पे भी आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है या फिर हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी जिनसे भी आपको संपर्क करना है उनसे संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8

0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब है कार्यक्रम जीवन रोशनी का वक्त, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ की, रियल वैल्यूज की। और आज का टॉपिक है इंटीग्रिटी, यानी कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब हम क्या काम सही से करते हैं, वो है इंटीग्रिटी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम। हमारे पास हमारे एक्सपर्ट भी पधार चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, कि आज की दुनिया में जहां शॉर्टकट्स बहुत आसान है, वहां इंटीग्रिटी रखना एक्चुअली एक सुपर पावर जैसा है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है हितेश जी, जो एक ऑथर है, इंजीनियर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी है, जो आज के यूथ को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ के वैल्यूज सिखा रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन रोशनी। बहुत बहुत स्वागत है बीके हितेश जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आज जो तीव्र गति से हम भाग रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, तो इंटीग्रिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक सिंपल लाइन में?
1: फास्ट पेस लाइफ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो स्लो ही होती हैं। जैसे प्रकृति लें, नेचर लें, दिन लें, है ना, धीरे धीरे ही मौसम बदलता है। कुछ चीजों का शॉर्टकट कभी नहीं होता
0: जी।
1: और नहीं होना चाहिए। अगर उनका भी शॉर्टकट लेंगे तो फिर जो रियल रीजन, कारण पता नहीं लग पाएगा कि क्यों मुझे अजीब फील हो रहा है, क्यों बेचैनी आ रही है, एकदम से नेगेटिव फील हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लाइफ से इंटीग्रिटी चली गई है। जो आपने कहा कि शॉर्टकट्स आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत हैं
0: जी
1: डिस्ट्रैक्ट होने के। आप कुछ गलत करना चाहो तो आपके पास पूरा मेन्यू है। तो उन बातों में भी सेंस बनाकर रखना और वो करना जो सही है, उसके लिए हिम्मत तो चाहिए, उसके लिए बहुत इनर क्लैरिटी चाहिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, बट इट्स वर्थ इट।
0: मतलब इनर क्लैरिटी और हिम्मत,
1: यस,
0: ये दोनों हम ले सकते हैं इंटीग्रिटी को डिफाइन करने के लिए। अगर हम ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ईमानदार रहना चाहते हैं, तो ये दोनों कोर वैल्यूज भी चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, जी।
1: और ये अवेयरनेस चाहिए कि दुनिया तो है, दुनिया के पास बहुत से मेन्यू है। अगर आप भटकना चाहो, गलत करना चाहो, तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जांपल, जैसे आज के समय में, जैसे मैं देख रहा था कि डेटिंग वेबसाइट्स हैं
0: जी,
1: उसमें भी वैरायटी है। मैरिड लोगों के लिए अलग से है, सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैरिड लोग हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी है, तो ऑप्शंस तो बहुत है। मुझे तो वो एक लाइन याद आती है कि विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है जी बिल्कुल। तो आज के जमाने में बहुत सारे विकल्प हैं, पहले के जमाने में भी थे हमारे पास,
1: बिल्कुल थे,
0: लेकिन आज आसान है, इजी है।
1: आज इजी है, आज ज्यादा है। आप ये कह सकते हो कि जैसे कहा ना, मेन्यू कार्ड पे वैरायटी ज्यादा है, पहले कम थी, थी जरूर, बट आजकल टेम्पटेशंस और ज्यादा है ना। मान लीजिए किसी का कमजोरी है आइसक्रीम खाना, तो पहले आइसक्रीम थी, आज आइसक्रीम में कुछ ना कुछ मिक्स करके देंगे
0: जी,
1: तो वो ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। वो लगेगा कि अरे यू नो, फिर दुनिया में कहते हैं ना कि अरे एक्सपीरियंस तो हर चीज का होना चाहिए ना, आए हैं लाइफ में तो अनुभव करने आए हैं, किस चीज का अनुभव मुझे कभी नहीं करना, उसकी भी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वही इंटीग्रिटी है
0: जी। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपको इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ने के लिए
1: जी।
0: तो ये माइंडसेट है या हम इसे डेली हैबिट्स में भी ला सकते हैं?
1: ये दोनों है। मतलब जैसा माइंडसेट होता है, जैसे माइंड को हम तैयार करते हैं, वैसा ही हैबिट्स

0: में आता है और दूसरा भी कि जैसे हैबिट्स में आ गया तो हैबिट को भी चेंज करने से माइंडसेट चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल कि इट्स अ माइंडसेट, कि एक माइंडसेट होता है कि मुझे सही चीज करनी है, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे उस रिलेशनशिप की वैल्यू रखनी है, चाहे वो इंसान मुझसे पूछे नहीं पूछे, उसे पता लगे या नहीं लगे, स्टिल मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो उस रिश्ते की मर्यादा में नहीं आता है, उसकी गरिमा जो कहती है रिश्ते की रखने के लिए. अब दूसरी चीज है कि एक तो ये माइंडसेट हो गया कि चलता है एटीट्यूड ना, कि किसे पता लग रहा है, ये होता है कि कौन कौन पूछ रहा है. वही बात कि हमारे अंदर कुछ है जिसे अहम अहंकार कहते हैं, कि वो जानबूझकर ये गलत चीजें करना चाहता है, वो गिल्ट में रहना चाहता है, वो कहते हैं बाद में देख लेंगे, गिल्ट विल्ट फेस कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो जो फ्लो में है ना वो कर लेते हैं. दूसरा, जैसे ये तो माइंडसेट हुआ कि मुझे क्या करना है, मतलब मुझे कंज्यूम करना है या मुझे अपनी इंटीग्रिटी, मतलब अपनी सही चीज को बरकरार रखना है, जो अब मेरा जो कैरेक्टर है उसे सही रखना है. और दूसरा बिहेवियर हो गया, जैसे कि व्यवहार में आ गए कि किसी से ऐसे ही बात कर ली. कितना केसेस सुनने को मिलते हैं, मेरे पास कितने आते हैं कि कुछ मैरिड फीमेल्स हैं, वो कहते हैं कि मेरे पति बात करते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, हेलो हाय लिखते हैं. ये तो उनको पता है, पता नहीं कितना रियलिटी है, लेकिन ये भी तो एक आदत है ना, एक आदत ही तो है ये, कि ये भी तो जैसे बोलते हैं कि फिजिकल चीटिंग नहीं है तो इमोशनल तो है ही ना.
1: जी, और बिल्कुल, और इसको हमने स्वीकार भी कर लिया कि ये होता रहता है, शायद सब करते हैं, मैं भी कर लूँ तो क्या फर्क पड़ता है.
0: बिल्कुल, ये है. मतलब मान लीजिए वही इंसान ऑफिस में गया, अब ऑफिस में वैसे ही चार लोग यही कह रहे हैं कि अरे मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, तो वो एक वही बात कि जब अंदर क्लैरिटी नहीं है और अंदर पता नहीं है करना क्या है, तो फिर हम भी कैरिड अवे हो जाते हैं कि अरे मैं ऐसे इतना लॉयल बन के घूम रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे इतना शरीफ होकर चल रहा हूँ, नहीं दुनिया में तो ऐसे नहीं चल सकते, ये भी होना चाहिए. वो फिर वो प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है गलत संगत से.
1: तो अपने आप से पूछना चाहिए हमें कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, ऑनेस्टी से.
0: हाँ, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, ये दो क्वेश्चन तो पूछने बहुत जरूरी है कि ये मैं हूँ क्या असली में, वास्तव में मैं ये करना चाहता हूँ या आई एम जस्ट गेटिंग कैरिड अवे. ये मैं अपने आप से बार बार पूछता हूँ कि सच में मैं ये चाहता हूँ या कैरिड अवे हो रहा हूँ, किसी और की बात से प्रभावित होकर कर रहा हूँ. तो वो बहुत जरूरी है पूछना,
1: क्योंकि लगता है कि ये भी स्किल है और हम ये सब करेंगे तो हम दोस्तों के बीच में कूल लगेंगे.
0: कूल लगेंगे
1: नहीं तो फिर दोस्त बोलेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने तो लाइफ की कोई टेस्ट ही नहीं लिया.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ ये बहुत होता था, सभी इतना बोलते थे कि अरे छोटा बच्चा है क्या, इतना शरीफ नहीं होना चाहिए. आई रिमेम्बर मैं ऑफिस में था तो मेरे बॉस मुझे बोलते थे कि हितेश आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते. मैंने कहा हाँ सर, कहते बीच में ना एक दो बोल दिया कर
1: जी
0: कि काम निकल जाएगा. तो ऐसा मतलब वही है कि एक एक माइंडसेट वही बैठा हुआ है कि इट्स कूल अगर हम चीट करें, अगर हम एक्स्ट्रा पैसा गलत तरीके से कमाएं,
1: अगर हम बातों को बोलते हैं कि मोल्ड करके या तोड़ मोड़, हाँ मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर,
0: उससे बड़ी चीटिंग तो असली में कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज
1: उसको तो युक्ति कहते हैं.
0: हाँ, लेकिन वही बात है ना कि ये बहुत बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि ये बहुत सटल होती है.
1: ओके,
0: बाकी चीजें तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन ये जो है इसमें हमें लगता है कि हम ऐसी घुमाकर बात कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा एजेंडाज मिक्स हो जाते हैं हमारे. हमें लगता है कि हम बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस में काम ले रहे हैं, लेकिन असली में वो बहुत अलग डायरेक्शन में ये चीज़ जाती है कि मैनिपुलेट करना,
1: एक घुमाना बातों को,
0: एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है कि रिश्तों में आजकल ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है. और स्टैट्स बोलते हैं हर पांचवें इंसान में ये पाई जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कि गलती खुद की होती है लेकिन दूसरे पर ब्लेम करते हैं. कि मान लीजिए किसी ने कुछ कहा कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसी को ही गलत प्रूफ करना शुरू कर देते हैं कि अरे आप अपने आप को ठीक करो ना, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी है। तो वो भी बहुत एक मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि ये भी चीटिंग में ही आ सकता है
1: जी। और अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें, कोई स्टूडेंट को चीटिंग करने का मौका मिला, मार्क्स ले सकता है, अगर नहीं करेगा तो शायद फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
0: मुझे वो मूवी याद आ गई, 12th फेल, अगर आपने देखी हो तो उसमें वो जो बच्चा होता है, रियल स्टोरी है, तो वो 12th क्लास का एग्जाम देता है, गांव में था शायद बिहार के, तो उसमें पूरी चीटिंग, खुलेआम चीटिंग हो रही थी, और वो पुलिस वाला आए, बड़े ऑफिसर थे, तो उन्होंने उस लड़के को कहा, अब पूरी कहानी मुझे याद नहीं आ रही उसी को क्यों कहा, पर उसने उनको कहा कि चीटिंग कभी मत करना लाइफ, और वो बात ना उसके अंदर बैठ गई। अगले साल पूरी क्लास चीटिंग कर रही थी, उसने चीटिंग नहीं की, और आज वो IAS ऑफिसर बन गया, जस्ट बिकॉज उस दिन के बाद उसने एक चीज ठान ली कि मुझे चीटिंग नहीं करनी। वही मैं जो बात कह रहा था कि मैं जब जॉब करता था, मेरे पास बाकी स्किल्स अच्छी थी, पर आप कह सकते हो कि कम थी, इतना मैं ओपन अप होकर बात नहीं कर पाता था, जिस तरह का, जैसे कहा ना, लोग मिक्स हो जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो मैं नहीं, मुझे नहीं आता था, पर ऑनेस्टी ने, सच्चाई ने मुझे बहुत दूर तक हेल्प की लेकर जाने में। मेरा इंटरव्यू भी एक इसीलिए सिलेक्ट हुआ क्योंकि उनको एक ऑनेस्ट पर्सन चाहिए था, ना कि कोई स्किल चाहिए थी। तो एक आपका वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ना लाइफ में, हमें पता भी नहीं है। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, छोटा सोचते हैं कि ये चीट कर लिया। चीटिंग एक हैबिट बन जाती है, और कोई भी हैबिट जब बहुत डीप हो जाती है, जिसे एडिक्शन कहते हैं, कुछ लोगों को झूठ बोलने की एडिक्शन, कुछ लोगों को किसी से बात करने की एडिक्शन, चीट करने की एडिक्शन, एक बार वो एडिक्शन या बहुत डीपली आदत बन गई ना, तो उसे चेंज करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है
1: जी।
0: इसलिए जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई पैटर्न बने तो शुरू में ही उसे चेंज कर देना चाहिए। तो पौधा जब अगर अनवांटेड है, अगर वो ज़रूरी नहीं है, तो जितना छोटा हो उसे तभी निकाल देना चाहिए, अदरवाइज उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है
1: जी।
0: इसलिए चीट नहीं करना चाहिए,
1: नहीं करना चाहिए। आगे हम आपसे जानेंगे कि कैसे कोई भी संस्कार हो, हैबिट्स हो, अगर वो गलत है उसे कैसे हम निकालें, उसके बारे में आपसे जानेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे थे कि जब आप ऑफिस में थे, वर्क कल्चर में थे, तब आप अपने आप के साथ, उन वैल्यूज़ के साथ चल रहे थे, तो अगर जब हमें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तब सेल्फ डिसिप्लिन हो या इंटीग्रिटी हो, उससे कैसे मेंटेन करना चाहिए?
0: मुझे एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत उसने हेल्प की इस बात को प्रैक्टिस करने में, कि असली फ्रीडम का मतलब क्या है। असली फ्रीडम का मतलब वो नहीं है कि जो मन में आए करूं। हम ज्यादातर यही बोलते हैं ना, मेरा मन है जो मैं करूं, मैं फ्री हूं, आई एम अ फ्री पर्सन। रियल फ्रीडम इज डूइंग व्हाट इज राइट,
1: ओके,
0: वो करना जो सही है, चाहे फिर आपको कोई मॉनिटर कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आइडली ये मैटर नहीं करता, बिकॉज जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना कि मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे वापस मिलेगा, अगर मैं चीट कर रहा हूँ किसी भी लेवल पे, एक रिलेशनशिप में, एग्जाम में, तो किसी ना किसी तरीके से वापस आएगा। मैंने चीट किया, मैंने रूल को फॉलो नहीं किया, कुछ और किया, तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में आएगा जो रूल को फॉलो नहीं करेगा और मेरा नुकसान होगा।
1: मतलब कर्म बन जाता है,
0: कर्म बन जाता है, जो बोलते हैं ना कि समय बहुत बलवान है, ये ऐसी कहावतें नहीं बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है, कि जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, कोई और देख रहा हो या नहीं, यूनिवर्स देख रहा है, मेरे कर्म दुनिया में फैल रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई आंखों से देख रहा हो, आपकी एनर्जी से पता चल जाएगा और वही वापस हमारे पास आएगा। तो जो भी अगर कोई यूथ है सुन रहे हैं और कूलनेस में मान लीजिए चीट कर रहे हैं, सो थिंक अबाउट इट कि वो वापस मेरे ऊपर आया
1: तब कैसा लगेगा,
0: तब आपको कैसा लगेगा, और वो होगा ही होगा अगर हम कर रहे हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। मुझे एक लाइन याद आती है, किसी ने कहा था कि अगर कोई कहे ना आपको कि आपके कर्मों का हिसाब किताब आपको जरूर मिलेगा। और अगर मैं खुश महसूस करूं कि वाह
1: जी
0: कि वाह मेरे कर्मों का हिसाब किताब मिलेगा, तब इंटीग्रिटी है कि तब आप खुश हो ना कि दुखी हो कि अरे वापिस मिलेगा।
1: राइट तो ये चेक करना,
0: तो ये इनर डायलॉग बहुत जरूरी है। वही छोटे छोटे बिलीव्स होते हैं कि व्हाट इज रियल फ्रीडम, और ऐसे ही कि व्हाट इज रियल ब्यूटी। मतलब हम स्पेशली यूथ में या जॉब में परिवार में हम दिखावे के लिए करते हैं, वैलिडेशन के लिए करते हैं कि यू नो हमारा स्टैंडर्ड है, हम ये हैं, हम वो हैं, कूल है यू नो। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कूलनेस, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ यू नो हाई स्टैंडर्ड लिविंग। एक बोलते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं, कल्चर्ड लोग हैं, कल्चर का मतलब क्या है वो खुद से चेक करना बहुत जरूरी है। कि कल्चर्ड का ये मतलब है कि बाहर बाहर से तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है। अंदर वो है ट्रूथफुलनेस, नहीं तो स्टैट्स तो हर जगह है जो बहुत ऐसी चीजें बताते हैं सोसाइटी के बारे में जो अदरवाइज हम लोग बात करना नहीं चाहते उस बारे में। तो वो कौन कर रहा है, वो चीजें कौन कर रहा है, वो वही लोग कर रहे हैं जो ऊपर से कल्चर्ड दिख रहे हैं, वेल एजुकेटेड दिख रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ तो है जो इंटीग्रिटी नहीं है।
1: राइट, बहुत ही सूक्ष्म है और उसे सही तरीके से और अपने आप के साथ बैठ करके ही हम इसका समाधान खोज सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि हमारे अंदर है कि नहीं है इंटीग्रिटी।
0: जी
1: जी,
0: इसमें मतलब एक चीज आ जाती है ना कि हमें ऐसे एक बर्डन फील होता है
1: इंटीग्रिटी अगर नहीं है।
0: अगर इंटीग्रिटी है मतलब कि इतना सच्चा रहना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी,
0: बट अल्टीमेटली खुद को अच्छा फील होता है ये सब चीजें करने के बाद। जैसे हम खुश रहने के लिए कितना कुछ करते हैं, ग्रेटिट्यूड कर प्रैक्टिस करते हैं या घूमने जाते हैं, क्या नहीं करते, बट रियल हैप्पीनेस या अच्छा फीलिंग गुड, हाई सेल्फ इस्टीम तभी होती है जब हम अलाइनमेंट में है, जब हम सही चीज कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद की हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा फील होगा, मुझे बर्डन, मुझे गिल्ट, मुझे नेगेटिव ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं होगी अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। तो ये जैसे कहते हैं कि सच से मिला कुछ नहीं, बस मज़ा आ गया।
1: जी ओके ओके, तो कई बार मज़ा आने की जगह पे ना हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो सामने वाला जो है वो भी मेरे भी साथ सही करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ तो मुझे तुरंत वो फल मिलना चाहिए। तो अगर सामने वाला नहीं करता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं।
0: हाँ, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं गया शेर के पास, मैंने कहा शेर मैं तो आपको नहीं खाता हूँ तो फिर
1: आप मुझे मत खाओ,
0: आप भी मुझे मत खाओ। नहीं, ये जो दुनिया है ये इतना सिंपल नहीं है, इसे थोड़ा सा अलग लेवल से समझने की ज़रूरत है। और वो ये कि अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है ना, एक्चुअली में उसको कुछ एक कोई उसको प्रेरित करता है, कोई रोल मिला हुआ है, चाहे वो आप कार्मिक अकाउंट्स कहें, सेटल में जो हमारे पेंडिंग हैं, बहुत सी फोर्सेस एक साथ लगती हैं उस इंसान को वो करने के लिए जो वो कर रहा है। तो जब हम ये अवेयरनेस में होते हैं कि मुझे अपना कर्म बेस्ट करना है, जो मुझे जितनी समझ है उसके बेसिस पे करना है, ना कि दूसरों के बेसिस पे कि वो क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती, समझ आ जाती है, और जब वो बहुत डीप हमें महसूस होता है, रियलाइज होता है कि मुझे अपना कर्म श्रेष्ठ करना है, तब जाकर इंटीग्रिटी आ पाती है कि मुझे ऑनेस्ट रहना।
1: जी।
0: और कोई रहे या ना रहे, प्यार से रहे या ना रहे, अच्छे से उसे ले या ना ले, बट मुझे करना है।
1: जी, और आप ऑनेस्ट होते हैं और अगर आपके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है और उसके बारे में आप दूसरों को बोलते रहते तो फिर वो भी इंटीग्रिटी नहीं हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही बात कि मैं कर रहा हूँ तो अगर मुझे इसका भी एक ईगो आ गया कि मैं तो सच बोलता हूँ, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस बात को भी अपने ईगो में ले लिया। हमने कहा मैं तो सच बोलता हूँ, बाकी सब झूठे हैं। नहीं, तो फिर ये क्या किया हमने, हमने बाकी चीज छोड़कर इसको अपना आइडेंटिटी बना लिया। करना वो भी नहीं है कि मुझे सिर्फ खुद को देखना है और बस ये याद रखना है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो आज नहीं तो कल इस इंसान पर फर्क पड़ेगा मेरे बिहेवियर से, मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं कि वो आपको कहेंगे कुछ नहीं पर आपके एक एक बिहेवियर से उनको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे सच बोल सकते हैं जैसे ये इंसान बोल रहा है सबके सामने। तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे सीखने लग जाए, आपको बोलने की भी जरूरत
1: नहीं। राइट जी, अभी ये सोशल मीडिया पर बात करते हैं। आज के यूथ तो सब सोशल मीडिया पर ही है, वहाँ पर हम परफेक्ट लाइफ देखते हैं, और रियल और फेक कैसे हम पहचाने फिर?
0: ये बहुत, एक तो वही बात है कि थोड़ा सा इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैं सोशल मीडिया पर क्यों जा रहा हूँ। अभी ही किसी बहुत फेमस कोई कॉमेडियन है, उन्होंने बहुत बिल्कुल क्लियरली बोला कि जो हम सामने आपको दिखाते हैं ना, वैसे हम असली में होते ही नहीं है। कि मैं अपना रियल सेल्फ आपको दिखा ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं ये बात, लेकिन वही बात कि हम इतना कैरिड अवे हो जाते हैं, आसपास फ्रेंड्स भी वही कर रहे हैं और दुनिया में जो देख रहे हैं मूवीज में देख रहे हैं, तो वो बहुत ब्लरी हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है, उसके लिए वही इनर कंपस सही होना बहुत ज़रूरी है। कि वैसे तो सही बताऊं तो अगर मैं खुद की भी बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर, मैं खुद बिल्कुल सच्चा नहीं बोल सकता हूं जो बात है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप 100% तो नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर सकता, तो कितने लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए, बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, वायरल होने के लिए
1: सोशल मीडिया का यूज करते हैं,
0: तो वो तो पता ही नहीं क्या करते होंगे, रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग है चीज़ें। तो अगेन बहुत अवेयर रहना है कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ, सब खोखला है, कुछ भी रियलिटी है ही नहीं। आज के समय में वही बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम बस देखते हैं और मान लेते हैं उस बात को, और अभी तो AI है, तो अभी तो
1: और भी मुश्किल है,
0: और भी मुश्किल
1: हम
0: है,
1: इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी,
0: सीधा वीडियो देखा, स्क्रीनशॉट देखा, चैट देखा, वॉइस नोट सुना, सीधा जज कर लेते हैं वन साइड ऑफ द स्टोरी, कुछ भी रियल नहीं है। सीधी बात तो माननी ही नहीं है किसी की, कोई भी, अगर आपका कोई रोल मॉडल भी है सोशल मीडिया पर और वो कुछ भी कहते हैं, सीधी बात नहीं माननी है, अपनी लाइफ की सिचुएशन को देखना होता है, फिर फैक्टर्स को देखना होता है, फिर उस बात को देखना है, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा मान लो उस बात को।
1: जी बिल्कुल, और जब पीयर प्रेशर में होते हैं हम, तब कई बार हम अपनी इंटीग्रिटी को साइड में रखते हैं, क्योंकि हमें नो कहना टफ लगता है। तो उससे आसान कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया था अपने स्टूडेंट लाइफ में या अपने वर्किंग लाइफ में?
0: वो बोलते हैं ना कि अकल बादाम खाने से तो नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है। तो ऐसा है कि मैंने भी गलती करके सीखा और यही ऑब्जर्व किया कि ये जो पीयर प्रेशर हम कहते हैं, ये जो डर है टू बी लेफ्ट अलोन कि सब छोड़ जाएंगे मुझे, और जो सही चीज़ है करने के लिए, इवन किसी इंसान को मुझे छोड़ना भी पड़े, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो सही काम करते हुए अगर कोई इंसान मुझसे दूर भी जा रहा है, मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं,
1: अच्छे दोस्त आएंगे,
0: वो दोस्त समझेंगे और फिर से वापस आएंगे, अगर वो सच में आपके दोस्त हैं, वो सच में प्यार करते हैं तो। लेकिन जब हम इसका ऑपोजिट करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं कई बार, अपनी बात नहीं रखते, और हमें डर लगता है कि अगर मैं इस रास्ते पर चला, मैंने सच बोला या कुछ भी किया, तो पता नहीं वो कैसे लेंगे, जैसे फैमिली में होता है, तो फिर हम अवॉइड करते हैं। ये असली में ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में और ख़राब करता है, है ना, फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट करता है। उसके लिए एक ही चीज़ याद रखनी है कि पहले तो चेकिंग मुझे सही चीज़ करनी है, व्हाट इज़ राइट, जो ट्रुथफुल है, जो सबके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए, सभी के लिए। जब वो करना है मुझे, तो फिर जो उसमें अलाइंट होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और जिसमें नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेट गो भी प्रैक्टिस करना है,
1: और ईमानदारी से करना है सारी चीज़ें।
0: बस करना ईमानदारी से है, अपने आप को खो नहीं देना है दूसरों को खुश करने के चक्कर में।
1: वो भी अपने आप के ऊपर ईमानदारी नहीं होगा अगर हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे एक वो बहुत फेमस बुक है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, उसमें जो नर्स है उन्होंने लिखी, तो उनका काम ही ये था कि जो लोगों का केयर करते थे वो पेशेंट्स का, जो जिनके पास 6 महीने 1 साल ऐसी बीमारी थी उनको, लाइक कैंसर, तो वो उनसे पूछती थी कि व्हाट इज़ योर मोस्ट यू नो फर्स्ट रेग्रेट इन योर लाइफ, सबसे ज़्यादा किस बात का रेग्रेट है। तो सबसे पहला रेग्रेट जो उन्होंने देखा लोगों का, सबसे ज़्यादा रेग्रेट होता है नॉट एबल टू डू द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू, आई वॉज मोर इन टू पीपल प्लीजिंग, वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं ये सोचता रहा कि
1: लोगों को कैसे खुश
0: रखना है, अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी बात रखने में डर लगता है, जजमेंट्स आती हैं, क्रिटिसिज्म आता है। लेकिन हुआ क्या फिर, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेशंस में बढ़ता रहता है, और इसीलिए फिर हम कहते हैं इनको एकदम से इतना गुस्सा कैसे आ गया, एकदम से हाइपर कैसे हो गए। वो बात नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेशंस कैरी हो रहा है इतने वर्षों से, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए, जो सही है, जो इंटीग्रिटी है। इस वजह से वो जब दुविधा आती है तो वो बढ़ती रहती है और केओस क्रिएट कर देती है।
1: राइट, तो क्या हम छोटे छोटे झूठ नहीं बोल सकते? झूठ तो नहीं, कोई युक्ति रच ले, कोई एक्सक्यूजेस बहाना देते हैं क्या ये हमारी इंटीग्रिटी को धीरे धीरे डैमेज करता है?
0: हाँ, मतलब बोलते हैं कि एक इंसान एक दिन में 11 झूठ बोलता है, एक रिसर्च कहती है, और वो कहती है कि जब दो लोग नए मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो पहले 30 मिनट में एक झूठ जरूर बोलते हैं। अब हम क्या बात करते हैं, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कितनी सैलरी है एक्सेट्रा, तो उसमें एक आधा झूठ बोल ही देते।
1: सैलरी पे तो बोल ही देते।
0: सैलरी पे, एज पे,
1: एज पे,
0: हाइट पे
1: जी,
0: हाइट एक आधा इंच ज्यादा बताते हैं, एज 1-2 साल कम बताते
1: जी, so, बिल्कुल।
0: अब ये क्यों है? ये इसीलिए है, इतने वर्षों का ये प्रोग्रामिंग है कि हमें आदत है छोटा मोटा भी झूठ बोलने की। छोटे बच्चे बोलने लग जाते हैं, आजकल छोटे बच्चे बोलने लग गए, पहले उन्हें इतना बोलते थे कि इतने इनोसेंट होते हैं, आजकल वो इनोसेंस भी कम हो रही है ना? तो कहने की बात वही है कि ये भी एक एडिक्शन से कम नहीं है। और फिर वही बात की
1: छोटे छोटे झूठ, मतलब जैसे हम किसी से कोई बात एग्जैक्टली बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अभी बता देंगे तो शायद वो रिजल्ट सही नहीं आएगा।
0: आपने जो ये बात कही ना कि अभी बता देंगे, इसमें एक लाइन मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। किसी ने एग्जांपल दिया कि उनकी एक फ्रेंड ने ना कुछ प्रोग्राम किया सिंगिंग का, एंड बिल्कुल अच्छा नहीं गाया उन्होंने, तो कहते कि वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैंने कैसा गाया, तो कहता अब सोचो अब क्या कहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वाह मतलब गुड टू सी यू, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, ये सब ठीक है। कहते मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपने बुरा गाया, मैंने ओवरऑल कहा कि लुक एट यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट राइट अवे, तभी आपको ऑनेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, तब आप थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोलना, तब आपको क्या करना है, जनरल कुछ वैसे बात करनी है, और बाद में जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड में हो तब आप सच बोल सकते। ना
1: जी।
0: तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ट्रुथफुलनेस तो होनी चाहिए बट कल्चर्ड ट्रुथफुलनेस, है ना, सत्यता के साथ सभ्यता होनी जरूरी है कि झूठ भी नहीं बोलना आपको। कभी कभी मैं समझता हूँ होता है कि मान लीजिए कोई सीनियर है, वो कुछ बोल रहे हैं कि ये कैसा लगा, ये मैंने कैसा बनाया, मम्मी ने पूछा, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमने तो सीखा है सच बोलना, नहीं, आपको बहुत प्यार से बोलना है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना कुछ किया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में तब आप बोल सकते हो कि इसे थोड़ा बेटर कर सकते,
1: राइट।
0: ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जब आप ये आदत डाल लेंगे ना तो आप शिफ्ट देखेंगे। रिसर्च बोलती है कि जैसे एडिक्टेड लोग होते हैं ना
1: जी,
0: तो उनका 12-step प्रोग्राम होता है, उसमें एक स्टेप होता है कि आपको ना सच बोलना है, सच बोलना है, पूरा सच बोलना है। आपने जैसे रिकवरी में होते हैं वो, तो आपको सच बोलना है कि आपने फिर भी कहीं से कुछ कंज्यूम किया क्या, फैमिली से सच बोलना है। तो उस रिसर्च में मिला कि जब जब हम सच बोलते हैं ना तो हमारे ब्रेन में स्पार्किंग होती है।
1: ओके।
0: स्पार्किंग इन द सेंस कि यहाँ जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो क्षमता है निर्णय करने की, वो डेवलप होती है, न्यूरो प्रोग्रामिंग होती है नई। तो जब हम धीरे धीरे धीरे धीरे हर बात पे सच बोलना शुरू करते हैं तो न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं, पावर बढ़ जाती है, माइंड पावर। और यहाँ जैसे ग्रे मैटर जो बोलते हैं ब्रेन में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो जिसका ज्यादा होता है, कहते हैं उनकी बुद्धि, उनकी जजमेंट्स पावर ज्यादा होती है, तो वो ग्रे मैटर बढ़ता है इन सब चीजों से, अगर आप साइंटिफिक वे में समझे। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में सच बोलना बहुत जरूरी है, ये एक आदत है। जस्ट लाइक एडिक्शन, डी एडिक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन हो चुकी है, तो उसे ठीक करने के लिए छोटे छोटे को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, बाहर से भी अंदर से भी, दोनों तरह से, व्यवहार में भी और माइंडसेट में, दोनों जगह से चेंज करना। तो व्यवहार में क्या चेंज कर सकते हैं कि आज ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच
1: बोलूंगा जी। ओके। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि आप सच तो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, मतलब डाउट करते हैं लोग, इतना भी कोई सच नहीं बोलता है, बड़े आई सच बोलने वाले, तो उस समय हमें कैसा माइंडसेट रखना है?
0: मतलब ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए मैं सच में जेन्युइनली सबके लिए अच्छा सोचता, लेकिन दुनिया ऐसी है वो कहेगी कि आपका कोई मतलब होगा इन सब, है ना। मुझे ना एक कविता याद आती है, बहुत बहुत फेमस है, जो हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की, डू इट एनीवेज
1: जी।
0: तो वो इतनी अच्छी है, आप ये पोएम आप पूरा पढ़ेंगे ना आपको इतना क्लैरिटी मिलेगी। तो उसमें एक लाइन है कि If you are kind to someone, if you are honest, sincere, so see, उसमें क्या है, पहला if you are kind, अगर आप अच्छे हो तो फिर भी लोग आपको कहेंगे, people may accuse you of selfish ulterior motives, ना वो कहेंगे कि इतना, कहते नहीं ये इतना प्यार से क्यों बात कर रहे थे, इनको क्या चाहिए मुझसे,
1: कुछ तो होगा,
0: कुछ तो है ना। But be kind anyways, है ना। If you are honest एंड सिंसियर, पीपल में डिसीव यू, मतलब उनको पता है ये सच बोलते हैं, हो सकता है आपकी सच्चाई का फायदा उठाए हो, आपने सच सच सब कुछ बता दिया, वो कहीं जाकर कुछ बता दें,
1: राइट,
0: फिर भी बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर एनीवेज, है ना। ऐसे ही नीचे है कि इफ यू डू समथिंग गुड एंड समवन विल कम एंड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट, बट Do good anyways. क्यों? क्योंकि जो last line है ना वो बहुत सुंदर है कि जो final analysis होगा, it is between you and God. It was never between you and them anyways.
1: वो चार लोगों के बीच में नहीं होगा।
0: वो चार लोगों के बीच में।
1: क्या करेंगे?
0: हाँ। वो final analysis कहो या final का wait ही क्यों करें? Rose जो हमारी जो मन की संतुष्टता है, खुशी है, तो वो एनालिसिस तो मेरे और वही परमात्मा या मेरे कार्मिक अकाउंट के बीच है ना। तो इट वाज नेवर बिटवीन मी एंड देम एनीवेज,
1: मी एंड मी होगा,
0: मी एंड मी, मी एंड गॉड, कि मुझे अपने लिए करना है
1: जी।
0: तो जो आपने कहा कि आप सच बोलोगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं सच नहीं इतना ये वो फिर अपने तरीके से बोलेंगे ना, वो उनकी प्रोग्रामिंग है, वो उनका माइंडसेट है। कोई भी इंसान, आप किसी इंसान के पास जाइए जो गलत करता है, गलत मतलब गलत खाता है, नॉनवेज खाता है या अल्कोहल लेता है, अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो वो तो आपको कन्विंस कर देगा कि आपको भी लेना चाहिए,
1: है ना? क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है लोगों के साथ।
0: वो आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कि आप भी चकरा जाएंगे।
1: वो रिश्वत लेने के टाइम में वैसा ही होता है।
0: यस,
1: ये ले लो, अब सैलरी से घर नहीं चलता।
0: हाँ।
1: ये चाहिए, आज के एक्सपेंसेस देख लो, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, आज तो सब CBSE में पढ़ते हैं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहिए ये सब।
0: तो फिर वही बात है ना कि फिर मुझे क्या करना है, वो वही क्लैरिटी होनी जरूरी है। क्योंकि लोग तो आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप गलत काम करेंगे।
1: यस, आजकल ऐसा है,
0: आजकल ऐसा,
1: जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं तो अभी एज ही क्या है।
0: हाँ, फिर वही बात, फिर वही वो कितना सुनने को मिलेगा कि इनका ना कुछ
1: गड़बड़ है और ये कुछ तो लाइफ में ब्रेक डाउन हुआ होगा,
0: कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो चाहिए इनको, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, फ्री में क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो वो उनका फिर थॉट प्रोसेस है, उसमें हमें नहीं
1: जाना। लेकिन इंटीग्रिटी से आपको संतुष्टि मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो आपको ये अपनाना चाहिए।
0: यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू। ये बात मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ शुरू से कि मेरा पर्पस है वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि कोई और क्या कह रहे हैं। और वो ओपिनियन भी वो लोग बोलते हैं आपको गलत भी, वो जो उनमें नहीं होता ना वो उनको इरिटेट करता है।
1: ओके ओके, इसीलिए वो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट
0: करने की कोशिश करते हैं। दो तरीके हैं ना, जो चीज मुझ में नहीं है अगर मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे किसी में वो चीज दिखी और मुझे दिखा कि वो अच्छे से कर रहे हैं तो या तो मैं इंस्पायर हो जाऊंगा कि मुझे भी ये करनी है, वो मुश्किल है, वो मेहनत है ना,
1: या फिर जेलसी,
0: या फिर क्या करे कि मैं चार लोगों को उनकी बात बताकर मैं उनको पुल डाउन करने की कोशिश करूं कि मेरे लेवल तक आ जाए। ये अहंकार का काम है।
1: अगर ये ऐसा हो रहा हो आपके लाइफ में, चल रहा हो, तो फिर इंस्पायर करते हुए अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रहते हुए आपकी अच्छाई को नहीं छोड़ना, ये बहुत चैलेंजेस है।
0: ये चैलेंजिंग है बट इट्स वर्थ इट। चैलेंजिंग क्या नहीं है लाइफ में, दूसरों की चुगली करना कोई कम चैलेंजिंग थोड़ी है। उसमें भी मेहनत लगती है।
1: बट आपको इजीली वैसे लोग मिल जाते हैं रादर देन कि वो शायद आपको दुख दे रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपने आप को स्ट्रांगली मोटिवेट करते हुए उसको पार करते हो।
0: यस, एंड सिर्फ ये बात नहीं है, अगर ये आदत है तो हर जगह वो आदत रहेगी। मान लीजिए हम डीमोटिवेट करते हैं, दूसरों को गलत बोलते हैं, तो मैं कभी सेटिस्फाई रहूँगा ही नहीं, मैं पूरा दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँगा, ऐसी आदतें अपनाऊँगा जो अनहेल्दी है, तो वो भी मुश्किल है। वो कौन सा आसान है, बीमारी के साथ रहना, इरिटेशन के साथ रहना, गुस्से के साथ रहना, जो करते हैं उनसे पूछो, इतना आसान नहीं होता ये सब करना।
1: सही बात है, इसीलिए सिंपल रहो वैल्यूज के साथ। मान लीजिए कोई अपनाना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है इंटीग्रिटी को फिर से, बहुत सारे गलत काम हमने किया है, डिसीजंस लिया है, वैल्यूज भी बहुत सारे गलत चुना है, तो फिर कैसे रीबिल्ड कर सकता है?
0: बस एक ही चीज़ करनी है कि आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आप मुझसे पूछोगे जैसे जैसे मैं गलती करता था, सीखता था अभी भी, तो फिर खुद को फिर से उठाकर कहता था कि चलो अब से एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हैं, जो हो गया हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, खत्म, उससे मैंने सीखा है, अब मुझे सब कुछ सही करना है। और सब कुछ सही करना मतलब बिल्कुल बाइट साइज में अपने टास्क को डिवाइड कर लीजिए कि आज क्या करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये मैं सबको ही कहता हूँ कि आज से काम करो प्रैक्टिकल डूएबल कि आज ना मुझे एक भी झूठ नहीं बोलना। आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ माइंड झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होगा, बट आप पकड़ लोगे कि नहीं आज झूठ नहीं बोलना। फिर आपको तरीका आएगा कि सच भी बोलना है लेकिन तरीके से बोलना है, सभ्यता से बोलना है, प्यार से बोलना है, ये कर सकते हैं। दूसरा वही खुद से बातचीत करते रहना है कि मैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तो कुछ भी काम करना है तो ये चेक करना है ये उससे अलाइनमेंट में है। अगर मैं इंसान बनना चाहता हूँ विद द पावरफुल माइंड, पीसफुल माइंड, क्लियर माइंड, तो रील्स देखना क्या ये अलाइनमेंट में है, 2 घंटे सोशल मीडिया पर रहना। मैं चाहता हूँ कि मैं लॉयल पर्सन बनकर रहूँ, पहले जो हुआ छोड़ देते, लॉयल बनूँ तो क्या किसी से बात करना चाहिए मुझे, चेक करना है क्यों क्यों चाहिए, फिर अपने आप को बताना है कि नहीं चाहिए ना, ये मेरे मुझसे अलाइन नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ कुछ। सबसे बड़ा आज जो पीस ऑफ माइंड का जो ऑपोजिट है वो ये है कि हम ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो खुद को कहना पड़ेगा कि बस हो गया मेरा सर्च, हो गया डन, अब मुझे पीसफुल कंटेंटेड फील करना है
1: जी
0: अंदर से ही, और किसी से बात करके कुछ भी करके गलत करके मुझे नहीं मिलने वाला है, नहीं करना है मुझे। छोटी सी बात कि आज एग्जांपल, आज झूठ नहीं बोलना, आज पूरा दिन मुझे किसी से बात नहीं करनी, आज मोबाइल को 3 घंटे मुझे बंद रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और उस समय पर मुझे खुद से बात करनी।
1: जी बिल्कुल, तो खुद से बात करती हुई आपको आंसर्स मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, टूल्स आपके पास है, आपने क्वेश्चन अपने आप से पूछा, आंसर ऑलरेडी हमारे अंदर है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आपको मिलेंगे, बस उसको नॉक नॉक करने की ज़रूरत है, वो अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा।
1: लेकिन आपने बोला कि डेली एक प्रैक्टिस करनी है, या फिर अपने मन को ये बोलना है कि आज मैं ये करती हूँ।
0: हाँ,
1: अगर मैंने सोच लिया कि मैं पूरे साल भर झूठ नहीं बोलूँगी तो शायद नहीं होगा,
0: थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा माइंड एक साल की बात छोड़ देता है। मतलब रोज करना चाहिए, माइंड को क्लैरिटी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, और खुद पे काम करना, ये जो आदतें गहरी आ गई हैं वो उसको सफाई रोज करनी पड़ेगी, तो अपने ऊपर काम करना इट्स एन एवरीडे थिंग।
1: जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल यूथ बहुत सारे जैसे पोर्न एडिक्टेड हैं, और क्योंकि हम बात करें इंटीग्रिटी के बारे में, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब जो काम हम करते हैं ईमानदारी से, तो वो चाहकर भी शायद इस हैबिट को नहीं मतलब इसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, रिबिल्ड नहीं कर पा रहे, तो कैसे कर सकता है, क्या स्टेप यूथ उठा सकता है?
0: एक तो वही बात कि जो भी ये हम एक्सटर्नल, पहले तो सबसे पहले तो एक काम करना है कि अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है,
1: फोन की नोटिफिकेशन एंड ये सब।
0: हाँ, okay. मतलब आजकल जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, और तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है पर इतना जितना मैंने देखा उसमें ऐसी ऐसी वीडियोस लोग डालते हैं, है ना, और वो हर बार रियल भी नहीं होती। मतलब कोई लड़की की प्रोफाइल बनाकर मॉफ्ट करके उसे चेंज करके करते हैं, और अब कुछ करने को नहीं है, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ से एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, तो फिर वो जानबूझकर बीच में एक आधी ऐसी वीडियो डाल देते हैं जिससे ट्रिगर हो जाता है। अब वो ट्रिगर हुआ तो फिर वही बात कि इंसान गूगल क्रोम खोलता है और वो शुरू करता है। पहली चीज़ तो वही कि ट्रिगर्स को जितना अवॉइड हो उतना पॉसिबल अवॉइड करना है, और उसके लिए पहले तो इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए ना, खुद के वेस्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि हम घंटों घंटों देख रहे हैं, है ना, पहले तो ये। दूसरी चीज़ कि ये भी एक ट्रैप है, ये भी रियलिटी नहीं होती है जो दिखाई जाती है, और उस वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों
1: रियल लाइफ में
0: प्रॉब्लम आती है, और आजकल जितने केसेस सुनने को मिलते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। मूवी देखी मैंने, जो भी नई मूवी है, एक मूवी आई थी एनिमल, और जो भी लेटेस्ट मूवीज आई ध्यान से देखो तो उसमें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, शुरू से किया जाता है एक फीमेल को, तो चलो मूवी अच्छी बनानी है एक आइटम सॉन्ग डाला और ये किया वो किया, धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा माइंड बिल्कुल करप्ट हो गया है, हमें लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो
1: ऑब्जेक्ट है,
0: ऑब्जेक्ट है, है ना। तो उस वजह से ये गैप आना शुरू हो जाता है, और रियल लाइफ में जब ऐसा होता नहीं, उनको कुछ ऐसा मिल नहीं पाता, तो फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं।
1: ओके,
0: तो ये भी समझना जरूरी है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो लोग मिलकर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया वाले करते हैं जानबूझकर ऐसी वीडियो, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स वाले जानबूझकर, अच्छा स्कूल के बच्चे हैं चलो ऐसे करो, कुछ वेब सीरीज बनाते स्कूल के बच्चों के लिए, बच्चे तो देखेंगे कि अरे स्कूल जैसा है, कॉलेज वालों के लिए कॉलेज, ऑफिस वालों के लिए ऑफिस, तो उनको गेम समझ आ गई है कि लोगों के पास ज्यादा करने को कुछ नहीं है, इनको भर भर के कॉन्टेंट दो। तो ऐसे ही फिर वो पोर्न एडिक्शन का हो जाता है। तो अगेन एक पर्पस, एक क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है।
1: लोग खाली हैं अंदर से, आपको लगता है इसी कारण ये सब हो रहा है?
0: इसी कारण से भी खाली और खाली होते जा रहे हैं, ये लेयर ऐड कर रहा है, रियल रीजन है खाली है इस वजह से ये चीज चल रही है,
1: वाइस वर्सा।
0: जैसे मैंने कहा कि लगते सब अच्छे हैं लेकिन कितनी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और कहीं भी कभी कभी तो मुझे लगता है 90% तो बातें बाहर आती नहीं है, पर रियलिटी में सोसाइटी में परिवार में क्या चल रहा है, कोई भी आजकल कहते हैं कोई सेफ नहीं है, कोई बच्चा सेफ नहीं है,
1: तो अंदर से सब खोखले हैं, मतलब वैल्यूज है नहीं।
0: हाँ, और वो मानने को रेडी नहीं है
1: कि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं। हाँ, ओके।
0: मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक पब्लिक प्रोग्राम में इसी बारे में बात कर रहा था
1: जी।
0: कि हम कहते हैं कि इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ऐसे प्योर नहीं होना चाहिए, फिर मैंने उनको यही सब स्टैट्स बताए कि फिर ये कौन लोग हैं जो 70% पीपल वॉच पॉर्न, ये स्टैट्स है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये कौन लोग हैं फिर देख रहे हैं जो हमें से ही है। तो एड्रेस उसको करना जरूरी है, और ये अवेयर होना जरूरी है कि ये मेरे अंदर के खालीपन को दूर नहीं करेगा और खाली करेगा। खालीपन दूर करने वही बात कि जितना ये छोटी छोटी बातों में चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सैड है, परेशान है, दुखी है, गलत आदतें हैं, माइंड से अपने आप से दूर है, तो फिर ये हर तरह की वो जो हमने शुरू में बात की कि मेन्यू पूरा है, जितना डिस्ट्रैक्ट होना चाहो हो सकते हो, इतना कंटेंट है आज ये नेटफ्लिक्स पर सिर्फ कि 100 साल अगर आप 4 घंटे भी देखो ना तो भी खत्म नहीं होने वाला, सिर्फ नेटफ्लिक्स, बाकी तो छोड़ ही देते, तो वो उसका कुछ अंत नहीं है। हमें लगता है कि ये मूवी देख लें, वो मूवी देख लें, ये देख लें, नहीं कुछ रखा नहीं है उसमें। अपनी स्किल्स पर काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, वो बहुत ज़रूरी है
1: जी। तो आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अंतिम मोड पर तो हम पहुँच चुके हैं, कि ऐसे कौन सी आदत है जो हम आज से अपनाएं ताकि अगर हम अकेले भी रहें तो भी हम मौज में रहे, वो अलग बात है, लेकिन हम सही काम करें, सही तरीके से काम करें।
0: सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज के समय में है वो है कि ज़रूर टाइम निकालना चाहिए हमें खुद के लिए, जो मैं करता हूँ रोज़ 1 घंटा 2 घंटा अपने टेरेस पर जाता हूँ और खुद से बात करता हूँ।
1: सेल्फ टॉक
0: बिना किसी चीज़ के,
1: बिना कोई फिल्टर के,
0: बिना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के, मतलब कोई उस समय मुझे ना कुछ म्यूजिक सुनना है, ना कुछ वीडियो देखना है, ना कुछ कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा नोटबुक पेन, वॉक किया और खुद से बात की। चाहे आप कितना भी ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो इस समय, लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही हो, अंदर कोई बात खा रही हो, गिल्ट हो, अनकंफर्टेबल हो,
1: सब कुछ लिखना है या बात करनी है अपने आप से,
0: दोनों, सब कुछ लिखना है और ये आदत बनानी है जो मैं पिछले कुछ दिन से दोबारा से शुरू किया है, पहले भी करता था, रोज 1 या 2 पेज जरूर लिखने हैं, व्हाटएवर,
1: क्या बात करनी है अपने से, क्या पॉइंट्स ऐसा होना चाहिए,
0: मेरा आज का दिन कैसा गया,
1: okay.
0: आज मैंने क्या किया, आज क्या है, आप इतना भी लिखोगे ना अपने आप, आप देखना आपकी गाड़ी ऐसे स्टार्ट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद को रोकना पड़ेगा कि बस हो गया एक बार, बस कि आज का मेरा दिन कैसा गया। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत सी बातें, थॉट्स जो है वो वर्ड्स में आ जाती है। जैसे कभी कभी हम कुछ गाना सुनते हैं ना तो हमें क्यों अच्छा लगता, हम कहते हैं सेम फीलिंग मेरी थी, बस मुझे वर्ड्स नहीं पता थे, तो वो इट्स अ गुड फीलिंग। तो जब आपके अंदर वो थॉट्स चल रही है, जब आप वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट करते हो ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसलिए खुद से बात करें बिना किसी चीज के, खुद को चाहे वो अनकंफर्टेबल हो कितना भी, पर अवॉइड नहीं करें, भागे नहीं। भागना, अवॉइड करना इट्स एन ईजी एंड लेजी थिंग, वो मुझे नहीं करना, मुझे खुद को ऑनेस्टली चेक करना है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें क्या होता है, आपको इतना कुछ दिखेगा कि जैसे मैं खुद को बोलता हूँ हितेश ये तो फिर ईगो है ना, हितेश ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो फिर आप सोच ही सही नहीं है आपकी, ये तो ईगो आ रही है, आप क्यों ये चाहते, मतलब आपको इतना लेयर दिखेगा ईगो का कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो लाइफ ऐसी हो, फ्यूचर में ऐसा हो, कुछ भी कंट्रोल में हमारे होता नहीं,
1: कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर की वजह से, अहंकार की वजह से भी
0: ये ईगो होता
1: है, इंटीग्रिटी को भी नहीं समझ पाते, कर भी नहीं पाते शायद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उस ईगो को समझना और उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: तभी आप इंटीग्रिटी को अपना सकते हो, फिर आप मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हो।
0: हाँ, वो चीजें साथ साथ चलेंगी,
1: दोनों साथ साथ,
0: क्योंकि कॉन्फिडेंस कुछ एक अलग चीज नहीं होती। मैं आपको कहूँ आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप ये नहीं कहते मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, वो तो होता ही है, नेचुरल है। जब आप क्लियर होते हो, जब आप कंफर्टेबल होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, तो आपको कुछ भी अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आप नेचुरल होते हो, ऑटोमेटिक आता है। तो क्लैरिटी पे काम करना है, पर्पस पे काम करना है कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मतलब मुझे कैसा इंसान बनना है, मेरा पर्पस क्या है,
1: तभी ऑटोमेटिक जो भी वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं अपने जीवन में वो कर सकते हैं,
0: वो अपने आप ऐड होती जाएगी।
1: जी बिल्कुल। तो अभी तो वक्त हो गया है अलविदा कहने का, तो लास्ट लाइन क्या बोलना चाहेंगे आप, यूथ को एक पावरफुल मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: वही कि अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, एक्शंस को इतना इतना क्लियर, इतना प्योर बनाए कि जब हम ये सोचें कि ये वापस आएगा तो अच्छा फील होना चाहिए कि I'm okay to get it. अगर वापस भी आता है तो मेरे लिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है,
1: अगर मेरा कर्म वापस आए तो
0: हाँ, बस मुझे ये करना है कि अगर वो वापस आए I should be okay with it, मैं comfortable होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर वही करूँ जिससे मैं comfortable हूँ, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, मुझे वो करना है कि वही देखकर मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे क्लोज वंस हैं वो करेंगे मेरे साथ, तो बस इसको याद रखना है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंसाइट्स है ये, और हमने आज बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।
1: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हमरा ही। कहां पर ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूं, रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, लगातार हमरा ही का आपका हमारा ये साथ आगे बढ़ता जा रहा है, और कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कहानी को प्रस्तुत करना और उसको रुचिकर बनाना, इन दोनों ही कार्यों में हमारे लिए कभी कभी चुनौती हो जाती है। लेकिन फिर भी आप सबका जो प्यार है, आप सबका जो विश्वास है, और हमारे युवा साथियों की खासकर जो भावनाएं हैं इस कार्यक्रम के साथ, उसी की बदौलत निरंतर हम इस कार्यक्रम को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। आप सब जानते ही हैं दोस्तों, जिंदगी किसी भी मोड़ पर आसान नहीं होती है। हर मोड़ पर जिंदगी में संघर्ष है, और मैं तो ये भी मानता हूं कि हर किसी के जीवन में संघर्ष है। बस किसी का संघर्ष कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का सामने आ जाता है और किसी का सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में सोचिए आप कि वो लोग जिनकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की शारीरिक चुनौती है, वो किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे होते हैं, और उसके बावजूद जब परिवार समाज उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, तो फिर ऐसे में जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल से भी हमारे अनगिनत साथी हैं जो बाहर आ जाते हैं और बखूबी समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके, साबित करके बताते हैं। तो आज भी ऐसे ही मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो अब और ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं आप सबको मिलवाने जा रहा हूं। आज राजस्थान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान धर्म सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी बबीता जी। तो बबीता जी और धर्म सिंह जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: स्वागत है सर, सभी रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम साथियों को सादर प्रणाम।
0: जी धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़े, धर्म सिंह जी आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं थोड़ा, कि आप किस तरह की दिव्यांगता से पीड़ित हैं और कब से आप जॉब कर रहे हैं, किस तरह आप दृष्टिबाधित हुए और कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया।
1: जी हाँ सर, जैसा कि मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा दिखता था, उसके बाद जैसा आपको भी शायद बीच में विदित है क्योंकि आपसे जूनियर थे, उसके बाद हमने जो ब्लाइंड एक दृष्टिबाधित होने के कारण कई जगह इलाज भी कराया परंतु नहीं व्यवस्था बैठ पाई, और जो आँखों में कॉर्निया की कमी होने के कारण कहीं इसका इलाज नहीं हो पाया, इसलिए आपसे जूनियर हम रहे। और हमने आपको बताया कि 2012 की जॉब में सेलेक्ट हुए, परंतु किसी कारणवश या बदनसीब कहिए जो हमें जॉब नहीं मिल पाई, उसी जॉब को हमें नवंबर 2017 में ज्वाइनिंग मिली, वो भी बड़े संघर्ष के बाद, जिसको ज्वाइनिंग लेटर जून 2017 में मिल जाए और उसको ज्वाइनिंग नवंबर 17 में हो 6 महीने बाद, उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष किया मैंने, क्योंकि चौथा नियुक्ति आदेश आने के बाद ही मुझे ज्वाइनिंग मिल पाई, क्योंकि हमारी तरफ एक दिव्यांग को बड़ी चुनौती है कि दिव्यांग किस तरीके पढ़ाएगा, क्या करेगा, ये यहाँ के लोगों की सोच वो अभी तक मुझे परेशान करती आ रही है।
0: जी धर्म सिंह जी, तो ये मतलब चार चार बार ज्वाइनिंग लेटर जारी होने की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, थोड़ा सा आप वहां के परिवेश के मुताबिक अगर बताएंगे तो ज्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी हमारे सुनने वालों के लिए।
1: जैसा कि यहाँ के कुछ अशिक्षा का कारण है, और यहाँ के जो शिक्षित हैं, आप जानते हैं हमारा भरतपुर संभाग बहुत पिछड़ा हुआ संभाग है।
0: जी जी जी,
1: दिव्यांगता के और एक दृष्टिबाधित के लिए तो बिल्कुल सहानुभूति बहुत ही कम लोग रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी सोच थी कि दिव्यांग है, तुम कैसे पढ़ाओगे, क्या करोगे। जब मैं 8 जून को ज्वाइनिंग करने गया था 2017 में, जब ये बात आई थी
0: जी,
1: फिर आप जानते हैं कि बाबुओं को किसी के ना किसी कारणवश कोई छोटी मोटी त्रुटि निकाल के इसको मैं वापस गया, जिला परिषद से दोबारा मुझे ज्वाइनिंग आदेश हुए, फिर उसमें भी मुझे पारनी पड़ी दोबारा, फिर दोबारा मैंने पंचायती राज और कुछ राजनीति नेताओं के सहयोग से 16 नवंबर 2017 को ज्वाइनिंग प्राप्त की।

0: मीडिया वालों का भी अच्छा सपोर्ट रहा, और उस परेशानी को अभी तक मुझे कई अधिकारियों से झेलना भी पड़ रहा है।
1: अच्छा, मतलब लगभग आप 2.5 सालों से नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है बखूबी शिक्षण कार्य करवा सकता है।
0: जिसमें अभी भी मैं बाकायदा मेरा 2 साल का रिजल्ट, अभी 2.5 साल का जो रिजल्ट है 8वीं का 100% रखता हूँ मैं, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास चलानी पड़े।
1: क्या बात है, चलिए आप अपने स्तर पर मेहनत पूरी कर रहे हैं और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये नेत्रहीनता है, इसका कब पता चला आपके परिवार को कि आप ब्लाइंड हैं शुरू से?
0: इसमें मेरे परिवार में अशिक्षा का कारण था, और इसका जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था, जब मतलब आसपास के लोगों ने, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने पता चला, और फिर उन्होंने ही मुझे ब्लाइंड स्कूल अजमेर के बारे में बताया था।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बबीता जी से भी थोड़ी बात की जाए और बबीता जी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। जी बबीता जी,
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है बबीता जी?
2: मैंने 12th पास की है।
1: 12th पास किया है, उसके बाद में फिर पढ़ाई आपने नहीं की आगे? अच्छा,
2: नहीं,
1: तो जो है क्या कोई खास कारण रहे या आपके यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा, मतलब महिलाओं को, क्या वजह रही?
2: वो परिवार है ना, गरीब है हमारा।
1: अच्छा, ओके ओके। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
2: मम्मी पापा हैं, दो भाई हैं और एक बहन।
1: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो मन करता है कभी अब आपका और आगे पढ़ाई करने का?
2: नहीं, हम नहीं करना।
1: अब नहीं करता, अब तो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं।
2: हाँ
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो धर्म सिंह भाई, अब जरा आ जाएं आपकी कहानी पर।
0: जी
1: ये जब नौकरी लग गई नवंबर
0: जी
1: 2017 में,
0: जी हाँ
1: उसके बाद फिर ये भी प्रयास शुरू हो गया होगा कि अब आपका विवाह करवा दिया जाए,
0: जी
1: परिवार ने और आपने स्वयं ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए होंगे इसके लिए। तो
0: जी हाँ
1: ये सब कहानी कैसे बढ़ी जरा बताएं हमारे सुनने वालों
0: समाज में बड़ी विडंबना है सर, आप
1: को।
0: स्वयं जानते हैं, एक दृष्टिबाधित।
1: जी
0: हालांकि नौकरी लग जाता है तो सामाजिक जो कार्य होते हैं
1: हम्म,
0: उनमें तो दृष्टिबाधित को, यार तुम मार सा वो, तुम इतना करो उतना दो, इस काम में तो बाध्य कर देते हैं समाज के लोग, पर शादी के लिए समाज के लोग बड़े एग्री नहीं होते हैं कि आप जैसा बंदा है उसको वैसी ही बच्ची चाहिए,
1: अच्छा
0: इसमें ज्यादा वो रखते हैं व्यवहार।
1: जी
0: परंतु किसी कारणवश मेरी भी यही जिद थी कि भाई दिव्यांग लूंगा तो फिर अपनी जैसी लूंगा, फिर मैं क्यों किसी को परेशान करूं, ये
1: सही है,
0: तो नौकरी लगने से पहले ही मुझे मिल सकती थी।
1: बिल्कुल
0: तो मेरी जो, हालांकि 4 दिन 5 दिन में घर पर आते, नाश्ता भी करते, और बच्चा कैसा है भाई, ब्लाइंड है, ठीक है, खाना कोई जवाब ना देते हुए वापस रिटर्न हो जाते थे।
1: नहीं, ये बीच में आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मेरी, जो आपने कहा ना उसके बाद से। जी
0: मतलब मेरी, जैसे आपको बताऊं कि शादी में जो आते थे संबंध वाले 2 दिन में या 4 दिन,
1: ओके ओके जी।
0: आते थे दृष्टिबाधित को जब पता
1: ये
0: चलता,
1: कब से आना शुरू हो गए थे आपके घर में रिश्ते वाले?
0: जॉब में मतलब ये समझिए आप, जॉब लगने के मात्र 2 या 3 महीने बाद से आना शुरू हो गए थे।
1: अच्छा, 2-3 महीने बाद से ही।
0: कभी मेरे स्कूल में भी आते थे तो कभी घर पे भी आते थे, परंतु जो उनको जब पता चलता कि यार बंदा एक दृष्टिबाधित है, और मैं तो साफ कहता था भाई देखो हाथ पकड़ के जो चल सके वैसी बच्ची चाहिए मुझे
1: सही है।
0: ना, क्योंकि तो हमसे गिरना ना करे कोई, भाई
1: ठीक
0: हम
1: बात,
0: जाए तो समाज में फिर गिरना हो तो क्या मतलब है। इसलिए
1: ठीक बात।
0: फिर लास्ट में जब होते हुए 2018 में, जो मेरे ससुर साहब हैं बबीता जी के पिताजी, वो आए थे, उनको किसी ने बता रखा था कि भाई एक ब्रांड है और उसकी कोई मांग जांग नहीं है, आप अपनी बच्ची का संबंध कर
1: अच्छा, ये
0: सकते
1: मांग दांग से याद आया कि जिस मतलब जगह आप रहते हैं,
0: हैं।
1: वैसे तो खैर बहुत जगह की ये समस्या, वहां पर भी ये सब लेन देन जो है काफी ज्यादा है।
0: आज यदि मैं, मान लीजिए इस चीज को बताना तो नहीं चाहिए, दहेज प्रथा तो बहुत ज्यादा ही वो है,
1: अब कुछ परिवर्तन हो रहा है धर्मू भाई या अभी भी नहीं हो रहा है, वैसा ही है माहौल है आज 2021
0: देखो
1: में तो?
0: आजकल सर्विस में जो लग जाता है वास्तविक, वो अब मैं बहुत बड़ा हो जाता है कि मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 5 लाख
1: मतलब
0: चाहिए।
1: जितनी बड़ी नौकरी उतना ही ज्यादा बड़ी बड़ी डिमांड मतलब।
0: बैकवर्ड एरिया एरिया भी है और क्या है, आप जानो एससी का फॉरेन का ज्यादा, यहाँ चाहे आईएएस हो या आरएएस हो या डॉक्टर हो, उनकी करोड़ों तक की मांगों में शादी होती है।
1: चलिए आगे बताइए जी।
0: तो इसी प्रकार आप 17 दिसंबर 2018 को मेरे जो ससुर साहब थे वो आए, उन्होंने मेरे से नाते वोते पूछे, जो परंपरा होती है वो, और मोबाइल नंबर लिया। उसके बाद एक हमारे विद्यालय के जो एचएम थे उनको पता चला, मतलब स्कूल में आए थे वे, तो एचएम साहब से मैंने मिलाया। एचएम साहब तो उनकी थोड़ी जान पहचान हो गई थी भाई, पूर्व से जानते थे थोड़ा सा, तो हालांकि ये संबंध होने वाला था, पर वो जैसे 3 महीने में संबंध होने वाला था, तो एचएम साहब की बदौलत ये 15 दिन में ही जो सगाई का प्रोग्राम होता है वो 28 दिसंबर को ही हो गया।
1: अच्छा।
0: और सीधा ही दोबारा मुझे मिलाया और दोबारा ही मेरे हाथ में 111 रुपए थमा दिए। और 1 जनवरी 2019 को जो गोद रस्म होती है, जो लड़की भरी जाती है, वो कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से करा दिया।
1: जी, जी।
0: तो हमारे एचएम साहब को भी ये थोड़ा डर था कि यार दिव्यांग है, क्या पता कोई पढ़ा दे, कोई इनको सिखा दे तो संबंध टूट जाए, तो ये जल्दबाजी, इसलिए थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा डर तो रहता ही है।
1: धर्म सिंह एक बात और बताएं आप, कि ये जाति वाति का भी बड़ा देखना पड़ता होगा ना उस एरिया में वहां पर।
0: वो तो है, जाति का तो देखना ही पड़ता है, तो अपनी जाति से ही है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस मामले में तो कम से कम आपको एक अच्छा रहा कि प्रस्ताव आपको जो आया वो आगे से, मतलब जो आया
0: तो काफी जद्दोजहद के बाद आया साहब।
1: हाँ, लेकिन कई चक्कर काटने के बाद कई लोगों ने
0: 30-40 लोग चक्कर काट गए।
1: जी जी जी, उसके बाद में जो है वो बबीता जी के परिवार ने आपका दरवाजा खटखटाया।
0: जी,
1: फिर आगे क्या हुआ, आपने की वो रसम हो गई 1 जनवरी को?
0: उसके बाद ये है कि फिर हमारा 12 मार्च 2019 को संबंध हो गया,
1: शादी हो गई।
0: हाँ,
1: तो शादी पूरे मतलब धूमधाम से,
0: पूरे जो रीति रिवाज होता है, बाकायदा बारात वगैरह सब कुछ, जो सारी सुविधाएं।
1: अच्छा,
0: सारा कुछ हुआ।
1: और फिर मुश्किल क्या थी, जब देखिए जाति सही हो गई और आपके मतलब विवाह में?
0: यही थी, जो मतलब जॉब लगने के बाद जो लोग आते थे कि यार तो इसको दिखता नहीं है, क्या करेगी हमारी बच्ची, वही लोग सोचते थे, कई अलवर साइड से भी आए, कई दौसा साइड से भी आए, कई हमारे करौली के आसपास के समाज के लोग आए थे। ये थोड़ी विनम्रता होती है कि जैसे समाज की जो संगठन होती है, वे संगठन यार हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना चंदा दीजिए, आप 5,000 है, 10,000, आप अध्यापक हो। और जब संबंध वाली बात आती है, जब भी शांत हो जाती है।
1: तो मेरे भाई, आपने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की कि देखिए मैं भले ही ब्लाइंड हूँ, लेकिन
0: बिल्कुल समझाने की कोशिश कई जगह की, कोई रुचि नहीं लेता, ये प्रभु की देन थी। तो अचानक फिर हमारे कुछ एचएम सामने भी आपको से कि किस्मत में एक अफसर सबसे बड़े जानते हैं कि जो नसीब में लिखी हुई थी, उन्हें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं संबंध होना समाज से नामुमकिन था।
1: जी जी जी, तो जब मतलब इनका प्रस्ताव आया तो उन्होंने खुशी खुशी मतलब स्वीकार कर लिया?
0: यस, हाँ।
1: अच्छा, कोई बिना किसी बात, उन्होंने कोई चिंता नहीं की इस बात की, ब्लाइंड माइंड की
0: ना? हाँ, वो चिंता
1: क्या लगता है आपको, उनको कोई नॉलेज ही नहीं था, या उनको ये था बस कि बेटी का ब्याह करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे?
0: इनको ये था, कुछ तो हमारे एचएम साहब का भी इसमें सपोर्ट था, उन्होंने उनको थोड़ा समझाया ज्यादा। और एक इनको ये था कि भाई कुछ समझाया कि जॉब में तो है
1: लेन देन,
0: कुछ वैसा होता तो आज बच्ची परेशान रहेगी, जॉब में है तो बच्ची सुखी तो रहेगी।
1: सही है, सही है, सही।
0: ये चीज थोड़ा उनको समझ में आ गई।
1: अच्छा,
0: ये हम एक जॉब वाले को बच्ची दे रहे हैं, कोई उसकी दहेज मांग नहीं, आज कोई जॉब वाला देगा तो 10-12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें उसको।
1: अच्छा, ये तो चलो इनका पक्ष रहा धर्म सिंह जी, लेकिन आपके परिवार की भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दबी हुई इच्छा तो रही होगी ना यार, कि हमारे बेटे की शादी कर रहे हैं तो कुछ हमें मिलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ था क्या?
0: कुछ परेशानियां तो भाई थोड़े से परेशान तो हुए यार, कम से कम ज्यादा नहीं तो शादी का खर्चा तो मिलना चाहिए था।
1: अच्छा, ऐसे में आपने आपने कैसे समझाया अपने परिवार को?
0: समझाया क्या, ये संबंध मैंने, हमने अपने बलबूते पर कर लिया था, भाइयों को तो बाद में बताया मैंने।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐसी कहानी रही। ओके
0: हाँ
1: ओके।
0: मतलब जो जो रस्म होती है सगाई की वो मैंने स्वयं ने कर ली, जब गोद
1: हाँ
0: भरने का कार्यक्रम आता है जब मैंने बताया था, थोड़े
1: अच्छा,
0: परेशानी
1: तो
0: हुए और थोड़े मनमुटाव भी आया था।
1: आपको क्या लग रहा था, घर वालों को पहले पता चल जाता तो नहीं होने देते बिना दहेज के शादी आपकी?
0: नहीं, होने
1: हैं?
0: तो नहीं, होने तो देते थे परंतु एक वो थोड़ा सा मनमुटाव कुछ ज्यादा होता।
1: आप कौन से नंबर के,
0: मैं
1: आप
0: सबसे छोटा हूँ।
1: सबसे छोटे हैं, आपसे बड़े जो भाई हैं
0: नहीं, मेरे से बड़े उन सब
1: वो सब के
0: ना
1: कोई सरकारी नौकरी में है?
0: ना, सभी अनपढ़ हैं।
1: केवल आप ही हो सरकारी नौकरी में?
0: और एक
1: बताइए,
0: पढ़ा, एक समझिए शिक्षित भी मैं ही हूँ।
1: वही बात है ना, अनपढ़ को तो चाहे कैसा भी हो लोग अपनी लड़की मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी दे देंगे, और एक दृष्टिबाधित को शिक्षक को जो कि शिक्षक है उसको तो कोई मतलब अपनी लड़की जो है वो कैसी भी हो वो देना नहीं चाहता इंसान
0: वही
1: ऐसा।
0: समस्या थी।
1: तो फिर आपके भाइयों ने मतलब अंत में कैसे राजी हुए, शादी में तो शामिल हुए होंगे सब लोग?
0: हाँ शादी में तो सब हो गए करीब सभी भाई लोग, क्योंकि कुछ आस पड़ोस वालों ने समझाया कोई बात नहीं यार, जितना भी हुआ सब बच्ची बात है, बच्ची तो हरी है। फिर उन्होंने जो बच्ची को जब गोद भरने की जो रस्म होती है उस रस्म में गए तो बच्ची को देखा भी, बच्ची को देखते हुए सब प्रसन्न
1: अच्छा, कि बच्ची सही है, सुंदर है
0: हो
1: यूं?
0: गए।
1: अच्छा
0: हाँ सुशील सुंदर मिली
1: अच्छा तो
0: बहुत।
1: ये सब समस्याएं शादी के साथ समाप्त हो गई, या मतलब रह रह करके कभी कभी शादी के बाद भी लोगों ने आपको ताना मारना या परेशान करना मतलब जारी रखा क्या?
0: उन्होंने ऐसा तो कोई परिवार में नहीं किया।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा
0: शादी के बाद जब कभी हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कुछ चर्चा तो करते हैं, पर वो तो
1: अच्छा वो
0: ठीक
1: तो
0: चलता
1: चलिए,
0: है। आप
1: वो तो
0: हाँ
1: लोगों का काम है यार, वो तो आप
0: हाँ वो चलता रहता है, लोग देखने भी आते हैं कई बार जगह, जैसे मैं यहाँ रहता था पहले शुरू में आया था, यार क्या सुंदर आई है, और वो ये लोग तो सोचते हैं, ये सोच तो सबकी होती है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम बबीता जी से जरा पूछते हैं कि उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा था। बबीता जी,
2: हाँ
1: आपको शादी के समय ये मतलब बताया गया, अब रिश्ते की बात जब चल रही थी कि भाई जो आपके होने वाले पति हैं वो नेत्रहीन हैं, वो देख नहीं पाते हैं आंखों से,
2: हाँ सब कचो बता दिया तुमने।
1: बता दिया था, तो
2: हाँ
1: आपने कुछ मतलब सोचा नहीं इस बारे में, आपकी अपनी कोई राय, या वहां पे ऐसी मतलब कि मैं जो हमने तय कर दिया वो कर दिया बात खत्म, ऐसा है?
2: नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा पे डाल दिया, तो जो वो पसंद करेंगे उनसे ही कर लूंगी शादी।
1: आपने नहीं कहा कभी भी कि भाई एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, मैं उनके साथ कैसे जीवन बिताऊंगी, कभी आपके मन में नहीं आई ये बात?
2: नहीं,
1: अच्छा,
2: नहीं रहती हूँ
1: कभी
2: किसी।
1: किसी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था आपने जो ब्लाइंड है जिनको दिखाई नहीं देता है?
2: नहीं मैंने नहीं देखा ऐसे।
1: पहली बार ही इन्हीं को ही देखा आपने?
2: हाँ मैंने तो शादी पे देखी थी।
1: अच्छा, तो आपके घर में भाइयों की शादी हो गई थी आपसे पहले? अच्छा,
2: नहीं मेरे से सब छोटे हैं।
1: आपसे सब छोटे हैं, तो
2: हाँ
1: सबसे पहले आपकी शादी ही करनी थी परिवार को। तो
2: हाँ सबसे बड़ी मैं हूँ।
1: बबीता एक बात बताओ ना, बातें तो आपकी भी तो और जगह चली होंगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चली होंगी?
2: पहले ना हम दोनों बहनन की कर रहे थे, पापा हमारे एक
1: हाँ अच्छा,
2: जो मतलब कोई ना कोई कमी लेकर ले आती, के मतलब कोई लड़का कैसा हो है, कोई पीवे है कोई खावे है, ऐसे लेकर आती।
1: अच्छा
2: हाँ कोई मतलब कोई बात कैसे कर जाते हो जो पापा अच्छी नहीं लगती, लोग मना कर देते।
1: दहेज वहेज की भी प्रॉब्लम करते थे वो लोग?
2: दहेज की तो नहीं करते, मतलब वो क्या है, एक मतलब लड़की एक है मांगते, हमारे पापा दोनों की कहते।
1: अच्छा, तो वो बहन आपसे छोटी थी, बड़ी थी दूसरी बहन जो है वो? अच्छा,
2: वो हमें से छोटी छोटी सा, हम चार भाई हैं।
1: वो उसकी अब शादी हो गई कि नहीं हुई अभी?
2: अभी नहीं, वो 11th में पढ़ रही है।
1: अच्छा, 11th की पढ़ रही हो, तो इतनी छोटी की शादी करने वाले थे आपके घर वाले? अच्छा
2: अरे वो क्या है, वो है मतलब है क्या, मैं ना शादी लायक जो बड़ी है वो मुझे से बड़ी लगे। हाँ
1: अच्छा
2: तो पापा ने कह रहे एक ही संग लेकर दूँ जो बढ़िया
0: ये
2: रहे।
0: चीज तो सर आप भी, अपन आदिवासी इलाकों में तो ऐसा चलता है,
1: जी,
0: बाद में भेज देते हैं जब बड़ी हो जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही
0: तो
1: बात है
0: खर्चा
1: कि भाई कि
0: सोचते
1: दोनों
0: हैं
1: का एक साथ ब्याह कर देंगे तो थोड़ा
0: डबल
1: खर्चा भी कम लगेगा।
0: शादी का खर्चा नहीं बैठेगा।
1: सही सही कहा आपने, ऐसा होता है आमतौर पे,
0: नहीं
1: ये तो है। अच्छा बबीता, मम्मी
2: नहीं
1: पापा ने कभी बैठाल के बात करी कि भाई ये जो है तुम जिनसे शादी कर रहे हैं वो ऐसे, कभी मतलब आपसे बात अलग से की या ऐसी नौबत नहीं आई?
2: कही तो थी मेरे से, तू देख ले तुमने और बात कर ले, जो
1: हाँ
2: मम्मी पापा के सामने शर्म आई है जो मैं।
1: अच्छा, ज्यादा आपने तो कही मान ली उनकी कि भाई जो आपने करिया वो ठीक है ना।
2: हाँ,
1: ये ठीक है, ये अच्छी बात है।
2: और
1: तो
2: फिर वहां बोलते हैं जो अच्छे ही ढूंढे, कुछ गलत तुमने ढूंढे।
1: ये बात भी ठीक है, लेकिन वो कईयों के होता है ना कि भाई दिखे अच्छा सुंदर और बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, और जो गाड़ी पे घुमा सके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है ना कई जगह।
2: ऐसे मेरे मन में नहीं आई थी
1: अच्छा, ऐसे
2: वाटर।
1: नहीं आई। तो अब आप गाड़ी पे बिठा के घुमाती हैं कि नहीं?
2: अभी तो नहीं घुमा दी
1: अभी नहीं
2: इनने। अब
1: घुमाते, गाड़ी नहीं दिलाई इन्होंने। ओहो, अच्छा। तो बबीता, शादी से पहले बात बात होती थी फोन पे इनसे, धर्म सिंह जी से होती थी?
2: हाँ,
1: अच्छा, तो इसमें फिर कुछ पूछा आपने इनसे कि भाई आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? तो
2: नहीं ऐसे मैंने।
1: कुछ नहीं, और इनने आपसे कुछ पूछा था कि भाई घर घर को सारो काम कर लेते हो कि नहीं?
2: ऐसे इनने भी नहीं पूछी, क्योंकि जैसी है वैसी आ जा।
1: अच्छा, वो ठीक है, सरकारी नौकरी है मतलब तो सब ठीक है फिर तो। है ये समझ सबके अंदर होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होने के बाद जो है लड़की लड़के का जीवन जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो और कोई किसी ने विरोध विरोध किया पर परिवार में, दूसरे दूर के चाचा ताऊ ने, मामे ने, किसी ने कि यार ये कहाँ
2: हाँ
1: लड़की इनकी शादी करा रहे हो भाई ब्लाइंड के? अच्छा,
2: हाँ हमारे चाचा वगैरह ने, ताऊ वगैरह ने तो कही है थी,
1: कही थी? क्या कही थी?
2: पापा से ही कही। मेरे मुंह तो नहीं मालूम, पर पीछे पापा कह रहे थे, वगैरह कहते ताऊ वगैरह ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। मैंने कि वो जाने कहा है, मैंने पढ़े लिखे इंसान नहीं जान सके जाती को।
1: जेब बात बिल्कुल सही कही है कि भाई पढ़े जो पढ़े लिखो ना है उसको क्या मालूम।
2: हाँ, अभी तो बस घर घूरे घरे दे गए, खेती बाड़ी दे गए, पर छोरा नहीं दिए गए ढंग से, जो खावे के पीवे। हमारे
1: ये बात सही है।
2: पापा है तो खावे पीवे से बहुत ज्यादा नफरत है।
1: अच्छा, तो शादी में सब शामिल हुए कि ना? ना हुए? तुम्हारी शादी में
2: हाँ, सब शामिल हुए थे। हाँ
1: सब शामिल हुए थे? ओके,
2: हाँ
1: और आज आज सब खुश होते कि भाई लड़की का जिंदगी सुधर गई, बढ़िया है, जीवन साथी
2: अब तो सब खुश हैं। हाँ
1: सब खुश है, ससुराल अपने पियर में जाना हो पाता है तुम्हारा? अच्छा
2: हाँ सर, 30 किलोमीटर दूर है सर।
1: अच्छा 30 किलोमीटर दूर है, बढ़िया है। मतलब आप अपने धर्म सिंह जी, आप अपने ससुराल के एरिया में ही आपकी नौकरी है मतलब एक तरह से। अच्छा, तो आपके साथ धर्म सिंह भाई कैसा है रवैया आपके ससुराल वालों का?
0: नहीं, बहुत अच्छा रव्यू है जी।
1: अच्छा है। अच्छा यार, एक बात बताओ धर्मू भाई, कि शादी के बाद कभी आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि यार मैं आगे और पढ़ाऊं मेरी पत्नी को, और मतलब थोड़ा सा कम से कम बीए तो होनी चाहिए? हाँ
0: हाँ, ये ख्याल आया था। मैंने बीए बीएड का एक बार एग्जाम भी दिलवाया था, परंतु
1: हाँ
0: उसमें नंबर दूर आ रहा था। मैंने कहा यार दूर चले जाएंगे फिर इनको वहां कौन संभालेगा।
1: नहीं तो यार, लेकिन आपको नहीं लगता भाई पढ़ाई तो करवानी चाहिए ना यार, भले बीए ही
0: वो
1: करवा
0: बात
1: लेते, बीएड
0: सही है, वो आपकी सही
1: ना
0: है। अब
1: करवाते, लेकिन बीए ही करवा लेते, भले प्राइवेट ही करवा लेते बीए, कहाँ दिक्कत है?
0: मेरा प्लान है कि मैं बीएसटीसी कराऊं इस
1: हाँ
0: सत्र
1: करो,
0: से।
1: पढ़ाई तो कराओ यार।
0: यस यस
1: मतलब ये
0: कराऊंगा।
1: देखो, पहले के जमाने की परिस्थिति अलग थी, आज का समय अलग है, और आपको मतलब थोड़ा सा अगर समय मिले तो इस पर भी विचार कीजिएगा।
0: यस यस
1: बाकी और बताएं, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं
0: हाँ, फिलहाल खुश हैं।
1: आज? अच्छा, और कोई शिकायत नहीं है मतलब किसी से भी?
0: नहीं, हमारी कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दोनों पति पत्नी मजे से रहते हैं, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से चल रहा है फिलहाल जी।
1: धर्म, एक बात बताइए आप, कि आपके उस एरिया में जो बताइए आपने विशेष जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो साक्षरता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम है ना? तो आप तो एक तरह से पुरुष हैं, तो आपने जैसे तैसे समस्याओं का सामना कर लिया। आपके उस एरिया में मैं भी जानता हूं और आप भी जानते ही होंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं, उनकी स्थिति तो और ज्यादा गंभीर होगी, और ज्यादा चिंताजनक होगी फिर।
0: हाँ, कई जगह, एक जगह अभी एक एग्जाम दे रही थी बच्ची पिछले सत्र में, एसबीएसटीसी का। तो उसमें जो एग्जामिनर, उसके यहाँ जो ट्यूटर लगाया जाता है, कोई बोला तुम्हें तो क्या दिखता है, तुम कैसे पढ़ती हो, क्या उसको वहां टॉर्चर कर रहा था। जो हम कई लोगों ने जहां जाकर, मैंने स्वयं ने और एक हमारे साथ में एक अध्यापिका थी, उसने खुद ने जाकर उस प्रिंसिपल को कहा कि भाई इनको क्या बात दे, आपके पास मेडिकल है तो आप इनको करवाते हो, इन लोगों से एग्जाम दे रही है उसका क्यों माइंड खराब रखते हो। वो फेल हो जाती है उस पेपर में, तो कौन जिम्मेदार होगा? मतलब समस्या तो आती है सर, परंतु वो क्या है, ज्यादातर सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि जो जूझ रहा है वो उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है कोई ज्यादातर।
1: अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस एरिया में जब आप हैं अब और अच्छी स्थिति में भी हैं, तो जो ये जो दिव्यांगों की जो परिस्थितियां हैं खासकर, उसके लिए काम करना चाहिए?
0: अब काम तो करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शायद पूर्व में विदित होगा, 2012 में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था मैंने, 6 राज्यों की टीम बुलाई थी। उस वक्त कई हमारे जो समाज कल्याण अधिकारी, जैसे उन्होंने कह दिया यार 96 बंदे कहाँ से लाओगे, बोलो ऐसे शब्द तो बोले थे कि 96 बंदे कहाँ से लाओगे आप।
1: अच्छा
0: जब एक उनको विश्वास ही नहीं था कि वास्तविक दृष्टिवादी से क्रिकेट खेल सकते हैं। शायद
1: अच्छा
0: आपको पता होगा अपन के क्रीड़ा परिषद के माध्यम से जो 2012 में
1: जी जी जी जी
0: नेशनल लेवल का हुआ था, और उससे करौली जिले में पूरी मुझे आज निजात मिल गई है। किसी विभाग में जाता हूँ अब कोई मुझे पहले परेशान करता था, अब कोई परेशान नहीं करता है करौली जिले का।
1: उस टूर्नामेंट की बदौलत।
0: हाँ, और इतना क्राइप था कि उसको देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता था। 3 दिन चला था, 3 दिन आप अपने अजमेर के बहुत से साथी आए थे, मेरे कई क्लासमेट भी आए थे कई।
1: लेकिन डियर, ये बताओ ना कि कार्यक्रम तो आपने करवा दिया 2012 में, कार्यक्रम तो रोज रोज करवाना संभव भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन
0: उस ये
1: लोग
0: चीज है
1: वहां
0: कि
1: की
0: आपको मैं
1: परिस्थितियों को
0: बताऊं
1: सुधारने के लिए काम आपको रोज रोज करना पड़ेगा, तो वो आपने सोचा
0: नहीं,
1: है कि नहीं?
0: करौली से मुझे परिस्थितियां सुधर चुकी हैं मेरी।
1: अच्छा, पर करौली में ठीक है माहौल?
0: हाँ, अब माहौल ठीक है वहाँ, कोई भी दिव्यांग किसी प्रकार का, जैसे जयदेव है आज पढ़
1: हाँ
0: रहा है, कहीं कोई
1: हाँ
0: परेशानी आती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसी विभाग में वहाँ मुझे परेशानी नहीं आती है। और करौली में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम, कोई किसी दिव्यांग की कोई परेशानी होती है, उसको मैं स्वयं सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि
1: अच्छा
0: तो उस टूर्नामेंट से करीब करीब सभी विभागों के अधिकारी नहीं तो कुछ कर्मचारी जानने लग गए। हाईलाइट अच्छा हुआ था,
1: इसके
0: तो
1: अलावा
0: ऐसा
1: अब क्या सोच रहे हैं आप आजकल, कैसे, मतलब
0: ही वही सोच रहा हूँ कि भरतपुर जिले
1: भरतपुर
0: में
1: में,
0: भी
1: आपका
0: ऐसा
1: कहने का
0: ही।
1: मतलब है कि भरतपुर में स्थितियां अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है,
0: हाँ
1: तो वो आपको करनी पड़ेंगी, मतलब उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा उस एरिया में।
0: हाँ यस,
1: अनेक संगठन है, आप उन संगठनों के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं वहां पर। नहीं
0: संगठन क्या है, इसके आसपास नहीं है ना ऐसे कोई संगठन अपने
1: नहीं
0: जयपुर
1: राजस्थान
0: अजमेर।
1: लेवल के जो बड़े बड़े संगठन है
0: अब एक
1: ना,
0: अपन का संगठन है, यह राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ। हाँ,
1: हाँ, तो इन्हीं के तत्वावधान में भी आप काफी कुछ काम कर सकते हैं।
0: तो प्रयासरत हूँ। देखो कई बार, एक बार केपीजी सर से भी एक दो अधिकारियों को यहाँ समझाया था, उनसे भी उनको भी महसूस हुआ यार तुम भरतपुर संभाग में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि तो वो एक आरएएस लेवल पे है, फिर भी कई अधिकारियों ने समझा कि यार लैंड तो है, क्या आरएएस होगा ये इस तरीके से। आप तो भी शायद केपीजी से आपकी बात हुए, तो उन्होंने भी इस चीज को समझा कि यार हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कैसा भी हो, पर अज्ञानता तो है। खुद
1: अच्छा
0: केपीजी ने मुझे बताया था बात, क्योंकि तो मेरे कई समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार मैंने फोन किया उनसे डायरेक्ट, और उन्होंने मेरी समस्या सुनी और समस्याओं का समाधान भी करवाया फिर।
1: तो ऐसे ही अब जैसे आपकी समस्याओं का अनेक साथियों ने समाधान करवाया, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा इस भूमिका में आना चाहिए कि आप बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो कुछ काम कर सके।
0: अब यही है कि आप जैसे बड़े भाइयों से और कुछ सलाह लेंगे और क्या कार्य कर सकते हैं, जो हालांकि हम तो जैसे तैसे सफल हो गए, हो चुके हैं, परंतु अब आने वाले जो बंदे हैं उनको ये समस्याएं नहीं आए।
1: क्योंकि कहते हैं ना, वो शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये भी है कि और कुछ नहीं तो आप ये जो विवाह के मामले में जो आज भी पुरानी सोच बनी हुई है लोगों की, इसको दूर करने के लिए भी आप जनजागृति फैला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं।
0: और वो तो क्या है कि यहाँ का सबसे बड़ा ये जो हमारे साथी हैं, जूनियर जो साथी हैं, वो अध्ययनरत हैं, जोधपुर हैं, कहीं अजमेर हैं, तो यहाँ मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता हूँ आपको पता है। अब ये कुछ साथ दें इस जन जागरूकता को तो फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि तो कुछ फाउंडेशन आप जानते हो कि राज कर्मचारी की भी होती
1: बिल्कुल ठीक बात है।
0: है।
1: तो जब शादी होने वाली थी, भाइयों को पता चला, तो कभी ऐसी नौबत तो नहीं आई कि कोई आपको मतलब मारना वारना चाह रहे हो या
0: नहीं, ऐसा कुछ
1: लड़ाई
0: नहीं
1: झगड़ा
0: है।
1: करना चाह रहे हो, मतलब ऐसी नौबत तो नहीं आई थी?
0: नहीं, वो सभी समस्याओं को समाधान आसानी से कर लिया था मैंने।
1: अच्छा आसानी से कर लिया था। अब सब मतलब आप आपकी माता जी और अब सब अपनी बहू से खुश है मतलब?
0: क्योंकि आपको ये तो शायद पूर्व से पता है कि मैं समस्याओं का समाधान तो जहाँ तक करीब करीब कर ही लेता हूँ।
1: तो बबीता झगड़ा वगड़ा होता है कभी दोनों में?
2: नहीं
1: कभी नहीं हुए?
2: नहीं।
1: गुस्सा किसको आता है, आपको कि धर्म सिंह जी को?
2: दोनों को।
1: दोनों को आता है?
2: हाँ।
1: अच्छा ज्यादा किसको आता है?
2: नहीं हमें ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो
0: बात करूं?
1: जी
0: जी
1: वो तो है। और वो तो दूध तो पीना पड़ता था ना सुबह सुबह इसलिए
0: तो आपको पता पड़ता धर्म सिंह सो रहा है।
1: वो अलग मामला हुआ करता था वो। हाँ। हॉस्टल के दिन थे वो तो।
0: तो वही यार होता है वो सर वो तो मेरी।
1: अच्छा अच्छा
0: सुनना ले जगना।
1: तो इसी में लड़ाई हो गई ज्यादा मतलब?
0: और क्या है।
1: तो धर्म सिंह भाई एक तो ये है कि अब आप एजुकेशन के मामले में और जन जागृति के मामले में काम करें इस कार्यक्रम
0: की वजह से तो मैंने चॉइस किया ना कि जयनारायण व्यास से करी, इसकी वजह मैंने करौली से ही करना अपने को उचित थे।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और ये कार्यक्रम की सफलता भी तभी है। दूसरी बात अब थोड़ा सा मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी सिखाना चलवाना ये भी अगर संभव हो परिस्थितियां अनुमति देती हो तो। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आपने कर दिया, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति अनुमति देती हो तो वो भी आप कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो सकते है वो। मैं बाइक लेने के इरादे में हूँ, अभी सोच रहा हूँ बैटरी वाली लूं के पेट्रोल वाली लूं। ये सोच में।
1: तो और कोई आपके जिंदगी के अनुभव से कोई बात आप कहना चाहे जो रह गई हो धर्म सिंह भाई?
0: अब समस्याएं तो देखो ब्लाइंड को शुरू से आती हैं परिवार में भी। सबसे बड़ी के समस्याएं तो आपको पता है कि यदि जॉब नहीं लगती है जब तक तो ब्लाइंड का कहीं परिवार में कहीं कोई वाज नहीं होता है
1: जी।
0: वो जॉब लग जाती है जो सभी एक दूसरे को
1: सभी सगे हो जाते हैं।
0: ये तो आपको हमको पता है।
1: नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपके अनुभव कोई रहे हो, आपकी कोई घटनाएं रही हो ऐसी खास जो आज इस मंच पर आप बताना चाहें?
0: घटना जो मैंने आपकी बताई, एक तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो संघर्ष करना पड़ा और कई संघर्ष अभी भी करने पड़ रहे हैं।
1: अच्छा आज भी?
0: तो सेवा संघ के पटल पे अभी चल रहे हैं।
1: तो आप जब आप कार्यक्रमों में कहीं जाते हैं जो परिवार के कार्यक्रमों में साथ साथ जाते होंगे सब जगह, तो अब कुछ सोच बदली है लोगों की आज भी वैसे ही है कि अब देखना और देख?
0: सोच बल्कि बदल रही है।
1: अच्छा।
0: शुरुआत में जो देखते हैं एक बार देख दो बार देखता है, तीसरी बार तो वो सोच, क्योंकि कई लोगों की जैसा कि एक बार हम यहाँ ब्याना शहर के अंदर एक मंडी में गए थे जो हम दोनों सब्जी लेने गए थे, वो एक ठेले वाली लेडीज थी वो बुला के बबीता जी को, यार आपके पिताजी ने देखा नहीं कैसा लड़का है ये, आपको पसंद आ गया क्या?
1: अच्छा
0: मतलब अलग से यार क्यों बुलाया? तो ऐसी सोच है तो आप जानते हैं कुछ सोच तो होती है लोगों की। कई बार हमारे स्टाफ में हो जाती है यार तुम सारा काम ताले खोलना लगाना टेबल उठाना करना, तुम्हें कैसे ये दो मिनट में रोड पे पहुंचना रोड पार करना, ये समस्या है जद्दोजहद तो होती है। शुरू में गांव वालों को भी समस्या कि यार कैसे पढ़ाओगे क्या करोगे। जब मैं 6 महीने जब पढ़ाया गांव बच्चों ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो आज उस विद्यालय में मैं ये कहूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 से 15 एडमिशन प्रति वर्ष उसमें लाता हूँ गांव वालों को अपनी जिम्मेदारी से। तो उनको विश्वास है कि ये गुरुजी हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, हालांकि मेरा पूरा स्टाफ अच्छी मेहनत कराता है।
1: अच्छा।
0: परंतु उनकी जो सोच थी कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी हम सोच को तोड़ने के लिए इसलिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है और करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी है ना दिव्यांग जो बीए और बीएड करने के बाद उनकी आंखें चली गई और वो जाते हैं स्कूल में जाके बैठते हैं और छुट्टी हुई और रवाना हो जाते हैं। तो वो विडम्बना है, सभी लोग सोचते हैं यार ये भी ऐसे ही होंगे। तो कई स्कूलों में ऐसी शिकायत मिलती है कि कई टीचर ऐसे हैं यार, वे तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल का उन्होंने डप्पा उठा दिया, मतलब बोलते हैं ना कि डप्पा बैठा दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो वो कमी क्या है उनकी है, जो बी ए बी एड करने के बाद में उनकी अचानक रोशनी चली गई और उनकी जॉब लग गई है। हालांकि करने को तो वो भी कर सकते हैं, परंतु उनकी वो सोच नहीं, और उनकी क्या राजनीति पहुंच भी अच्छी, तो भी पढ़ाना नहीं पढ़ा बात बराबर है। पर हमें तो उससे ज्यादा काम करना जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो सोच को दूर कर सके हम।
1: अच्छा धर्म सिंह, आपके उस क्षेत्र में ये बाल विवाह वाली भी समस्या होगी?
0: हाँ, बाल विवाह वाली आजकल कई संगठन इस पर रोक लगा रहे हैं, इसलिए बाल विवाह वाली समस्या आप नाम मात्र की रही है।
1: आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित हैं या कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है आपको?
0: हाँ, जैसे आपको पता है थोड़ी बहुत लाइट वगैरह पता चल जाती है।
1: नहीं, इसका पूछने का हमारा मकसद ये है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाई देता है तो उससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती होगी। अच्छा
0: ना, इतना नहीं है।
1: अच्छा तो अब जो है भविष्य की क्या योजनाएं हैं और आप दोनों की?
0: भविष्य की यही योजना है। देखो, आप जैसे बड़े भाइयों का परामर्श सलाह रहेगी, बहुत अच्छा जीवन यापन जो जॉब है वो करेंगे, और आगे इनको भी मुझे BSTC कराने कर हो सकता है कहीं जॉब लग जाए आसपास, तो जॉब करा लेंगे और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से रहे, माँ घर में है उसकी अच्छी सेवा हो, हमारी
1: अच्छा,
0: यही।
1: माता जी को आप अपने साथ रखते हैं यहाँ पे? अच्छा
0: यहाँ नहीं रहता हूँ, फिलहाल तो करौली है।
1: अच्छा करौली है, ओके जी। तो बबीता जी,
2: हाँ,
1: घर के सारे काम वगैरह कौन, मतलब बाहर के जो काम होते हैं वो आप ही करती हैं या धर्म सिंह जी करते हैं?
2: मैं ही करूँ।
1: आप ही करते हो? तो
2: हाँ,
1: आपने कभी, आपका भी मन करता होगा यार कि आज तो आप ही चले जाओ, हम तो थक गए हैं, परेशान हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है फिर?
2: रहने संग ले जाऊँ।
1: अच्छा साथ में ले जाते हो, ओके ओके ओके। लेकिन कुल ना के खुशी खुशी आप सारा संभाल
2: हाँ,
1: लेते हैं चीजें कि भाई ये नौकरी करके आवे हैं तो बाकी सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर एक तरह से ले रखी है ना। अच्छा तो कोई परेशानी तो नहीं है जिंदगी में?
2: नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
1: कोई शिकायत
2: नहीं
1: बोल दो आज तो खुल करके। हाँ
2: नहीं कजू नहीं है।
1: कछु ना है, कछु हो और आप कहीं मतलब बोलना नहीं चाह रहे हो, कोई
2: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: मतलब जो ऐसी बात जो आपके मन में हो और आप कहना चाहो, जो
2: ना
1: धर्म सिंह जी ने मना करी हो कि भाई ना कहनी?
2: नहीं, मैंने तो जाके खूब खोल के बोली हूँ।
1: अच्छा। कभी कोई प्रोग्राम हुआ आपका, कोई ऐसे कार्यक्रम हुआ कभी?
2: नहीं, पहली बार है ना।
1: पहली बार ही है रोए? हाँ
2: हाँ,
1: देख लो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहली बार फिर मौको पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा। चलिए खैर बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो यही
0: थैंक
1: यही दुआ करेंगे ईश्वर से। तो अब जो है वो बबीता को देख करके वहां की आसपास की लड़कियां और ज्यादा प्रभावित हों, और दिव्यांग साथियों की ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी प्रभावित हों, और जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए और प्रयास हो, क्योंकि वहां पे कई ऐसी दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं जिनको मैं भी जानता हूं।
0: हाँ, आप तो जानते हैं करीब, शायद मैं तो उनको नहीं जान पाता हूँ, संपर्क
1: जी जी जी
0: नहीं है उनका।
1: जी जी इसीलिए तो उस क्षेत्र में जो है वो ये जो सकारात्मकता है ये आना बहुत जरूरी है धर्म सिंह भाई, कहीं ना
0: जरूरी है
1: कहीं
0: इस चीज
1: ग्रामीण।
0: के लिए, तो मैं भी अग्रसर हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ में आगे किसी दिव्यांग को कोई ऐसी परेशानी ना आए।
1: कहीं ना कहीं हमारा जो रेडियो मधुबन है ये ग्रामीण परिवेश में कार्यक्रम प्रसारित करता है और कम्युनिटी रेडियो है ये, तो यहाँ अबू और इसके आसपास भी काफी ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो समाज में थोड़ी सी मतलब जो है वो सोच को विकसित किया जाए। तो ये लेकिन
0: जागरूकता,
1: किसी एक दो के करने से नहीं होगा, ये कोशिश सबको करनी होगी, आप क्या मानते हैं कि
0: बिल्कुल
1: नहीं?
0: बिल्कुल,
1: अपनेपन की भावना से और जो है वो बिना किसी की कमियों को ध्यान में रखे हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब चलते चलते अंत में धर्म सिंह क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को?
0: सुनने वालों को यही है कि जो दिव्यांग के प्रति जो सोच है सकारात्मक सोच रखें और सहयोग नहीं बल्कि उनके एक सहानुभूति रखें, चाहे सहयोग मत कीजिए आप, एक सहानुभूति के तौर पर उनके साथ रहें और उनके मन को ना दुखाएं। और मैं सभी दिव्यांग से यही मैं इस रेडियो मधुबन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उनको कभी जिंदगी में अपने आप में हार नहीं माननी चाहिए।
1: जी जी बहुत खूब बहुत खूब। तो बबीता जी आप भी अंत में कुछ कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों से?
0: वैसे
1: अच्छा अब शर्म आ गई
0: मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या है पहला जो होता है ना कहीं भी हो आप जानते हैं
1: जी तो जी
0: झिझक तो रहती है।
1: नहीं नहीं निश्चित रूप से, लेकिन बहुत अच्छे से आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं और साथ ही तमाम साथियों से ये निवेदन करते हैं कि देखिए कहानी को सामने लाना महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी है कैसी नहीं है, उसमें कितना संघर्ष है कितना नहीं है, ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे साथियों को मंच मिले और हमारे दिव्यांग साथी आकर के जो है अपनी बातें बताएं, अपने दिल की बातें करें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है, ताकि हमारी आवाज जब समाज तक पहुंचेगी तो शायद कभी ना कभी समाज में जो है वो सोच बदलेगी, यही उम्मीद हम करते हैं। तो श्रोता हूँ आप सबका इंतजार है हमेशा इस कार्यक्रम में, यदि आप विवाहित हैं दिव्यांग हैं और आपकी जिंदगी की भी कोई कहानी है और आप अगर इस मंच पर आकर के बताना चाहें सुनाना चाहें तो रेडियो मधुबन हमेशा आप सबका इंतजार करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। आपके सुझाव आपकी शिकायतें आपकी प्रतिक्रियाएं आप चाहें तो 94 14 15 14 15 पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप info@radiomadhuban.in पर मेल भी कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है रेडियो मधुबन के नाम से उसको इंस्टॉल करें और सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन रेडियो मधुबन। और आज के इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। धर्म सिंह जी और बबीता जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद
1: कार्यक्रम में शामिल होने
0: का। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी जी। और श्रोताओं मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। दोस्तों, कभी कभी ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, पर फिर भी जिंदगी का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। कभी कभी कभी कभी अपनी भावनाओं को समझना ही आसान नहीं लगता, और लगता है बाकी चीजें तो समझ में आ रही है पर खुद को कैसे समझे। तो अगर सवाल आपके दिल में भी है तो जवाब हमारे पास है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, सीधा ग्लोबल अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रेडियो के माध्यम से भी। आपके साथ जुड़ते रहते हैं हम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से मिलकर, उनसे बातें करके, और खास कर अपनी इमोशंस को उनके साथ शेयर करके। जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो किसी और ही लेवल का होता है।
0: बिल्कुल, और वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत इजीली समझ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और एक और लव यू जिंदगी के एपिसोड में आते हैं तो कुछ और सीखने की तैयारी के साथ मैं वापस आ गए।
0: और हम बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी अपनी भावनाओं, यानी इमोशंस के बारे में। पिछले एपिसोड में भी बातें हुई थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले एक सवाल आया था जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वो ये, किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कुछ चेंज भी नहीं हुआ होता है, लेकिन अचानक से बुरा लगने लगता है या डाउन लगने लगता है, लो फील होने लगता है, और कुछ हुआ भी नहीं होता है, तो ये अंदर क्या बदल जाता है कि ऐसा होता है कि अंदर उदासी लगने लगती है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग।

0: कैसा होता है, जैसे क्या समझे?
1: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हमारी लाइफ एक, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट का ये होता है, स्कैनिंग होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी लाइफ सीधी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे मूड का हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारे ब्रेन के केमिकल्स का। कई बार हमारी ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जिससे हमारा मूड, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। और इसके लिए जब इस बात की समझ आती है कि ब्रेन के केमिकल्स का कुछ अप डाउन है, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। किसी काउंसलर या किसी गाइड या साइकोथेरेपिस्ट को मिलकर इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी है। परंतु ये हमारा जो सिम्टम है, ये 3 हफ्तों से ज्यादा अगर चले तभी हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत। अदरवाइज तो 24 घंटे में भी 3 बार या 4 बार हमारा मूड चेंज हो सकता है। सो, ये एक नॉर्मल चीज है जिसके कारण घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स को पहचान कर उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा मूड अपसेट हो जाता है या मुझे लो फील होता है और मुझे कहीं मन नहीं लगता है, तो वो कौन सा ऐसा समय है, क्या पैटर्न है मेरे मूड के अप डाउन होने का, उसको एक बार पहचान लेंगे और फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है मैंने नींद नहीं अच्छे से की है तो मैं अच्छी नींद ले लूं। मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, हो सकता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या मुझे समय पर खाना नहीं मिला है, नींद नहीं हुई है। दूसरा, हो सकता है मैंने बाहर थोड़ा एक्सपोजर नहीं किया है, बहुत लंबा समय तक अंदर ही अंदर बैठ के काम किया है। जैसे कई लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो बाहर की खुली हवा का, नेचर के सानिध्य का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बंद बंद वातावरण में हो सकता है मेरा मूड खराब। तो सबसे पहली बात है अपने पैटर्न्स को पहचानना, और दूसरी बात है उस उदासी भरे मूड से अपने आप को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजीज में हम क्या बना सकते हैं कि म्यूजिक सुन लिया, शॉर्ट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया, पानी पी के बाहर घूम के आ गए, खुली हवा में चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली। ज्यादातर समय पर हमें जिस जगह पर हम है वहां से दूर किसी नेचुरल जगह पर जाकर खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। सो इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले मतलब फिगर आउट करें या पहले उससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाएं, पहले क्या करें?
1: नहीं, पहले फिगर आउट करना जरूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना जरूरी है। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स तब होते हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जा रहे होते हैं या पीरियड्स के पहले 3-4 दिन और उसके बाद 1-2 दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।
0: ओके, तो हमें समझना है और फिर उसको स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया। मतलब वो हम कभी कभी सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं, इसकी बात बुरी लगी, उसकी बात बुरी लगी, बुरा लग रहा है, और फिर ढूंढने लगते हैं कि किस बात से बुरा लगा। तो उस पे ज्यादा ओवरथिंक ना करें, पैटर्न को समझें और स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। श्रीनिधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं समझता हूँ जो कल्पना जी बात कह रहे थे, हम अक्सर ये अपने आप को रीड करने के बारे में सोचते नहीं। जब मूड खराब है तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों खराब है। कभी कभार जैसे रिपीटेडली मूड खराब होता है, या समझ लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ये चीजें होती है तो मेरा मूड खराब होता है। जैसे कल्पना जी कह रहे थे, समझो आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला है, तो चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों को, मैं भी होता हूँ, कि अगर मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को खाना खाने से रोक रहा है, बट मैं काम एक के बाद एक काम आता जा रहा है, कोई मिलने आ रहा है, फिर मतलब मैं मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, या मैं थोड़ा अपने आप को स्पेस देना चाहता हूँ, एक काम से दूसरे काम के बीच में मैं थोड़ा सा गैप रख पाना चाहता हूँ, और वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब ऐसी सिचुएशंस हो रही होती है तो मैं जानबूझ के उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हावी हो रहा होता है, वो बोलते नहीं, अभी टाइम चाहिए, तो अब मैंने ना कहना सीखा है। मैंने कहा है कि नहीं, अभी मैं नहीं दे सकता, 10 मिनट बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल के बीच में मैं ऐसे मोमेंट्स चुरा रहा हूँ, अपने लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ। और खाने की बात तो है कि मैं खाने के टाइम पे किसी और चीज को टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ कि भाई मैं खाना खा के बाद में बात करूँ, अभी नहीं बात करूँ। तो बहुत बार ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें आपको ऐसे जोन्स में पुश करती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, या आपको गुस्सा दिलाती हैं, या आपको सैड फील कराती हैं, या आपको एंग्शियस बनाती हैं, अनेक इमोशंस हैं। तो इन चीजों के बारे में खुद अपनी परख करना जरूरी है। और जब मैं अपने आप को ऐसे समझ लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं इन चीजों से ट्रिगर होता हूँ, ये चीजें मेरे ट्रिगर्स हैं, तो फिर आपको उन ट्रिगर्स के सॉल्यूशंस भी पता होते हैं। अगर यही ना पता हो कि भाई चाकू से कट सकता है हाथ, तो फिर आप चाकू के साथ खेलते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं प्रोन हूँ इस चीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनके बॉडी में कुछ फिजिकल सिस्टम्स वीक होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसा हवा में बदलाव होने की वजह से उनको हेडेक होने लगता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हम प्रोन है, किन चीजों के लिए हम प्रोन है, क्या चीजें हमें तकलीफ में डाल। तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
0: तो यानी हमें कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है जो हमें लगता है कि हमें ट्रिगर कर रही है या हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमारी मूड चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो बाउंड्री सेट करें और ना कहना भी सीखें। ये भी समझ में आया, कई बार ना कहना नहीं आता है और मुश्किल लगता है। यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते, या बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, क्या हमारी भावनाओं से लिंक्ड है, इसका कोई कनेक्शन है?
1: मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्री जी से कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना और ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैं कल का ये एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई मुझे शेयर कर रहे थे कि अरे मैंने इनको इतना गाइड किया, कदम कदम पर इनको किया, लास्ट मोमेंट पर भी ये मुझे से पूछ रहे हैं बात, इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को अपना टाइम देते हैं और उस टाइम की हम कदर नहीं करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की भी कदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात के लिए वो हमसे ही सपोर्ट लेना चाहते। तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए या आपसे कुछ फेवर ले या कुछ मांगे, तो आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए कि भाई इतना तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इससे आगे आपको खुद को हेल्प करनी होगी। क्योंकि मेरी लिमिटेशंस ये है, इस टाइम में ही मैं आपसे मिल सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो मेरा टाइम है वो मेरा मेरे लिए टाइम, मैं उसमें अवेलेबल नहीं हूँ। सो नो कहना आना चाहिए। कई प्रिय प्रेशर में आ जाते हैं कि चलो यार पार्टी में चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ फ्री ही है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, चलो फोर्स करते। आप अपनी पढ़ाई का, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आप पार्टीज में शामिल हो जाते। जब एक बार आप पार्टीज में गए, उनके साथ समय बिताया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको समझते हैं कि हाँ इनका टाइम तो हमारे साथ गुजारने के लिए अवेलेबल है।
0: तो ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे आपको,
1: बिल्कुल कई आपके काम रह जाते हैं और आपको इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं सबको खुश करना चाहती, किसी को ना नहीं कहना चाहती, कोई नाराज हो गया तो, मेरे से बात करना छोड़ दिया तो, या मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो, इसलिए हम उसको कहते पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी। सबको संतुष्ट करना चाहते, लेकिन हम सबको हर समय संतुष्ट करते करते खुद की टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का हेल्थ, खुद की नींद, खुद का कंफर्ट सब कुछ गवा चुके हो। और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। घर की मदर्स का ऐसे ही होता है, सबको खुश करने के हाँ सिलसिले में वो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ देती।
0: तो मतलब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है, और पीपल प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की पर्सनालिटी भी दूसरों की तरह बनती जाती है। या हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि चेंज किसके लिए होना चाहते हैं, आपने भी वो कहा था कि आप चेंज पॉजिटिवली हो रहे हैं या फिर किसी को देख के हो रहे हैं। वहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। श्रीनिधि जी आप कुछ कहना चाहेंगे, बाउंड्रीज क्या होती है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें इसे।
2: बाउंड्रीज मैं समझता हूँ एक हर व्यक्ति का एक कम्फर्ट का दायरा होता है, अलग शब्दों में लोग इसे कम्फर्ट जोन भी कहते हैं।
0: ओके,
2: कम्फर्ट जोन्स को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभार हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाने की भी जरूरत होती है जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। मगर कम्फर्ट जोन और बाउंड्री के बीच में अंतर ये है कि हम सबकी हदें हैं कि हम कुछ चीजें अपनी कैपेसिटी तक मैं इतना कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड कर पाना मैं अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ बट मैं फिर भी मतलब अपने आप को खींच रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपने आप को खींच करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको बाउंस बैक करने का भी मौका मिलना चाहिए कि वो आपने स्ट्रेच किया है उसको वापस रिलैक्स होने का मौका मिलना चाहिए। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, क्या मेरी लिमिट्स। और कभी कभार जब हम जैसे कल्पना जी अभी कह रहे थे कि पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। अक्सर अंग्रेजी में इसको यस मैन सिंड्रोम कहा जाता है कि हर चीज के लिए यस कहते हैं, और आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं कि यस बॉस। हर चीज के लिए यस बॉस कहना जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे कोई चीज कह रहे हैं, आपका काम आपसे कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई चीजें करने के बारे में सोचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवीनता के बारे में, इनोवेशन के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे नहीं। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं इसलिए आप सारा काम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 काम है करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है आप बोल रहे हैं हाँ हाँ ये भी दे दो कोई बात नहीं, और आपको 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना नहीं कर पाए और इसकी वजह से उनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या घर में पेरेंट्स रहते हैं, या जो भी रहते हैं उनके लिए हम टाइम न देकर अपने आप को ओवरवर्क महसूस करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में लागू होता है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज सिर्फ हमारे पर्सनल वेलबींग के स्पेस में है, हमारे प्रोफेशनल स्पेसेस में भी होता है। हम दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप्स हैं तो वहां पर हम अक्सर दोस्तों को कहते ही हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये कहने वाली बात तो शायराना लग सकती है कि जान हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला मुझसे जान मांगेगा और ना ही मैं जान देने वाला हूँ उसके लिए। कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लिमिट्स को पार करके करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ऐसा आप हर किसी के लिए करना पसंद करेंगे?
0: संभव भी नहीं है शायद।
2: संभव नहीं है क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में वो गिव एंड टेक है, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों के प्रति कंफर्टेबल हैं, परिवार में भी हम लोगों के लिए करते हैं, मगर
0: नहीं करना चाहते तो सेल्फिश फील करते हैं कि अरे मैं
2: जो घर का काम सारा देखती है, घर संभालती है, वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है घर संभालना। तो वहां पर भी उनको अपना स्पेस चाहिए। जब कोविड का समय था, कोरोना काल था, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, और जो लोग घर से बाहर चले जाते थे तो सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया, आप शाम को आएंगे बच्चे तो उनको देखा जाएगा, हस्बैंड रात को आएंगे तो उनको देखा जाएगा, तब तक उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो वो सब कुछ कर सकते थे, अपना टाइम टेबल था। अब अचानक टाइम टेबल मैसअप हो गया, ये सारे टाइम घर पे हैं और घड़ी घड़ी पूछ रहे मम्मी मेरे को ये दो ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बाउंस हो गए। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय पर एक नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट जब वो बाउंड्रीज हट गई तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो मैनेज करना मुश्किल हो गया।
0: इसलिए कहीं ना कहीं पर्सनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे हमें लगता है कि वो प्यार है, लेकिन उस प्यार में जब हम कुछ चीजें लिमिट लगा देते हैं या बाउंड्री सेट करते हैं तो गिल्टी या सेल्फिश फील करता है, बुरा फील करता है, तो क्या ये फील करना चाहिए या नहीं चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी सजा है इंसान के लिए, चाहे आप गलती करो या ना करो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी फील करने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव की कमी। खुद के महत्व को, खुद की स्ट्रेंथ को न जानकर, उसकी परवाह न करना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, इस वजह से, सेल्फ वर्थ को न जानने की वजह से गिल्टी फील करते हैं। दूसरा, सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में जब दूसरों को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे मदर का भी ही मैं एग्जाम्पल दूंगी, जो होम मेकर्स है उनका, कि समझो फॉर एग्जाम्पल एक घटना बताती हूँ। बच्चा आया स्कूल से, है ना, मैं मेरी ही लाइफ का उदाहरण देती हूँ। बच्चे को चावल पसंद है, लेकिन माँ ने आज चावल किसी कारण से नहीं बनाए, रोटी सब्जी ही बना के रखी। बच्चा स्कूल से आया, उसने बोला मम्मी चावल कहाँ है, तो कहा बेटा आज तो नहीं बने हैं, आज तुम रोटी सब्जी ही खाओ। तो बच्चे ने रोना धोना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो पता है ना मुझे चावल ही पसंद है, फिर तुमने चावल क्यों नहीं बनाए, और अभी मुझे तो चावल ही चाहिए। तो माँ को गिल्टी फील होता है कि अरे मेरे बच्चे को ये चाहिए था और मैंने ये नहीं बनाया या नहीं बना पाई, अभी है नहीं घर में उस स्टॉक में, तो उसे गिल्टी फील होता है। अब बताइए क्या उस माँ को गिल्टी फील होना चाहिए या उसे बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा जब कुछ चीज नहीं है तो उसके लिए जिद करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे ने तो जिद किया, लेकिन मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी था मैंने किया है, और किसी कारण की वजह से मैं उसकी पसंदीदा चीज नहीं बना पाई। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को जानना, अरे मैंने सुबह से लेकर दिन भर इनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, अब छोटी सी चीज अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, उसको एंटरटेन करूंगी, उसको अच्छे से समझाऊंगी, वो समझेगा, नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए रो लेगा और चुप हो जाएगा, भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ये है बच्चों का अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करने का तरीका। अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहे
0: हैं
1: और हम गिल्ट में चले जा रहे
0: हैं। ओके, तो फील नहीं होना चाहिए मतलब। लेकिन दीदी जैसे ये आपने एक मदर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्या मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कुछ यूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इससे समझ सकते हैं क्या कि कब वो गिल्टी फील करते हैं या मतलब नहीं जहां उन्हें करना चाहिए? कई चीजें तो ऐसी भी हैं जो समझनी चाहिए, लेकिन कई चीजें क्या ऐसी है जो गिल्ट में ले जाती है पर नहीं होना चाहिए? हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, फ्रेंडशिप में भी देखते हैं, क्या ये वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो हमें लगता है हम इसे नाम दे देते हैं दोस्ती का या प्यार का, लेकिन फिर हम खुद ही गिल्ट में जाते जाते हैं या फिर बुरा फील करते जाते हैं? क्या ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इस बात को? श्रीनिधि जी या दीदी आप में से कोई?
2: मैं समझता हूँ ये एक ऐसा चीज है जहाँ पर रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, बच्चे या माँ के बीच में हो, मगर ये सारे ही रिलेशनशिप्स पे लागू करता है। आपने फ्रेंडशिप्स की बात कही, मैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की भी बात करता हूँ। अगर आप कोलीग्स के साथ काम करते हैं तब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आप गिल्ट फील करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं हर दिन किसी के काम में मदद करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं हर दिन ही कर रहा हूँ, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं जब भी मदद मांगूंगा ये व्यक्ति मेरे लिए एक ही अवेलेबल, ऑफिस का ही काम है, समझ ले कि मैं किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ, मगर आज मेरा कुछ और काम निकल आया जिसकी वजह से मुझे बैंक जाना पड़ रहा है और उसी समय उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप आओ, ये काम अभी करना है अर्जेंट, और मैंने कहा कि नहीं मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है मुझे उसके लिए जाना है। तो अब उन्होंने कहा अरे मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको क्यों बुलाती, जरूरत के समय पर तो दोस्तों की मदद की जरूरत होती है ना, आप तो बैंक चले जाना चाहते हो। तो अब मुझे ये गिल्ट फील होता रहेगा कि भाई ये क्या जरूरत के टाइम पे मदद नहीं की, क्योंकि हमने ये चीज सुनी हुई भी है कि भाई जरूरत के समय पर तो मदद हमेशा देने की जरूरत है। अब मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने

0: कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, जरूरत के समय पर उनके काम नहीं आया। बिल्कुल हम अंग्रेजी में ये कहावत सुनते हैं, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पर सही अर्थों में अब मैं दोस्त ही नहीं रहा।
1: ये भी होता है, मैं अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ।
0: हाँ, और आप अपने आप को उस लेवल के साथ अब चला के चल रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमेशा मौजूद हो, अवेलेबल हो, हर चीज को कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक व्यक्ति अनेक चीजों से घिरा हुआ है, हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन चीजों को समझ कर चलना शायद आवश्यक हो। और दोस्तों में जब ये खास चीज होता है तो तब हम अक्सर समझाने का प्रयास नहीं करते। जब ऐसे कोई लेबल्स पास किए जाते हैं, आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है, तो आप उस गिल्ट को कैरी करते हैं, और उस समय पर ये आवश्यक होता है कि हम कैसे इस चीज को प्रोसेस करें। ऐसी घटनाएं होती हैं, बट उन घटनाओं को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में समझना
1: होता है।
0: कल्पना जी बता सकते हैं कि भाई ऐसे अनेक घटनाओं को लोग संजो कर रखते हैं जिसमें वो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील कराया और गिल्ट लेके चल।
1: भारीपन वो गिल्ट।
2: जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम आता है उसको पेंडिंग में रखते जाते हैं, है ना, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, पेंडिंग रह जाती, और फिर हमें स्ट्रेस आता है उन पेंडिंग फाइल्स को देखकर कि अरे इतनी ज्यादा हो गई। इमोशंस का भी ऐसे ही, इमोशंस को भी अगर हम पाइल अप करते जाएंगे, जैसे गिल्ट को, बचपन से लेके बड़े होने तक मैं गिल्ट को कैरी कर रही, बचपन में मैंने कुछ गलत किया उसका गिल्ट कैरी किया, मेरे से कुछ गलत हुआ बचपन में उसका गिल्ट कैरी कर लिया, तो वो आदत बन जाती है गिल्टी फील करने की। और हर छोटे बड़े जिसमें मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं भी की, उसमें भी मुझे गिल्टी फील होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कारण सबको तकलीफ हो रही, इस तरह से खुद को विक्टिम बना लेते। तो अब क्या करना है, जो फाइल्स हम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग में डाल रहे हैं उसको उसी समय क्लियर करना है। समझो कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई या आपको गिल्टी फील हुआ, अब वो गिल्टी कॉन्शियस को हम कैसे रिलीज करें? तो सबसे पहले है, जिसके साथ आपको गिल्टी फील होता है उनके साथ जाकर बात करें, तुरंत जाकर सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं, बात करें, एक नॉर्मल बात करें, एक्सेप्ट करें कि मेरे से गलती हो गई, इस बार ये छोटी सी गलती थी, कई बार मेरे से बड़ी भी गलतियां हो जाती है, किसी कोई बात नहीं है, और इंसान अगर जिंदा है तो उससे गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो गिल्ट फीलिंग को उसी समय रिजॉल्व करना है, जाकर बात करो सामने वाले से, सॉरी कह दो एक बार, बार बार सॉरी कहना भी आपकी लाचारी को दर्शाता है, और उस बात को भूल जाओ सामने वाले से, फिर नॉर्मल व्यवहार में आ जाओ, फिर उस बात को बार बार याद नहीं करो, तो मैं बार बार उसी बात को सोचती रहूंगी, वो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर वो गलत बात मेरे दिमाग से नहीं निकले। सो गिल्टी फील करने की जो फाइल्स है उसको पाइल अप ना करें, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दे।
1: रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि क्या हम जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी तक जो पाइल अप करके रखा है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व कर सकें?
2: बिल्कुल। So, अपनी गिल्ट को, अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण और शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हम याद करें, उन स्ट्रेंथ्स को याद करें, और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम वर्थ टू लिव, मुझे जीने का हक है और मुझे खुशी से जीने का हक है। तो आइए चलिए कुछ मिनटों के लिए एक निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, गहरी और लंबी सांस लें, अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, अपने मन के विचारों को सांसों की लयबद्धता के साथ ट्यून करें। जैसे ही मैं गहरी और लंबी सांस ले रही हूं, मेरा मन और शरीर शांत और रिलैक्स हो रहा, अनुभव करें उस शांति और रिलैक्सेशन का, अपने आप को याद दिलाएं, मैं एक मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण इंसान हूं सृष्टि नाटक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हूं, मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं। अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करें, मुझ में ये गुण विशेषताएं हैं। अपनी काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को याद करें। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से बात करें, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूं। मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी। उन कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं खुद के साथ कंपैशनेट रहकर उन गलतियों को आगे के लिए सुधारने में प्रयासरत रहती हूं। मेरी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय मैं उसके लिए सॉरी कहकर उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करती हूं। हर बार मेरी ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मैं खुद की गलती को माफ करती हूं, वैसे मैं दूसरों की गलती, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं एकाग्र हूं, मैं खुश हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। एक्चुअली बहुत लाइट फील हुआ ये एक्सपीरियंस करके, और ऐसा लग रहा है सच में 5 मिनट एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। तो डेली अगर हम कर लें तो कितना फायदा होने वाला है हमें, सिर्फ 5 मिनट और फायदा 24 घंटे का, और उससे भी ज्यादा बल्कि फायदा ही फायदा है। थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अपनी भावनाओं से भी और इस कार्यक्रम से भी। तब तक आइए जिंदगी को मिलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: भारत को मान दिया, जननी माँ को अभिमान दिया, राजे राजवारों से मिलकर पूरे भारत को बनाया अनुपम, जिसने खंडित भारत भूमि का नक्शा नया सवारा था। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सच्चा सरदार हमारा था, सच्चा सरदार हमारा था। दोस्तों, इतिहास किताबों में तारीखें लिखता है, लेकिन राष्ट्र उन्हें याद रखता है जो दृढ़ इरादों को अपना ढाल बना लेते हैं। आज हम उस व्यक्ति की कथा सुनेंगे जिन्होंने बोला कम, अडिग रहे, झुके नहीं और ना ही देश को झुकने दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला बच्चा बना देश का सरदार और किया मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के सपने को साकार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो चलिए सुनते हैं आज गीत बन्नो को कहां लेकर गई है। अरे, ये तो कोई गांव लग रहा है। यहाँ कई किसान इकट्ठा हैं और किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे युवा वल्लभ भाई पटेल भी उनके बीच उपस्थित हैं। लगता है जैसे वकालत कर अभी अभी वापस आए हों। चलिए सुनते हैं गीत और बन्नो वहाँ खड़े होकर क्या बात कर रही हैं।
1: गीत, सब लोग गांधी जी की बात करते हैं, पर ये सरदार पटेल कौन थे? आप मुझे यहाँ लेकर तो आई हो सरदार जी की कहानी सुनाने और दिखाने, मगर वो थे कौन? क्यों उन्हें सरदार कहा जाता था? वो तो पगड़ी भी नहीं पहनते थे।
2: बन्नो, अगर गांधी जी भारत की आत्मा थे तो सरदार जी थे लौह पुरुष।
1: गीत, क्या सरदार जी बचपन से ही इतने सख्त थे? देखो ना, कितने खामोश से दिख रहे हैं, चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं।
2: नहीं बन्नो, वो सख्त नहीं थे, वो मजबूत थे, अपनी बात कहने का साहस रखते थे। बचपन से ही ये गुण उनमें कूट कूट कर भरा था। जैसे जैसे बड़े हुए, वो एक स्वाभिमानी और निडर नेता के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: नाडियाद की धरती पर एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे वल्लभ भाई। पिता किसान और माँ गृहिणी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरेंगे, जो अपने नेतृत्व कौशल से न सिर्फ संगठन को मजबूत करेंगे बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले वल्लभ भाई पटेल ने एक कामयाब वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी जब वो गांधी जी के संपर्क में आए। तत्पश्चात बापू के चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने पटेल के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी।
1: गीत, ये बताइए, खेड़ा जिले के इस गांव में किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है और पटेल जी यहाँ क्या कर रहे हैं?
2: थोड़ा धीरज धरो, बताती हूँ। ये साल 1918 की बात है। पटेल खेड़ा जिले में प्लेग बीमारी और अकाल को लेकर राहत कार्य चला रहे थे। तभी खबर मिलती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों की कर छूट की याचिका को ठुकरा दिया है। गांधी जी चंपारण में व्यस्त थे तो उन्होंने वल्लभ भाई को खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। पटेल ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
3: अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ चुप रहना किसी अपराध से कम नहीं है। कानून का काम है सही गलत का फैसला करना, पर देश के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है। हमें अपनी एकता कायम रखनी है और अहिंसक तरीके से अपनी मांग रखनी है।
0: वल्लभ भाई के इस उद्बोधन के बाद खेड़ा जिले के गांव में जमा किसानों की भीड़ में कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई। किसान उलझन में थे कि क्या करें जिससे उनकी समस्या का निदान हो।
4: वल्लभ भाई तमे सही कह रहे हो, लेकिन अंग्रेज जो लगान बढ़ा रहे हैं उसे कितना उचित कहेंगे आप? खेती आपड़ी, फसल आपड़ी और फायदा वो ले जाए।
0: तब पटेल उत्तर देते हैं,
3: डरे नहीं, अहिंसा की शक्ति पर विश्वास रखे। एकजुट रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
2: बन्नो, यही वो पल था जब वल्लभ भाई पटेल केवल एक वकील नहीं रहे बल्कि किसानों की आवाज बन गए।
0: गीत और बन्नो की बातें चल ही रही थी तभी अचानक दूर से अंग्रेजों के दो सिपाही भीड़ की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। वो एक एक कर आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लेते जा रहे थे, लेकिन पटेल को हाथ नहीं लगा सके, उन्हें चेतावनी ही दे पाए। आगे सुनेंगे कि कैसे यही वल्लभ भाई पटेल बने किसानों के सरदार और राष्ट्र की रीढ़। ये था सरदार, मिट्टी से बना लौह संकल्प, भारत माता के लिए उनका प्रेम।
5: मिस्टर पटेल, ओबे द क्राउन, ये हुकूमत है।
3: हुकूमत डर से चलती है और देश विश्वास से। हम डरने वाले नहीं।
0: खेड़ा आंदोलन के बीच जब पटेल गांधी जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो वो अपने चरखे पर काम कर रहे थे। उन्होंने पटेल जी से पूरी घटना सुनी, फिर बड़े ही धैर्य से बोले,
6: वल्लभ भाई, देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है जो सत्य की मशाल को थामे रहें, चाहे आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो। वल्लभ भाई, सत्य और अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि इससे साहस बढ़ता है।
3: बापू, मैं लड़ना जानता हूं पर देश के लिए खुद को पीछे रखना भी सीख लूंगा। अगर यही साहस देश को आजाद कर सकता है तो मैं कांग्रेस के साथ हूं बापू।
6: वल्लभ भाई, खेड़ा के किसान टूट चुके हैं, अकाल है, फसल नहीं और फिर भी लगान की मांग।
3: बापू, अगर किसान झुकते हैं तो अन्याय जीत जाएगा और अगर हम साथ खड़े रहे तो इतिहास बदलेगा।
0: वल्लभ भाई की बातें सुनकर बन्नो ने गीत से पूछा,
1: दीदी, ये वही खेड़ा सत्याग्रह है?
2: हाँ बन्नो, खेड़ा सत्याग्रह केवल आंदोलन नहीं था, ये पहली बार था जब किसानों ने डर के सामने सिर नहीं झुकाया।
0: गांधी जी से भेंट करने के बाद पटेल पहुंचे किसानों के पास ताकि उनकी मनस्थिति को समझ सके, उनके मन से अंग्रेजों का डर मिटा सके।
7: वल्लभ भाई, घर में अनाज नहीं है, अने सरकार लगान मांग रही है।
3: लगान हम नहीं देंगे, जेले भर जाएंगी पर आत्मसम्मान नहीं टूटेगा।
8: नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
0: वल्लभ भाई झुके नहीं, ना लालच से ना लाठी से। उन्होंने खेड़ा में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और एक वर्ष के लिए कर वसूली को निलंबित कर दिया गया। यह वल्लभ भाई की पहली जीत थी। इस घटना के बाद वो ना सिर्फ गांधी जी के और समीप आए बल्कि उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। वो एक नायक बनकर उभरे। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का विचार समाहित था और रणनीति थी पटेल की। यही कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार पीछे हटना पड़ा।
1: दीदी, तभी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को इतना मानते थे?
2: हाँ बन्नो, गांधी जी कहते थे, जहां मुझे कठोर निर्णय लेना होता है वहां मैं वल्लभ भाई को देखता हूँ।
0: वल्लभ भाई पटेल वैसे तो साल 1917 से किसानों से जुड़े मसले सुलझाने के लिए प्रयासरत थे। खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात वो बापू द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और यहीं से वो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग बन गए। ऐसे रमे कि सर्वस्व त्याग, खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन को भावनात्मक अपील गांधी जी ने की, पर उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरदार जी ने संभाली। इस आंदोलन के दौरान लोग सरकारी स्थानों, चीजों और नौकरियों का भी त्याग कर रहे थे, मगर कुछ लोग इतने बड़े फैसले को लेने से घबरा रहे थे।
9: सरदार, सरकारी स्कूल छोड़ने को लोग तैयार है, पर डरते हैं, रोजगार का होगा क्या?
10: डर स्वाभाविक है, इसीलिए असहयोग अराजकता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विद्यालय बनेंगे, स्वदेशी उद्योग खड़े होंगे, आज की कुर्बानी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगी।
2: बन्नो, सरदार का नेतृत्व भाषणों में नहीं, योजना में बोलता था।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: आगे सुनो।
0: आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के सचिव सरदार पटेल के पास एक समस्या लेकर आते हैं।
7: सरदार, हजारों लोग गिरफ्तारी को तैयार हैं, लेकिन सूची, व्यवस्था, जिम्मेदारी?
10: हर गिरफ्तारी दर्ज होगी, परिवारों की मदद होगी। आंदोलन भावुक हो सकता है, पर अराजक नहीं।
0: असहयोग आंदोलन में जहां एक ओर त्याग था, वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल की लोहे जैसी व्यवस्था थी। यही कारण था कि जब आंदोलन रुका तो वो टूटा नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हाथों में थी।
1: दीदी, तो सरदार जी सिर्फ लड़ते नहीं थे, सबको संभालते भी थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास को संभालते हैं। सरदार वही करते थे।
0: इसके बाद पूरे आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल लोगों की हिम्मत बने, उनके अंदर जोश भरते रहे।
10: अगर जेल जाना पड़े तो याद रखना, हर कैद आजादी की नींव है।
1: दीदी, क्या आजादी ऐसे ही आएगी?
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग अपने सुख को कुर्बान करके देश का भविष्य बनाते हैं।
0: असहयोग आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 3 महीने की सजा हुई और साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल की उन दीवारों के भीतर वल्लभ भाई पटेल केवल कैदी नहीं थे, वो सोच रहे थे कि आंदोलन के बाद देश को किस तरह संभालना होगा।
1: दीदी, अगर सब जेल में होंगे तो देश कैसे चलेगा?
2: यही तो सरदार जी की सोच थी बन्नो। देश केवल जोश से नहीं चलता, व्यवस्था से चलता है।
0: कैद के उन दिनों में सरदार का मन भविष्य की योजनाएं गढ़ रहा था। अनुशासन, नियम, जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होगी, इनको लेकर ही सारे विचार चल रहे थे। वो जानते थे कि आज अगर संगठन टूटा तो कल राष्ट्र टूट जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगे,
10: क्रांति अगर बेकाबू हो जाए तो उसका लाभ शत्रु उठाता है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो आगे की दिशा तय करेगी।
1: दीदी, तो सरदार जी हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा एवं सत्याग्रह पर पूर्ण विश्वास रखते थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग तलवार उठाते हैं और कुछ मयान बनाते हैं। सरदार मयान थे, जो तलवार को सही समय पर चलने देते थे।
8: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: समय बीता और देखते देखते साल 1928 के 4 फरवरी का दिन आया। वल्लभ भाई पटेल को एक नई जिम्मेदारी मिली। उन्हें बाद

0: मंगोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करना था, जो बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध संघर्षरत थे। सर्वप्रथम सरकार को पत्र लिखा गया, लेकिन कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर पटेल ने किसानों को संगठित किया तथा उन्हें लगान न अदा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली सत्याग्रह नाम से एक दैनिक पत्रिका निकाली गई। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने बंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उधर पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए वैकल्पिक नेतृत्व के लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। किसानों का आंदोलन चल रहा था और वो कड़ी धूप में अपनी मांग पर डटे हुए थे।
1: हमें भूखे मरी रहा है सरदार, अने ये जालिम कहते हैं लगान दो के पची जमीन छोड़ दो।
2: जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे पूर्वजों की है, कोई अंग्रेज तुम्हें तुम्हारे घर से बेदखल नहीं कर सकता। यह हमारा अंतिम संघर्ष है, हम लगान नहीं देंगे, एक पैसा नहीं।
3: डिसोबीडियंस, सेडिशियस बिहेवियर, तुम सबको जेल भेजा जाएगा।
2: जेल हमारी आजादी की पहली सीढ़ी होगी, डरना मत। जब किसान खड़ा होता है तो कोई हुकूमत उसे झुका नहीं सकती।
4: वंदे मातरम, वंदे मातरम, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद।
0: बारदोली आंदोलन की एक और विशेषता रही कि इसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली के लोग पटेल के नेतृत्व से बेहद प्रभावित हुए। इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध घोषित किया गया। सरकार को लगान घटाना पड़ा। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन सफल रहा। गांधी जी ने सफलता पर कहा, बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है।
4: सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार,
5: वंदे मातरम,
4: वंदे
5: मातरम,
4: वंदे
5: मातरम।
0: साल 1931 में जब गांधी जी डांडी मार्च पर निकले तो सरदार पटेल को राजगांव में गिरफ्तार कर लिया गया। वो महीनों जेल में रहे, पर उनके साहस के किस्से हर गली हर गांव में गूंजते रहे। वो आंदोलन के सेनापति थे और राष्ट्र के शिल्पकार भी। उनकी और बापू की गिरफ्तारी के बाद देश में नमक सत्याग्रह और तेज हो गया। जब दोनों रिहा हुए तो देश एक नई दहलीज पर खड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन अब केवल भावनाओं से नहीं, व्यवस्थित होकर अनुशासन से आगे बढ़ना चाहता था। इसी मोड़ पर कराची के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। अधिवेशन से ही गांधी इरविन समझौते का ऐलान किया गया। न्यूनतम मजदूरी, अस्पृश्यता एवं दास प्रथा के उन्मूलन के साथ एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की वकालत की गई। सरदार का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता ऐसी थी कि कांग्रेस हर मुश्किल दौर से निकलती गई। बारदोली सत्याग्रह से लेकर आजादी के बाद राज्यों के एकीकरण तक उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। उनकी सूझबूझ और संगठनात्मक क्षमता ने ही स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस दिशा दी। कोई भी समस्या हो, पार्टी के कार्यकर्ता उनके ही पास जाते थे।
6: सरदार साहब, संगठन बिखरा हुआ है, कार्यकर्ता जोश में हैं, पर दिशा साफ नहीं।
2: पार्टी को जोड़ेंगे, चुनाव, चंदा, अनुशासन भी लाएंगे। कांग्रेस केवल आंदोलन नहीं, एक मजबूत संस्था बनेगी। कांग्रेस को अब नारे नहीं, संगठित ढांचे की आवश्यकता है।
0: यह सुनकर एक दूसरे कार्यकर्ता ने कहा,
7: लेकिन सरदार, इतने बड़े जन आंदोलन को काबू में कैसे लाएंगे?
5: वंदे मातरम,
4: वंदे मातरम।
0: सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना कांग्रेस में केवल पद परिवर्तन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। पटेल ने पार्टी को एक कुशल राजनीतिक मशीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों को कांग्रेस की मुख्य नीति बनाया, यूं कहें कि पार्टी को सत्ता के लिए तैयार किया।
8: दीदी, लोग उन्हें आयरन मैन क्यों कहने लगे?
9: क्योंकि बन्नो, वो भावनाओं में नहीं बहते थे, परिस्थितियों को संभालते थे। उनका दिल नरम था पर निर्णय लोहे जैसे।
0: एक ओर वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस संगठन और किसानों को उनका अधिकार दिलाने में जुटे हुए थे, तभी लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। ये साल 1932 का समय था। देश में दोबारा से संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी एवं पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को यरवदा जेल में डाला गया। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, उनकी परछाई नहीं। यानी दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, लेकिन जेल में दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों के बीच स्नेह एवं विश्वास का एक नया संबंध कायम हुआ। खेड़ा हो, बारदोली, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सब में एक बात समान रही, वो था सरदार पटेल का अनुशासन। उन्होंने नारा जितना ऊंचा दिया, जिम्मेदारी उतनी ही गहराई से निभाई। जब कोई आंदोलन जनजीवन को हर क्षण उद्वेलित करने लगे, तो उसे नेतृत्व नहीं विश्वास चाहिए होता है। गांधी जी के उस विश्वास का नाम था वल्लभ भाई पटेल। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था,
10: एक देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते।
9: बन्नो, बापू के इन शब्दों ने भारत की जनता पर जादू सा असर डाला। वे नए जोश, साहस, संकल्प, नई आस्था, निश्चय एवं विश्वास के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े।
8: अच्छा दीदी,
0: भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के समय सरदार पटेल ने भी अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओजस्वी भाषण दिया था।
2: ब्रिटिश हुकूमत अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बंदी बना ले तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को खुद को कार्यकर्ता समझना होगा, उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, प्राण की बाजी लगाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करना होगा, तभी स्वाधीनता स्वयं हमारा दरवाजा खटखटाने लगेगी।
0: भारत छोड़ो आंदोलन मूल रूप से एक जन आंदोलन था, जिसमें देश के हर जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई, अपने कॉलेज छोड़ दिए, जेल का रास्ता अपनाने लगे। सरदार पटेल ने अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर देश भर की यात्रा की और आंदोलन के प्रति नागरिकों में नया जोश भरा। आगे के भाग में हम सुनेंगे कि कैसे सरदार ने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक बना दिया और कहलाए लौह पुरुष। आप सुन रहे थे एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते कहानी और दिलचस्प मोड पर आने वाली है।
11: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी मिलता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी वर्ग से मिलता है और साथ साथ तुम्हारा साथ जो साइट सीन हो, चाहे पर्यावरण सामने आए हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे पांच तत्व आकाश पानी जल सब चीज हमें संपर्क में आते हैं और हमें खुशी मिलता है क्योंकि हम सब पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं और पर्यावरण सुरक्षा हमेशा हमारा रक्षा है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महान अनुभवी हर दिन की तरफ आज भी वो अपना कुछ बात करने के लिए आए हैं, तो हमें खुशी मिल रही है और एक दो का आस्था और विश्वास के लेकर हम चलते हैं। तो रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी का गतिविधि कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए हमेशा रेडियो मधुबन मंच देती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे बगीचा हो, सभी से हम मिलते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए महान अनुभवी भोपाल राम पुरे जी उपस्थित है जो कि पर्यावरण ऊपर में रिसर्च किए हैं और कुछ एक्सपर्टीज उनके पास है जो कभी कभी उनसे मिलते भी है तो और मिलाते भी है। तो आज हम पहुंचे हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आरोग्य वन, वहाँ पर पहुंचे जहाँ पर मल्टी लेयर खेती के साथ साथ पर्यावरण को हरा भरा किए और बहुत मेहनत देखा हुआ अनुभव करने के पश्चात हम पूरा परिदर्शन निरीक्षण कर रहे थे कितना पौधा कितना एरिया में विस्तार

0: रूप में पर्यावरण को रक्षा करने के लिए पूरा तत्पर है। तो चलिए सर को स्वागत करते, सर आपको स्वागत वेलकम करते आज का कार्यक्रम के लिए। और पर्यावरण है तो हमें खुशी है और पर्यावरण में हम सब जिंदा रहते हैं। सर आपका वेलकम।
1: रेडियो मधुबन के पर्यावरण के एपिसोड की निरंतरता में हमारी जो जानकारी है वो हम पर्यावरण में घूम करके संजो करके और विचार विमर्श करके कि हमारे लिए वो कितना लाभदायक और हो सकता है उसको अब तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास
0: जारी है।
1: प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में स्थित रेडियो मधुबन के जो संचालक है उनके द्वारा वास्तव में उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो क्षेत्र में समन्वय का काम करते हैं, हमारा गांव, हमारा अंचल जो पवित्रा भाई है वो हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं। तो उनके द्वारा पर्यावरण में जो जो यहाँ की संस्थाओं के द्वारा जो चीजें बनाई गई है मानवता के लिए, हमको भाई साहब निरंतर इसमें भ्रमण करवा रहे हैं। मानसरोवर में भ्रमण किया, तपोवन में भ्रमण किया और आज हम आरोग्य वन की तरफ आए हैं। पहले एपिसोड में हमने पास ही एक गांव है वहां ग्रामवासियों के द्वारा इस पर्यावरण की संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया है उसको देख करके आप बहुत ही प्रभावित हुए। तो आज इस आरोग्य वन में किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए यौगिक खेती की जा रही है देखते ही मन गदगद हो गया कि विश्व में सभी संस्थाएं और जो लोग पर्यावरण के संबंध में काम कर रहे हैं वास्तव में वो ईश्वरीय कार्य ही कर रहे हैं। मनोयोग से मल्टी लेयर एग्रीकल्चर है। सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम मैं स्वयं सुनता हूँ, आप सभी स्वयं सुनते हैं, डीडी किसान पर, आईआईटी जो इस पर काम कर रही है, सब हमारा सिस्टम का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आता है। तो कानपुर आईआईटी एग्रीकल्चर को ही समर्पित है सर, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ इस पर बहुत काम हो रहा है सॉइल हेल्थ के लिए, सॉइल हेल्थ के द्वारा किस तरह से पब्लिक हेल्थ तक पहुँचा जाए,
0: जी
1: बहुत काम हो रहा है सब। तो जो इस फील्ड में हम देखें, अगर पर्यावरण पर हमने काम कर लिया तो हमने ईश्वरीय काम की तरफ कम से कम भौतिक रूप से तो हम पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। तो आपका, हमारा, सभी का, हमारा भारतवर्ष का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त ब्रह्मांड का भी आप अगर ये बात कह दो कि पर्यावरण शुद्धि का जो जिम्मा है वो विवेकपूर्ण जिम्मा तो हम मनुष्यों का ही है जो संस्कार से ही आएगा। रेडियो मधुबन की मधुर वाणी से ये चीज सुन करके ही आएगा, सुनेंगे और आपको अकेले को प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा यही कहूंगा, मैं को हटा करके इस काम को कौन करेगा, तो आप और हम ही करेंगे।
0: जी जी,
1: इसको तो देखना ही है कि और लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया में सभी लोगों का अपना अपना लक्ष्य होता है, लेकिन जिसका लक्ष्य सद है, जिसके जीवन का विवेकपूर्ण उपयोग होना है, वो तो इसके लिए विवेकपूर्ण कार्य ही करेगा। भाई साहब ने हमारे वहाँ श्मशान घाट को बहुत अच्छा सुंदर बनाने का प्रयास गाँव वासियों के द्वारा किया गया। बड़े भाई साहब चुनौतियाँ हैं वहाँ पर। अगले एपिसोड में हमने बात की थी कि वो किसी एक और दो व्यक्ति की ही उपस्थिति करते करते वो गांव तक फैल गई और आज पंचायत जो उसकी तरफ देखे नहीं थी पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो गई। जैसा आपने देखा है मनरेगा का लेबर अधिकांश वहाँ लगा हुआ और बड़ी तल्लीनता के साथ में उन पौधों की सेवा कर रहा है। फिर वही बात कि रात्रि में चौकीदारी नहीं हो पाती, तो कई तरह की बातें होती है, लेकिन फिर भी जो देखा उसके हिसाब से काफी अच्छा संयोजन लोगों का, काफी अच्छा जुड़ाव वहाँ पर हमारे पवित्रा भाई ने रूबरू वहाँ जा करके देखा और वहाँ उन्होंने बताया कि इस वातावरण को अगर और संगीतमय बना दिया जाए तो वाकई बात ही कुछ और हो जाएगी। वास्तव में जब अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो अच्छे अच्छे विचार स्वतः मन में आते हैं,
0: क्योंकि संगीत क्या है, परमात्मा तक जोड़ता है। कोई भी साइलेंस में रहेगा, एक छोटा सा भक्ति का एक म्यूजिक डाल दे तो पौधा को भी अच्छा महसूस होता है और हम मनुष्य को भी अच्छा महसूस होता है।
1: सर मानसिक शांति मिलती है,
0: शांति मिलती है। थोड़ा सा हल्का ट्यूनिंग दे दो और धीरे धीरे शांति का, और नाम ही कितना सुंदर रखा मैंने पिछला एपिसोड में जो सुने, और
1: सुशांत वाटिका
0: वाटिका में जो इस तरह जैसे हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स है जैसे सर ने बताया, और जहाँ से हम लोग दे रहे वो भी आरोग्य बने, वो
1: आरोग्य
0: नाम ही कितना, यहाँ पर जितना आएंगे तो आरोग्य फील करेंगे। और यहाँ पर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल का जो बात हुई थी यहाँ पर होगा समय अनुसार, लेकिन अभी उसका प्रोसेस में है, क्रम का जारी कंस्ट्रक्शन होता है, उनका जो गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन का चल रहा है, लेकिन हो जाएगा। और अभी तो जब तक वो नहीं हुआ तब तक यहाँ का एरिया थोड़ा डेवलप कर रहे हैं खेती को, और आरोग्य वन में हर वेरायटी का जो बिना रासायनिक,
1: बिल्कुल बिना रसायन,
0: आप तो देखे हूँ।
1: जी हाँ जी हाँ, अभी देखा, अभी देखा, अभी
0: क्या आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसे करना, जमीन है उसका हम जहर नहीं दे रहे,
1: बिल्कुल
0: अमृत दे रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: गोमूत्र,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नीम का पत्ता,
1: जी
0: बेल का पत्ता, जितने वेरायटी जैविक खेती बना रहे,
1: जी जी जी,
0: ये कम बात नहीं है
1: सर।
0: तो उसका बारे में आप तो खुद प्रैक्टिकल देखे, हम तो कहने नहीं चाहे, कोई भी आए चाहे देखे यहाँ पर भी।
1: साहब अभी आरोग्य वन में जो ही प्रवेश किया, ये जो इन्होंने इसको ब्रह्मा कुमारी ने प्राप्त किया, उससे पहले तो बड़ा ही अनइवन सा पड़ा हुआ था, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से गुजरते थे। आज इतना सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, एक अच्छा सा ग्राउंड,
0: हम तो अपना अच्छा कहेंगे, बाहर के लोग आकर देखेंगे तो कहेंगे उसका प्रभाव पड़ा,
1: अभी तो देखेंगे
0: आपने,
1: सब लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो वो सीखेंगे।
0: तो केवल का व्यक्ति है वो, राम जी जो सब जानते, बच्चे से बड़े तक जानते, तो वो जब बोलेगा उसका प्रभाव पड़ेगा।
1: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की ये चीज है यहाँ पर है।
0: अपना दही खट्टा हम बोल देंगे, दूसरा भी खाएंगे तब खट्टा के मीठा वो
1: जी
0: बताएंगे। तो आप जैसे बता रहे हैं हमारा कम्युनिटी रेडियो का माध्यम से,
1: जी हाँ,
0: जहाँ जहाँ हमारा ये पहुँच है, जिस मार्ग में, जिस नेट का माध्यम से,
1: जितनी पहुँच है, जितने किलोमीटर
0: सुन रहे, उनको ये पहुँच है, वो भी यहाँ से फायदा लेकर अपना जमीन को, जमीन के पास
1: उर्वर बनाए, उर्वर बनाए।
0: शुरुआत पांच एक एकड़ बाय एक बीघा से शुरू करें,
1: बिल्कुल
0: अपने घर में जो छत है उसमें भी खेती बना सकते हैं।
1: जी हाँ जी,
0: किचन गार्डन जिसको कहते हैं,
1: घर में छत पर बनाया जा सकता है।
0: इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है,
1: अभी हमने जो तपोवन जो क्षेत्र है उसमें देखा कि वहाँ पर किस तरह से आपकी छत के ऊपर आप जो खेती कर सकते हैं। कई बार हमने हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, उसमें सर बिना मिट्टी के खेती हो रहा है, पानी से, सिर्फ पानी से। तो वो भी इसके लिए अहमदाबाद वगैरह में बड़े बड़ी जगह में जहाँ पर जो डेवलप हो रहा है,
0: खेती का भी बात करते हैं सर, जिस जंगल में जो खेती होता है,
1: जैसे
0: अनार बरह जो कि मिलता है काम पर, जैसे सीताफल,
1: जी हाँ,
0: जंगल
1: में जंगल में मिलता है, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक प्राकृतिक। तो सर सरकार खूब काम कर रही है सर,
0: प्राकृतिक खेती,
1: जब हम
0: जंगल का सुरक्षा,
1: मेरा अनुभव है सर, मैं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंदर डिप्टी कमिश्नर का चार्ज मेरे पास में था, तब सर हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लाए थे, तो उसके तहत सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, और उसमें अपने इस क्षेत्र में यहाँ पर एक तो सीताफल पल्प के लिए एक प्रोजेक्ट लिया था, उसमें पल्प ओनली फ्रॉम सीताफल, तो उसका बहुत बड़ा महत्व भी है, और वो किसी प्रकार का कोई रसायन ही उसमें नहीं है, तो काफी लोग उसमें जुड़ गए, उस काम को कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन अभी जैसे अभी यहाँ पर आपने जो आरोग्य वन बताया, उसमें जैविक खेती जिसको हो रही है, इसमें स्पिरिचुअली उसको संस्कार दे करके उसको यौगिक खेती बनाया जा रहा है। जैविक खेती में गोमूत्र, अर्क, और उसके अंदर वेरियस सिस्टम से एलोवेरा, आंवला, दशपर्ण, जो आपका दशपर्णी है, जो विभिन्न पेड़ों से पत्ते होते हैं, अर्क का रस वगैरह, ये सब उसको कंपोस्टिंग करके, और अलग अलग ड्रम्स यहाँ पर भरे हुए हमने, लिक्विड हमने देखे, और उस सिस्टम में एक भैया जो कि समर्पित है, अजय भैया, जो सिर्फ 23 साल के थे यहाँ पर आ गए, आज लगन से उस काम में लगे हुए हैं, बड़े गदगद होकर के हमको अमृत दिया, हम बड़े खुश हो गए। यहाँ पर इस तरह का पूरी जानकारी के साथ में डेडिकेटेड तब लगा कि वास्तव में हमको भी थोड़ा थोड़ा तो वही करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस पर्यावरण को शुद्ध और विशुद्ध कर पाएंगे।
0: ब्रह्मा कुमारी जैसे आप चार पांच कॉम्प्लेक्स देखे, जैसे आप आरोग्य वन देखे, तब बोले तो यहाँ और आपका वहाँ पे जो क्या कंपेरिजन आपको देखने को मिला, मैंने सही बात देखेंगे, लोग इतना कर पर, जैसे आपने डेडिकेशन देखा, ये एक स्पिरिचुअलिटी देखा, और ये परमात्मा का निस्वार्थ है, तो ये चीज जब आप वहाँ पर भी करेंगे तो उसको भी आप इस तरह डेवलपमेंट कर पाएंगे, मेरा ये विचार आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब आप समर्पित होकर के आप अगर योगा करते हैं, राज योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निश्चित रूप से समर्पण भाव आता है कि हम समाज के लिए करें, मतलब अपने लिए ही तो कर रहे हैं,
0: उसमें हम
1: तो सब एक दूसरे के लिए करेंगे, अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी भावनाएं ही पनपेगी, और वो वातावरण आपको सुख और शांति देगा, और ईश्वर को पहचानने का, यानी कि स्वयं को पहचानने का एक मार्ग बिना रोगों के साथ में प्रशस्त करेगा। तो कहने का अर्थ ये है सामान्य तौर कि आप पर्यावरण के प्रति जितना ही अच्छा चिंतन करेंगे, चिंतन के साथ में अच्छा कर्म करेंगे।
0: सर इसीलिए गाय ने तो कृषि
1: जी
0: ऋषि और कृषि
1: जी जी
0: कितना लगाव है।
1: बिल्कुल
0: ऋषि अगर कृषि करेंगे
1: तो फिर बात ही कुछ अलग
0: वरदान बन जाएगा।
1: वरदान ऋषि कृषि को ऋषि बन करके कर दिया तो वो वरदान ही बन जाएगा।
0: ओके योग करके राज योग मतलब ऋषि है और कृषि कर रहे हैं, हमारे राज ऋषि से भी कृषि कर रहे हैं तो कैसे होगा, है ना। बहुत अच्छा हो रहा है और होते जा रहा है, यहाँ का स्वादिष्ट फल है और यहाँ पर कोई खाने का बाद बोलेगा नहीं हमें बीमार पड़ गया ये हो गया वो गया नहीं, क्योंकि ये रासायनिक का नहीं। हम क्या करते हैं रासायनिक पदार्थ देकर जहर जमीन को भी पहले अपना जो हितकारी कीटाणु को भी नष्ट कर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हितकारी जो कीटाणु हितकारी है, जैसे आपने बताया मैं उसी बात को छीन रहा हूँ कि केंचुआ जमीन में है लेकिन उसके अंदर जितना आप पेस्टिसाइड्स देंगे मर जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक उसमें जो मैन्योर बनना है वो नहीं बनेगा।
0: जी जी
1: तो इस तरह से
0: कुछ जीवन को
1: बिल्कुल वो क्रिएट होता है, यहाँ क्रिएट हो रहा है,
0: दो छोड़ देंगे तो
1: पूरे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम
0: मैंने देखा सर, ऐसे भी नहीं यहाँ कोई गाँव में भी
1: नहीं करते हैं सर, करते
0: एक दो जैसे जो भले कम लेवल में करते हैं लेकिन अच्छा
1: करते हैं
0: प्रयास है,
1: तो उससे
0: कम है ज्यादा होना चाहिए,
1: बहुत ज्यादा होना चाहिए, भले उसका प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आवे
0: एक साल दो साल का आएगा
1: हाँ, लेकिन उसके बाद वापस मेंटेन हो जाता है। तो हमको पशु पक्षियों के संरक्षण के साथ में इसको करने की बहुत बड़ी महती आवश्यकता रहेगी, तब जा करके ही ये संभव हो पाएगा, जीवन सुखी और आनंदित हो जाए,
0: सबका प्रयास कर
1: सभी के प्रयास,
0: गांव में
1: सभी का प्रयास होगा तभी बैठा है।
0: और गांव वाले भी सहयोग होना चाहिए,
1: सभी का सहयोग होगा,
0: एक आदमी लगे दूसरा आदमी उसको छीनने के लिए टांग खींचने के लिए
1: नहीं
0: होगा,
1: सबका सभी मिल करके,
0: और समय अभी आ रहा है सभी को लग रहा है करना है,
1: सभी को करना ही होगा।
0: सब चावल प्लास्टिक का चावल क्या क्या तो पता
1: नहीं, आर्टिफिशियल फायदे के लिए लेकर प्लास्टिक का चावल बना रहे हैं, सिंथेटिक दूध बना रहे हैं, तेल का घी बना रहे हैं, वो मिर्च मसालों में कुछ अलग अलग चीजें डाल रहे हैं। तो सर क्या जो जो इस चीज में जो इसको समझता है ना वो बड़ा अंदर से द्रवित हो जाता है।
0: पर्यावरण के लिए कितना
1: कि करना क्या, पानी अशुद्ध आ रहा है अभी सर, अभी मैंने बात अभी सुनी मैं दो दिन पहले, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठता हूँ भैया
0: कुछ न कुछ
1: अध्यात्म के साथ में मुझे पर्यावरण की बात ही छीनने का मजा आता। तो मैं बैठा मुझे अखबार में भी पर्यावरण ही दिखता है भाई सर, अभी आज की हेडिंग थी एक अखबार की ऑथेंटिक बात करते हैं सर, वो यूरिया और डीएपी जो छिड़क रहे हैं ना सर वो अपने स्वास्थ्य पर जहर पैदा कर रहे हैं, छिड़क भाई वही गेहूं पैदा होगा वही खाएंगे आप।
0: मैंने सुना है सर बीमारी यूरिया डीएपी अमोनिया जो डालते खेती में
1: जी जी
0: वो इंसान जो कास्कर भाई
1: जी हाँ
0: डालने के बाद तुरंत बेहोश जैसे उसको लग रहा है।
1: बिल्कुल
0: मनुष्य इतना बड़ा स्ट्रांग है,
1: हाँ, सुने हाँ, हाँ,
0: मनुष्य इतना स्ट्रांग होकर उनको तो दिमाग मैंने भटकता है मैंने गिर जाता है वो कीटनाशक डालने का समय में, और जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे और जहाँ पर वो वाइब्रेशन पड़ रहा है उसका हालत क्या होता है,
1: उसकी हालत क्या होता
0: है। हमारा मनुष्य इतना स्ट्रांग है, इतना बुद्धिजीवी है और तुरंत प्रिकॉशन लेना तो उसको भी कभी कभी उसका हालत
1: सर यही बात मुझे याद आ रही है,
0: जहर पिला रहे हम
1: सर बिल्कुल,
0: हम इंडायरेक्टली हम खा रहे हैं,
1: नहीं वो तो खाना ही है डायरेक्ट ही खा रहे हैं,
0: कुछ है उपाय
1: इनडायरेक्ट क्या, आप जब छिड़केंगे तो उससे पैदा हो रहा है जो गेहूं वो आपको खाना है
0: जो भी सब्जियां ऊपर डालते हैं, और आजकल तो जानते हरा भरा करने के लिए क्या क्या रासायनिक मैंने कलरिंग
1: भी कर देते
0: हैं पैसे लालच।
1: तो सर ये सारी चीजें तो अंदर से समझ नहीं पा रही है,
0: ये प्रकृति
1: सर जितना भी सल्फर यूज हो रहा है इन दवाइयों के रूप में सर वो सीधा ब्रेन पर असर करता है,
0: सब जानते हुए भी मनुष्य से क्यों
1: जितने ऑक्साइड उत्पन्न,
0: हम पिछले लिंक में भी बताए थे लालच
1: अधिक ना सर, लालच क्या, भोजन पानी ही तो चाहिए, प्रकृति खुशी से दे रहा है खुशी से खाइए पाइए, जब इतने इतने बड़े बड़े संस्थान इतना काम कर रहे हैं तो आप और हम खुद के भोजन की तो कहाँ दिक्कत ही कहाँ,
0: जितना जमीन उतना भले इतना बड़ा भारत नहीं करे ब्रह्मा कौन इतना बड़ा संस्था है,
1: तो ये चला रहा है इतना बड़ा चल रहा है तो छोटा मोटा क्यों नहीं कर पाएंगे। तो सर
0: तो सभी कास्टर भाई को ये निवेदन रहेगा भाई हमारे कार्यक्रम सुनने के पश्चात आप एक कम जगह में अपने खेती के लिए अपने घर यूज करने के लिए भले करो, इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाते
1: धीरे धीरे बढ़ाइए, पहले सुन करके अपने घर पर करो, अपने घर पर वेस्टेज कम करो, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट अपने घर पे करो, गीला सूखा कचरा अलग अलग डालो, तो अपने घर से जब शुरू करेंगे तो आपको दिशाएं मिलेंगी, अपनी खेती को बिल्कुल ऑर्गेनिक बना दो तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से
0: क्या दूर रहेंगे। गोबर और जो कीड़ा कचरा जो पत्ता वगैरह उसको एक जमीन गड्ढा कर देते थे उसमें डालते थे और उसको मिट्टी डाल देते थे, कंपोस्ट बन जाता था,
1: बस
0: इधर उधर नहीं फेंकना होता है, हम देखे हम तो बिल्कुल भी बचपन।
1: हाँ नहीं नहीं ये हाँ यहाँ भी होता रहा है, हमने खुद देखा है,
0: हम खुद किए हैं। तो इस तरह कार्यक्रम करेंगे तो आप भी अपना जो वेस्टेज को जो बाहर फेंक देते जिसके चलते पूरा पर्यावरण का नुकसान होता है, वातावरण पूरा सुगंधित नहीं का दुर्गंधित होता है, कहीं ना कहीं खेती करके उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट शब्द तो हमारे होशियार हमारे श्रोता मित्र ग्रामवासी है, लेकिन उसको थोड़ा सा थोड़ा अटेंशन
1: कहीं भी ध्यान दे करके शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से पड़ोसी भी कर देगा और धीरे धीरे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा।
0: तो शुरुआत हमसे पहले हम सबसे पहले सबसे करना है तो सुनेंगे। और कुछ खासकर आरोग्य वनों का जो हम निरीक्षण कर रहे थे तो कुछ डिफरेंस भारत बहुत सारा सेवा आपने देखे हैं और अपना गांव की वली में किए हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ के कंपेयर करेंगे तो जो चीज विशेष रूप में यहाँ पर देखे है ये चीज को जब हम वहाँ यूटिलाइज करेंगे एक मॉडल आप देखें इस चीज को हम भी वहाँ करेंगे, भले छोटा लेवल पे करेंगे तो
1: बिल्कुल
0: जानकारी मिलेगा। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अभी गए फिर आए आपको फिर यहाँ से जानकारी देने के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ा तो है, आप सब सुन पा रहे हैं। एपिसोड में खासकर पर्यावरण संरक्षित व पर्यावरण को विकसित करने के लिए, पर्यावरण को साथी बनाने के लिए हमारा प्रयास है। और हम लोग बात कर रहे हैं, खासकर हमारा जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, बहुत रखते हैं पर्यावरणविद, वो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजा रहे, तो हमें बहुत खुशी लग रहा है। और हमारा श्रोता मित्र को, और खासकर जो पर्यावरण में जो रुचि रखते हैं, उनको भी कुछ फायदा मिले, ये हमारा सुभावना है। और बहुत सारे एपिसोड बने हैं, तो एक के बाद एक आप देखें, सुनेंगे, जानेंगे। तो कभी भी विजिट करना होगा तो हमारा नंबर से भी आप कॉन्टेक्ट कर आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं इसमें निशुल्क। लेकिन पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, भाई हम उस दिन जाएंगे तो हम उसी दिन हिसाब से व्यवस्था करेंगे, जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आप उस समय आपको बताएंगे। तो चलिए, जो हमारा इसमें एक्सपर्ट है, जो पर्यावरणविद है, तो वो उनको स्वागत करते पुनः। सर, आपको वेलकम पुनः इस कड़ी में। तो क्या कहना चाहेंगे अभी तो पूरा पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को खासकर आरोग्य वन किस तरह,
2: जी हाँ जी,
1: किस तरह उसको मैंने मेंटेन, मैंने उसको तारतम्य, जिसको बैलेंस रखने के लिए सहयोग देता है। आप तो देखे हैं और आप पढ़े हैं, लेकिन पर्यावरण जो इस तरह वातावरण बना है, इससे पर्यावरण को क्या फायदा होगा? और पर्यावरण को फायदा होगा तो मनुष्य, पशु, जो भी यहाँ पर इंसेक्ट है, उनको क्या फायदा हो रहा है?
2: सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। पर्यावरण के इस विशेष चिंतन में, जैसा नाम से ही विदित है, आरोग्यवन संस्कारों से संचालित, राजयोग संचालित। यहाँ देखने की सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये सर ये कितने बीघा में फैला हुआ बता रहे हैं इस वाले को, आरोग्यवन को?
1: सर 73।
2: सर जितना भी है आप जितना बता रहे हैं, 70 बीघा क्षेत्र में। सर ये बहुत बड़ी बात मैं बताऊं कि इस 70 बीघा में कोई इंडस्ट्री तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि सर इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन होता है।
1: जी सर,
2: नो डाउट विकास होता है। सर मैं साथ में ही चलूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा, इंडस्ट्रीज से विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है,
1: इसका
2: तो सर रोजगार तो यहाँ भी मिल रहा है। तो ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हुए, रोजगार बनाते हुए, लोगों को शुद्ध यहाँ से अन्न, दालें, सब्जियां प्रदान करने का जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, जो सर समर्पित होकर के कर रहे हैं, तो वो ऐसा एक तरह से जैविक औद्योगिकरण हो गया है ये। मतलब उसमें प्रदूषण होता है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं, और उपयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है इनकी उर्वरता के लिए, वो भी न तो पानी ज्यादा खर्च हो रहा है। इजरायली पद्धति से सर यहाँ पर जो इरिगेशन हो रहा है वो भी स्प्रिंकलर बेस्ड है।
1: वो हमारे जो श्रोता मित्र उनको थोड़ा और
2: बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ कि वो पानी सर यहाँ पर, जो पानी यहाँ का जो सिस्टम है सर, वो सारा सोलर से लिया हुआ है। सोलर सिस्टम से जितना काम हो सकता है वो सोलर सिस्टम से, और इसके अलावा जो काम है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। अब जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ का छोटा सा, जो मैनेजमेंट का पार्ट है सर, मैनेजमेंट में यहाँ पर सिर्फ मुझे दिखाई दिए 5 से 7 लोग, काम करने वाले जो लोग हैं वो 15 से 20 लोग, कई मजदूरों के अलावा, जो इसको कंट्रोल कर पाते हैं। एक यूनिट तो सर इसमें ऐसा लगा हुआ है जो जितना भी जैविक मैन्योर देना है, खाद देना है, उसके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ, वो व्यक्ति वहाँ पर
1: वो भी मैंने
2: बिल्कुल पद्धति से समर्पित होकर के विधि से उसको किस तरह से
1: जगह डाला,
2: पानी के साथ में खाद कैसे देना है, जीवाणु कैसे देना है,
1: जैसे
2: वो बिल्कुल वहाँ से
1: बटल
2: बिल्कुल मैनेज सिस्टम में इस तरीके से वो काम हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें पानी का भी प्रदूषण नहीं है, वायु का प्रदूषण नहीं, कोई शोर नहीं, और पेस्टिसाइड्स भी यूज नहीं हो रहे। तो आप बताइए कि यही काम आप और हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर पाते हैं, बस इसको अगर आप सीखें कि इसको कैसे देखना है, तो आप रेडियो मधुबन के माध्यम से या जो भी सिस्टम ग्राम विकास प्रभाग के अंदर आप संपर्क करें, ब्रह्मा कुमारी में।
1: हम हर साल सर पूरा ऑल इंडिया से
2: तपोवन में सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों के थ्रू प्रशिक्षण के प्रोग्राम से यहाँ करवाती है।
1: गवर्नमेंट उसको आने जाने का पूरा खर्चा,
2: सरकार बिल्कुल सिस्टम से खर्चा करती है, सारा पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं। तो आप भी सुनने वाले भाई बहन, जो भी है वो आकर के इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम बहुत बड़ा योगदान।
1: सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपका गांव में जितने किसान जो लैंडलॉर्ड हैं जो करते हैं
2: जी जी जी
1: वो तो कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा उनको एक समय टाइम दे दीजिए। पांच लोग आए, 50 आएंगे तो बढ़ाए,
2: बिल्कुल
1: पांच लोग भी आए,
2: मोटिवेट करने का प्रयास,
1: थोड़ा देखें जो प्रैक्टिकल
2: देखेंगे तभी सीखेंगे।
1: हमारा तपोवन में ये चीज आप लोग के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ
2: जी हाँ जी हाँ,
1: रेसिडेंशियल भी है, रहकर अपना सब कुछ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जरूर आपके लिए भी
2: सिक्योरिटी काम सभी सभी गांव सभी गांव
1: जितना अपरोड में जितना ब्लॉक
2: जितने जो भी सुन रहे हैं
1: तो वो भी आकर
2: ले
1: सकेंगे। हम सुखी रहे तो हमारा आसपास गांव भी सुखी रहे,
2: सभी सुखी
1: रहे, सभी हमारा किसान हमारा अन्नदाता है,
2: मन वचन कर्म से सभी तरह से शारीरिक
1: हम तो वेलकम करते हैं। इस तरह खेती आप अपना लोकल एरिया में भी करें, इसके चलते एक मॉडल बनाए, पूरा देश विदेश का लोग आकर सबका जो बुद्धि को परमात्मा पर पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए। सत्य युग में ऐसे ही दुनिया आएगा सर, नॉइज पॉल्यूशन
2: नहीं होना,
1: पानी पॉल्यूशन नहीं,
2: ये सतयुगी है यार, पॉल्यूशन से दूर ये सतयुगी है, भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, शुद्ध गेहूं मिलेगा, शुद्ध दालें मिलेगी, शुद्ध सब्जियां मिलेगी, तो ये काम हमको बड़े तरीके से अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस मानवता के लिए
1: जी सर मानवता
2: हम ईश्वरीय कार्य कर पाएंगे। मेरा तो
1: यह बहुत अच्छा पॉइंट, मानवता के लिए कुछ करना चाहिए, हम तो अपने के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन एक मानव नाते मानवता बजाय रखने के लिए कुछ तो करें।
2: आप भाई बहन जो सुन रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत ही सर महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
1: क्या बात,
2: इसकी स्टीयरिंग कमेटी में राजस्थान से मैं स्वयं था
1: जी
2: सर, उस बिंदु को एनवायरनमेंट को इतना तरीके से सजा के रखा है इसमें जिसकी कोई सीमा नहीं है, प्रत्येक कक्षा में इस पार्ट को दिया हुआ है।
1: क्या बात,
2: तो अब उसमें ये जो हमारे शिक्षक भाई बंधु है वो भी सिखा रहे हैं, ज्ञान भर रहे, लेकिन उस काम को करवाएंगे तब जाके होगा। क्या वो उस बच्चे ने घर पे जाके ये काम किया तो निश्चित रूप से वो उनके व्यवहार में आएगा, इसकी भयावहता उनको पता चलेगी तो निश्चित रूप से वो काम कर पाएगा। कई आयाम है साहब इसके, जैसे सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अंदर से गदगद हूँ कि राजस्थान सरकार ने संभवतः हाईकोर्ट ने ये आदेश किया है कि जो रोड से बड़े जोर से उनसे 500 मीटर के दायरे में कहीं भी कोई शराब की दुकान नहीं होगी।
1: क्या बात,
2: जी हाँ, तो ये कितना अच्छा डिसीजन है। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब उसी लिंक से है कि आप नशा नहीं करेंगे तो कितने आनंद में रहेंगे। मेरा यही कहना है, मैं आपसे ये कह रहा था कि नदियों के अंदर उसका सीना चीर करके जो अव्यवस्थित तरीके से रेत को खुदाई की जा रही है, वो भी जो रास्ते हैं उनसे 400-500 मीटर अगर दूर तक प्रतिबंधित सरकार कर दे, हम कमी नहीं बता रहे, कर सकती है, ऐसे आदेश हो जाए तो निश्चित रूप से कई सारी घटनाएं कम हो जाएंगी।
1: सही बात,
2: उनके साथ रास्ते चलते होने वाली दुर्घटनाएं वगैरह उससे वो लोग बच जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं ये वास्तव में पर्यावरण की ओर एक बहुत बहुत अच्छा कदम है, सरकार का एक बहुत अच्छा स्टेप,
1: उनके पास पावर है और
2: दे कैन डू इट, सब कर सकते हैं अगर शिक्षा वाले ये करेंगे, स्वास्थ्य वाले ये, सर स्वास्थ्य वाले ये बता रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं जो मजदूर खेतों में
1: जी जी
2: सर, उनके ब्रीज में जब उनका खून की संरचना का टेस्ट किया जाता है तो कई तरह के एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो मतलब खतरनाक स्थिति तक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो क्यों नहीं बचे आप और हम, आवश्यक उपयोग करें, अनावश्यक उपयोग क्यों करें,
1: खुद को बचाए कम से कम,
2: कम से कम खुद को बचाए।
1: उसके बाद
2: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है सर, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया सरकार ने, तो वहां जाके सीखे, उनसे पूछे,
1: अपना सिरोही जिले में भी
2: सब जगह है, वो तो सर हम संपर्क नहीं करेंगे तो कैसे हो पे? जैसे मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, आप मेरे से संपर्क करें, संपर्क तो करना पड़ेगा, उनको अपना उद्देश्य भी बताना पड़ेगा।
1: तो जब ग्रास रूट में ये चीज नहीं होगा तब
2: तो हाँ, वो करेंगे
1: जमीन स्तर पे, हमें कुछ
2: सर,
1: करना
2: सर
1: चाहिए,
2: पकड़ना
1: और जमीन स्तर पे हमारा गांव वाले ही रहते
2: सर। जैसे मैंने आपसे संपर्क किया, आप मुझे आरोग्य वन ले आए, तो मैं आपसे मिलूंगा नहीं, आप क्यों लाएंगे, जाना तो पड़ेगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, सरकार बताना चाह रही है तो उसको आगे तो पब्लिक को बनना ही पड़ेगा, तब
1: मेहनत थोड़ा तो है,
2: मेहनत करना पड़ेगा,
1: तो एक बार मेहनत आगे
2: विचारों के साथ में आगे बढ़ करके जब हम उपस्थित होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो एक से एक जुड़ करके कारवा जुड़ जाएगा। कई जगह आपने बताया ना कि एक एक व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है, तो एक से एक बढ़ करके एक से एक 11 हो गए, फिर एक मेरा 111 हो गया, हम तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं
1: और इसको साथ जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे
3: देंगे, 10 हो गए
2: हीरो
3: बनना है और जीरो को साथ रखना है। जीरो मतलब कौन ना, हमारा जो अंदर में जो विवेक शक्ति और विवेक जीरो
2: का पूर्ण उपयोग
3: करेंगे और विवेकशील होकर करेंगे। और विवेकशील कब होंगे, जब हम थोड़ा सा अपना मन और बुद्धि को सशक्त करने के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करे।
2: जी जी।
3: और अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा आस्था
2: आगे आना पड़ेगा,
3: आगे आना पड़ेगा और आध्यात्मिक थोड़ा क्रॉस करेंगे तो जाकर ये सहज हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कष्ट लगेगा। जब स्पिरिचुअलिटी रह जाता है तो उसमें पूरा सहज हो जाता है, कोई
2: सहज,
3: क्योंकि राजयोग बहुत कष्ट का पार्ट नहीं, मंत्र है, मन से विचार देना है,
2: मन से विचार देना है
3: और अपना विचार जो आता है जो थिंक पहला संकल्प,
2: संकल्प से
3: वो संकल्प हम पॉजिटिव करना, और पॉजिटिव करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना
2: है, अंदर अंदर जाना पड़ेगा, तभी होगा, तभी होगा।
3: हम जो बोले थे इनर
2: सर, आपको खुशी से एक बात सुनाया फिर।
3: जी जी।
2: जब आप ये कहते हैं ना, तब आप कई बार ये गीता ज्ञान की बातें करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि गीता में जहाँ पर दो चीजें बताई है, जीवन जीने का एक तो मार्ग बताया है निष्काम कर्म युग, और दूसरा बताया है सांख्य योग।
3: निष्काम
2: विस्तार से तो जब आप कहेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन सांख्य योग तो ये कहता है कि जो करता है कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के, सब तरफ से जो कर्म किया जाए वो सब ईश्वरीय कर्म ही है ऐसा सोच करके जो जीता है, जो कर्म करता है निस्वार्थ, सब ईश्वर का है, ईश्वर के लिए ही कर्म कर रहा है, वो सांख्य योग है। डिटेल्स के लिए तो इसकी दूसरी बात होगी। फिर है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग इसलिए सरल पड़ता है कि उसमें उसमें निष्काम फल के लिए कहीं आसान नहीं, आपको कर्म करना है, करते जाओ बस, उस ईश्वरीय प्रतिरूप सभी को मान करके उसका कर्म करते जाओ, तो आपका निष्काम जो कर्म योग है वो जीवन के जीने के उद्देश्य को ईश्वरीय बना देता है, सफल बना देता है।
3: क्या बात, कितना
2: इसमें जो प्रथम अध्याय है इसका, विभिन्न मनुष्यों द्वारा इस पर काफी चर्चाएं की गई, कहा कि जब सामने कौरव और पांडव खड़े थे तब प्रश्नोत्तरी चल रही है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, रे इन सब ने क्या किया है, ये सब तो कर्म भूमि है ये दुनिया। इस युद्ध क्षेत्र में जहाँ आप और हम भी खड़े हैं, तो अर्जुन वहाँ विषाद युक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, कि भाई ये मेरे चाचा दादा गुरु ये सामने खड़े हैं, स्वार्थवश खड़े हैं, मैं इस तरफ खड़ा हूँ। कृष्ण भगवान से ये कहते हैं, एक आधार माना है, ये कहते हैं कृष्ण भगवान के माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं, ये कहा है कि मैं इनको मार करके जीना नहीं चाहता, मैं इनको मार करके तो राजा भी नहीं बनना चाहता, और न ये मुझे मारे और मैं ऊपर चला जाऊं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं ये लड़ाई लेने वाला काम क्यों करूं। तब भी भगवान उनको संदेश देते हैं कि हमको कर्म करना है, निष्काम कर्म करो अर्जुन, या सांख्य योग के साथ में कर्म करो, सांख्य योग थोड़ा मुश्किल है लेकिन निष्काम कर्म योग से अगर आप करोगे तभी आपका जीवन सफल है, करना तो होगा
3: जी।
2: आपको अकर्म होकर के नहीं जीना है, आपको विकर्म होकर के नहीं जीना है, कर्म तो करना ही होगा। ये सारी 18 अध्याय में ये सारी चीजें बताई है, जिसको विभिन्न तरीके से दुनिया में वेदों में तो काफी चीजें इधर उधर बताई है, लेकिन कम से कम ये जो सार बताते हैं उपनिषद का,
3: जी जी,
2: जो गीता को सार बताते हैं उसके आधार से जो बात कही है वाकई काबिले तारीफ है, कि हमको सब कुछ कर्म ईश्वरीय करना चाहिए।
3: सर कर्म जैसे आपने बात की बहुत अच्छा, निष्काम कोई कामना नहीं रखना है,
2: निष्काम
3: कर्म निस्वार्थ होकर कर,
2: निस्वार्थ होकर
3: परमात्मा भी निस्वार्थ
2: अच्छा कर्म
3: देते हैं,
2: अच्छा कर्म
3: परमात्मा निस्वार्थ रूप में कर्म करे, क्योंकि हम भी स्वार्थी क्यों हुए, और कर्म अकर्म और विकर्म, कर्म जो बात हुई है तो उसमें हमारा कर्म कभी विकर्म हो जाता है, विकर्म से विकार वस्तु,
2: विकार वस्तु
3: तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या परिजन में जो आते हैं वो कर्म हमारा विकर्म बनता है जो कि पाप होता है,
2: जी
3: है। और एक कर्म होता है जो अकर्म,
2: अकर्म
3: जिसे सत्य युग में देवी होता है जो निस्वार्थ
2: अकर्म, अकर्म अकर्म अकर्म हो जाता है, ईश्वरीय कर अकर्म हो जाता है,
3: आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक सभी को आत्मिक देखना है अपना, तो उसमें स्वार्थ
2: नहीं रहता,
3: अपना परिवार के लिए कुछ करते हैं तो स्वार्थ नहीं रहता
2: है,
3: तो उसको कहते हैं अकर्म, जो कि सत्य युग जो हम कर्म करें सब तो कर्म, बैठना उठना देखना वो भी कर्म है,
2: जी है,
3: लेकिन हमारा दृष्टि वृत्ति कृति पूरा
2: श्रेष्ठ
3: है, श्रेष्ठ कहते हैं
2: जी।
3: तो कर्म और सत्य युग में जो होता है सत्य त्रेता में वो अकर्म होता है, देवी देवता अकर्म विकर्म नहीं होता,
2: विकर्म उनका नहीं
3: होता, हम मनुष्य का
2: विकार विकारी
3: हो जाते हैं, क्योंकि हम कर्म श्रेष्ठ नहीं,
2: हाँ वो
3: श्रीमत आधार करते हम रावण मत में, मन मत में, पर मत में करते हैं, स्वार्थ मत में,
2: स्वार्थ में करते हैं,
3: जिसके चलते विकर बन जाता है। विकर्म संबंध आप विकर जानते होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: जहाँ विकर
2: जो विकार उसमें आ जाते हैं,
3: विकार में बसी भूत,
2: विकार के बस
3: बॉडी कॉन्शियस सर,
2: बॉडी कॉन्शियस नहीं होना,
3: सोल कॉन्शियस।
2: हाँ, दो दो चीजें, सोल कॉन्शियस होना है।
3: हाँ, सोल कॉन्शियस होकर आप जो काम करेंगे ना सर, वो श्रेष्ठ होगा और अकर्म होगा।
2: बिल्कुल।
3: और बॉडी मतलब दो पार्ट हमारा, शरीर और जैसे इनर और आउटर,
2: इनर आउटर वही बात है, वही बात वही कही
3: वही आगे। तो इस चीज हम जब देखते हैं, हमारा श्रोता मित्र भी समय करा रहा, सभी लोग आध्यात्मिक का साथ साथ भक्ति भावना अगर बहुत कुछ बढ़ रहा है और उसका फल स्वरूप आज ज्ञान आवश्यकता है, क्योंकि आज गीता के जब आप
2: बताए
3: ज्ञान क्यों आया।
2: बिल्कुल,
3: ज्ञान गीता ज्ञान है,
2: ज्ञान देंगे
3: समझ
2: तभी जागृति
3: आएगी सर। अर्जुन कौन, हम सब एक एक
2: अर्जुन ही है,
3: ज्ञान अर्जुन का
2: वही है
3: अर्जुन, जो अर्जुन कर रहे वो अर्जुन है। तो हम सब जो सुन रहे अर्जुन कर रहे हैं,
2: अर्जुन कर रहे हैं, अर्जुन अर्जुन
3: परमात्मा हमें दे रहा है,
2: वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम माय ऑलमाइटी गॉड,
3: अथॉरिटी का ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, परम पिता परमात्मा जिसको कहते हैं, सभी धर्म उसको मानते हैं,
2: सभी कोई कुछ भी नाम दे दो वही है।
3: तो कौन है मतलब अकर्म, हमें कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, और कर्म श्रेष्ठ तब होगा हम गीता ज्ञान जब सुनेंगे। गीता ज्ञान कौन देता है, परमात्मा ही देते, भगवान दिया है। तो भगवान का जो बात सुनेंगे तो हम अपना कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्म होगा तो हम सत्य युग दुनिया हम इस धरा पर ला सकते हैं, हम और आप मिलकर
2: मिलकर
3: तो अभी
2: धीरे धीरे आएगी, धीरे
3: धीरे धीरे आ रहा है,
2: खुशी से आएगी,
3: आ रहा है। समय ऐसा आएगा, समय आपको करा देगा,
2: करा देगा, वो समय तो करा ही
3: समय करा देगा, आप करे चाहे नहीं कर कराएगा,
2: समय
3: विवेक बोला भाई
2: सर देखिए समय कैसे कराते
3: हैं, आप कितना समय निकाल कर आ रहे हैं,
2: समय कैसे कराते
3: हैं, बोले कहाँ है और यहाँ पर आरोग्य बन में कविता बनवाते, ये तो समय करा रहा ना
2: सर,
3: समय को भी बलिदान कर।
2: अभी जैसे सर अभी ये जो अभी वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ,
3: अरे
2: सर वो कितना दूर से और पूरी जगह फैल गया, वो भारत के ऊपर भी उसका असर हुआ। मतलब देखिए जहाँ भी इनबैलेंस होगा वहाँ पर प्रकृति अपने आप ही व्यवस्थित करेगी, तो क्यों नहीं हम समय से पहले
3: सुधर
2: जग जाए,
3: जग जाए,
2: नहीं तो होना ही है जो होना है, तो
3: इसलिए हमें इशारा दे रहा है समय,
2: तो हमें कुछ थोड़ा थोड़ा प्रयास करें।
3: तो रेडियो मधुबन का माध्यम से आसपास गांव को सुना जो हमें प्राप्त हुई आप तक पहुँचे, तो अच्छा लगा आपने आए टिवल्ली से मधुबन में रेडियो के माध्यम से आज आरोग्य वन से हम आपको कवरेज दे रहे थे, और सर को मैंने देखा है आरोग्य वन में क्या हो रहा है, यहाँ एक बार जो आएगा रोगी होकर आएगा और आरोग्य होकर जाएगा,
2: जाएगा।
3: मन बुद्धि उसका श्रेष्ठ हो जाएगा,
2: श्रेष्ठ हो जाएगा,
3: क्योंकि ईश्वरीय परिवार का जो वाइब्रेशन है
2: वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग,
3: प्रकृति
2: पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग
3: सर। यहाँ पर योग खेती होता है, बढ़ते हैं योग करते हैं,
2: योग से ये बढ़ता है, योग
3: से सामने जो दिखाई दे रहा है ऐसे बढ़ते हैं, और एक एक पौधा को पूरा सकाश दे
2: सका, तब तब जाकर वो अच्छा सा उसका विकास होता है।
3: फिर भी क्योंकि बहुत दिन से लोग पूरा बातों में खराब था, उसको सनो टाइम लगा और होगा जरूर,
2: होगा सर होगा,
3: जैसे हम आग के पास बैठेंगे तो गर्मी महसूस होता है,
2: वो वाइब्रेशन आता ही है।
3: तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एरिया में आते हैं, राज्य जो तपोभूमि में है, तपस्या करते हैं, तो यहाँ का वाइब्रेशन आत्मा को मिलता है,
2: प्रबल होता है। जी हाँ जी हाँ।
3: तो आप क्या कहना चाहेंगे सर जाते जाते आज का एपिसोड,
2: यही
3: की मैसेज होना चाहिए।
2: तो सर
3: आरोग्य वन और सभी वनों को देखे हैं, लेकिन अभी गाँव गाँव में भी जाएंगे, लेकिन पहले तो हम अपना देखते हैं किस तरह किया है।
2: मतलब जिस तरह से आप अपने भोजन को पवित्र बनाने के लिए, अच्छा जैसा पाओगे अन्न वैसा होगा मन, तब मन भी पवित्र होगा, तो उस भोजन को पवित्र बनाने के लिए आपकी खेती को योगिक बनाया जाए
3: जी,
2: तो निश्चित रूप से प्राकृतिक तरीके से अगर काम करेंगे
3: बहुत बसर
2: अपने आप वातावरण में सकारात्मकता आएगी, और आप भी
3: धीरे धीरे
2: स्वस्थ हो जाएंगे, रोगों से भी मुक्त हो जाएंगे और आनंद से भर जाएंगे।
3: क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति देने के लिए, हमारा सुंदर कार्यक्रम को सुंदर में सजाए और हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दे। हमारा किसान के लिए तो एक लॉटरी जैसे, एक पर्यावरण को लेकर उसमें सब चीज खेती आता है, पशुपालक सब, जैसे डॉक्टर साहब से भी उसने मिले थे, वो भी अपना पशुपालक बारे में बताए, पशुओं का भी पर्यावरण का एक पार्ट है। तो हम सब आप और हम मिलकर ये पर्यावरण को सुरक्षा करना हमारा जिम्मेवारी, हमें दिए हैं करना ही, हमें कर पड़ेंगे और चल पड़ेंगे, है ना सर। धन्यवाद,
2: चीजों की चाबी है
3: पर्यावरण,
2: खुशी की चाबी है पर्यावरण।
3: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: धन्यवाद
3: सजाए इतना दूर से,
2: धन्यवाद धन्यवाद,
3: आसपास गाँव को अंचल
1: को हरा भरा करने के लिए जो प्रयास है जरूर होगा और हम सब मिलकर करेंगे। अच्छा सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ब्रह्मा कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: संगीत के बारे में क्या कहें, जैसे सब कुछ संगीत में समा जाता है। स से जैसे पूरी सृष्टि ही संगीत है, ग से जैसे हर ग्रह नक्षत्र तक वो म्यूजिक, वो संगीत, वो सुर पहुंच जाते हैं। त की बात करें तो शायद तीनों लोग ही एक साथ झूम उठते हैं जब ऐसा संगीत उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गोपियां दौड़ी चली आती थी। क्या जादू है इस संगीत में। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तब बादल भी गरज उठते थे, तब दिए भी जगमगा जाते थे। इस संगीत के जादू को जीवित रखते हैं कई ऐसी हस्तियां हैं भारत में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको मिलाएं उन सितारों से जो कुछ चमक रहे हैं और कुछ जल्द ही संगीत के आसमान में बहुत ऊंचा स्थान पाने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक और गेस्ट, एक और मेहमान को लेकर आए हैं जो कि संगीत के ऐसे ही जगमगाते सितारे हैं, जिनका नाम है सोम जी, जो कि आए हैं नेपाल से। उनसे बातें भी करेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज़ है, बहुत कमाल का गिटार बजाते हैं। सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरसी, थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने आपका पूरा नाम, आप

0: म्यूजिक के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन लेकिन क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम है तो चलिए पहले आपका एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे संगीत के बारे में खूब सारी बातें। रेडियो मधुबन 90.4 FM पे दोस्तों, आइए अगला गाना आप सुनेंगे सोमची की आवाज में। तो पहला गाना आप जो हमारे दोस्त जो आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सा सुनाना चाहेंगे?
1: सो एनी सॉन्ग्स आपकी चॉइस में?
0: मेरी चॉइस तो वैसे बहुत सारे गाने पसंद है, सोचना मुश्किल है। क्यों ना अच्युतम केशवम से शुरुआत करें?
1: हाँ श्योर, बहुत प्यारी गीत है।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अच्युतम केशवम, ये सुंदर सा भजन सोम जी की आवाज में। लौट कर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर लौट कर आ गए हैं हम। संगीत की ये सभा लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं सोम जी, जिनकी आवाज में आपने सुना बहुत सुंदर भजन अच्युतम केशवम। ये गीत सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक अलग ही माहौल बन चुका है और अब बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे गीत सुन के सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें और कुछ ना कहें। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सोम जी से और ढेर सारी बातें करनी है, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। सोम जी, आप जैसा आपने अपने बारे में तो बताया, मैं चाहूंगी आप अपने संगीत की जर्नी के बारे में बताएं। कब से आपको संगीत पसंद था या कब से शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: अच्छा, संगीत के बारे में जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में हम गिटार बजाते थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे स्कूल के एक फ्रेंड बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करता था, तो उसके हिसाब से जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार का साउंड मैंने सुना, तो वो गिटार के जो साउंड है वो मेरे दिल को छू गई। तो स्कूल में एक वैकेशन, समर वैकेशन था उस टाइम पर, के एक गिटार खरीद करके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में एक महीने के ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गीत बजाने और दोस्तों के साथ थोड़ा हम करने, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके, कोई टीचर्स तो नहीं है हमारे, फिर भी दोस्तों के साथ टीचर्स के वीडियोस देख करके, तो ऐसे ऐसे ही हमने बहुत मेहनत की और गिटार से शुरू किया। तो थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजाते हैं, कीबोर्ड थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्पेशलिटी मेरा गिटार ही है। तो मैं अभी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे गिटार बजाए हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ बीच में छूट भी गए थे कुछ ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी फिर मेडिटेशन के साथ साथ अभी म्यूजिक भी अभी जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं ये भी करना शुरू किया हूँ।
0: क्या बात है। और जब आपने म्यूजिक शुरू किया, आप क्योंकि यूथ की बात करें तो उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, तो करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी अपना करियर बनाया म्यूजिक में?
1: जी, करियर जब स्कूल से आउट हुआ तो उसके बाद में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारी करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब मैच्योरिटी लेवल आई, तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से मिलना हुआ, तो उनके साथ अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने लगे। तो कभी कभी ऐसे ही बार में, क्लब में, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ऑफर आते थे, तो उधर जा कर के थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो इंक्रीज होती चली गई। तो बाद में एक एज बैंड बोल करके हमने नेपाल में, क्वाइट पॉपुलर है ये यंगस्टर के बीच, तो उस बैंड में काम करने का मौका मिला। तो हमने जो काम किया तो उसके हिसाब से हम बहुत सेटिस्फाई भी है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे ही पढ़ने के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही स्टडीज के मामले से करके हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी बैंड तो कंटिन्यू है, फिर भी मैं अब्रॉड चला गया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा। फिर अभी ये मौका मिला है, तो अभी मैं अपने खुद के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपोज करता रहता हूँ अभी। तो अभी थोड़ा तीव्र रूप से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ अभी।
0: तो मतलब आपका जो बैंड आपने बताया, तो उस समय आप लोग परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पे और सब जगह, तो मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं वो कुछ ऐसा करें बने, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम एक बैंड की बात करते हैं, क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं वहाँ पे?
1: तो क्या है, म्यूजिक इसको एक कला बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं। तो कला के लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हम शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो आप, जैसे कि आपके घर के माहौल, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपके अंग संग के लोग हैं, इसके रंग भी आपको अवश्य लगते हैं। तो इसीलिए म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं उनके गाने सुनने पड़ेंगे, तो कैसे वो कंपोज करते थे, क्यों ये गाने उस जमाने में लिखे थे, बनाए थे 50 साल आगे, फिर भी अभी भी वो उतना ही प्रिय है, बहुत सुंदर है, लोग अभी भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जो डिसिप्लिन थी, एक बात से बोलते हैं आध्यात्मिक हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी थी वो कलाकार में, क्योंकि उन दिनों के कलाकार बहुत प्योर रहते थे। तो उन दिनों के कलाकार और आज के कलाकार अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत ये बीच में बहुत दूरी हो गई है, क्योंकि आज के आर्टिस्ट वो भूल गए हैं कि ये जो कला है इसमें अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टाइम स्टेबल रहना है, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है
0: जी।
1: सो आप हमारे टीचर्स, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग जो सिखाते हैं, उसको भी आत्मसात करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए अगर ऐसा करते हो तो ज़रूर किसी न किसी दिन ये ज़रूर रंग ले आएगी। ये छुपे नहीं रह सकते, भले देर हो लेकिन ये बहुत अच्छा कर सकती है
0: जी। मतलब कि जो संगीत है उसके प्रति हमारी जो सच्चाई है, जो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल भी उसी में है तो दिमाग भी उसी में है, तो वो सच्चाई शायद बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: सिर्फ अच्छा दिखना नहीं स्टेज पे, लेकिन उस फील में होना कि हम अपने लिए गा रहे हैं।
1: जी हाँ, दिल से,
0: दिल से,
1: दिल को छूना बहुत ज़रूरी है जी।
0: और दिल को छूने के लिए दिल से गाना जरूरी
1: है
0: जी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने डेडिकेशन की भी कही सोम जी। आगे भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक और गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अगला गीत मैं एक बार श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एज अ मैंने आरुषि जी को भी बोला है कि थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं पाया, फिर भी आज हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो थोड़ी समय में पूरा ट्राई किया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक्स आपको सुनाई दे तो भी इसको आप स्वीकार कर ले, अगर फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके, लोग अभ्यास करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो अभी आपके लिए मैं कृष्णानी वाला गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी सॉन्ग है।
0: चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। और मैं आपको बता दूं कि वो गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी वो खुद ही बजा रहे हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने मुस्कुराने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और गाने का भी, गुनगुनाने का भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं संडे को रात 8 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं, अगर आप भी एक कलाकार हैं, आपको लगता है कि आप आसपास रहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। साथ ही मैसेज भेज के हमें ये भी बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। सोम जी, जैसा आपने बताया कि आपका एक बहुत फेमस बैंड जो रहा नेपाल में, जो है अभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम म्यूज़िक, हमें पसंद है, आपने कहा डेडिकेशन ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ में काम करने में, या हम बहुत जगह परफॉर्म करने चाहते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और आप अगर आए तो आपने क्रॉस कैसे किए?
1: बहुत प्यारी क्वेश्चन है ये। जो मैटर है, हर एक को फेस करना पड़ता है इससे, तो नॉर्मली सबके लाइफ में तो ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। फिर भी अगर बैंड की बात करें तो, क्योंकि एक बैंड में नॉर्मली 5-6 से एक बैंड बनता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो 5 लोग होंगे तो 5 हेड होंगे उधर, उनके अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इसलिए तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा संस्कार की बातें भी आती हैं, फिर भी
0: नेचर अलग अलग
1: होती है, उनके ग्रोन अप अलग होते हैं, तो फिर भी अगर आर्ट म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को, तो इजीली इस समस्या को हम कोप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में जब मैं बैंड में था, तो फिर भी मेरी नेचर क्या थी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता था, तो दोस्तों के साथ मैं उनके साथ एडजस्ट हो करके उनको भी मनाता था, तो एज अ न्यूट्रल में रहकर, बीच में रहकर मिलाने की ट्राई करता था, तो थोड़ा बहुत ये इस नेचर से उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी वो भी ट्राई करते थे, हम भी ट्राई करते थे, क्योंकि जो भी हम स्टार्स देखते हैं, ये रॉक स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं, ये लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुँचते, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन तो होता है, ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या लगता है अभी जो बोला मैंने कि थोड़ा बहुत अनुशासन, क्योंकि ऐसा जो टीवी में देखते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, उनका लाइफ ऐसा नहीं रहता है। वो लोग 4 बजे से आगे उठते हैं, उनके डेली लाइफस्टाइल ऐसी रहती है। एक दो मूवीज़ में, एक दो बार पार्टीज में देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड करते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कला से जोड़ेंगे, संगीत से जोड़ेंगे, तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी होगी, सेटिस्फाइड भी रहेगा।
0: क्या बात है, और मुझे लगता है आपने एक लंबी जर्नी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया
1: जी।
0: क्योंकि सक्सेस भी है तो उतार चढ़ाव भी है
1: जी।
0: तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, जिसमें मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है,
1: बहुत मदद करता है,
0: जैसा आपने कहा
1: जी।
0: तो हम आगे भी आपसे कुछ गुफ्तगु ज़रूर करेंगे। सोम जी, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे आज?
1: अगला कोई तो है जो
0: ओके, चलिए तो ये गीत सुनते हैं ओम जी की आवाज़ में। और आपको कैसा लगा ये गाना, आप हमें ज़रूर बताइए कि गाना एंड गिटार सोम जी, क्योंकि दोनों प्ले कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन के स्टूडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें मैसेज करके बताइए 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर।

0: बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. हमारे साथ हैं सोम जी, जो कि बहुत एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं और साथ साथ वो संगीत में कई लोगों को अब सिखा भी रहे हैं, तो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं, गिटार भी बजाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, साथ में बहुत सुंदर आवाज है उनकी, तो उनसे आज हम बातें कर रहे हैं. सोम जी, जैसा आपने अपने बैंड के बारे में तो बताया, यहाँ पे म्यूजिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक जब आप शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको कोई एक माहौल की जरूरत होती है या क्या लगता है, क्या उस वक्त आपको जरूरत होती है?
1: जी, मेरे विचार से जब से मैंने गिटार पकड़ा है, ये गिटार एक मेरे कंपेनियन के जैसा है, एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि लोग होते हैं, दोस्त भी ऑल द टाइम हम साथ नहीं रह सकते, लाइक परिवार भी हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो गिटार है, गिटार माना कला, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से है तो निर्जीव है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये ब्रह्मांड की चीज़ इसमें समाई हुई है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कभी अकेले फील नहीं करोगे. तो बाद में जब मेडिटेशन जब हमने लर्न किया, तो लगने लगा कि हाँ, स्टाइल तो एक ही है, ये स्थूल रूप में है, और ये जो मेडिटेशन है ये अंदरूनी बात है. तो मुझे लगता है अगर कोई इसी हिसाब से कला में जुड़ जाता है, अगर एक फ्रेंड बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो भी उसी तरह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी. उसके लिए आपके डेडिकेशन और आपके उस प्रति जो रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती है. तो
0: लेकिन सोम जी, अक्सर ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी ये एक एज के बाद ज़रूरी है, यूथ को क्या ज़रूरत है?
1: अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूथ को ही ज़्यादा ज़रूरत है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि अभी जो संसार में हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी बन रही है, ये साइंस वाले, अभी ये डिजिटल दुनिया है, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मन को भड़काती है, डिस्टर्ब करती है, और हमारे जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसकी पावर को ये घटाता है, तो इसको कोई ना कोई हार्म पहुँचाते रहता है. तो जिस तरह से आज लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों से, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब ये सोशल मीडियाज है, ये बहुत हमारी आत्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को ये डिप्लीट करती है. तो मुझे लगता है क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके छूटने पर अगर किसी दिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये दिन क्या होता है उनके लिए ख़राब रहती है.
0: Right.
1: तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना ले, तो एक अंदरूनी शक्ति जो खुद से इंजॉय कर सकते, खुद से बातें कर सके, और अपनी एग्जिस्टेंस का वो खुद पता कर सके कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लक्ष्य उद्देश्य क्या है. तो अगर ज़िंदगी में ये बातें किसी को समझ में आ जाता है, तो वो संसार जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है.
0: बहुत अच्छी आपने बात कही समझी, और ये मुझे लगता है क्योंकि करियर हमारा जो हमें बनाना है या हम बना रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने मन को और ताकतवर बनाने के लिए, आप मेडिटेशन साथ साथ कर सकते हैं, जैसा कि सोम जी भी प्रैक्टिस करते हैं. तो अगला गीत सोम जी, आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अभी हमारे पास ओम जय जगदीश
0: जी
1: गाना है
0: जी.
1: तो मैं श्रोताओं को ये सुनाना चाहता हूँ
0: जी. चलिए तो हम ये गीत, ये आरती सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: घड़ी की आवाज तो कह रही है कि इस वक्त आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, लेकिन दोस्तों मधुबन अनप्लग्ड कार्यक्रम लेकर आते हैं तो सुवादे के साथ आते हैं कि अगले हफ्ते फिर से जरूर आएंगे। आज हमारे साथ सोम जी जुड़े हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर मेलोडियस आवाज में हमें एक दूसरी दुनिया की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज और डेफिनेटली ऐसी आवाज ऐसे गीत हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा दिन भर कुछ और सोच रहे थे लेकिन अब मन फिर से करता है कि एक नई सोच की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मन पॉजिटिव, मन शक्तिशाली तो नया कुछ सोचने का दिल भी करता है ना दोस्तों। तो आइए सोम जी से जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कई बार जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि लेट नाइट भी है, पार्टीज भी हैं, दोस्त भी हैं और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं
1: जी।
0: कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, छूट जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे
1: इसके लिए? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो कोरोना से आगे लगभग 3.5 साल मैं नेपाल के जेल में हमारे ब्रह्म कुमारी के एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ से गवर्नमेंट से हमने स्वीकृत ले करके, तो वहाँ पर जाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ रोज़ उनकी समस्याओं की बातें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैंने क्या देखा यंगस्टर में, तो ज़्यादातर जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, ये सब गलत खान पान और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ों से दिल बहलाना और गलत संगत के कारण बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी वहाँ भी जेल में अपने जीवन बिता रहे हैं। तो देखा तो उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हर एक यंगस्टर के पीछे वो एक अंदर से उनकी चाह तो होती है, फिर भी वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कोई शराब का, ऐसे जो गलत आदतें हैं इन चीज़ों का सहारा लेने से, क्योंकि उनकी जो खान पान है, खान पान गलत होने के कारण, एक घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 3 दोस्त मिले थे, तो 3 दोस्त की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के साथ क्योंकि वो गलत चीज़ खान पान करते थे तो होटल में गए, वो होटल में जा कर के गलत चीज़ खाए, शराब पी। वो खाने के बाद क्या हुआ, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में ज़्यादातर लोग गलत चीज़ें देखते हैं और ये तो यंगस्टर लोगों की आदत जैसी बन गई है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें जो अंदर गलत चीज़ वो सेवन कर रहे थे और गलत चीज़ देखने से उनके वो जो माइंड पे एक ट्रिगर हो गया, उनको वो चाह अंदर से निकल गया, वो जो वो क्या बोलते हैं, वो राक्षसीपन होते हैं ना अंदर से, वो निकलने लगे, तो उनके गलत विचार आने लगे, तो उन्होंने जाके ऐसे गलत व्यवहार किए, तो उसके हिसाब से वो अभी जेल में है बोला। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खान पान को सुधारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा आहार वैसा विचार बोलते हैं, तो भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं, अगर आपके खान पान अच्छे हो तो आपके दोस्त, आपके संग अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपके खान पान अच्छे नहीं है, जहाँ भी जाओगे गलत चीज़ खाओगे तो गलत ही लोगों को आपको संगत मिलेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको गलत खान पान से बचना होगा। गलत चीज़ जो सेवन करते हैं, जो इस शरीर के लिए गलत है, जो हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचना है
0: जी।
1: और जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जो अच्छे नहीं हैं, जो हम परिवार के साथ देख नहीं सकते, जो अश्लील है, तो ऐसे चीज़ें अगर ना देखें तो ये इसमें ही बहुत लाभ मिलेगा
0: जी।
1: और उसके बाद में संगत, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपको विचार करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है करना ना करना, कैसे संग के साथ आप रहना नहीं रहना, ये आपके साथ चॉइस है। इसलिए ये 3 चीज़ों को आप यंगस्टर विचार करेंगे, इसको समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी
0: जी। थैंक यू सो मच सोम जी. और जैसे आपने कहा गलत हैबिट्स नहीं, तो अगर नशे की ओर या गलत और आदतों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में जो सपने हम जीना चाहते हैं वो शायद कहीं जाके ब्रेक लग जाता है वहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो. तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा. सोम जी आपने जो बातें कही जीवन की, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विजडम है
1: जी.
0: तो हम ज़रूर इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. जाते जाते आप हमें आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: तो आखिरी गाना ये मूवी का सॉन्ग है, शायद हर एक ने सुना हुआ होगा, ये आसियाना गीत. ये बहुत प्यारी गीत है, आप सभी श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ.
0: चलिए जरूर सुनेंगे. बहुत खूबसूरत ये गीत सोम जी की आवाज़ में हम सुनेंगे. गिटार भी उन्होंने बजाया है, गाया भी उन्होंने है. और दोस्तों जाते जाते आपको रेडियो मधुबन का नंबर फिर से बता देते हैं. अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए. नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. संगीत को अपने जीवन में हमेशा शामिल रखिए. संगीत उम्र नहीं देखता, पर आप संगीत से जुड़े रहेंगे तो जीवन और खुशहाल होगा. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर अक्सर हम जानते हैं बात होती है बदलाव की, बात होती है उन्नति की, और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे भारत में जन्मे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन भारत माँ को समर्पण कर दिया बल्कि समाज सेवा में दूसरों का जीवन खुशनुमा और उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए अपना हर एक क्षण लगा दिया। उन्हीं में से एक ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष है जिनका नाम है भिखू रामजी इदाते, या उनको सब दादा इदाते के नाम से भी जानती है। पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित है और भारत की एक जानी मानी हस्ती है, और उनके बारे में उनका परिचय मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो के शो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्री भिखू रामजी इदाते यानी दादा इदाते विमुक्त घूमतू एवं अर्ध घूमतू समुदायों के लिए केंद्रीय विकास एवं कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा कई जातियों के विकास में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। 2 जून 1949 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव में वे जन्मे। एक शिक्षक के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया और कैसे कैसे उनका जीवन, जो कहें कि 55 वर्षों से भी अधिक उन्होंने सिर्फ अपने समाज सेवा को अर्पित कर दिया, लोगों को अर्पित कर दिया, इस देश को अर्पित कर दिया। आगे की जर्नी उन्हीं से सुनेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपकी जुबानी, आपकी कहानी।
1: ने बताया कि नाम

0: कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई बहुत बड़ी हुई ऐसा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सातवीं कक्षा तक कोई दो तीन लोग पढ़े थे, और पहली बार मैं आठवीं कक्षा में गया।
1: जी, कौन से साल की बात है
0: ये? सामान्यतः 1964 की बात है।
1: ओके।
0: जब मैं उस समय आठवीं में जाना, आठवीं कक्षा में जाना तय हुआ था।
1: जी,
0: क्योंकि उस समय मेरे स्कूल में गोपाल विट्ठल भागवत करके हमारे एक शिक्षक थे।
1: जी,
0: मुख्याध्यापक, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी। उन्होंने हमारे गांव में एक संघ की शाखा शुरू की और उन्होंने मुझे वहां लाया। वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत मैं लिप्त हो गया। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि अभी सातवीं के आगे थोड़ा शिक्षा तो करनी चाहिए। मैंने कहा कैसा करेंगे, घर की स्थिति तो कुछ नहीं है। देखो, हम कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा करनी है। इसलिए मैं मेरे घर में बताया कि मुझे शिक्षा करनी है। मेरे माता पिताजी ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपकी शिक्षा नहीं कर सकते। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, अभी क्या करेंगे। मैंने कहा अभी ऐसा करो, आप अपना देखो, मैं मेरा देखता हूँ। इतनी बात हो गई। मैं वहां से 50 किलोमीटर दूरी पर विद्यार्थी आश्रम था, वहाँ मामा महाजन करके आर्य संघ के प्रचारक भी रहे थे। उस गांव में एक उन्होंने विद्यार्थी आश्रम खोला था।
1: अच्छा।
0: उस विद्यार्थी आश्रम में मैं दाखिल हो गया। मेरे माता पिता ने मेरे तीन उस समय बहने थी उनको ले लिया, और दोनों मुंबई में एक फुटपाथ पर रहने लगे। और फुटपाथ पर रहकर धीरे धीरे मेरे मामा थे वहाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं एक छोटी झोपड़ी उनको कहीं ना कहीं मिला दी, उसमें रहने। लेकिन काम तो कुछ नहीं था, बहुत परेशानी में थे।
1: जी,
0: तो किसी ने बताया यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, एक छोटा था उस समय मंदिर है, वहाँ दुर्वा फूल जो है।
1: जी,
0: वो उसकी वो बेचो, बहुत लोग करते हैं काम। वहाँ मेरे माता पिता लगे, वो काम करने लगे। मैं यहाँ आठवीं कक्षा में आ गया, क्रमशः नौवीं तक दो बरस में वहाँ था।
1: जी,
0: उस समय मुझे 9th क्लास में 92% मार्क्स मिले।
1: वाह, क्या बात है।
0: वार्षिक परीक्षा में, एनुअल में।
1: जी,
0: वहाँ के लोगों ने, मामा माजन वगैरह बैठे, उन्होंने कहा अरे आप जरा वो तहसील की जो स्कूल है वहाँ जाओ, हमारे आपके आपकी कोई कुछ बातें हुई है नहीं लगता है मुझे। मैं ठीक है, तो मैं दापोली शहर में आ गया। एजी हाई स्कूल नाम का स्कूल था, उस स्कूल में मैं दाखिल हो गया।
1: जी,
0: इस तरह चलते चलते एक बार मैं मुंबई गया माता पिता को मिलने के लिए। देखा तो फूल माला बेच रहे हैं, माता जी रात को दूर दूर तक जा रही थी। वहां से वो दुर्वा वो लाके, गणेश जी को तो बहुत मालूम है।
1: जी,
0: वो लाते थे, उसका वो जुड़ी करते है छोटे, उसकी फूल और माला करके। तो मेरे तीन बहने माता पिता जी ये बेचते थे। मैं जब गया तो मैंने देखा, तो मैंने भी जो तीन दो तीन दिन था तो मैंने भी फूल वगैरह बेचते उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा जरा यहाँ एक सिनेमा लगा है, ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सिनेमा है।
1: अच्छा।
0: तो आप देख के आ जाओ। तो मैंने कहा मैं सिनेमा नहीं देखू। देख क्यों, लोग तो क्या क्या करते हैं सिनेमा देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ना किताबें चाहिए थी पढ़ने के लिए। जो पैसे दिया है उसके मैं फुटपाथ पर कुछ किताबें देखता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं गया।

0: चारा टाने तो थे, उसमें से दो तीन छोटी छोटी किताबें फुटपाथ पर लेके मैं आ गया। मेरे माता पिता को बहुत दर्द हुआ कि बेटे ने किताबें मांगी थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, बोले कुछ नहीं। फिर से जब मैं दो चार महीने के बाद आ गया था, उन्होंने दो बॉक्स मेरे सामने रखे, 10 पैसे 5 पैसे 25 पैसे ऐसे रखकर उन्होंने मेरे हवाले कर दी। मुझे कहा अब कुछ पैसे चाहिए थे ना, कुछ किताबें चाहिए ना, ले दीजिए। 400 रुपये मिले उसमें।
1: अच्छा।
0: अभी उस समय 228 रुपये तोला सोना था, 400 रुपये ने लगभग 2 तोले का सोने की कीमत हो सकती थी। पूरे दिन में मैंने मुंबई में जेकब सर्कल, किंग सर्कल, वहाँ जाके मन चाहे किताबें पद पर ले गए। तो आगे चलकर मुझे छंद ही लगा उसका, और आगे बहुत आगे चलकर
1: जी
0: महाराष्ट्र में कोकण मराठी साहित्य परिषद का निर्माण हुआ था
1: जी।
0: मधु मंगेशकर निक्कर के बहुत बड़े साहित्य उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक पुरस्कार जाहिर किया था, उत्तम ग्रंथ संग्रह और वाचक।
1: अच्छा।
0: वो उन्होंने मुझे दिए, तो उस समय मेरे पास 10,000 किताबें
1: 10,000
0: उस समय हुई थी मेरे पास। साहित्य सम्मेलन उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, मैंने मेरे माता पिता को समर्पित किया था कि जो तो नहीं पढ़ते रहे लेकिन मुझे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्रेडिट गोज टू दे। इस तरह होने लगा, संघ में लिप्त उसको कार्यक्रम में जाने लगा। संघ का प्रथम द्वितीय तृतीय शिक्षा वर्ग होता है, तीसरा नागपुर में होता है। तो 8वीं 9वीं और 10वीं 3 बरस में मैंने पूरा कर दिया। उस समय 11th SSC थी उस समय। SSC में जब था मैं, तो एक शिक्षक करके संघ शिक्षा वर्ग पर आया इतने स्मॉल एज में। लेकिन जब मैं कुलथरी में गया था
1: जी,
0: तो मेरे ध्यान में आ गया तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ, मैं पढ़कर क्या करूँगा, आपके साथी कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने वहाँ एक संगठन शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 14।
1: अच्छा।
0: जब मैं 8वीं कक्षा में था
1: जी,
0: सर्वोदय समाज शिक्षण सुधार मंडल।
1: अच्छा।
0: आगे 15 बरस उसमें मैंने बहुत प्रयास किया, अभी 100% शिक्षा है उस कम्युनिटी में। 100% शिक्षा,
1: क्या बात है।
0: तो पहला 8वीं कक्षा वाला मैं था, अभी 10-20 डॉक्टर्स है, 10-20 इंजीनियर्स है, 50 से ऊपर कोई नर्सेस है, 200 करीबन टीचर्स है
1: जी,
0: कोई अभी मामलेदार हो गए हैं, कोई हर क्षेत्र में अभी वहाँ वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कम्युनिटी जिले के हर क्षेत्र में, राजनीति से लेकर शिक्षा संस्थान तक, किसी ने शिक्षा संस्थान खोला, किसी ने हॉस्पिटल्स खोले, इस तरह का डेवलपमेंट आपको देखा, आपके सामने
1: जी
0: हम जो परिवर्तन जिसको कहते हैं, जिसका जहाँ उनको बहुत ही तुच्छता से उनका उल्लेख करते थे कम्युनिटी की, भिखारी जिनको कहते हैं सामान्यतः, वो अभी वो श्रीमंत वाड़ा हो गए।
1: क्या बात है।
0: इस तरह का एक परिवर्तन उस कम्युनिटी में देखने मिला, वैसा संघ का काम मेरे सामने आ गया
1: जी।
0: तो धीरे धीरे वो गांव, तहसील, जिला, विभाग, प्रांत और अखिल भारतीय
1: जी,
0: सलग 50 बरस ये काम करता रहा। और समरसता का जो विषय है
1: जी,
0: उसका अखिल भारतीय पहला प्रमुख मैं था।
1: अच्छा, क्या बात।
0: और वो पूरे देश में मैंने वो संगठन के लिए बहुत काम किया था
1: जी।
0: तो इस तरह का एक छोटे शॉर्ट जिसको कहते हैं, तो भूमि से लेकर रहने के लिए भी ठीक जगह नहीं थी। मेरा बहुत अच्छा मकान था उस समय
1: जी,
0: मेरे माता जी ने बनाया था कष्ट से, उसकी कीमत उस समय 88 रुपये थी। 28 रुपये में वो मकान बनाया था, ऐसी स्थिति थी। आज आप वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़े बंगले हुए हैं, मुझे एक साइकिल लेने के लिए हरक्यूलस की 300 रुपए नहीं थे मेरे पास, तो 30-30 रुपए देके 10 महीने में मैंने एक साइकिल ले दी। अभी से 100-200 फोर व्हीलर्स उस कम्युनिटी में है। तो भौतिक में भी, शिक्षा में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्नति के छोटे रूप, और इसका भी बड़ा रूप आगे चलकर पूरे देश में एक काम करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला
1: जी।
0: इंशाल्लाह इतना ठीक है सर।
1: मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आप जो बता रहे हैं, हर क्षेत्र में, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, हर रूप से हुआ है, और इसकी शुरुआत शिक्षा से हुई।
0: जी
1: जी,
0: शिक्षा के सिवा कोई अन्य चारा नहीं है।
1: कोई परिवर्तन लाना है तो शिक्षा,
0: शिक्षा
1: सबसे पहले। दोस्तों, हम अभी बहुत जो ये कहानी सुन रहे थे दादाई दादी जी की, वो एक एग्जाम्पल है कि क्या संभव नहीं है जीवन में उसका। और अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। 2005 में स्वामी विवेकानंद सेवा सम्मान सामाजिक पुरस्कार, 2006 में कर्मवीर, 2010 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, और ऐसे न जाने कितने पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी दादा दादी जी, कि जो भी आपने ये बदलाव लाया, और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा विमुक्त जातियों के प्रति हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं है, हम विमुक्त जातियों को, उनकी संस्कृति को भारतीय दृष्टिकोण से ना देखकर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसका अर्थ मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी।
0: सामान्यतः हमारे देश में तो बहुत बड़ा संघर्ष हो
1: जी,
0: जो मुगल आए थे उस समय से, अंग्रेज आने के बाद डच, फ्रेंच, पुर्तगीज वो भी आए थे, शक, हुन, कुषाण वो भी आए थे, उन्होंने पूरा हमारा जनजीवन उद्ध्वस्त किया। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक नई शिक्षा पद्धति, उसके बारे में उन्होंने अपने एक खत लिखा था घर में, उसमें लिखा था मैया इस तरह की एक शिक्षा पद्धति लाना चाहता हूँ, यह इससे पढ़ाई करने वाले लोग रंग और रक्त से भारतीय रहेंगे, आचार विचार उच्चार संस्कार अंग्रेजों जैसा होगा, और उनके आधार पर हम इस देश पर राज करेंगे, उन लोगों के आधार, ये उन्होंने तो सिद्ध करके दिया। और 1837 में उन्होंने इस देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो एक जार निकल कर रद्द कर दी, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई
1: जी,
0: और हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट कर दी। तो उस समय ब्यूटीफुल ट्री नाम का धर्मपाल जी का एक किताब है, महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, 10 खंड में उन्होंने लिखा है हमारे देश की एक हिस्ट्री, उसमें शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ट्री नाम का एक किताब,
1: ब्यूटीफुल ट्री
0: जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर गांव में पाठशाला थी, सब प्रकार के लोग आते थे, ये नहीं आता हुआ ऐसे कोई बात नहीं थी, विद प्रूफ्स, विद संदर्भ, रेफरेंसेस उन्होंने दिए है। लेकिन मैकॉले आने के बाद, वो शिक्षा पद्धति आने के बाद हमारा पूरा माइंडसेट ही बदल गया। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूर्वज ठीक नहीं थे, हमारी संस्कृति ठीक नहीं थी, अंग्रेज आ गए इतने हम सुधर गए।
1: ये बात कहते हैं कि
0: ये जो उन्होंने बिठाया मन में, एक बात हो गई। तो भी उस समय जब मुगल आ गए, हमारे मंदिर उद्ध्वस्त कर दिए
1: जी,
0: दो बातें उन्होंने की, हमारे देश के दो श्रद्धा स्थान उद्ध्वस्त किए उन्होंने, एक मंदिर, दूसरे स्त्री। मंदिर तो उद्ध्वस्त कर दे
1: जी,
0: तोड़ फोड़ कर दी, और स्त्रियां कुछ भी किया उन्होंने, बोल भी नहीं सकते इस तरह का सब उन्होंने किया
1: जी।
0: जैसे वायुमंडल में जो बचा पूछा था, मंदिर नहीं तो जाएगा था, नहीं जा सकता था। यदि टोपोटा कोई है और जाना ही है तो जिजिया कर लगाया था, और जिजिया कर गरीब लोगों को ज्यादा था, श्रीमान लोग को कम था, क्योंकि तो यदि जिजिया कर नहीं देते तो उनका धर्मांतरण कर दो, तो गरीब लोग धर्मांतरण में आ गए, थोड़े ही दिया उन्होंने। उस समय हमारे देश में जो कम्युनिटी
1: जी
0: विविध प्रकार की सामने आ गई, उन्होंने मंदिर जो है नहीं है, ऑल राइट, मंदिर में कौन है, कौन सा देव है, कौन सी देवी है, वो उन्होंने लोगों के घर तक जाकर उनको बताया।
1: अच्छा,
0: मानो मरिया वाले नाम का एक कम्युनिटी है
1: जी,
0: वो चाबुक के फटके ऐसे मारते हैं, लेकिन उनकी जो महिला रहती थी उनके माथे पर एक बहुत एक पेटारा रहता था।
1: ओके,
0: वो तो नाचते वगैरह सब होता है, अंत में क्या करते थे, वो नीचे रखते थे और धीरे धीरे बाजू करते थे अगले सामने वाले दरवाजे, और उसमें सब देव देवी था, हमारे दैवत हमारी देवी वो सब दिखते थे, तो सब बहुत खुश होते थे।
1: अच्छा,
0: तो उनको देव धर्म किसने सिखाया? आज जिनको हम विमुक्त घुमंत बोलते हैं उनको, मेरे पिताजी अपने काग में एक भवानी देवी की मूर्ति रखकर, उनका जो गांव एक सातारा जिले में था, वहां जाते थे मल्लारपेट नाम के स्थान पर, और वहां 9 दिन नवरात्र में 9 दिन रहते थे। कोई मंदिर, अभी मंदिर हुए थे अब बाद में
1: जी,
0: उसमें कोई कीर्तन मनन वगैरह करते थे, और बाद में अपने काग में जो रखी हुई जो देवी है वो सामने उनके रखते थे, ये हमारी देवी है, ये हमारा धर्म है, इसका गीत गाना है, इसका भजन करना है, ये करके आते थे। आराधी, गोंदड़ी, गुते, गोपे, सरोदे, दोषी, इस तरह के जो लोग है, मरिया वाले अभी मैंने बताया, ये लोगों ने हमारा धर्म और संस्कृति जीवित रखा। कल्चर सेवर्स
1: हैं बिल्कुल,
0: हम उनको करते हैं भिखारी, घुमंतु, और दूसरी ओर जो आक्रमण आया था
1: जी,
0: उसका संघर्ष जिन्होंने किया
1: जी,
0: वो 1034 में राजा सुहेल देव, राजभर नाम के कम्युनिटी है विमुक्त में
1: जी,
0: वो राजा थे,
1: राजा सुहेल देव
0: बहुत बड़ा पराक्रम उन्होंने किया, वहां से इतने लोग संघर्ष करते रहे। यूपी में हम जाएंगे तो हरदेसाय करके 1940 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया, 1826 में महाराष्ट्र में उमाजी नाईक
1: जी,
0: तो रामोशी कम्युनिटी युक्त आज हम कहते हैं उनको, उनमें से आज आ जाए, लेकिन उन्होंने संघर्ष शुरू किया और स्वातंत्र का जाहिरनामा लोगों के सामने रखा, आज हम उनको एक क्रिमिनल कहते हैं, स्वतंत्र का जाहिरनामा रखा, और उन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान किया, परेशान हो गए सब, करेंगे क्या इसका, तो मिलता ही नहीं है, कहाँ से आता है मालूम नहीं। तो आप ध्यान रखने लायक एक बात है
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, मैसूर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, यहाँ से पुलिस प्रमुखों को बुलाया।
1: अच्छा जी,
0: देश में से, और उनको भाई आप क्या करें इसका,
1: को समझ ही नहीं आ रहा था
0: कुछ समय, आप कल्पना करें कि कितना बलशाली होगा वो। अभी वहाँ हमारा मल्लारी मारकरण करके जेजूर में स्थान है
1: जी,
0: वहाँ वो आते थे, अभी उनके तलवार जो है जिससे वो लड़ते थे
1: जी,
0: वो रखी है
1: जी।
0: इसका वजन 65 कीजिए,
1: 65 किलो,
0: मैं 2 हाथ से भी उसको उचल नहीं पाया, हाथ में लेकर लड़ते थे, ऐसा था। अभी वो को हो गया तो गुनहगार हो गया, उसकी बता दो मैं
1: जी,
0: लेकिन है कौन, वो स्वतंत्र सैनिक, वो फ्रीडम फाइटर,
1: फ्रीडम फाइटर
0: राजा रणजीत सिंह, आपने सुना है शेरे पंजाब लाहौर के थे
1: जी,
0: बाद में जम्मू कश्मीर में जम्मू तावी नदी का जो संगम है
1: जी,
0: बहुत बड़े टिकड़े है वहाँ, वहाँ उनका एक बंगला था ऊपर, वहाँ बैठते थे और सब देखते थे, समझ आने आया जो लोग आते थे उनका न्याय करते, कुछ कुछ समस्या जो सुलझाते
1: थे जी।
0: उस सोने का उनका वो जो बैठने का जो सब साहो सुवर्ण का था, अभी केवल लोड जो है वो सुवर्ण का है। मैं देख के आया हूँ, जाके आया हूँ, एक आग नहीं था उनको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उन्होंने वहां से क्या किया उस समय देखो, अभी 350 बरस के पहले की बात मैं बता रहा हूँ
1: जी।
0: तो उन्होंने वहां से तो सुवर्ण मंदिर जो है पंजाब में वो उन्होंने बनाया।
1: अच्छा।
0: हमारा जो काशी विश्वेश्वर है
1: जी,
0: वहाँ अहिल्यादेवी होलकर ने मंदिर बनाया था
1: जी जी,
0: लेकिन उस पर सोना नहीं था, कलश सोने का नहीं था, वो उन्होंने भेज दिया। पूरे देश में ऐसा उनको ध्यान में आता था, वो तो करते थे। अभी वो जो समुदाय है
1: जी,
0: जो आज हम देखते हैं सासी समाज कहते हैं, सासी समाज
1: जी,
0: तो विमुक्त में है,
1: विमुक्त में
0: एक्स क्रिमिनल मानते हैं। आज बहुत चोरी करने वाले, डकैत निकालने वाले ऐसे लोगों को लगते हैं, लेकिन कौन थे? राजा थे,
1: वो इतिहास,
0: वो इतिहास है
1: जी।
0: और उनका पराक्रम शेरे पंजाब था उस समय, अहिल्यादेवी होलकर महाराष्ट्र में
1: जी,
0: तो धनगर कम्युनिटी में थे, शेफर्ड कम्युनिटी में थे, वो इंदौर की रानी थी
1: जी जी।
0: और उन्होंने क्या किया, बाकी तो उनकी बहुत बड़ी कहानी है
1: जी जी,
0: ये विषय के संदर्भ में केवल बता दूं
1: जी।
0: उस समय का जो खजीना था 16 करोड़ का था
1: उस समय जी,
0: 350 बरस पहले। वो जो गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, तो उनका स्वयं का था
1: जी,
0: उसमें से उन्होंने सब प्रकार के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, काशी विश्वेश्वर
1: जी,
0: सोमनाथ, नीचे रामेश्वरम तक जहाँ जहाँ मंदिर है उसका पुनर्जीवित किया, जहाँ नदी है वहाँ घाट बनाए लोगों को जाने के लिए आने के लिए
1: जी।
0: तो एक दृष्टि से देखे पुण्य श्लोक हम कहते हैं उनको, पुण्य श्लोक ही थी, महिला इसी राज्य करती थी, हमारे देश में इस तुलना में और कोई राज्य
1: कोई नहीं।
0: लेकिन वो कौन है, नॉमिनल ट्राइब में, कुछ राज्य में कुछ शेड्यूल ट्राइब में है, लेकिन है कौन, वो राज्य करते।
1: ये बड़ी आश्चर्य की बात है सच में।
0: तो ये है फ्रीडम फाइटर्स
1: जी।
0: अभी इनका प्रॉब्लम हो गया अंग्रेजों
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, 1857 का जो युद्ध हुआ
1: जी,
0: उन्होंने बंड कहा सिपाहियों का बंड, लेकिन वो तो स्वातंत्र सावरकर ने 1800 उनका स्वतंत्र युद्ध
1: जी,
0: ये 1910 में उन्होंने इंग्लैंड में एक किताब लिखा और उसके आधार पर यह हमारा स्वतंत्र युद्ध था, पहली बार उन्होंने कहा है, कोई बंट वगैरह नहीं था और पूरे देशव्यापी वो संघर्ष था,
1: जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है,
0: माना जाता है
1: जी।
0: लेकिन उसमें जो अनुभव आ गया अंग्रेजों को, उन्होंने एक बात की, सबको शस्त्र विहीन किए, जिनके हाथ में शस्त्र था वो उन्होंने निकाल, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जाति जाति में संघर्ष शुरू किया,
1: आपस में
0: बड़ा श्रेष्ठ ये वो इस तरह का, उन्होंने ब्राह्मण द्वेष वो निर्माण किया हमारे देश में, पूरे देश में उन्होंने जिस तरह के लोगों का निर्माण करने का प्रयास किया, आगे कुछ बताएंगे नहीं उनका सवार करेंगे हम, इस तरह की स्थिति आ गई
1: जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल,
0: डिवाइड एंड रूल कर दिया। लेकिन आगे चलकर उनके ध्यान में आ गया तो भी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नाम आपको बताए, अवंतिका बाई लोधी, झांसी की रानी जैसी उनका वर्ताव है, झलकारी बाई
1: जी
0: जो यूपी में से है, वैसा सोचे आज सोचे तो सी बिलोंग्स टू एससी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी

0: के में से रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति, लेकिन हम अभी उनको क्या बताते हैं, मैंने बताया आपको।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: इस तरह संथाल जो विद्रोह हमारे देश
1: संथाल
0: आदिवासियों का विद्रोह, संथाल जो है वो एक आप बिहार से लेकर उड़ीसा तक पूरा एरिया हाँ उन्होंने संघर्ष में डाल दिया संथाल लोगों
1: जी।
0: आज हम देखते हैं उसी संथाल में से हमारे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो जिनका बहुत जब संघर्ष कर रही थी
1: जी,
0: उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से उनका संपर्क आया था
1: जी,
0: उसमें से उनको शांति मिली, गया पुत्र गया स्नुषा गई
1: जी,
0: इस तरह के बहुत बातें हो गई
1: जी।
0: लेकिन मैं एक संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि कितना संघर्ष करते थे, आज भी उसमें से एक राष्ट्रपति,
1: बिल्कुल
0: दो राष्ट्रपति तो ऐसे हो गए
1: ऐसे है।
0: तो ये कम्युनिटी दे आर फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों ने क्या किया 1871 में CTA एक्ट, सिटी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 हाँ उन्होंने निकाला, और उसके आधार पर जो जो इस तरह के जो लोग थे
1: जी,
0: उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया
1: जिनके लिए खतरा हो सकते थे
0: हाँ, दूसरा शब्द है उसको नोटिफाई किया, और नोटिफाई करके उनको 52 सेटलमेंट पूरे देश में लगाकर जेल में उनको डाल दिया। कहा यदि सेटलमेंट नहीं होती तो तार का कुंपन होता है ना, तीन के फेजिस रहते थे के अंदर वो रहते थे लोग, दिन में तीन बार उनको हाजिरी देना पड़ता था, अटेंडेंस रात दोन को भी देना पड़ता था, और उनको बताया कि आप कौन है, आप गुनहगार है, आप क्रिमिनल है, आप क्रिमिनल है, 140 बरस उनको लोग कहते हैं कि आप क्रिमिनल है, उनकी पीढ़ी आ गई अगली, उन्होंने कहा कि आपकी जो अगली आ जाएगी नहीं नहीं अच्छा। आपका बच्चा हो जाएगा वो क्रिमिनल ही पैदा हो जाएगा, बॉर्न क्रिमिनल, दुनिया में है ऐसा कोई,
1: बिल्कुल बॉर्न क्रिमिनल कह दिया पहले से,
0: कर दिया
1: घोषित कर दिया,
0: और 100-150 बरस यही मानसिकता रही तो लोगों में हम क्रिमिनल है ऐसा ही आ गया,
1: ये मानसिकता ही बन गई, सब
0: बन गई
1: जी।
0: लोगों ने संघर्ष किया
1: जी,
0: अभी वो एक उनका जेल एक्ट आया था 1915 में
1: जी,
0: एक जेल कमीशन बैठा था
1: जी,
0: उसमें कुछ बातें कर दिया उन्होंने
1: जी।
0: 1924 में और एक रिपील किया था उन्होंने एक्ट, 1930 में एक स्टार्ट कमेटी उसके लिए बिठाई थी
1: जी,
0: स्टार्ट कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक सदस्य थे
1: ओके।
0: आगे चलकर हर एक तरह की संबंध आ जाएगा तो मैं बताऊंगा
1: जी।
0: तो इस तरह का संघर्ष करते करते क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल, अभी स्वतंत्र भारत हो गया
1: जी,
0: भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन ये नहीं हुए,
1: सोच में ही रहे
0: वैसे ही रहे। तो 1952 में 31 अगस्त 1952 में
1: जी
0: एक लोकसभा में बिल लाकर उनको उसमें से निकाला उन्होंने, और क्या किया उनको तो नोटिफाई किया था ना उनको
1: जी,
0: तो डी नोटिफाई किया, तो डी नोटिफाइड ट्राइब कहते हैं DNT ऐसा जो शब्द है
1: जी,
0: तो डी नोटिफाइड ट्राइब, डी नोटिफाइड क्यों, नोटिफाई करके उनको बंधक बनाया था
1: ब्रिटिशर्स ने,
0: डी नोटिफाई किया, इसलिए हिंदी शब्द उसको इसके लिए आया विमुक्त।
1: अच्छा तो ये यहाँ से आया
0: डी नोटिफाइड ने विमुक्त। तो इस तरह की एक जो परिस्थिति पूरे देश में थी, जो देशभक्त थे फ्रीडम फाइटर थे क्रिमिनल हो गए, जो संस्कृति रक्षक थे कल्चर सेवर थे वो तो भिखारी बन गए, इस तरह की मानसिकता उनकी हो गई समाज की हो गई। अभी आजीविका लिए तो कुछ नहीं था तो करेंगे क्या, काम कोई देता नहीं था
1: जी,
0: एक क्रिमिनल है वो कुछ चोरी करने लगे, खेती लगाने लगे, तो एक अलग रास्ते में जाना जाने के लिए बाध्य कर दिया लोगों ने, और वही ढब्बा उनको लगने के कारण पूरे देश में स्थिति ऐसी है
1: जी।
0: मैं महाराष्ट्र में 1997
1: जी
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
1: जी
0: हमारे मुंडे जी गोपीनाथ जी मुंडे, उन्होंने एक खास और संशोधन कमेटी बनाई, उसका मुझे अध्यक्ष कर दिया
1: जी।
0: तो मैंने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया, जेल में गया, 7 जेल में गया।
1: अच्छा।
0: तो वहाँ इतने कच्चे कैदी जो है सब विमुक्त घुमंत दो, कुछ रिकॉर्ड नहीं, कुछ FIR नहीं, वैसे ही लाया वैसे ही रखा, काम
1: उनका कोई डेटा नहीं, कुछ
0: डेटा नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने सामने लाया, करीबन हमारे महाराष्ट्र में पूरे देश में आज करीबन 20 करोड़ लोग हैं विमुक्त घुमंत, 1658 जनजाति है पूरे देश में
1: जी।
0: वो है, कोई अपवाद है जैसा लक्षद्वीप जैसा कोई है वहाँ, ऐसा कोई अपवाद तो है, अंडमान निकोबार में है वो तो प्रिमेटिव आदिवासी ऐसा उनको कहते हैं, ये तो बात है। ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें केवल आदिवासी है
1: जी,
0: जैसा हम सिक्किम की ओर जाएंगे
1: जी,
0: तो इस तरह मैं गया हूँ सिक्किम में
1: जी।
0: मैंने 36 out of 36 स्टेट का मेरे कमीशन ने प्रत्यक्ष प्रवास किया, हर स्टेट में जाकर 3 वर्ष में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो भारत सरकार ने मोदी जी ने मुझे बनाया था नेशनल कमीशन चेयरमैन
1: जी,
0: और वो रिपोर्ट मैंने विद इन 3 ईयर्स 100% काम करके दिया था, एक भी छुट्टी मैंने नहीं ली थी, नॉट इवन सैटरडे संडे,
1: संडे भी नहीं।
0: 3 बरस में वो हो गया। तो हमारे जो मोदी जी है तो बहुत ही अभ्यासु है, संवेदनशील है, वंचित पीड़ित के लिए तो उनके मन में अपार करुणा है। तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया, उसके पहले अटल जी ने शुरुअत की इसकी।
1: अच्छा।
0: अटल जी जाने के बाद एक बीच में रेणके कमीशन भी हो गया, मोतीलाल नाम का न्यायमूर्ति मोतीलाल नायक, 1 बरस था, 2 बरस का कमीशन रेणके का था, 3 बरस का मेरा था
1: जी।
0: रेणके का 8 बरस उन्होंने लेन देन कर दिया लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, और बाद में एक नए कमीशन की आवश्यकता बताया, इसलिए नए कमीशन इदाते कमीशन आ
1: जी।
0: उसके आधार पर नरेंद्र भाई मोदी ने केवल 7 महीने में उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी, वो लागू करने पहली बार हमारे देश में हुआ
1: जी।
0: लोगों को ध्यान में भी नहीं आता क्योंकि उसकी चर्चा भी नहीं हुई, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा और वो इम्प्लीमेंट के लिए दिया। मेरे 20 सिफारिशें थी, उस 20 सिफारिश में से उन्होंने 12 सिफारिशें थी रिकमेंडेशंस, वो कल्याण और विकास के लिए संदर्भ थे
1: जी।
0: उसके आधार पर उन्होंने विकास और कल्याण बोर्ड बनाया, DWBDNC
1: जी,
0: डेवलपमेंट। उसका चेयरमैन फिर से मुझे बुलाया, उसका भी 3 वर्ष में
1: चेयरमैन रहे आप
0: जी। और वो समाप्त करते करते इनके विकास और कल्याण के लिए एक बजट हेड आ गया
1: जी,
0: करीबन उन्होंने 200 करोड़ रुपए तो दिए थे लेकिन मैंने 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे उनको
1: जी।
0: लेकिन पहले स्टेप में तो ऐसा होता है कभी कभी, और तो उसके लिए उन्होंने एक गूगल पर एक पोर्टल बनाया
1: जी,
0: पोर्टल के आधार पर उसकी जानकारी आ जाए, इसके आधार पर उनको 4 स्कीम दे दिया। एक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए क्या कि कोई स्पर्धा परीक्षा में जाना चाहता
1: जी
0: जा ही नहीं सकते, फीस भी नहीं दे सकते, तो हमने एक प्रस्ताव दिया था गवर्नमेंट, वो अप्रूव हो गया कि ऐसे जो लोग हैं वो जहाँ कोई शिक्षा करेंगे उसका सब पैसा भारत सरकार दे देगी, ये पहला
1: जी।
0: दूसरा, उसमें जो हर हाथ को काम जो कहते हैं
1: जी,
0: विशेषतः महिलाओं के लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
1: जी,
0: हाँ तो उनके लिए भी देना है। मकान के लिए आ गए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना तो है अलग
1: जी जी जी,
0: फिर वो DNT के लिए एक अलग
1: अलग
0: मकान योजना भी उन्होंने बनाया, और वो पोर्टल पर उनकी जानकारी आ जाए तो तो उसके आधार पर वो
1: उनको मिलता है फिर बेनिफिट।
0: और चौथा था उसमें हेल्थ के बारे में
1: जी,
0: कि इन लोगों को कोई बीमारी होती है कहाँ जाएंगे, पैसा ही नहीं है हॉस्पिटल में कौन लेगा। भारत सरकार ने ऐसा किया है कि इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो उनका हर कुटुंब का यदि संभव हो तो 5 लाख रुपए का खर्चा भारत सरकार करे। ये 4 स्कीम्स लाई है
1: जी।
0: और इतने में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन का अभी शुरू होना थोड़ा
1: अच्छा बाकी। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने शुरू किया एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक बड़े रूप में एक देश में पूरा, जैसा आपने बताया 20 करोड़ लोग हैं और वो पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन क्या क्योंकि ऐसी मानसिकता बन गई थी और क्रिमिनल या फिर इस तरह की बातें कही जाने लगी, विमुक्त जातियां घुमंतू कहा गया, तो आपको कुछ उस समय अगर ये बदलाव लाने में क्या कुछ चैलेंजेस महसूस हुए, किस तरह के महसूस हुए, या आपने शिक्षा पे तो काम किया साथ में और कौन सी चीजें थी जिन पे आपने काम किया?
0: नहीं नहीं केवल शिक्षा में, शिक्षा ये बेसिक आधार है
1: जी जी,
0: कहा भी कुछ करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेट एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज यही बताया, तो एजुकेशन पहले
1: जी।
0: सावित्रीबाई फुले ने
1: जी,
0: अभी यदि शिक्षा नहीं है तो आप पशु ही है, शिक्षा ही इसके लिए चाहिए
1: जी।
0: कोई भी जो आता है, महात्मा फुले ने शिक्षा के लिए प्रयास लड़कियों के शिक्षा के लिए किया
1: जी,
0: तो जिसको कुछ करना है तो वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं रहने का, अभी जो घुमंतु तो लोग हैं एक जगह पर रहते नहीं, कुछ लोग रहते हैं जिसको शिक्षा मिली
1: वरना तो नहीं रहते हैं,
0: वो तो काम में लगे नौकरी करने लगे उद्योग करने लगे अपना अपना मकान गाड़ी सब भौतिक सुविधाएं वो आ गई
1: जी।
0: उन्होंने शिक्षा में प्रयास किया था, हमारे महाराष्ट्र में वंजारी कम्युनिटी है
1: जी,
0: गोपीनाथ मुंडे जिस कम्युनिटी में से है
1: जी जी,
0: उस कम्युनिटी में वसंतराव नाईक जो चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं, उस कम्युनिटी में के वसंतराव नाईक 1936 में वो MLA थे, वहां से उन्होंने जो शिक्षा संस्थान शुरू कर दिया मराठवाड़ा में इतना बड़ा, गोपीनाथ मुंडे वहां पढ़े है।
1: अच्छा
0: अभी देखो पिछली बार 50 UPSC के नंबर आ गए, उसमें 15 नंबर केवल एक कम्युनिटी के थे मंजारे कम्युनिटी। आज भी 2-3 अपॉइंटमेंट इस सप्ताह में हुए है पूरे देश व्यापी, क्यों? क्योंकि शिक्षा से शुरुआत हुई थी ठीक ढंग से हुई थी वो आगे चले, जो उस समय जिन्होंने शिक्षा ली वसंतराव नाईक का हमारे चीफ मिनिस्टर
1: जी
0: महाराष्ट्र के, वो बंजारा समाज में से 11 बरस चीफ मिनिस्टर कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में
1: सिर्फ
0: उनके सिवाय
1: जी।
0: बाद में उनका जो भतीजा वो 2 बरस था चीफ मिनिस्टर, तो जिन्होंने शिक्षा ली और आंदोलन में आ गए उसका कुछ तो हो गया
1: जी।
0: तो इस तरह करना पड़ता है, तो एक कोई मानसिकता सामाजिक एक रहती है वो हम अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है
1: जी।
0: हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते तो छुआछूत का तो इसमें नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग है हम अलग है, तो हमें एक ऐसा करना पड़ा कि हम संपूर्ण समाज एक है, लेकिन आपको यही भाषा समझते हैं तो जितने उपयुक्त तो घुमंतु जो है वो सब मिलकर एक उनका अपने वर्ग किया करना चाहिए। अच्छा। एक यूनिट करना चाहिए
1: जी।
0: इसलिए मैंने 2015 में जब मैं कमीशन का चेयरमैन था उस समय विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद नाम की एक संस्था मैंने शुरू कर दी।
1: अच्छा।
0: रजिस्टर्ड है मुंबई में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है
1: जी,
0: और उसके अभी देश में करीबन 20 स्टेट में उनका कार्यकलाप शुरू हुआ है, और वहाँ ये जो विमुक्त घुमंतु के जो जो निर्णय होते हैं केंद्र स्तर पर होते हैं
1: जी,
0: तो सबको समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, तो हम इमीडिएट कोई बजट पेश होता है वो बजट में वंचित लोगों के लिए क्या क्या रखा है, उसमें विमुक्त घुमंतों को क्या मिल सकता है, कौन सा कैटेगरी आता है, कितने पैसे आओगे, इमीडिएट हम उस पत्र पूरे देश में फैलाते हैं,
1: कम्युनिकेट करते हैं,
0: कम्युनिकेट करते हैं। कोई आता केंद्र सरकार है, मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर में इस लोग विलाम करने वाले कितने मिनिस्टर है, तब हमने 8 मिनिस्टर की लिस्ट दी थी, इतने मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में। ऐसा जहां जहां चलता है
1: जी,
0: तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए करते हैं
1: करते हैं।
0: एक महत्व की एक बात हमने की मेरे कमीशन के कालखंड में कि कोई जाति का दाखला नहीं मिलता, जहाँ रहते हैं वो एक तो जंगल में रहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जहाँ रहते हैं उनकी जगह नहीं रहते, कभी भी कोई 10-15-20 बरस में आता है, अरे मेरी जगह है कुटोया से, वहां से कांड करते हैं
1: जी।
0: इस तरह के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं
1: जी,
0: तो कैसा सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारे उस समय के मेरे MS थे
1: जी,
0: मेंबर सेक्रेटरी अग्निहोत्री मैडम, तो उन्होंने पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था
1: जी,
0: कि ये जो प्रश्न है विमुक्त घुमंतों के बहुत क्रिटिकल है
1: जी,
0: कहाँ घूमते मालूम नहीं रहता स्थिति है, तो इसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में एक रिड्रेसल कमेटी बना।
1: ओके।
0: वो अंतिम अध्यक्ष रहता है, इसको दाखला देना है, जमीन का कुछ करना है, वही करते थे, तो वो हमने पहुंचा है, लेकिन इसका अवेयरनेस अभी तक नहीं हुआ है
1: जी।
0: मैं बोल रहा हूँ हर जगह ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में हमने वर्धा जिले में ये प्रयोग किया भी, वो प्रयोग करते करते अभी उन्होंने रिड्रेसल कमेटी बनाई, इसका कारण इसके लिए ऐसा हो गया कि उस रिड्रेसल कमेटी ने कलेक्टर ने हर तहसील में उनको दाखला देने का प्रयास शुरू कर दिया, एक मेला बनाना, लोगों को साथ लगाना, अधिकारियों को बुलाना, उनका सर्टिफिकेट देना,
1: ये जागरूक भी करना पड़ेगा सबको,
0: करना पड़ता है,
1: कार्य हो रहा है,
0: नहीं तो इसलिए वो तो संगठन बना है ना,
1: इसीलिए संगठन है वो,
0: और इसलिए सब बात वहां तक जाते हैं ना
1: जी
0: सबकी। तो इस तरह के बहुत प्रश्न जो है एक्चुअल उसका कुछ तो कुछ करना पड़ता है
1: जी।
0: जनगणना हमारी अभी शुरू हो गई
1: जी,
0: इसके पहले 11 में हुई थी जनगणना, तो विमुक्त घुमंतों की नहीं थी ऐसा उनका कहना है, हमारी जानकारी ऐसे है कि हुई है उस समय अच्छा। भी लेकिन गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किए, तो मानो नहीं ऐसा मानो
1: जी,
0: 21 की होने वाली थी, तो मैं तो उस समय बोर्ड का चेयरमैन गया था, तो मैंने जो कमिश्नर रहते हैं
1: जी
0: हमारे, उनको मैंने बुलाया, जनगणना आप करने वाले हैं तो इनका क्या करे, इनका तो अभी नहीं होने वाला, करेंगे क्या, इनको आप स्कीम कैसे देंगे, यदि आपको उनकी पॉपुलेशन मालूम नहीं तो स्कीम कैसे देंगे,
1: बिल्कुल
0: वो क्या करे, तो उन्होंने कहा एक कर सकते हैं समाज कल्याण विभाग
1: जी,
0: ये कर सकते हैं, तो ये यदि करेंगे तो उसका सब खर्चा भारत सरकार दे, वो दिया है
1: जी,
0: लेकिन अभी तो वो शुरू नहीं हुआ है,
1: वो होना बाकी है,
0: बाकी है
1: जी।
0: ऐसे जो जो प्रॉब्लम मुझे लगते थे
1: जी,
0: उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है, लेकिन एक लोगों की एक मानसिकता, एक संगठन चलाना, इसका लीडर बनना, भाषण करना, हम मैं लीडर हुए करना, इसलिए उनका जो मूल प्रश्न है इसके लिए जो करना चाहिए वो करने में जरा
1: देरी लगती
0: है, डिले लगता है
1: जी,
0: इसलिए कुछ प्रश्न आगे नहीं आ रहे
1: जी।
0: तो मेरा आह्वान पूरे देश के इस विषय में काम करने वाले लोगों को है, संगठन को है, कि इदाते कमीशन के कारण 20 में से 14 उसकी सिफारिशें जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए लिए थी, मैंने पहले 12 का उल्लेख किया था, 13 था, मैं 265 कम्युनिटी का एक लिस्ट दिया है भारत सरकार को, और बताया कि ये कम्युनिटी
1: जी
0: है, लेकिन उस राज्य में उनका कोई नाम नहीं है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करो और क्लासिफिकेशन करो इसका, कि मैंने बताया था, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में उसकी कमेटी बनाई है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ,
1: okay.
0: और करीबन उन्होंने सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करने के लाया है, और 14वां था उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट,
1: okay.
0: जो 68 जो आया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, 1952 में
1: जी
0: उसमें से उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाया और वो निरस्त कर दिया, यानी जो क्रिमिनलिटी में हैबिचुअल है
1: जी
0: उसको लगेगा इस तरह का। लेकिन गवर्नमेंट प्रशासन पुलिस ये सबको इतनी आदत पड़ी थी
1: जी
0: कि उनके मन में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो तो सिटी एक्ट ही मानते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट।
1: अच्छा,
0: इस तरह का वर्तन आज भी करते। इसलिए मैंने बताया था कि यह निरस्त करना चाहिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, तो वो उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा है
1: जी।
0: अभी उसका क्या हुआ है अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल छह बातें हैं, छह सिफारिशें, वो अलग रखी है
1: जी।
0: उसमें से तो पहला मेरा कहना था कि इनके लिए एक परमानेंट कमीशन चाहिए
1: जी,
0: कि जो कोई भी समस्या आ जाए इसके लिए वो बातें बताएंगे, और इसका उनको अधिकार भी रहते हैं, कलेक्टर भी बुला सकते हैं क्यों नहीं हुआ क्या, इस तरह का अधिकार भी आना चाहिए। नीति आयोग ने भी वो सपोर्ट किया इसके लिए, इदाते कमीशन की सिफारिश लागू करने चाहिए, और वो जो विशेष मैंने कमीशन जो बताया था
1: जी
0: वो भी करना चाहिए
1: जी।
0: 22 डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने बताया था, उसमें केवल शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट ने एक अलग भूमिका ली। उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे में आ जाएंगे, हमारे में से कुछ जाएगा, उन्होंने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। तो मेरा कहना है कि माननीय पंतप्रधान जी को कि उन्होंने इतने संवेदनशीलता से इन लोगों के लिए किया है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे
1: जी
0: तब उन्होंने गुजरात में 200,000 मकाने घुमंतुओं के लिए बनाई।
1: क्या बात, और ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत लंबे समय तक, जैसे आपने कहा कि एक कमीशन होनी ही चाहिए उनके लिए लगातार, तभी और हर तरह के मामले जहाँ आ सके एड्रेस हो सके। दादाजी दादी जी, एक बहुत लंबी जर्नी है, 55 वर्षों से भी अधिक आपकी, और जो एक स्कूल से शुरू होती है और धीरे धीरे वो देश के 20 करोड़ लोगों से भी अधिक, जैसा आपने कहा, उनको उनका सम्मान भी, उनका जीवन भी, सब कुछ वो वापस मिलने का पूरा अधिकार है, और उस पर आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। मैं अंत में आपसे संक्षिप्त में एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड की बात होती है, हम जानते हैं बहुत बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है, उस समय आपकी क्या महसूसता थी या क्या फीलिंग थी जब इसकी घोषणा हुई या जब आपको प्राप्ति हुई?
0: जब मैंने मेरा कमीशन का रिपोर्ट गया था
1: जी,
0: तो माननीय पंतप्रधान जी ने वो डिटेल से देखा था, इसलिए उनके मन में भी कुछ बातें थी
1: जी।
0: तो 2021 को मुझे पद्मश्री मिली, लेकिन 2022 को
1: जी
0: उन्होंने मुझे पद्मश्री के सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बना दिया।
1: अच्छा जी, क्या बात,
0: इसलिए मुझे तो जानकारी थी
1: जी,
0: कैसे 1,000 लोगों का एनालिसिस मैंने किया था
1: जी,
0: उसमें तो जानकारी तो थी जिस तरह के थे। और ये गवर्नमेंट का विशेषता और नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है वो पुराना जो है ये हटके अलग
1: जी,
0: कि वही ढूंढते हैं कहाँ है लोग, वो ढूंढ कर लाते हैं और उनको पद्मश्री देते हैं, वे अपने जगह पर स्थित 40-40 भर काम करता है उनको ढूंढ कर देते हैं, कोई केवल शहर का सुशोभीकरण कोई चित्र उसको निकालते हैं, बोलना नहीं आता, चर्चा नहीं करते, ये चित्र निकालते हैं, ऐसे एक महिला को उन्होंने बुलाकर उनको भी सम्मानित किया था
1: जी।
0: तो ये मुझे मालूम था, तो 2023 को
1: जी
0: एक्चुअल मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया
1: जी। अच्छा,
0: अन्य लोगों ने किया, कोई मित्रों ने किया, और उसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन किया, 2023 को उन्होंने मुझे दिया। लेकिन उसकी प्रक्रिया मुझे मालूम थी
1: जी
0: कि कितना सूक्ष्म विचार कर है, हम एनालिसिस करते हैं कोई आरजे का एप्लीकेशन का
1: जी,
0: कितनी बातें उसमें करनी पड़ती है, तो मैंने उसका एक देखा था
1: जी जी,
0: एज अ परीक्षक मैंने
1: हजार से भी ज्यादा
0: देखा था
1: जी।
0: इसलिए पहले तो भावना थी ठीक है
1: जी,
0: हमने जिसको दिया था ऐसे लोग थे, वो जो काम था ऐसा काम था उनको देना चाहिए था
1: जी,
0: ये काम भी ऐसा है कि ये काम करने वाले को देना चाहिए था, तो उन्होंने मुझे जो सोशल वर्क के लिए दिया है
1: जी,
0: लेकिन उसमें भी उन्होंने विमुक्त घुमंतों के काम के लिए ये पद्मश्री दिए।

0: जी।
1: तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जिस काम के लिए गत 50 बरस सोशल एक्टिविटीज में मैं 50 बरस हूँ, केवल विमुक्त घुमंतु नहीं, एससी एसटी ओबीसी वंचित कोई भी इनका काम के 50 बरस में कर रहा हूँ, तो इनमें किसी को कोई राहत मिलती है
0: जी,
1: तो बहुत आनंद भी होता है। और पहली बार
0: जी
1: विमुक्त घुमंतु में काम करने के कारण मुझे वो मिला है, ये तो विशेष बात है
0: बहुत,
1: तो इसके लिए बहुत आनंद हो गया। जो काम हमने किया, जो कमीशन में चला, जो बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, ये सब ध्यान में लेकर तो ठीक है, उन्होंने तो दिया, इसका बहुत आनंद भी हुआ
0: जी।
1: और आश्चर्य तो नहीं लगा क्योंकि मुझे इसकी जानकारी किस तरह का है विषय तो मालूम थी
0: जी,
1: इसलिए आश्चर्य तो नहीं हुआ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में अगर मैं आपका ही नाम लूं, ये भीखू राम जी दाते जी, तो आप कौन है या आप अपने बारे में कौन से दो शब्द कहेंगे जो हम आप...
1: एक थोड़ा इसका एक्सप्लेन में करता हूँ
0: जी।
1: मेरे माता पिता को मेरे पहले 5 संतान थे, तो 5 भी नहीं रहे, तो एक अलग गांव में रहते थे हम। हमारे जो इधर थे घराने के जो लोग थे, उन्होंने वापस हमें लाया टेटोले हमारे मूल गांव में, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने परमेश्वर का ऐसे प्रार्थना की थी कि अभी ऐसा करो, हमें एक भीख दे दीजिए, भीख डालो हमारे, क्योंकि हम कोई संतान नहीं है
0: जी।
1: अब मेरा जन्म होने के बाद उन्होंने मेरा नाम भिक्खू रखा, क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई भीख है, इसलिए इस नाम से मैं किसी को छेड़छाड़ करना नहीं देता। मेरे माता पिता की जो भावना है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन माता पिता शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन वो उनके उन्होंने जो संस्कार दिए, जो कष्ट उन्होंने झेले, मैंने आंखों से देखे है, तो वही मेरे जीवन की एक प्रेरणा रहती है। और संघ में आने के कारण
0: जी
1: पूरा जीवन मेरा बदल गया
0: जी।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण पूरे देश में मैं इस विषय के आधार पर गया, पूरा देश देखा, असहित हिमाचल मैंने प्रवास किया है
0: जी,
1: 6 बार देश का प्रवास मैंने किया है। जो एक गांव में एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वहाँ छोटे छोटे लोगों के साथ खेलने बागड़ने वाला एक छोटा लड़का, केवल एक संस्कार के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार के कारण, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ये मेरा देश है, ये भावना मन में आ गई और धीरे धीरे उन्नत हो गई और आज मैं इस पायदान पर आया हूँ, ये मेरा मैं उल्लेख कर सकता हूँ
0: जी। ऐसे माता पिता को भी हम नमन करते हैं
1: जी,
0: और क्योंकि जैसा आपने कहा उनका जीवन, उन्होंने बहुत कष्ट देखे, परंतु जो शिक्षा के प्रति आपने जैसे कुछ इंसिडेंट सुनाए और बहुत भावुक करने वाली बातें हैं कि आपके लिए जो किताबें उन्होंने कहा कि आप खरीदिए, ऐसे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। और जो भी ये कार्य हुआ है संपूर्ण भारत में आज, उसके लिए आपका और उनका भी मुझे लगता है पूरा भारत आभार मानेगा और मानता ही है। सभी को धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए आज हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें जो भी इतिहास आपने बताया, जो भी बातें बताई, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शायद हमें संक्षिप्त में मालूम है लेकिन उसकी गहराइयां नहीं पता, और आज हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, तभी वो उन्नति की ओर हम भी अपना योगदान दे पाएंगे एक भारतीय होने के नाते। तो आपका हृदय से आभार यहाँ आने के लिए।
1: आपका भी धन्यवाद क्योंकि आपने बुलाया और व्यक्त होने का एक एक संध्या आपने दे दी, इसलिए आपका भी आभार,
0: धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मिलकाते कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा नंदा है, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और काफी समय से विशेष सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। आप जो है योगा एक्सरसाइजेस और विशेष रूप से बहुत सारे टिप्स आप लोगों को देते रहते हैं। लोग आपसे बातचीत करके, आपके आइडियाज को सुनकर, आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने लाइफ को हेल्दी बना रहे हैं और वेल्दी भी। तो डॉक्टर प्रतिभा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, स्वागत है आज के सेशन में।
1: थैंक यू।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया बढ़िया है। और मैं चाहूंगा कि आपका इस पेशे में कैसे आना हुआ वो थोड़ा सा बताइए, मेडिकल फील्ड में कैसे एंटर होना हुआ?
1: मेरी फैमिली में काफी डॉक्टर्स हैं और
0: अच्छा।
1: मैं अपने भाई बहनों में, मेरी बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, मेरी मौसियां भी डॉक्टर, और मेरी मदर की साइड में उनके चाचा जी भी डॉक्टर, और मेरे ग्रैंडफादर वैद्य थे, तो हमारी
0: अच्छा,
1: ब्लड में है। और
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: शुरू से ही मम्मी की जो ग्रूमिंग रही थी वो यही थी कि फिल्ड साइड में ही जाना है, और मेरा अपना इंटरेस्ट भी था और इसीलिए सेवा भाव भी था। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और उसके बाद मैंने MD किया गाइनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, और LNJP हॉस्पिटल से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज विख्यात है, वहां से मैंने MD किया। और उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की जॉब ज्वाइन की, और तब से मैं वहां पे रही थी। और जब मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के गई एक दूसरे हॉस्पिटल में, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में, आज
0: जी
1: से
0: जी
1: कर 4 साल पहले, तो वहां मैंने ये काम शुरू किया। इससे पहले दीनदयाल में थी तो हम लोग, अब मैं वापस दीनदयाल में हूँ, उस समय तो काम इतना होता था कि फुर्सत नहीं होती थी कुछ भी और सोचने की। लेकिन जब मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के गई तो मेरे हाथ में मेरा डिपार्टमेंट जो था उसे मैं कह सकती थी, और उनका भी रुझान इस तरफ था, तो हमने फिर थोड़ा ये काम किया कि प्राणायाम के साथ प्रेगनेंसी में कैसे रिजल्ट्स आते हैं हमारे, तो जो नॉर्मल हम पैरामीटर्स देखते हैं
0: जी
1: मरीजों के,
0: जी
1: वो सारे हमने जज किए। कुछ पेशेंट्स को प्राणायाम कराया और कुछ जो थे वो बिना प्राणायाम के थे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें नजर आए। तो इस तरह से मेरा

0: मुझे लग रहा है मुझे इन्वॉल्व होने से ज्यादा अच्छा है मैं सिद्धू भाई को बोलूं कि आकर के शुरू कराएं तो शायद जल्दी होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग इस पेशे में आते हैं तो स्पेशलाइजेशन की बात होती है, तो आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन या आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है इसी मेडिकल फील्ड में?
0: मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, गायनी में एमडी किया है मैंने गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, और मेरी स्पेशलाइजेशन गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स ही है। और मैंने उसके बाद एमडी करने के बाद मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में 26 साल मैंने गायनी डिपार्टमेंट में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम किया, और के बाद मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनी और अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी रही। अब वापस मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में आई हूँ, एमएस की सीट ऊपर हो जाती है, सुपर एनुएशन हो जाती है। सो मैं 4 इयर्स की हूँ, तो 62 पे हमारा सुपर एनुएशन हो जाता है। उसके बाद मैंने 3 साल और लिए हैं क्लिनिकल काम करने के लिए, तो मैं दीनदयाल में
1: अच्छा,
0: अब दीनदयाल हॉस्पिटल में क्लिनिकल काम कर रही
1: अरे
0: हूँ
1: वाह क्या
0: एज
1: बात है,
0: एज यूनिट हेड। मैं अपने यूनिट की हेड हूँ।
1: बहुत बढ़िया बहुत। चलो, तो मैं चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय में जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मेडिकल फील्ड की बातें हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूड हो जाती हैं और इंक्लूड करते रहते हैं, तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेडिकल फील्ड में या नई चीजों के तरीके, जैसे सर्जरी पहले जो है मैन्युअली की जाती थी, अभी कुछ चीजों का जो है टेक्निकल चीजों का मशीनों का सपोर्ट ले रहे हैं, तो आपके टाइम पे, क्योंकि आपका पूरा फैमिली डॉक्टर वाला है, तो निश्चित तौर पे पूर्व में कैसे चीजें होती थी और आज कैसे हो रही हैं, वो जो बदलाव है वो आपने देखा है, तो मैं चाहूंगा कि उसमें
0: बहुत
1: कुछ चीजें
0: बहुत
1: बताइए हमें।
0: हाँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं हुआ करती थी। आजकल हम अल्ट्रासाउंड हर पेशेंट का करवाते हैं, और एक नहीं कई करवाते। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई तो वो लॉक एंड की में रखी जाती थी, उसका ताला लगा हुआ होता था और चाबी किसी एक व्यक्ति के पास होती थी, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आप चाबी दे दीजिए, फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड मशीन को हम उससे
1: यूज
0: काम करते थे,
1: करेंगे।
0: यूज करते थे। इसी तरह से मैंने एमडी में जो थीसिस टॉपिक था मेरा वो अल्ट्रासाउंड और लैप्रोस्कोपी के ऊपर था, फिर तो तब तक लैप्रोस्कोपी आ गया था। तो ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि मैंने किचन के अंदर अंगीठी से स्टोव और स्टोव से प्रेशर कुकर और उसके बाद गैस आते हुए देखा है, ठीक उसी प्रकार से मैंने मेडिकल फील्ड में बहुत बदलाव देखा है। हमारे टाइम में जब हम पढ़ रहे थे तो ये वाली मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, और अब ये है कि रोबोटिक सर्जरी तक होती है, यानी कि आप सिर्फ डिजिटली चीजें बाहर मूव करते हैं और अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो रोबोट होते हैं छोटे छोटे जो अपना
1: अच्छा
0: काम
1: अच्छा
0: करते हैं। तो बहुत बदलाव आया है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो हाथों का काम है वो कुछ कम हो गया है। कुछ चीजें अब सिजेरियन ऑपरेशन इतने ज्यादा होते हैं बच्चा पैदा कर, हम लोग अपने टाइम में फॉर्सेप्स लगाते थे, फॉर्सेप्स डिलीवरी होती थी, वैक्यूम एक नाम होता था एक इंस्ट्रूमेंट का कि वैक्यूम क्रिएट करके और बच्चा डिलीवर होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये चीजें जो हैं आउट ऑफ प्रैक्टिस जा रही हैं, ऑब्सोलीट होती चली जा रही हैं। अभी इंसिडेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे कहा गया, किसी मेरी कलीग थी उनकी लैब टेक्नीशियन थी वो, तो फोन किया कि पेशेंट जो है उसको लेबर रूम से ओटी में ले गए हैं और ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही है, तो मैडम जरा आप जा करके देखिए। तो मैं जब देखने के लिए गई तो मुझे कहा गया कि नहीं मैडम ये नहीं डिलीवर हो पाएगा, हमने बहुत कोशिश करी और मैंने बेबी डिलीवर करा दिया। तो मैंने शायद कितने सालों के बाद फोर्सेप्स, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रही पिछले कुछ साल, तो मुझे याद नहीं कि मैंने इससे पहले फोर्सेप्स कब लगाया, तो मुझे समझ में आया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ड्राइविंग सीख लेते हैं तो फिर कभी भूलते नहीं है, या तैराकी सीख लेते
1: बिल्कुल
0: हैं नहीं है, ठीक उसी प्रकार आपके हाथ जो सीख जाते हैं वो आप एंड तक कर पाते हैं। तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले भी मैं फोर्सेप्स लगा करके बच्चा डिलीवर करा दिया मैंने, तो मेरे को लगा कि अभी भी कुछ भूलता नहीं है। लेकिन ये वाली
1: बिल्कुल
0: नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस, अब नहीं सीख रहे हैं, उन्हें लगता है सिजेरियन कर देना चाहिए, ये रिस्की होता है, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी ऑपरेशन अगर बचाया जा सकता है तो बचाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मोस्टली एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? सीजरिंग क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन?
0: बहुत कारण है। फिजिकल काम जो पहले हुआ करते थे घर में, बहुत काम किया करती थी, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी

0: रिलेट जो है वो बेटर होता है। जब आप बेड में ज्यादा रहते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं नॉर्मल चीजों से, नॉर्मल काम से, तो उसमें ऑपरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। उसका एक सीधा सीधा कारण है कि जब आप काम करते रहते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं, और उन्हें जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है मॉड्यूलेशन जो होनी चाहिए बॉडी की डिलीवरी के लिए, जो तैयारी चाहिए वो नॉर्मल होती रहती है। लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को, और ये रिस्ट्रिक्शन शायद अब इसलिए भी हो गया कि नॉर्मल जो पहले काम हुआ करता था, काम के तौर तरीकों में बहुत फर्क आ गया है। घर के जो घरेलू काम हुआ करते थे उसमें बहुत तरीके का अब चेंज आ गया है। सो जो पहले लेडीज किया करती थी अब वो नहीं करती है। तो ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की हो गई है, तो इसलिए लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत हो गई हैं, और बच्चा पैदा करने की जो ऑपरेटिव रेट है वो भी इस कारण भी बढ़ गया है। दूसरा कारण ये है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई हैं। फॉर
1: जी।
0: एग्जाम्पल हमारी कुछ साल पहले, आज से मैं कहूंगी 35 साल 40 साल पहले, प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज की जैसे है कम हुआ करती थी, ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी कम होती थी, लेकिन वो फिर भी होती थी, डायबिटीज कम होता था, थायराइड की प्रॉब्लम कम होती थी। अब ये चीजें बहुत ज्यादा देखने में आती, हालांकि थायराइड और डायबिटीज की वजह से ऑपरेशन पर से तो नहीं होता है, डायबिटीज में कभी कभी हमको करना पड़ता है अगर बच्चा डायबिटिक पे मदर है और उसके बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है, तो उसमें ऑपरेटिव रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उसमें हमको सिजेरियन करना पड़ता है। सो जैसे जैसे मेडिकल कंडीशंस कुछ इस तरह की हो जाती हैं और उनका रेट जो है वो सोसाइटी में इस समय बढ़ रहा है, तो इस कारण सिजेरियन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स अब इस समय देखी जा रही हैं, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है, इसीलिए ये वाली चीजें हमको देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हमारा लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और पहले वाले जैसा काम, पहले में हम लोग बहुत सारा काम भी कर लिया करते थे घर के, आजकल तो मशीन घर में काम कर रही है, इस वजह से भी ये
0: सही है
1: चीजें आ रही हैं।
0: जी
1: तो निश्चित
0: जी
1: तौर पे कहीं ना कहीं हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा मॉडरेट होते गई है, जिसके वजह से हम लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं। तो
0: बिल्कुल
1: अब फिर से वापस अगर नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग अगर लाना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हम सभी को कार्य अपने हाथों से करना पड़ेगा, अपने काम को
0: हाँ,
1: मशीनों की
0: अपने ऊपर भी
1: जगह
0: कार्य करना पड़ेगा, हाथों से भी कार्य करना पड़ेगा, और अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। हम अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जो ईश्वर ने आपको मशीन दी है जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारी जो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने से पहले भी जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है वो हमको यही कहती है, ये आपकी एक बॉडी की मशीन है, बॉडी मशीन है और इसके अंदर सोल रहती है, और इस सोल का ये जो घर है इसको मेंटेन रखना ये हमारा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हम नहीं करते। हम सोचते ज्यादा हैं, हम परचिंतन ज्यादा करते हैं, हम स्वचिंतन नहीं करते, और उसका परिणाम यही होता है कि हम अपनी बॉडी को भी निग्लेक्ट कर जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग इन चीजों को वापस ला सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, शरीर एंड उसके अंदर चलने वाले विचार दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। तो आइए इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर प्रतिभा जी से बातें करेंगे। सुभाष जी सुनाने, ओम शांति, वेलकम ऑल ऑफ यू करके लिख के भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहिबा से कोई सवाल आपको पूछना हो तो अपना नाम, उम्र और एज बता के आप सवाल पूछिएगा, तो डॉक्टर प्रतिभा जी से हम लोग वही सवाल का जवाब लेंगे अभी। तो वही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सभी के लिए, एक छोटा सा गीत डॉक्टर प्रतिभा जी।

0: विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए फिर से मैं जुड़ना चाहूंगा डॉक्टर नंदा जी से। डॉक्टर प्रतिभा नंदा हमारे साथ हैं, आप दिल्ली से हैं और बहुत ही सुंदर दीदी आपने गीत गाया, सुभाष जी ने याद किया आपको। तो आइए अब मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, और काफी जो है समय के साथ साथ चीजें बदल गई हैं, हमारा खाना है और हमारा डाइट है, वो सारी चीजें भी चेंज होती गई, इसके कारण भी काफी कुछ असर पड़ रहा है। तो ऐसे में इस मॉडर्न में और चीजों का जो बहुत ज्यादा वस्तु और मटेरियलिस्टिक होने के बावजूद अभी भी हमारे पास हेल्थ अपने हाथ में है क्या, या फिर हम लोग कैसे अपने आप को या अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं?
1: हाँ, हेल्थ बिल्कुल अपने हाथ में है, क्योंकि सबसे पहले तो सोच विचार अपने हाथ में है। हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या खाना है, ये हमारी सोच पे ही निर्भर करता है। और हमने एक्सरसाइज करनी है, ये भी हमारी सोच पर है। हमने प्राणायाम करना है, ये भी हमारी सोच पर है। तो क्योंकि हमारी सोच हमारे हाथ में है, तो फिर सारी चीजें हमारे हाथ में ही है। तो बाकी कुछ चीजों पे ध्यान देना भी पड़ता है, जैसे कि प्लास्टिक जो है वो बहुत खराब चीज है। प्लास्टिक को किस तरह से अपनी लाइफ से निकालना है या उसका कम यूजेज करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। सो हम क्या खा रहे हैं, लेकिन हम उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं। हम गर्म चीज को बिल्कुल भी प्लास्टिक में न खाएं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी की बॉटल्स जो हैं, यूजुअली हमारी प्लास्टिक की होती है, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, इनमें जो माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं प्लास्टिक की चीजों से, जो हमको नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पानी में घुलते रहते हैं और इसी पानी को हम पीते हैं। आप देखेंगे इस समय हमारा जो कैंसर रेट है, डायबिटीज तो बढ़ ही रहा है, हाइपरटेंशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कैंसर रेट बहुत बढ़ गया। हर परिवार के अंदर एक कैंसर का पेशेंट इस समय आपको नजर आ रहा है। और इससे निजात पाने के लिए हमें पहले तो प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकालना होगा। सो
0: जी
1: जिस तरह से मैं करती हूँ कि पानी जो है उसको बिल्कुल स्टोर नहीं करती हूँ, जो बिस्लेरी आपको मिलता भी है, अनलेस कि बहुत आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। पर रूटीन भी आप घर के अंदर बॉटल्स में पानी न रखें, ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो इसको फिर हम अपने लाइफ से निकालें। और स्टोरेज भी, गर्म चीजें जो हैं, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और टोकती भी हूँ, चाय लेकर के जाते हैं प्लास्टिक के पॉलिथीन के बैग में कि वो गर्म रहेगी। सब्जी गर्म पॉलिथीन के बैग में लेकर के और कहीं तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे करना है तो उसके अंदर करते हैं। और मैं कहीं पे भी चलते हुए भी सड़क पर लोग हैरान भी होते होंगे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन मुझसे देख करके रहा नहीं जाता है। फिर लोग प्लास्टिक को जलाते हैं सर्दी के दिनों में और उसका धुआं लेते हैं, गर्माइश उससे आता है। खैर, ये तो अब मैंने इतना फैला दिया अपने चारों तरफ कि अब मेरे को कम से कम अपने आसपास तो नहीं नजर आता है, लोगों को समझ आ गया है कि इतना उसमें कार्सिनोजेनिक मटीरियल होता है जो आप इनहेल करते हैं,
0: जी
1: और बिल्कुल उसके सामने बैठ करके कि हमारे पास और कुछ है नहीं जलाने के लिए, इसलिए हम प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैलियां जला रहे हैं। सो ये अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है कि आप क्या कर रहे हैं और इन चीजों का कितना असर आपके ऊपर बुरा पड़ रहा है, ये लोगों को अंदाजा भी नहीं है। पहले प्लास्टिक नहीं हुआ करता था। आपको कभी, मुझे मालूम नहीं कितने लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मेरे ख्याल में 90s में भी इतना प्लास्टिक नहीं था हमारे, मुझे जहां तक याद है, हम प्लास्टिक सेव करके रख लेते थे अपने पास कि भाई काम आ जाएगा, हम उसे, हमको नहीं मिलता था। उसके बाद फिर ऐसी अचानक बाढ़ आई है, इतना प्लास्टिक है इस समय, हर सब्जी वाला आपको हर आइटम जो है वो नए प्लास्टिक की थैली में दे देता है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक ही थैली के अंदर सारा सामान डलवाती हूँ, मैं नहीं वेस्ट करती हूँ उसके बाकी के पॉलिथीन बैग्स। वो डाल रहे होते हैं, मना कर देती हूँ कि नहीं डालिए, आप एक ही बैग में सब कुछ डालिए। और फिर मैं उन बैग्स को अभी भी फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको संभाल करके रखती हूँ और उसको मल्टीपल टाइम यूज करती हूँ, और नहीं तो सब्जी वाले को वापस कर देती हूँ जब इकट्ठे हो जाते हैं काफी सारे और ठीक ही होते हैं। ऑब्वियसली एक सब्जी आई और आपने कितना खराब वो होता है, और उनको वापस उसी सब्जी वाले को दे देती हूँ और वो उसको एटलीस्ट एक बार तो और ये रीयूज करेगा। और मेरी ये मंशा रहती है, मैं उनसे ये भी कहती हूँ, आप जिसको भी देते हैं उसको ये कहिए कि एक यूज के बाद इसको ना फेंका जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक हमारी जो अर्थ है उसको कंटामिनेट इतना ज्यादा कर रहा है कि जो आप ग्रेन जो खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, वो उसी मिट्टी से आता है, और अगर वो मिट्टी दूषित हो जाती है प्लास्टिक के कारण, तो ये प्लास्टिक आपके अंदर शरीर में जा रहा है मिट्टी के द्वारा भी। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का और सोचने का कि हम कितने घिरे हुए हैं इन चीजों से जो बीमारी की जड़ है। सो इसी तरह से पानी, आप पहाड़ों पर अगर कभी जाते हैं, वहां पर लोगों ने ऐसे पॉलिथीन फेंके हुए होते हैं, उसी के ऊपर आपकी बर्फ गिरनी है, वही बर्फ जो है वो पानी बनकर के नदियों और झरनों में आनी है, वही नदियों का पानी आपके घर में पीने के लिए पानी बनकर के आना है। तो अगर इतना प्लास्टिक आप पहाड़ों पर फेंक देंगे, तो ये सारा जो है ये जहर है, एक तरीके से जहर है जो हमारे अंदर जा रहा है, और हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारी चीज क्रिएट करने। तो नेचर बहुत हेल्प करती है हमको कि कंटामिनेशन कम हो, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं, प्लास्टिक हमारी क्रिएशन है, नेचर ने नहीं क्रिएट किया है ये हमारे लिए, ये हमारी क्रिएशन है, और हमें यूज करना नहीं आ रहा है, हम जरूरत से ज्यादा इसको मिसयूज कर रहे हैं, और इसके लिए उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं। ये सबको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। एक प्लास्टिक को डिसइंटीग्रेट होने के लिए 500 साल लगते हैं, 500 ईयर्स एक प्लास्टिक की थैली। तो आप सोचिए कि ये किस तरह से डिसेमिनेट होगा और कहाँ जाएगा, ईश्वर जानता है। जो भी चीज हमें यूज करने के लिए मिलती है, हम उसे मिस यूज करते, हम उसे यूज नहीं करते, मिस यूज
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सही कहा
1: करते।
0: आपने। प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता और उसको लंबा टाइम लगता है खत्म होने में, और जलता भी नहीं है और वो फेंका भी नहीं जाता, और कहीं भी फेंकेगा तो इकट्ठा ही रहता है, उसका डिस्पोजिबल नहीं होता। तो नेचुरली ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा सोचनीय है। हम जितना ज्यादा हो सके कपड़ों का थैली का इस्तेमाल करें, या कम यूज करें, उसको रीयूज करें, ऐसा कुछ हो सकता है तो उसके बारे में चिंतन जरूर करना चाहिए। और आइए दयाल जी हमारे साथ मिलकर, उन्होंने मैसेज किया है। सुभाष जी लिखते हैं, पहले हमारी माता बहनें प्रेगनेंसी पीरियड में कोई ना कोई हल्का फुल्का काम घर के किया करते, आज वो नहीं करते हैं। सही बात है। और जी रमेश जी, मैं दयाराम जी लाखनी से, आपका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। तो क्या हमें प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे क्या नुकसान होता है, ये पूछा है दया। प्लास्टिक में सब्जी रखना चाहिए कि नहीं, दो सवाल आए हैं। दयाराम जी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि प्लास्टिक के पानी का बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में जो पानी आता है उसे पीना चाहिए या नहीं, क्या कर
1: कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है और पानी का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वाटर बॉटल अपने पास रखें, तो फिर हाँ, लेकिन आप घर में रूटीनली इस चीज को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप स्टोरेज जो पानी की है उसको प्लास्टिक में न रख करके, और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, यूजुअली आजकल स्टील यूज होता है घरों में, तो स्टील के बर्तन में आप उसे स्टोरेज करिए, आप बिल्कुल प्लास्टिक की बॉटल्स न इस्तेमाल करें। और जहां तक सब्जी का है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जी ठंडी हो चुकी है तो हाँ, आप उसे फिर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्म चीज कोई भी प्लास्टिक में डालना बहुत खतरनाक। आप गर्म चीज को खाने के लिए प्लास्टिक के जो कटोरियां या दूसरी चीजें हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना, आप स्टील की कटोरी लें गर्म चीज के लिए, और स्टोरेज के लिए अगर ठंडी हो चुकी है तो फिर हाँ, प्लास्टिक में आप तो
0: बिल्कुल बिल्कुल प्लास्टिक में सब्जी रखना चाहिए कि नहीं, ये पूछा है उन्होंने।
1: आप फ्रेश वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, अगर वेजिटेबल काट करके सिर्फ रख रहे हैं तो हाँ, आप रख सकते हैं, लेकिन आप बनी हुई सब्जी अवॉइड
0: बनी
1: करें।
0: हुई सब्जी ना रखे उसमें।
1: हाँ, बनी हुई सब्जी को अवॉइड करें, लेकिन गर्म सब्जी तो बिल्कुल नहीं रखनी है,
0: बिल्कुल
1: वो
0: भी
1: तो
0: नहीं रखे,
1: 0%
0: बहुत ज्यादा दिन।
1: होना।
0: नेताजी बहुत अच्छी बात आपने पूछा है, प्लास्टिक में सब्जी रखना है या नहीं। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल लेके आ रहे हैं तो प्लास्टिक में आ जाएगा, उसको फ्रिज में रख सकते हैं, बाद में आप बनाएंगे और बनाने के बाद उसे प्लास्टिक में नहीं रखना है, या गरम गरम कहीं पैक करने किसी देना है तो गरम सब्जी प्लास्टिक में डाल के ट्रेवलिंग में लेके गए वो भी नहीं लेना है, उसको एक अच्छे अपने स्टील के टिन में आप लेके जा सकते
1: जी,
0: हैं।
1: अगर आप ट्रैवल कर
0: थोड़ा।
1: रहे हैं और आपने स्टोर उसमें करना है तो ठंडी करके उसमें डालिए, गर्म चीज बिल्कुल मत डालिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कच्ची सब्जी तो आप रख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: जी
0: आजकल प्लास्टिक की जगह वो जाली वाला भी आ गया है, फ्रिज में रखने वाली चीजें होती हैं, डॉट डॉट वाली थैलियां आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो लंबा टाइम यूज कर सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। और अब एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, आज के समय में जैसे प्रेगनेंसी के समय में किन किन बातों का डाइट रखना है, क्योंकि इंडिया में डाइट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और प्रेगनेंसी में किन किन तरह का खाना, एक फीमेल को कहते हैं डबल खाना है, तो किस तरह का डबल खाना होना चाहिए और उसमें कौन सा खाना होना चाहिए?
1: पहली बात, हमारी डाइट में प्रोटीन जो है वो बहुत कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स कम होती हैं। हमारी लेडीज दाल नहीं खाती हैं, दूध नहीं पीती हैं, तो आप दाल का जो खाने का समय होता है वो यूजुअली मॉर्निंग और आफ्टरनून, यानी कि आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और लंच में ले सकते हैं। रात को दाल खाना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उसको हजम होने में वक्त लगता है और रात को दाल अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन एक एक कटोरी दाल की आप सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच टाइम पर जरूर खाएं। दूध जो है वो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। आयरन की गोली प्रेगनेंसी में जरूर खानी चाहिए, सिर्फ प्रेगनेंसी

0: प्रेगनेंसी में ही नहीं, जब तक मदर बच्चे को दूध पिला रही है, चाहे 6 महीने पिला रही है या 1 साल पिला रही है, बच्चे के अंदर आयरन जो जाना है वो माँ के दूध से ही जाना है। इसलिए माँ को दूध पिलाने के टाइम भी आयरन खाना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली मदर्स एंटीनेटल पीरियड में तो खाती हैं, यानी जब तक बच्चा पेट में रहता है तब तक आयरन खाती हैं और उसके बाद छोड़ देती हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि नहीं, आयरन को छोड़ना नहीं है। आप जब तक फीड कर रही हैं बेबी को तब तक आपको आयरन खाते रहना है। दूसरी बात, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो दूध से आता है। बच्चे की हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है बनने के लिए, तो दूध से आना है। और कैल्शियम की गोलियां अलग से भी हम देते हैं, तो कम से कम 500 मिलीग्राम की कैल्शियम की गोली दिन में 2 या 3 बार अवश्य लेनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की हड्डियां अच्छी मजबूत बन सके। तीसरी चीज, ओमेगा फैटी एसिड्स की बात आजकल होती है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स अच्छे माने जाते हैं, तो वो भी कुछ लोग देते हैं। रेगुलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ओमेगा नहीं मिलता है, लेकिन अपने आप से आप ले सकते हैं। ओमेगा थ्री
1: ले
0: फैटी
1: सकते हैं
0: एसिड करके मिलते हैं, हाँ, कैप्सूल।
1: जी।
0: और कभी कभी प्रोटीन पाउडर एडवाइस किया जाता है, जो अनिमिक पेशेंट्स होते हैं जिनके खून की कमी होती है, उनको प्रोटीन पाउडर दूध में घोल करके खाने के लिए कहा जाता है, पीने के लिए कहा जाता है। और आयरन भी जो पेशेंट्स अनिमिक होते हैं उनको कई बार हमें दिन में 2 बार भी टैबलेट देनी पड़ती है। अदरवाइज अगर अनिमिक नहीं है पेशेंट तो 1 आयरन की टैबलेट सफिशियंट है। और आयरन के साथ विटामिन सी लेना अच्छा रहता है। एक विटामिन सी 500 मिलीग्राम की गोली अगर आयरन की टैबलेट के साथ ली जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो आयरन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से, अंतनी।
1: जी
0: और हरे पत्तेदार सब्जियां अच्छी रहती हैं, लेकिन उसमें ये है कि हरे पत्तेदार सब्जियां आपको अच्छे से धोनी पड़ेगी। बिना धोए क्या होता है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़ों के अंडे अक्सर पाए जाते हैं, जो कि अगर अंदर चले जाते हैं तो फिर वो व्याधि क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, स्पेशली पालक, सरसों का साग, बंद गोभी, बंद गोभी के लोग बंद की बंद ही काट करके और उसे चढ़ा देते हैं, तो बंद गोभी के जो पत्ते हैं उनको खोल करके, उनको धो करके और तभी उनकी सब्जी बनानी चाहिए। अदरवाइज बंद गोभी के अंदर बहुत अंडे होते हैं, कीड़ों के अंडे जो आपके शरीर के अंदर जाते हैं। और हमेशा सब्जी जो है काटने से पहले धोनी चाहिए, काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे सब्जी वालों के पास कटे हुए साग बिकता है, लोग कटा हुआ साग खरीद करके लेके जाते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, खुद नहीं काटना चाहते हैं, तो कटा हुआ लेकर के जाते हैं। कटे हुए सब्जी जो होती है, जब उसको आप धोते हैं तो उसमें से सारा तत्व जो है
1: वो निकल जाते
0: निकल जाता है। तो इसलिए कटने से, सब्जी हमेशा काटने से पहले अच्छे से धोनी चाहिए और उसके बाद ही काट। और फ्लोइंग वाटर में आपको एक बार आप किसी बड़ी चीज में उसे सबमर्च करके, यानी भिगो करके अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसे रनिंग वाटर के लिए भी मैं कहूंगी कि पानी हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जो रनिंग वाटर चला रहे हैं, पानी नलका चला दिया, अब आप उसमें साग धो रहे हैं, तो नीचे एक कंटेनर रख लीजिए जिसमें वो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाए, फिर उसको आप उसी पानी को यूज कर सकते हैं अपने गमलों में पानी देने के लिए या वॉशिंग करने के लिए। तो पानी भी हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें धोने पर भी ध्यान देना चाहिए हम किस तरह से धो रहे हैं। धोना अच्छा रहता है, लेकिन उस पानी को आप वेस्ट नहीं करें, आप उसको रीयूटिलाइज करें।
1: बिल्कुल। चलिए डॉक्टर नंदा, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, सही बात बताई प्रतिभा जी ने, कभी क्या है। सुभाष जी ने भी याद भेजा है कि आपने जो विषय लिया है उस विषय पर बहुत अच्छी तरह से बातें बताई करके। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा प्रतिभा जी एक छोटा सा मैसेज सबके लिए क्या देना चाहेंगे।
0: मैसेज में ये देना चाहूंगी, हमने जो टॉपिक रखा था प्राणायाम के ऊपर वो हम शायद नहीं कवर कर सके, तो वो कभी फिर कवर करेंगे। मैं आपको
1: बिल्कुल
0: इसके ऊपर भी बताऊंगी, लेकिन आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं तो उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपनी एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके और
1: जी
0: अपने शरीर को भी ध्यान में रख करके कुछ जो चीजें मैंने कही हैं उस पर विचार करें। मेरे कहने से ही आपको सिर्फ इतना है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा मैंने शायद जागृत की हो और सोचना आपने है, कि इसको किस तरह से कार्यरत किया जाए, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं सिर्फ आपको मोटे तौर पे बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे होना चाहिए और किस तरह से करना है ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरे घर से कूड़ा नहीं निकलता है, मैं अपना
1: जी जी
0: जितना सामान है उसको रीयूटिलाइज करती हूँ, या जैसे छिलके हैं वेजिटेबल्स के बची हुई जो चीजें हैं वो सारी मैं खुद अपने हाथ से गाय को खिलाने के लिए जाती हूँ, गाय को खिला करके आती। तो मेरे घर से कूड़े की जनरेशन बिल्कुल नहीं होती। ये हमारा बहुत बड़ा एक नेशनल मुसीबत होने वाली है कि हम अपने कूड़े को क्या करें, तो कम करना चाहिए। सो मेरा मैसेज यही है कि हम अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, हम कूड़े का जनरेशन कम करें, हम जो भी चीज हमारे हाथ में आती है उसको दोबारा से यूज कैसे करना है ये सोचें, और छोटी से छोटी चीज अगर आपके जैसे कुछ बिखर भी गया है किचन के अंदर या कहीं पे भी कुछ है वो किसी चीज में यूटिलाइज हो सकता है, आप उसे उठा करके अपने घर के बाहर मुंडेर के ऊपर ही रख देंगे तो चिड़िया ही खा करके चली जाए। ये अलग
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चीज, रूटीन है मेरा कि मैं चिड़ियों के लिए अलग से रोटी या दाना रखती हूँ, पानी रखती हूँ। इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि मैं काउज को जाकर के घर का ये सब कुछ साथ में एक रोटी और खिला देती हूँ, तो हमारे आसपास जो पक्षी जानवर ये सब हैं ये हमारे प्लैनेट के ऊपर ही हैं और हमारे साथ, हम इनके बगैर भी नहीं एग्जिस्ट कर सकेंगे, और ये हमारे बगैर हम सोचते हैं हम इनके लिए कर रहे हैं पर शायद ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे। प्लांट्स हैं, हम आसपास में देखते हैं जिस समय गर्मियों के बहुत दिन होते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं, मुझे लगता है जब तक बारिश आएगी ये मर जाएंगे, तो मैं जाकर के वहां पे पानी जरूर डाल के आती हूँ, चाहे पब्लिक पार्क में ही जाकर के डाल के आती हूँ, उठा के लेके जाती हूँ घर से। तो हमें अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, हमें इन पशु पक्षी, इन अपनी वेजिटेशन, अपने पेड़ पौधे, इन सबको बचा करके और फिर हम अपने शरीर का भी ध्यान रखें। तो ये मेरा मैसेज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। बहुत सही कहा आपने। और नीता जी लिखते हैं मैं भी गाय को ही जाके खिलाती हूँ। चलिए, कचरे का नियोजन करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने घर का कचरे का अगर नियोजन करना आ जाए तो बहुत सारी बीमारियां भी बच सकती हैं और गंदगी से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें हर व्यक्ति को अपना कचरे का नियोजन करना चाहिए। हम लोग अभी पूरा कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। आज के इस एपिसोड में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर प्रतिभा नंदा से जानने की कोशिश की, जो टेक्नोलॉजी है और जो नई बातें हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसको कैसे इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और फिर पहले वाला जो चीज है वो हम लोग मैनुअल जो चीजें हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही। तो ऐसे में हमें जो है निश्चित तौर पे दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और प्लास्टिक में गरम सब्जियां वगैरह लेके नहीं घूमना चाहिए। जितना हो सके आप जो है अवॉइड करें, जहां जरूरी नहीं है वहां पर उनका इस्तेमाल ना करें, और अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो ठीक है, मजबूरी में आपने प्लास्टिक बॉटल का पानी पी लिया, बाकी आप अपने घर में जैसे पीते हैं रेगुलर अपने ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के बॉटल से पानी रेगुलर ना पिए, ये भी आपको ध्यान में रखें। तो फिर से एक बार डॉक्टर प्रतिभा नंदा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। एंड सुभाष जी, नीता जी, राम जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़कर बहुत बहुत मैसेज करके याद किया हमें, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत।

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: इस बड़े युद्ध में भारत की शान को कायम रखने की कीमत हमारे 500 से अधिक वीरों ने अपने रक्त से चुकाई। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वो तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे। और बहुत अच्छा लगता है, इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

0: सामने की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, आपकी अपनी उषा के साथ। वंदे मातरम उस मात्र शक्ति को नमन जिसके आंचल से संस्कार मिलते हैं, जिसकी ममता से जीवन सवर जाता है। आज का ये मंच केवल शब्दों का नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, नारी के साहस, समर्पण और शक्ति का वंदन है, क्योंकि नारी केवल सृजन नहीं, वह संकल्प है, वह संस्कृति है, वह राष्ट्र की आत्मा है। इसी भाव के साथ नारी शक्ति को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का स्नेहिल स्वागत है। और आज फिर से आपको मिलवाने जा रही हूँ ज्योति पाल से, जिनका आपने गए रविवार भी सुना और इस रविवार भी आप इनको ही सुनेंगे। तो ज्योति जी के हमने काफी बातें बताई थी, उम्र तो आपकी 45 वर्ष की है, आप ने बीएससी किया हुआ है, आप जर्नलिज्म है, साथ ही साथ अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि है, आप पढ़ने में हर एक बात में सबसे आगे रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भी आप हमेशा दूसरों को टक्कर दे करके आगे बढ़ जाते थे, और आपने टीवी चैनल में भी काम किया हुआ है, टीवी जर्नलिस्ट भी है। बहुत सारी विशेषता है जो आपने गए रविवार भी सुनी और इस बार भी सुनेंगे, तो आपके ही द्वारा। ज्योति जी पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उषा जी, वंदे मातरम आपको भी। और पिछले रविवार को हमने बात की थी,
0: हाँ, तो आपके स्टूडेंट लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे जी, में जी। आपको पढ़ाई में किस तरह रुचि थी, कौन से गेम्स आप ज्यादा खेलते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है आपने ज्योति जी। तो अब आपके सफर की बात करेंगे, फिर आप कैसे आगे बढ़ते गए जरा।
1: जी, तो जैसा कि हमने बात की थी कि कॉलेज लाइफ की, कॉलेज के बाद मैंने बीएससी की, और बीएससी के बाद फिर मैं एक ऐसा कोर्स ढूंढ रही थी, मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी इन जियोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उसमें एक्चुअली पत्थरों का अध्ययन होता था जियोलॉजी में, हिंदी में उसे बोलते हैं मुझे भूगर्भ विज्ञान, हाँ राइट, तो भूगर्भ विज्ञान, तो उसमें पत्थरों का अध्ययन होता था। और वो एमएससी में मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, तो मैंने अपने पापा को भी बोला, और मैं जर्नलिज्म का कोर्स ढूंढ रही थी। मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि आप, मैंने कहा भैया मुझे कुछ हटके करना है, अपनी आइडेंटिटी एक नई बनानी है, ऐसा कुछ करना है, रूटीन है या नहीं कि बीएससी कर ली फिर एमएससी कर लिया, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज की भी सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे हिसाब से आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी जर्नलिज्म का, कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मुझे मिल जाए तो मैं उसमें एमए इन जर्नलिज्म कर सकूं, बट उस वक्त मुझे दिखा नहीं। और मैंने एमएससी में एडमिशन लिया और मैं 15 दिन गई, रेगुलर क्लास भी की, और पढ़ने में तो अच्छे थे, तो सारे प्रोफेसर लाइक करते थे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। लेकिन अचानक उस समय मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैंने तो 4-5 जगहों पर केमिस्ट्री में भी अप्लाई किया था, एमएससी इन केमिस्ट्री में भी,

0: ऑफिसर और वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सबने अपोज किया, कहने लगे कि नहीं नहीं इसमें आपको बहुत स्कोप है, को बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलेंगी और आपको विमेन कैटेगरी से आपको उसका भी फायदा मिलेगा। पर मैंने फिर उनको भी नो नो करते हुए फाइनली फिर मैंने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो वहां से हमने फिर वो बहुत अच्छा रहा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हम जाते थे जगह जगह, हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो हमको कई बारी भेजते थे कहीं पे रिपोर्टिंग करने के लिए, लोकल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कहते थे जाओ वहां पे जाके प्रेस रिलीज लिखो, तो प्रैक्टिकल भी करते थे। उसी दौरान फिर मैंने जी न्यूज में इंटर्नशिप भी करी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में, जब मैं एमए इन जर्नलिज्म कर रही थी तो दिल्ली में जाके मैंने की। तो एक छोटे स्मॉल टाउन था, मतलब उज्जैन, 2001 की बात मैं बता रही हूँ। वहां उस टाइम पर मीडिया में, अखबारों में या लोकल टीवी चैनल में कोई भी लड़की नहीं काम करती थी, रेयर ऑफ द रेयर केस में एक या एक आधी कोई फीमेल होगी। पूरी तरीके से जर्नलिज्म फील्ड छोटी जगहों में ऐसे ही होता है।
1: जी जी हाँ, पुरुष लोग ही ज्यादा सम्मिलित होते हैं।
0: तो ऐसे टाइम पे फिर मैंने वहां पे कहा कि भाई हमने काम भी शुरू किया नवभारत पेपर में, साथ में मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी, एक नवभारत पेपर अच्छा नेशनल पेपर था। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड से कहा कि मुझे आप ये दीजिए इंटर्नशिप की परमिशन, मैं दिल्ली जाके जी टीवी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। भाई हमारे डिपार्टमेंट हेड ने कहा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट से तो इंटर्नशिप के लिए भेजा नहीं जाता है आपको, तो हम कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये लिख के दे दो कि ये लड़की करना चाहती है इंटर्नशिप आपके यहाँ जी टीवी में, तो ये हमारे यहाँ से कोर्स कर रही है और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको इंटर्नशिप करने दीजिए। तो भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो लेटर दिया इंटर्नशिप का, क्योंकि डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप का रूल नहीं था कि बाहर जाके इंटर्नशिप करे। वहीं पे
1: बाहर क्यों जाना चाहते थे?
0: बाहर इसलिए मैं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे ये था कि एक टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो हमारे इसमें एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उस टाइम पर सिर्फ प्राइवेट चैनल्स में एक सिर्फ जी न्यूज ही था, बाकी अच्छा। तो न्यूज के फील्ड में डीडी न्यूज और दूसरे थे सरकारी, लेकिन प्राइवेट कोई इतने न्यूज चैनल्स नहीं हुआ करते थे। तब बस शुरू में एक आज तक शुरू हुआ था, जी के बाद फिर एक आज तक शुरू हुआ था। तो मुझे ये था कि टीवी में मुझे टीवी जर्नलिज्म ही करना है, मैंने ये स्पेसिफिक जर्नलिज्म करना है, लेकिन मेरा गोल भी फिक्स था कि नहीं मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है, टीवी जर्नलिस्ट बनना है। तो इतना आसान नहीं था क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं थी, मेरी कोई कजन वगैरह सब लोग शादीशुदा थे और कोई भी जॉब नहीं करता था। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है पाल कम्युनिटी, तो उसमें फीमेल्स को इतना और जॉब के लिए इतना नहीं अलाउ किया जाता था। एक तो घर में इकलौती बेटी और उसके बाद उसको भी बाहर पढ़ना है और
1: दिल्ली जैसे,
0: हाँ, और वो भी जर्नलिज्म फील्ड, जो कि मेरे पूरे परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कि किसी का सपोर्ट मिले।
1: जी जी, तो फिर आपके पापा मान गए आप कोर्स करने का?
0: हाँ, तो मैंने कोर्स भी किया, फिर डिपार्टमेंट हेड को भी मनाया, उनसे इंटर्नशिप लेटर भी लिया, फिर मैं दिल्ली गई। अब फिर दिल्ली जाना है तो भाई खर्चा भी है काफी, दिल्ली आना जाना, वहां रहना, पेंगेस रहना, वहां गई मैं, हमारा कोई इतना नहीं, मैं कजन था तो उसने थोड़ा सपोर्ट किया, वो वहां गुड़गांव में जॉब करता था, तो शुरुआत में मैं 2-3 दिन उसके यहाँ रही। फिर मैंने एक पेंगेस्ट वहां पे होता था, तो उसमें आपको 2 टाइम का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर देते हैं, लंच आप अपने ऑफिस में ही करते हैं। जैसे एक पेंगेस्ट में रही वहां पे उनके यहाँ 1 महीने, और 1 महीने मैंने इंटर्नशिप की नोएडा में जी न्यूज में फिल्म सिटी में, बड़ा अच्छा रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं इंटर्नशिप करके दिल्ली से आई तो जैसे हमारा छोटा सा उज्जैन शहर, वहां के सारे न्यूज़पेपर में मेरे ही सीनियर्स हुआ करते थे हमारे जर्नलिज्म फील्ड के, तो सब लोग बड़े शॉक्ड हो गए, अरे एक अपने डिपार्टमेंट की लड़की है वो है ना दिल्ली में इंटर्नशिप करके आ गई, वो भी जी न्यूज में इंटर्नशिप करके आ गई।
1: अच्छा।
0: तो बड़ा पूरा जैसे एक एक खबर बन गई सारे मीडिया में।
1: और वहां आपको चांस मिल गया?
0: हाँ, वहां इंटर्नशिप कहा मुझे चांस मिला, लकीली मुझे चांस मिल गया, मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसके थ्रू ये मेरा हो गया। क्योंकि कहते ना जहाँ दिल की भावना,
1: हाँ,
0: बिल्कुल हो, जहाँ आप लक्ष्य रखेंगे वहां लक्षण खुद ही खुद ब आ जाते हैं
1: जी।
0: तो बड़ा ही अच्छा रहा। तो जो मेरे सीनियर्स थे वहां पे, तो लड़कों को ये लगा, खास करके उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया आपको लोकल मीडिया में कोई

0: की फीमेल नहीं थी
1: जी,
0: मैं और मेरी एक फ्रेंड हम मास्कॉम में भी थे, तो हम ही कुछ ऐसी इंटर्नशिप टाइप के वहां पे कर रहे थे। तो बड़ा सब शॉक्ड हो गए, अरे लड़की करके आ गई दिल्ली से, तुम तो लड़के हो। तो लड़कों में भी बड़ा स्पार्क आ गया कि अरे हमारे उज्जैन की लड़की कौन है, कौन है मतलब। तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि तुम जब से इंटर्नशिप करके आई हो तब से बड़ा मतलब दैनिक भास्कर, नई दुनिया, बड़े बड़े पेपर में बड़े बड़ा हल्ला है, लड़के तो बड़े शर्म से डूब मर रहे हैं।
1: क्या बात है ज्योति जी, चलिए आपके तो बड़े सुंदर अनुभव है जिसका हम फिर से सुनेंगे, परंतु पहले एक ब्रेक का समय हो चला है तो एक ब्रेक ले लेते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, ज्योति जी के बहुत ही गहरे अनुभव है जो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सुनते हैं गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी हमारे साथ बने हुए हैं और ज्योति जी के वास्तव में अनुभव आपने सुने हैं जो काफी गहरे थे। आइए इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। तो ज्योति जी, आपने तो जैसे अपने कॉलेज का नाम कर दिया, अपने शहर का नाम कर दिया, तो लोग भी आपसे प्रेरित हुए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम बड़ा अच्छा रहा। तो उसके बाद कुछ लोगों ने फिर जाके दिल्ली में आज तक में भी जाके कोर्स किया, आज तक का कोर्स होता है आज तक टीवी का, तो वहां भी गए। तो मतलब एक तरीके से एक बड़ा मेरे लिए अपने आप में ये अच्छा अनुभव रहा।
1: उज्जैन शहर में आप पहली बेटी ऐसी है जिन्होंने दिल्ली में जाकर के जर्नलिज्म किया।
2: हाँ, जर्नलिज्म में इंटर्नशिप की और जॉब भी पहली ही मैं हूँ। अच्छा। जिसने दिल्ली जाकर जॉब की।
1: अरे वाह, क्या बात।
2: तो फिर ये हुआ कि मैं इंटर्नशिप करके 2001 में आ गई, फिर दो साल मुझे टीवी मीडिया में इंटर करना है। और ऐसे में जब जिसका आप कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और दिल्ली में कोई लिंक नहीं है, बस वही लिंक बनी थी मेरी जो जी टीवी में मैंने एक महीने इंटर्नशिप की थी, तो कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट बना था। ऐसे में आपको फिर से जाना है दिल्ली और जॉब सर्च करना है, बहुत ही डिफिकल्ट था। और वहां रहना खाना बहुत महंगा होता है और घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे बिना जॉब के, तो वहां क्या आप अकेले रहें। तो ये बहुत चैलेंजिंग थे ये दो साल मेरे लिए, 2001 से लेके 2003। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं टीवी के आगे बैठती थी, दिन भर टीवी चैनल देखती थी।
1: अच्छा।
2: और मेरा भाई मजाक करता था क्योंकि एडवर्टाइज में कुछ कुत्ते बिल्लियों को भी ऐड आते हैं, ऐसे कुछ होता था, तो कहता था देख अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तू कब आएगी।
1: क्या बात है।
2: तो भाई लोग तो भाई तो ऐसे ही होते हैं, है ना, शरारती। तो मुझे बहुत परेशान करते थे घर वालों के टोन। फिर हम मेरे कॉलेज के जो भाई मैं मास्कॉम किया था, तो हमारा जो ग्रुप थी हमारी बैच थे, तो मुझे टोन मारते थे कि ये देखो जी टीवी रिटर्न ऐसे करके। मुझे जब हम पब्लिकली सोशली हम मिलते थे किसी के फंक्शन में पार्टी में, तो वो कहते थे, तो इंट्रोड्यूस मुझे कहते थे ये हमारी फ्रेंड है जी टीवी रिटर्न। तो बड़ा मुझे लगता था कि मैं जा नहीं पा रही हूँ दिल्ली, और मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास टाइप की थी और मैं कुछ भी जो मुझे करना है मैं दिल से खुलकर बोल देती थी। मैं कहती थी मैं तो टीवी जर्नलिस्ट बनूंगी भाई, मुझे किसी चाय वाले अखबार में काम नहीं करना है। कि जो चाय के स्टॉल्स पे छोटे छोटे अखबार नहीं जाते हैं शाम के पेपर है वो, तो मैंने कहा तुम लोग करो भाई, मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट ही बनना है। और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ सबको बोलती थी। अब चूंकि 2003 में सहारा टीवी शुरू हुआ, तो उस टाइम सहारा ने अपना नेशनल चैनल स्टार्ट किया और कई सारे रीजनल चैनल्स भी स्टार्ट किए, उसमें एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी। मैं कई लोगों को कांटेक्ट करती रहती थी दिल्ली में, फोन करती थी, बस फोन के थ्रू मैं करती थी उन्हें बातें। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम ट्राई कर रही हो, तो सहारा वालों ने अपना और पेपर में भी एडवर्टाइज भी काफी आया था, तो उसमें ट्राई करो तुम्हारा हो जाएगा। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स वहां पे निकली हुई है, मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया। और ऐसे ही एक दिन मैंने वहां का पता चला कि कौन हेड कर रहा है उसको, तो मुझे पता चला विनोद दुआ जी बहुत जाने माने जर्नलिस्ट माने हुए थे। तो मैंने सोचा कि 5-6 लोगों को जिनको मैं बड़े बड़े नाम जानती थी टीवी के, सबके नाम से जिन्होंने मुझे पता चला जिन्होंने सहारा ज्वाइन किया है, तो मैं सबके नाम से अपना रिज्यूमे उनको ड्राफ्ट करके अच्छे से और उनको पोस्ट कर दिया नोएडा में। और लकीली जिसे कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि क्या चीज होती है, तब मुझे पता चला कि अगर आपकी सच्चे में कोई ड्रीम है, और विनोद दुआ जी के हाथ में मेरा वो रिज्यूमे लग गया और उन्होंने मुझे कॉल कर लिया लकीली। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ सितंबर 2003 की।
1: अच्छा।
2: हाँ जी
1: जी।
2: उस वक्त मुझे कॉल आया और बोला कि आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है। फिर मैं इंटरव्यू देने गई और वहां लकीली मेरा इंटरव्यू, उन्होंने मेरा थोड़ा बैकग्राउंड देखा कि मैंने नव भारत में भी करा है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया है, मेरे फर्स्ट क्लास के नंबर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और मैंने 1 अक्टूबर 2003 को सहारा टीवी में मेरी ज्वाइनिंग हो गई।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे घर में तो किसी को नॉलेज नहीं था,
2: हाँ जी,
1: आपको
2: हाँ जी।
1: अपने अंतःकरण से ही निकलता था कि मुझे इस फील्ड में जाना है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिर घर वाले भी खुश हो गए होंगे जो आपके भाई चिढ़ोते थे।
2: हाँ बहुत चिढ़ाते थे, मेरा भाई तो लिटरली इतना बुरी तरह से कहते थे, देख कुत्ते बिल्ली के भी एड आ रहे, तू कब टीवी में दिखेगी। तो मुझे ये बड़े बात बड़ी चुभती थी। और फिर मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे प्रोफेसर लोग जो मुझे ये भी बोलते थे कि भाई तुम तो जी टीवी रिटर्न हो, उन्हें जब पता चला अरे सच में उसकी तो टीवी में जॉब लग गई, तो दे आर लाइक शॉक्ड। फिर वो कहने लगे अरे हमें तो पता था आपका उज्जवल भविष्य। तो मुझे लगा देखिए दुनिया कितनी जल्दी अपने थॉट चेंज करती है।
1: दुनिया तो चढ़ती के साथ सलाम करती है,
2: बिल्कुल
1: जब उगता है तो उसको सभी सलाम करते हैं।
2: और वो सारे मेरे फ्रेंड मास्टर जर्नलिज्म के सब मुझे अप्रिशिएट करने लगे, कॉल करने लगे, मुझे बधाइयां देने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगा कि मैंने जो ड्रीम सोचा था जब मैं दिल्ली में पहली बार मैंने कदम रखा था इंटर्नशिप के दौरान, तब मैंने कहा था दिस इज माई सिटी, यही मेरी सिटी है और मैं यही रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फिर वहां रहने भी लगी और मुझे जॉब भी मिल गई, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और सहारा ग्रुप बहुत अच्छा था, वो भी एक परिवार की तरह था, सहारा इंडिया परिवार। और मतलब बहुत उस टाइम पे तो एयरलाइंस भी होती थी काफी सारी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नई नई चीजें वहां सीखी, बोलना सीखा। कंप्यूटर तो मैं जानती थी पहले ही, मैंने डिप्लोमा एप्लीकेशन कर रखा था कंप्यूटर में 1 ईयर का, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां हमको सीखने को मिली। और जब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे ग्रूम होती है। और स्पेशली जब जर्नलिज्म फील्ड में होते हैं तो हम इतनी वैरायटी न्यूज सुनते हैं, तो अवेयरनेस का भी लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा था।
1: जी जी जी। तो जैसे आप दिल्ली रहने लगे, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आप अकेले रहते थे, तो वाले चिंता तो नहीं करते थे कि अब अकेली बेटी शहर में रह रही है इतने बड़े?
2: नहीं, परमात्मा की कुछ ब्लेसिंग कह दीजिए कि हम लोगों के एक कास्ट के थे अंकल, उन्होंने ही अपने घर पे मुझे, उनकी बिल्डिंग थी दिल्ली में बहुत बड़ी और हमारे कास्ट के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने एक रूम मुझे रेंट पे दे दिया था। तो ये था कि उन लोगों की पूरी फैमिली थी, उनके 2-3 बेटे थे, बहुएं थी, और वो तो एक फैमिली एनवायरमेंट मुझे मिल गया था, तो उनका सहयोग मुझे बहुत मिला। तो जैसे कहते हैं कि बहुत जहां आपकी चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है, तो मुझे एक फैमिली एनवायरनमेंट मिला और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। फिर धीरे धीरे तो फिर ऑफिस में भी जान पहचान हो गई, तो हम 2-3 लड़कियां मिलके हमने एक फ्लैट ले लिया, फिर हम उसमें रहने लगे, ऑफिस के पास ही फ्लैट लिया, तो ऐसा हो गया कि ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, तो उसमें फिर हमें बहुत इजी हो गया।
1: और जर्नलिज्म के नाते तो आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ा होगा?
2: फील्ड वर्क था, मैं कभी कभी जाती थी रिपोर्टिंग करने, पर मैंने देखा फिर वहां पे भी मैंने कंपेयर किया कि जो रिपोर्टर होते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कब वो खाना खाएंगे, कब सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, कब किस मंत्री से मिलेंगे, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है। तो मैंने बोला वो और टू मच स्ट्रगल वाला हो जाएगा, तो मैंने ऑफिस ही प्रेफर किया। तो मैं, वो लोग रिपोर्टिंग करते थे और मैं वो जो लिख कर लाते थे अपनी स्टोरी, मैं उसको फाइनल एडिटिंग कर दी, तो मैं एज एडिटर उसके लिए काम करने लगी ऑफिस में ही। तो मैंने बोला अच्छा एसी में बैठ के ये लोग करके लाते हैं मेहनत, और मैं ही उसको वॉइस ओवर करती थी, उसमें आवाज देती थी, स्क्रिप्टिंग लिखती थी, फिर हम बुलेटिन बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे सीखी, लेकिन मैं ऑफिस ही वर्क करती थी, एज ए प्रोड्यूसर मैंने वहां पे काम किया।
1: जी जी जी, बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती रहूं, आप सुनाते रहे। जी, फिर आपने ऐसे भी बताया था कि 6 साल इधर काम किया।
2: हाँ हाँ, सहारा टीवी में 6 साल काम किया, और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कुछ चेंज भी करना चाहिए, तो फिर मैंने कंपनी भी चेंज करी और फिर वहां पे भी अच्छा काम मिला, वहां पे भी कुछ वैरायटी वैरायटी चीजें मुझे करने की मिली।
1: तो कंपनी चेंज की, फिर आपने कहाँ काम किया?
2: हाँ, फिर मैंने एक CVB, मैंने आपको बताया ना, वो UNICEF के साथ उस टाइम टाई अप था, तो सीवीवी में मैंने काम किया, जो सी वोटर करके जो एग्जिट पोल होते हैं हमारे चुनाव के, उसके लिए वो काम करती है। तो उसमें थोड़े टाइम के लिए काम किया, फिर मुझे 6 महीने बाद ही एक और अच्छा न्यूज एक्सप्रेस करके चैनल नया लॉन्च हुआ था, तो हमारे पुराने सहारा के बॉस वहां पे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आ सकती हैं यहाँ पे, तो फिर मैंने न्यूज एक्सप्रेस चैनल ज्वाइन कर लिया।
1: जो आप छोड़ करके दूसरी तरफ जाते तो उसमें आपका प्रमोशन होता या फिर?
2: हाँ बिल्कुल, आपका फाइनेंशियली भी और आपका डेजिग्नेशन वाइज भी प्रमोशन होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और आपकी पदोन्नति तो होती है।
1: जी जी, तो ये 3-4 चैनल में आपने काम किया, आपको विशेष क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव हुआ? कहीं देखिए ये तो बाहर की दुनिया है, मतलब कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे ये जर्नलिज्म लाइफ हो,
2: हाँ ग्लैमर वर्ल्ड कहलाता है। जी बिल्कुल,
1: तो इसमें आपको कभी बुरी नजरों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय तो लड़कियां बहुत कम इस फील्ड में जाती थी, तो कभी आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ या फिर आप कभी नर्वस हुए या कभी ऐसा लगा कि छोड़ो मुझे नहीं करना है?
2: देखिए अब हम हर सोसाइटी में जिसमें रहते हैं उसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह की होती है आपकी तरफ वही लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो होते थे, लेकिन कभी हम में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी और इतना किसी से बहुत ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा। और कोई मान लीजिए आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात है इस फील्ड की, सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी जर्नलिज्म में, इसमें सब लोग बहुत ओपन है। मान लो किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ ऑफर करना है, मान लो किसी को किसी लड़की को प्रपोज ही करना है तो वो डायरेक्ट कर देगा। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि गोलमाल करके बोलेगा या उसको कुछ करेगा, मतलब ऐसे किसी तरीके से इंडिकेट करेगा या उसको परेशान करेगा, ऐसा नहीं। जर्नलिज्म फील्ड में बहुत चीजें ओपन है, तो अगर किसी को ये था कि भाई किसी को प्रपोज, तो आपको अगर नहीं स्वीकार करना है तो ना स्वीकार करिए। तो इस फील्ड में ये था कि सब लोग ब्रॉड माइंडेड बहुत होते हैं पढ़ने लिखने वाले, तो ऐसा ही थे, कुछ लोग मिलते थे ऐसे कि कुछ प्रपोजल भी दे देते थे,
1: जी,
2: कुछ कर देते थे, तो हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सबको फ्रीडम है। लेकिन कुछ लोग होते होंगे, पर इस तरीके का मुझे तो कभी माहौल मिला नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी थी, तो बहुत ओपन थे वो लोग, तो जो हमको समझ में आता, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है या कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है या ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं लगा। और हम लोग नाइट में भी जॉब करते थे, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया मेरे बॉसेस भी बहुत अच्छे थे, और जहां मैंने देखा कि जो लोग अच्छे नहीं थे तो मैंने खुद ही किनारा कर लिया।
1: जी जी, वो समझ आ जाती है,
2: वो हमें समझ आ जाती है। जब मुझे लगा जॉब में कि मेरे बॉस चेंज हो गए हैं और वहां का एनवायरनमेंट खराब हो गया, तो मैंने जॉब स्विच कर ली।
1: बहुत अच्छा।
2: कुछ चीजें जहां हमारे कंट्रोल में होती है वो हम उनको कंट्रोल कर सकते, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती तो हम उसको चेंज कर सकते।
1: जी जी, बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: सुनने के बाद पुनः लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बेटी बोझ नहीं वरदान है, बेटी बोझ नहीं वरदान है, ये सोच बदलनी आज की पहचान है। जिस घर में बेटी हंसती है, जिस घर में बेटी हंसती है, वही सच्चा सुख समाधान है, वही सच्चा सुख समाधान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी के बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी एबिलिटी है, और कितना आप भले कहीं पर भी आप नर्वस नहीं हुए, और हर क्षेत्र में आप जैसे जर्न लीजिए में आपने काम किया है। इस चैनल में आपको ऐसा लगा तो चेंज करके आप दूसरा आपने पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं कि एक अकेली बेटी जिसका किधर से भी सपोर्ट नहीं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और खुद ही सपोर्ट का रास्ता ढूंढना, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो ज्योति जी, आप जैसे निडर होकर के काम करते रहे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जबकि वहाँ कुछ के कुछ सुनने को मिलते रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कभी माता पिता ने भी टेंशन नहीं लिया, उनको पता है कि बेटी बिंदास है?
1: कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता था ये समझदार भी है, इसको पता है कहाँ किससे कैसी बात करनी है। खासकर मेरा भाई जो मुंबई में रहता था, तो वो जब दिल्ली आया पहली बार मुझे छोड़ कर गया, फिर दोबारा मुझे लेने भी आया। पापा ने भेजा, पहली बार में तो भेजते हैं, तो लेने आया तो उसने देखा। मैं अपने भाई को बोल रही, तू ये वाली बस लेना भाई, और ना ये वाले नंबर पे लेना, इस वाले जगह पे आना, फिर वहां से ये करना। तो मेरे भाई ने ये कहा कि तुझे जब सब कुछ पता ही है तो पापा ने मुझे क्यों भेजा है लेने के लिए। मैं अपना जॉब छोड़ के 2 दिन की छुट्टी लेके तुझे लेने आया हूँ बस यहाँ पे। कहता अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। तो अगली बार से मैं फिर अकेले ही दिल्ली गई। सबसे बड़ी बात बताते, जब मुझे जॉब पहली बार ज्वाइन करना था सहारा में, तो मैं अपने रिलेटिव के ही रुकी हुई थी, तो मुझे 2 पैन कार्ड भी उनको सबमिट करने थे एज ए प्रूफ। तो एक तो मैंने किसी का दे दिया था ऑफिस में ही, और एक उन अंकल का ले लिया जिनके यहाँ मैं रहती थी, हमारे रिलेटिव ही थे वो, तो वो मेरे बहुत पीछे पड़े। हाँ, मैं अपने बेटे की ज्वाइनिंग कराने वो मुंबई गया था, तो मैं खुद गया, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए। तो मैंने कुछ बहाना बनाया कि मेरे घर, उस वक्त में हमारा घर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो मैंने कहा हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, वो नहीं, अपनी बेटी को कोई ऐसे अकेले ज्वाइनिंग के लिए भेजता है क्या? पर ऐसे ही है, हमने करा लिया, कोई वो नहीं था ज्वाइनिंग में, क्या होता है एक फॉर्म ही, तो परमात्मा ने कराया, परमात्मा के भरोसे हम पहुंच गए और हमें अच्छे अपने जैसे लोग मिले, और मेरे काम भी सहज होते गए, ऑफिस के लोग भी सपोर्टिव थे, किसी ने अपना पैन कार्ड दे दिया सपोर्ट के लिए, ज्वाइनिंग में जो चीजें चाहिए होती है छोटी मोटी, मतलब रेफरेंस के लिए, या तो वो सारी चीजें हो गई।
0: जी जी जी, इस तरह आपकी यात्रा शुरू हुई।
1: जी बिल्कुल।
0: फिर कितने समय आपने काम किया और फिर छोड़ने का डिसीजन आपने क्यों लिया?
1: हाँ, तो जैसा कि आपने पहले एक लाइन बोली थी कि मैं बहुत ही शुरू से खुशनुमा बिंदास टाइप की, ओपन रहने वाली और बहुत सोशल टाइप की थी, लेकिन लाइफ में हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो बीच में रिसेशन आया था, 2009 की बात मैं बता रही हूँ, उस कंपनी से कुछ लोगों को हटाया भी गया, तो उस लिस्ट में मेरा भी शायद नाम था, तो मुझे तब तो नहीं हटाया गया, लेकिन फिर किसी कारण से मैंने ही फिर वो जॉब को छोड़ा, फिर नई कंपनी ज्वाइन करी। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हमने रिसेशन में जॉबलेस भी रहे, उस वक्त फिर स्ट्रगल किया, फिर से नए नए, टीवी इंडस्ट्री इतनी छोटा एरिया होता है, वही 4-5 चैनल होते हैं घूम फिर के, तो ऐसे टाइम में फिर से जॉब को रीगेन करना, अपने पॉजिटिव रह के फिर से, तो वो चीज तो खैर हो गई, दोबारा जॉब लगा, CV भी ज्वाइन किया, फिर न्यूज एक्सप्रेस ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, हमारी लाइफ जैसे आगे बढ़ी तो लाइफ में फिर आया शादी वाला फेस। तो शादी मेरे पेरेंट्स ने की, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, वो लोग बिल्कुल रिजर्व टाइप के, ना सोशल, और जितना हमारे घर में फ्रीडम था वो सारा फ्रीडम था नहीं,
0: उधर बंदिश है,
1: वो बहुत सारी बंदिशें थी, हर चीज पूछ के करना है, किसी चीज का फ्रीडम नहीं, आप मतलब अपने पसंद से खाना भी नहीं खा सकते, इतना तक रिजर्व था। तो वो मेरे लिए, आप सोचिए कि जो एकदम ही ओपन और जर्नलिज्म फील्ड में जॉब भी करते हुए सब चीजें, और जहां आपको स्वीकार ही ना करे कोई, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा निराशा का पीरियड था, और उस वक्त मेरी लाइफ में डिप्रेशन टाइप की चीज हो गई, तो उस चीज से मुझे कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जॉब भी कर रही थी लेकिन फिर छोड़ा भी मैंने, मैं नहीं कॉप अप कर पाई। मुझे लगा कि मैं दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, उन लोगों की विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी। हालांकि वो लोग भी पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग इस तरीके से थी। फिर मैंने सोचा, एक बार मैंने ब्रह्मा कुमारी में मेरा जाना हुआ
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ मेडिटेशन या इस तरह की चीज है। तब मैं इंदौर में शिफ्ट हो गई और एक मैं ऐसी नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करने लगी।
0: तो इंदौर पूरा परिवार या आप अकेले आए?
1: नहीं, मैं और जो हस्बैंड थे वो हम लोग इंदौर गए। एक डेढ़ साल हम वहां रहे तो उसी दौरान जहां मेरा फ्लैट था हमने रेंट पे लिया था, उसके नजदीक ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। और चूंकि उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी और फैमिली में मेरा ट्रांजिशन पीरियड था और उस वक्त विचार मैच नहीं कर रहे थे, एक अलग फैमिली थी, अलग सोच थी, और दबा के रखना, फाइनेंशियली भी आपसे ही सपोर्ट लेना, तो सारी चीजें वो बहुत सारी मतलब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई थी। फाइनेंशियली भी मुझे घर में खर्च करना पड़ रहा था, इमोशनली भी टाइम देना पड़ रहा था, घर का पूरा वो गृहस्थी वाला चीज भी जो मैंने कभी की नहीं थी, मतलब खाना वाना बनाना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी निभाई नहीं थी, वो सब मुझे करना पड़ रहा था। तो उस वक्त कॉप अप करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ऐसे में फिर मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गई। मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन सीखना शुरू किया, स्पिरिचुअल स्टडी करी, तो फिर साथ में डॉक्टर को भी दिखाया कि क्यों मुझे ऐसी निराशा सी हो रही है, क्योंकि मेरे जीवन में ये चीजें थी नहीं कभी,
0: तो मेरे लिए वो आ जाती है तो स्वाभाविक है, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती
1: है। हाँ, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी सोशल रहने वाली लड़की और मैं किसी का फोन पिक नहीं कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे रात दिन फोन करते, मुझे मन ही नहीं करता था बात करना, मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इवन मैं शुरुआत में मेडिटेशन सेंटर में जाती थी, मैं सबसे पीछे बैठती थी क्लास में भी, और जब कोई नहीं रहता था तब मैं अकेले जाके सिस्टर से मिलती थी, उनसे बात करती। फिर मैंने एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया इंदौर में, अपोलो में बहुत रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, उनको भी दिखाया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काउंसलिंग की कि हो जाता है कभी कभी लाइफ में जब आप इस तरीके नए रिलेशन में जाते हैं तो। लेकिन ये हुआ, मेरे पास परमात्मा की कुछ ऐसी होगी दिव्य शक्ति कि मैं उससे धीरे से, फिर एक मैंने और एक नई जॉब ज्वाइन की वहां पर रहते हुए। इंदौर तो छोटा शहर है, तो मैंने जर्नलिज्म में तो नहीं, लेकिन एक मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने एज ए ज्वाइन कर लिया, एज ए सेल्स पर्सन ही, ताकि मैं बिजी रहूं, क्योंकि उन्हें लगा आप खाली मत रहिएगा। तो मैं खाली नहीं रहती थी, मैं सिस्टर शिवानी को भी मैं सुनती थी, तो मैंने वो भी किया, मेडिटेशन भी किया, और फिर दोबारा मैं वापस दिल्ली आ गई और मुझे एक फिर और बहुत अच्छी जॉब लग गई।
0: क्या बात है।
1: तो तब मैंने न्यूज नेशन चैनल में ज्वाइन किया, तो मुझे फिर लगा नहीं, अब मुझे कम बैक करना चाहिए, मुझे अपने प्रोफेशन पे फिर से ध्यान देना चाहिए। चलो वो चीजें नहीं हैंडल हो रही, कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, मैंने ये सोचा। थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर था कि भाई इस रिश्ता लड़कियों को ही चलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं फैमिली में भी मेरी ऐसी सोच थी, मेरी मदर की खास करके बहुत थोड़ी सी रिजर्व थी वो, तो वो कहती थी नहीं, सिचुएशंस ऐसी आती है कई बारी पर उसमें लड़कियों को ही हैंडल करना पड़ता। तो ये मेरे लिए बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि मुझे, मैंने कभी अपने माइंड में सोचा ही नहीं था कि लड़कियों को इतना भी सब हैंडल करना पड़ता है। तो पूरी लाइफ मेरी 360 डिग्री घूम चुकी थी, और मतलब एक तरह से मैंने थोड़ा हंसना भी बंद कर दिया था
0: जी।
1: और लोगों से मिलना जुलना
0: आ गई थी,
1: बहुत निराशा सी आ गई थी, सेपरेट रहने लगी थी।
0: तो आपके हस्बैंड आपके फीलिंग्स को नहीं समझते थे?
1: हाँ, वो नहीं समझ रहे थे, या कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के प्रेशर में थे, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी अपने फैमिली के प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उनकी अपब्रिंग मुझसे बिल्कुल अपोजिट हुई थी, उनकी मदर ने अपब्रिंगिंग की थी, उनके फादर फोर्स में थे, तो वो कभी ना कभी, मतलब उन्होंने कभी वो वैसा फ्रीडम देखा नहीं था मदर फादर को एक साथ। तो मदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग थी, उनको फोर्स करती थी तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से चलना है, तो थोड़ा उनको प्रेशर था फैमिली का, मेरे अपोजिट था। जैसे मैं अपने डिसीजन जिंदगी में खुद लेती आई, और उनका ये था कि उनके डिसीजन सारे उनकी मदर ने लिए।
0: अच्छा।
1: तो वो मतलब एक हमारी केमिस्ट्री जम नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं तो, मुझे जो सही लगता था मैं वो करती थी, जो जॉब किया, जो फैसले लेने थे अपनी जिंदगी के, और उनके जिंदगी के सारे फैसले किसी पर डिपेंड थे, तो वो चीजें बहुत क्लैश कर रही थी। तो इस वजह से फिर वो रिश्ता चल भी नहीं पाया। वो उसका भी कोई बात नहीं, ये तो अभी आजकल कॉमन बात है। तो मुझे ये लगता है मेरी लाइफ से जो मैसेज देना चाहूंगी खासकर फीमेल्स को, कि कई बारी हमारे रिश्तों में ऐसा होता है या लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां हम खुद तो कॉन्फिडेंस होते हैं और हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती है। मुझे जब मेरी मैरिज हुई मुझे ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी कुछ। हाँ, अच्छी बात ये रही, आप बिलीव नहीं करेंगे, जॉब के दौरान मैंने एक छोटा सा दिल्ली में फ्लैट भी खरीद लिया
0: अरे
1: था।
0: वाह क्या बात है।
1: बिफोर मैरिज तो ये भी मेरा एक बहुत अचीवमेंट था। सबको जब मैंने लिया तो जॉब में, जब मैं न्यूज एक्सप्रेस में थी तो मैंने सबको ऑफिस में भी मिठाई बांटी कि मैंने एक फ्लैट लिया है, तो तब भी वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि तुम इतनी कम एज में, क्योंकि मेरे फादर का भी सपोर्ट था, उनकी भी विश थी कि तुम लो, क्योंकि मैं बहुत जितना कमाती थी मैं उससे चार गुना खर्चा करती थी। तो मेरे घर में तो कपड़ों की अलमीरा और जूतों की अलमीरा ही हुआ करती थी। तो मेरे पापा आए 15 दिन मेरे साथ रहे, तो उन्होंने देखा कि इसने कभी 15 दिन में एक भी दिन ड्रेस कभी रिपीट ही नहीं की है, तो कहते तुम करती क्या हो, तुम मुझे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसों को बचाओ। तो फिर उन्होंने कहा तुम एक फ्लैट लो और मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प करूंगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा, तुम्हें रेंट वेंट भी नहीं पे करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए भविष्य में अच्छा होगा। हम तो इतना सोचते नहीं थे, हम तो बस लाइफ में पता ही नहीं था दुख चीज क्या होती
0: जी,
1: है।
0: जी, जी, जी,
1: हाँ, लेकिन जब ये वाली चीज हुई लाइफ में, जब मेरा सेकेंड फेज आया आफ्टर मैरिज, तो वो मुझे तोड़ गया एक तरह से, क्योंकि मैं इतना कॉप अप ही नहीं कर पा रही थी, फैमिली अपोजिट। बस फिर ये था परमात्मा की ब्लेसिंग थी कुछ, और मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ब्रह्मा कुमारी मिला जहां मैंने स्पिरिचुअल लर्निंग की, स्पिरिचुअल स्टडी की, और फिर से अपने माइंड की जो कंडीशनिंग की कर दी थी दुनिया वालों ने। मतलब मैं निराश इसलिए नहीं थी, मुझे लगता है कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ये देखती थी मेरे आसपास जो लोग थे मुझ पर प्रेशर बनाते थे। मैं ऑफिस में जाती थी, अरे मैरिज हो गई अब बच्चे कर लो, मतलब एक रूटीन लाइफ ही जीना था उनको, या फैमिली वाले भी यही बोलते थे कि क्या कर रहे हो, कैसे क्या चल रहा है, और ये तो होता ही है। मतलब वो एक घिसी पिटी बात है जिसको मेरा माइंड स्वीकार नहीं कर पा रहा था, मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी कि ऐसी जिंदगी क्या मैंने प्लान की थी अपने लिए। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, अब मुझे इस चीज से निकलना है, और इसके लिए मुझे बहुत स्पिरिचुअल स्टडी ने बहुत हेल्प की, मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। मेडिटेशन से मैंने अपने मन को हील किया, मेरी सारी निराशाएं चली गई। उसके बाद फिर से मैंने फिर अपना धीरे धीरे आध्यात्मिक स्टडी के थ्रू, इसी को मैंने सोचा कि अब जैसे एक योगा वाले नहीं होते फिजिकल योगा करता है, तो किसी को उसको लगता है कि ये फिजिकल योगा इसको मैं प्रोफेशन बना सकता हूं, तो मुझे सेम ये वाली फीलिंग आ गई कि ये जो मेडिटेशन है जो मैंने ये सीखा है, कई लोग मेरे जैसे निराशा में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, लाइफ में टूटे होंगे, क्यों ना मैं इस मेडिटेशन को और लोगों तक सिखाऊं। और स्पिरिचुअल स्टडी कितनी जरूरी है, क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि स्पिरिचुअल चीज भी हमारी लाइफ में इतनी वैल्यू रखती है।
0: जी जी, तो इस तरह आपका डिवोर्स हो गया और फिर आप अभी स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं।
1: हाँ, फिर मैंने इसको ऐसे एज ए स्पिरिचुअल टीचर मैंने सोचा अब मुझे स्पिरिचुअल, और मैं साथ में मीडिया का भी काम करती हूँ, तो मैं अभी यही ब्रह्मा कुमारीज के भी यूट्यूब चैनल हैंडल करती हूँ, इनकी न्यूज भी लिखती हूँ और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखती हूँ, मीडिया विंग से भी जुड़ी हूँ, कई तरह की मैं मीडिया में सेवाएं करती रहती हूँ, ड्यूटीज मैं निभाती हूँ, प्रोफेशनल भी करती हूँ कुछ चीजें। तो इस तरीके से ये जर्नी रही। तो मैं लेकिन यही मैसेज देना चाहूंगी हर फीमेल को कि अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक किरण हमें जरूर मिलती है जो हमें आगे जीवन में ले जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे आप भी निराश हो गए थे लेकिन फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया।
1: हाँ बिल्कुल, रीगेन किया। जी बिल्कुल।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी, जो आप अपने ही रेडियो मधुबन में, क्योंकि आपने तो रेडियो मधुबन में भी कार्य किया है, तो कभी हम ये बात भी बताएंगे अपने श्रोता बंधुओं को।
1: बिल्कुल जरूर
0: जी। तो बहुत बहुत आभार आपका कि पुनः आप पधारे और आपने हमारे श्रोता बंधुओं के लिए और रेडियो मधुबन के लिए कीमती समय निकाला और अपने जीवन के अनुभव शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। थैंक यू सो मच।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी हमारे साथ बने हुए थे। ज्योति जी के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कितने निडर होने के बावजूद भी इनके जीवन में भी परीक्षाएं आई, और एक समय ऐसा आया कि आप पूरे निराश हो गए, फिर से स्वयं को संभाला और स्वयं को उठ खड़ा किया। ऐसे ही हमारे बहनों को कहना चाहेंगे कि कोई भी जीवन में निराश न होवे, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन स्वयं को संभालना है जैसे कि ज्योति जी ने संभाला है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर हम जहां भी जाते हैं, क्योंकि हमारा सेवा ही कम्युनिटी को सशक्त समृद्ध और विकसित करने के लिए, तो सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो पर्यावरण है, जो स्वास्थ्य हो चाहे पेड़ पौधा हो, सभी को लेकर हम बात करते हैं। चाहे किसान हो, चाहे हमारा मनरेगा हो, चाहे हमारा शिक्षा जगत में जो शिक्षक और बच्चे उनसे भी बात करते हैं, आंगनबाड़ी में जाकर बात करते हैं, नरेगा से भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास गांव और अंचल हरा भरा रहे। क्योंकि गांव का और अंचल का हरा भरा होगा तो हमें भी खुशी होगा और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे किवली में। किवली एक अच्छा गांव है जो कि हमेशा स्कूल के आंगनबाड़ी का हम प्रसार प्रसार करते थे, ग्राम पंचायत का भी लेते थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा पर्यावरण को लेकर बात, जहां पर प्लांटेशन हुआ है, चाहे बगीचा का मैंने जंगल को मंगल बनाए, जंगल था और उसको मंगल बनाए, पूरा पेड़ पौधे में बनाए, उसका जानकारी देंगे। किवली तो ऐसे आपको पता है, किवली तो पानी के लिए फेमस है, पूरा भारत जा कहां कहां पानी यहां से जाता है, और इसे नदी का पास ही गांव है किवली, और हर गांव हर घर में एक शिक्षित एम्प्लॉय मिलेगा लगभग, नहीं तो एक घर छोड़ के दूसरा घर जाएंगे तो एक एम्प्लॉय मैंने सरकारी नौकरी मिलता। तो यहाँ से पता चलता है गांव का कितना, मैंने सिरोही जिला में पूरा एक नंबर गांव, आदर्श गांव जिसको कहेंगे। चलिए इस कार्यक्रम को जब सजाएंगे, हमारे साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित है, तो आज उनको वो हमें लेकर आए हैं और देखा रहे क्या क्या काम हो रही गाँव के आसपास, जिसका चलते गाँव का जो विकास उसमें एक हिस्सा बनता है। तो श्रीमान जी को स्वागत करते, अपना परिचय खुद देंगे तो अच्छे से दे पाएंगे, कि हम देंगे तो थोड़ा बहुत जो जानते थे सुनते हैं उसका बारे में हम बताएं, लेकिन वो खुद अपना परिचय देंगे, जिसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, जनप्रतिनिधि तक पहुँचने के लिए कैसे उनका प्रेरणा मिला, और जन सेवा में वह गांव का विकास करने के लिए उनका मन में क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अपना परिचय देंगे, कितना तक पढ़ाई की। और सर आपका स्वागत है, आपका रेडियो मधुबन में हार्टी वेलकम है, स्वागतम सुस्वागतम, बताए आपका परिचय।
1: सर मेरा नाम शंकरलाल मेघवाल,
0: ओ
1: अपूर्व डेलीगेट भाजपा से 1985 से लगा
0: जी
1: अभी तक, ठीक है। मैंने 10वीं क्लास पास की है
0: जी सर।
1: अभी सर आए अपने किवली गांव में, सुशांत वाटिका में।
0: ओहो, कौन सा
1: नाम है? सुशांत वाटिका।
0: सुशांत वाटिका, अच्छा
1: ठीक है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई
0: जी सर,
1: और आपने जो भी कहा कि सुशांत वाटिका में इतने पौधे लगाए, 5,000 लगाए हैं, अलग अलग किस्म के हैं, अमरूद है, जामुन है, आंवला है, नींबू है, मतलब बादाम है, कई तरह के पौधे लगाए
0: जी सर,
1: ठीक है। ये हमारा गांव का सहयोग से खूब ये काम अच्छा चल रहा है
0: जी जी।
1: डेली यहाँ मानरेगा से मजदूर आते हैं और पानी पिलाते हैं, और 15 दिन में लोग चेंज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा और सुधार हो जाए आपकी तरफ से तो ठीक रहेगा।
0: रेडियो मधुबन से सहयोग चाहिए ना, ब्रह्मा कुमारी से?
1: बिल्कुल।
0: किससे सहयोग चाहिए?
1: ब्रह्मा कुमारी से और मधुबन से, दोनों से।
0: दोनों से
1: हाँ
0: सहयोग चाहिए,
1: बेसहयोग सही है।
0: जैसे क्या सहयोग आप चाहते हैं?
1: जैसे आप में
0: हमको पता होना चाहिए ना भाई, आप क्या,
1: जैसे कि आप स्पीकर की व्यवस्था लगी, छोटे छोटे स्पीकर, और मधुबन की वो कोई कार्यक्रम होता है वो सुने हम, शमशान के पास में शमशान घाट है
0: जी जी,
1: जो ऐसे लगाए तो मतलब ठीक रहेगा।
0: अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बताए, क्योंकि एक जैसे वाटिका है, जैसे हम सुनते थे सीता को भी अशोक वाटिका में रखे थे, तो उनका कोई शोक नहीं था, अशोक जिस कोई शोक नहीं, यहाँ पर तो होकर आएंगे लेकिन अशोक जैसे वाटिका, जैसे सुशांत वाटिका नाम रखे,
1: सुशांत वाटिका,
0: सुशांत वाटिका, और यहाँ पर जब शरीर दाह करने के लिए संसद को आते है उसी में ही वो

0: कोई दुख नहीं, कोई टेंशन
1: नहीं।
0: तो यहाँ पर जो आएंगे तो उनको ये महसूस होना चाहिए। तो आप जितना कि बहुत अच्छा किए और इतना डेवलप करने में सबका मदद मिला है आपको, ये कितना साल का ये प्रोजेक्ट, मतलब कितना साल हो गया इसको बनाने में? लगभग 5 साल 6 साल 10 साल
1: बिल्कुल जंगल था।
0: नहीं, आपको इतना बनाने में कितना साल लगा?
1: शुरुआत
0: 3 साल का। वो बहुत अच्छा किए, तालियां। 3 साल में इतना डेवलप किए कम समय में पूरा, तो हमारा मनुष्य से जितना हाइट है उससे ज्यादा हाइट हो गया, जितना पौधा है। और सही में कितना एकड़ होगा शायद लगभग जो जगह में पौधा लगा है वाटिका, लगभग एरिया लगा, वो बताएंगे हमारा और एक जो एक्सपर्ट जो देखभाल वो बताएंगे। लेकिन आपका जो एक्सपर्ट है, आप तो एक जनप्रतिनिधि है ना, अभी भी जनप्रतिनिधि मैंने प्रतिनिधि, मतलब आप वार्ड पंच,
1: वार्ड पंच में रह चुका हो और डेलीगेट भी रह चुका हो।
0: अच्छा,
2: नहीं है
0: पहले पूर्व, जैसे आपने सर
1: पूर्व
0: पूर्व थे, लेकिन उस समय भी बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए। और जन प्रतिदिन नहीं थे उस समय, जो थे उस समय भी आप आते थे, कुछ विकास किए होंगे। अभी भी नहीं है पोस्ट में तब भी आप विकास कर रहे हैं, जब पावर था तब तक किए, जब पावर नहीं रहकर भी इतना कर रहे, ये तो कम बात नहीं है, है ना।
1: और हमारे एमएलए साहब और प्रधान साहब का खूब सहयोग रहा, और हमारे भी पुल सर्विस हुआ है, हमारा काम सेक्शन हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ,
0: हो जाएगा,
1: ये हो जाएगा। फिर हमारे आने के लिए अबू और ब्रह्माकुमारी में होगा,
0: नदी के पौधाल का रास्ता है। हमें भी खुशी होगा, रेडियो मधुबन तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। और जो म्यूजिक का जो बात कर रहे हैं, जो रेडियो मधुबन का जो प्रसार होता है, तो यहाँ पर भी लोग सुने बटकर आकर, तो उनको भी सुकून मिलेगा। सिर्फ पौधा कराने के बाद उसका साथ जैसे बटने का जगह हो और थोड़ा पानी का व्यवस्था हो, जैसे आपका पानी का व्यवस्था है, जिसको प्यास लगे तो पानी अपना पी सकते, आरो लगा दे, है ना, सोलर लगा दे। और खासकर म्यूजिक जैसे रेडियो मधुबन का यहाँ पर म्यूजिकल हो कि ब्रह्मा कुमारी जो प्रसारण होता है गीत वाला, यहाँ पर भी सुन सकते, तो उसके लिए आप कर रहे बहुत अच्छा मिल सकता है, मिल सकता है, क्यों नहीं, क्यों आप लोग का प्रयास तो करेंगे तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर में अपना कार्यक्रम को सजाए, तो शंकर जी को धन्यवाद। शिव शंकर कहते, शंकर आप शिव सिंह, शंकर जी को ध्यान करते ना, शंकर का आंख खुल गया तो पूरा दुनिया को विनाश नहीं करेगा, पूरा अच्छा काम कराएंगे। और विनाश होगा तब भी उसमें अच्छा काम कराएगा, विनाश में सफाई होगा, सफाई होगा मतलब नया आएगा, कल जो समाप्ति होगा तब तक सत्य युग आएगा। घर तोड़ेंगे तो नया घर बनाएंगे, और घर तोड़ेंगे नहीं तो नया बनेगा कैसे। इसलिए शंकर का काम क्या है, अच्छा चीज को लाने के लिए इनका प्रयास। बहुत बहुत अच्छा लगा शंकर जी। और आप इतना कितना उम्र है?
1: मेरी 64 है सर।
0: क्या बात है, लग नहीं रहे, तो पूरा जवान है, पूरा पूरा 64 है, और पूरा हट्टा कट्टा है, इसका राज क्या है? खान पान और पर्यावरण को पैर लगाते हैं, पर्यावरण जो वाटिका में आप पर्यावरण बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो भरपूर पाते हैं और पौधा तो आपको पूरा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। और एक भाई साहब है जो कि पूरे जमीन का जो जोड़े हुए और जन्मदाता कहेंगे, और पौधा जो इस बाटी का जन्मदाता, शुरू से अभी तक खुशी से करा रहे, मुस्कुरा रहे, सूर्य के लेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। शंकर जी जाते जाते आप एक मानव सेवा के लिए जितने तत्पर हुए हैं, ये प्रेरणा आपका बुद्धि में इसको कैसे टच हुआ, मैंने कैसे कैच किया जो ये करना चाहिए मानव सेवा, ये बाटिका बना है इतने बार में पता है, तो आपका मन में कैसे आया, कब आया, कैसे आया मानव सेवा के लिए, आपका बुद्धि में कैसे आया, कहाँ से आया,
1: क्या मालूम था आया?
0: अंतर से ना,
1: बाहर से,
0: अंदर से,
1: अंदर से,
0: अंदर से, कोई नहीं बोला
1: नहीं
0: करने के लिए, लेकिन आप खुद कर पड़े, कर पड़े तो बस चल पड़े। बहुत अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो है। अगला कड़ी में हम केवल स्थित सुशांत वाटिका में बैठे हैं और यहाँ पर जो हरा भरा हम तपोवन ही सुन रहे थे पहले ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन केवली उसका बाजू का पड़ोसी है, केवली ग्राम पंचायत, उमरिन ग्राम पंचायत और केवली ग्राम पंचायत नजदीक आमथला ग्राम पंचायत बीच में आता है। फिर भी एक जो कहते ना जहाँ पर एक बार बड़ा है तो पीछे आसपास कोई मिल जाता है, तो उसको देखकर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेवलप किए है और ये भी उस तरह बाप समान बन जाएगा तपोवन जैसे। क्यों तपोवन जैसे? तपोवन भी ऐसे ही था, एक जमीन था बंजर, पड़ता है मानसरोवर आपका पंचायत केवली में बहुत आज केवली में मानसरोवर देखो आपका पंचायत मानसरोवर भी कितना सुंदर बने, मानसरोवर नाम कितना सुंदर, जहाँ पर एक बार डुबकी लगाएगा ना वो परी बनकर निकलेगा, उसका गायन है। तो सही में जो भी जाते हैं ना, और आप लोग तो गए होंगे क्योंकि आपका ग्राम पंचायत में आता है कारुल, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महान अनुभवी व्यक्तित्व है तो उनको भी स्वागत करेंगे, क्योंकि केवली तो ऐसे ही बहुत सुंदर गांव और एजुकेटेड गांव है और उसी में ही जो सुशांत वाटिका का जो हत्या करता है, जो देखभाल करते हैं, केयर टेकर जिसको कहते हैं, उनको स्वागत करते हैं। सर आपका परिचय दीजिए पहले।
1: सर मेरा नाम है सज्जन सिंह करण सिंह जी राठौड़।
0: उम्र
1: केवली?
0: उम्र कितना है?
1: उम्र है 56 साल।
0: सर जल्दी थोड़ा लग रहा है,
2: जोड़ी बोलो।
0: हाँ, जोड़ी।
1: 56 साल है उम्र।
0: बहुत अच्छा, हट्टा कट्टा है और 56 साल तो थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा और स्वास्थ्य को पतला दुबला हो जाइए, ठीक है। देखिए हम 63 का ले रहे हैं, आप 50, तो दोनों का जो शंकर का और आपका देखने से आपका मन ने सोचा था 80 साल होगा, क्योंकि आप ऐसे खाना पीना खाते होंगे, ज्यादा कम खाइए, जितना आवश्यक उतना खाइए, है ना। अच्छा ये तो रही बात, मैंने मजाक से हम बात कर ले, लेकिन हमारा स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य संपद कहते और आपने पूरा रखा है। तो ये जो सुशांत वाटिका का परिचय, जन्म कैसे हुआ और आज इतना बड़ा वटवृक्ष के बन गया, मैंने इतना साल हो गया, तो क्या क्या काम किए और क्या मेहनत किए, और पहले ये क्या था ये जमीन, और कितना एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है वाटिका?
1: पहले यहाँ पे सब बबूल थे
0: जी,
1: तो उनको सबको निकाला गया, उसके बाद में पौधारोपण का काम चालू हुआ पंचायत से
0: जी।
1: काम चालू करके उसके बाद में पौधे लगाने चालू हो गए, चालू होने के बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए
0: जी। और शुरू से आप देखे हैं ये वाटिका?
1: और शुरू से 10 बीघा में है ये पौधे
0: लगाए,
1: 5000 पौधे हैं।
0: 3 साल पहले मतलब 2022 का बात, ये 2025 चल रहा है,
1: 2025
0: चल 2022 में शुरुआत किए और आज पूरा कितना 5000 पौधा का जो बात कर रहे थे शंकर जी, है ना, और इतना सुंदर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो गया 3 साल में, पौधा कितना आप सब समझ सकते हैं कितना बड़ा होना चाहिए। और क्या क्या पेड़ लगाए
1: इसमें? सब नींबू है, आंवला है,
0: फल में नींबू और आंवला
1: है, बादाम, बनाद है, बादाम है,
0: अमरूद,
1: अमरूद भी है और जम्पर भी है, और क्या बोलते
0: फिर छायादार में, छायादार में खाली सिर्फ छाया देगा,
1: छायादार में तो गुलमोहर है, नीम है, शीशम है,
0: शीशम है, अच्छा बहुत सारा पौधा है उसका, फिर लगा देना, उसका नाम नहीं करना है, लेकिन अच्छा होगा उसका। कोई बड़ा व्यक्ति का आएगा ना, कोई आपका गांव में सरपंच से बड़े जो आते बीडीओ साहब आए तो आएंगे, तो उसको एक पौधा दे दीजिए, उसका लगाइए पौधा, उनके हाथ में पौधारोपण करें, उसका नाम लिख दीजिए, ये हमारा बीडीओ साहब का द्वारा हुआ था, उसमें एक नेम प्लेट हो जाए, जब भी आएंगे कभी चले कोई भी आएगा तो उसका वीडियो, हमारे जैसे प्रधानमंत्री आते तो उनके हाथ में हम करा थे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव आए थे तो उस समय पौधारोपण किया था, ऐसे पौधा 2-4 जगह में संसद है वहीं पर लगा दीजिए, तो जो भी आएगा उसका देखेगा, अरे यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे, वहाँ पर नहीं हुआ
1: आपको
0: वीडियो साहब, तो उसका हाथ में एक पौधा लगाइए और पौधा रहेगा वो तो चला जाएंगे, उसका फलक दिस इज नेम प्लेट सर। तो ये भी एक सजेशन है, क्योंकि हम जैसे ज्ञान सरोवर में जहाँ जाते हैं तो उनका हाथ में एक पौधा कराते हैं और उसका नामकरण कर उस डेट ईयर कौन सा ईयर आए थे वो सब में लिख देंगे तो वो भी और अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो भी आएंगे ना, अरे आज हमारा ये आए थे मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर ऐसे, तो ये भी एक प्रोजेक्ट रखिए आगे के लिए, कभी काम आएगा तो उसको दिखाइए, उनका हाथ में एक पौधा रोपण करिए तो हाँ लगाए तो उसका थोड़ा फलक बना देना, उसका एक नेम प्लेट सीमेंट अच्छा लगे कौन सा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और सबका सहयोग मिलेगा, कोई दे चाहे नहीं दे प्रकृति आपको देगा, प्रकृति को आप रक्षा करेंगे प्रकृति आपको रक्षा करेगा, एनवायरमेंट आपको रक्षा करेगा, ये गारंटी है, वो कभी स्वार्थी नहीं है, मनुष्य स्वार्थी हो सकता है लेकिन प्रकृति पेड़ पौधा आपको देने के लिए तैयार है, आपको उसके पास बैठकर उससे थोड़ा बात करेंगे तो हमारा भाषा वो मौन का भाषा समझते हैं,
1: सही है,
0: उनके पास बैठकर उसको प्यार करिए, हाथ लगाइए उसको प्यार, जिस बच्चे को प्यार से हाथ लगाते हैं उसने इसको वरदान देते हैं तो उसको भी वरदान दीजिए, जितना फल आए उससे ज्यादा इसमें जो गांव में सभी को हम बांटे, एक एक गांव को एक एक फल, घर में एक फल दे, ऐसे फल बने जिसे अमृत को बोलिए, अमृत पेड़ में बढ़े उसको पानी पिलाने, इतना अमृत दे हमारा केवल में जो जो लोग गांव में है चाहे दे चाहे नहीं दे हमें देना है। ऐसे संकल्प करिए, संकल्प में बहुत शक्ति है। जो सोचेंगे हमारा सोच ठीक होना चाहिए, सकारात्मक तो हो जाएगा सब। हुआ पड़ा है, हुआ था, हो जाएगा, ऐसे सोचना है।
1: सही है,
0: किससे मांगना नहीं,
1: सही होता है।
0: सोच आपका ठीक रहे,
1: ठीक
0: तो
1: रहे,
0: अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा, तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही, है ना? मिलना तो दिखाई दे रहा है, और इसका सभी का श्रेय जाता है गांववासियों ग्रामवासियों को और प्रशासन को, प्रशासन को जाता है। और प्रकृति तो है ही है, प्रकृति को आप दे रहे हैं तो प्रकृति भी शांत हो रहा है। आप जब चाहेंगे संकल्प करें बारिश हो तो बारिश होगा ही, लेकिन आप निस्वार्थ से करिए। देखिए आपका एरिया में पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुश हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा परिवार में माँ बाप को देने के लिए जब माँ बाप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, माँ बाप बोले नहीं बच्चों को पहले खिलाएंगे, तो बच्चे क्या करेगा, ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, माँ बाप को खिलाए। तो हम भी ऐसे करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, है कि नहीं? आपको ऐसे लग रहा है ना?
1: लग रहा है।
0: सज्जन नाम ही कितने सज्जन है, दैवी और सज्जन बोलते हैं हम, जब जाते आपका नाम लेते कोई भी महान अनुभव भी दैवी और सज्जन। सज्जन मान श्रेष्ठ जन, आज जनहित में आप काम कर रहे हैं, गांव का हित में कर रहे हैं, सिर्फ केवली का नहीं कोई भी ग्राम पंचायत का लोग आए जाकर थोड़ा इसे डेवलप करें, मॉडल बनाए, ठीक है? तो हर ग्राम पंचायत में जगह बहुत पड़ा है राजस्थान में, हर ग्राम पंचायत बहुत सारा गोचर जमीन पड़ा है, तो उसको सुव्यवस्थित करना, वाटिका बनाए, है ना? कोई नाम रखे शांति की वाटिका, शक्ति का वाटिका,
1: कोई भी
0: पवित्रता का वाटिका, है ना, ज्ञान का वाटिका, ऐसे वाटिका बनाएंगे तो हम तो वाटिका में जाकर पूरा स्वर्ग तो ऐसे आ जाएगा। स्वर्ग में क्या है सर, वाटिका ही वाटिका,
1: वाटिका।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जाते क्या करना, आपको अचानक आए और सर आपको लेकर आए, हम भी पहला बार आए, तो आप कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे होना चाहिए,
1: ऐसे
0: बीच बीच में मुलाकात होना चाहिए, ऐसे जो हम कर रहे सब जन जन तक पहुंचे। जैसे इतना पौधा को पानी पिलाए उसके लिए कितना मेहनत करते हैं और कितना लेबर डेली लगता है, मजदूर तो करना, इतना एकड़ जमीन को आप वाटिका को संचालन करने के लिए, देखभाल करने के लिए आप अकेला है, कितना स्टाफ है, कितना जन काम करते हैं?
1: 12 जने हैं अंदर शमशान घाट के अंदर, 12 जने बाहर, ऐसे करके 26 लेबर है।
0: इसका काम क्या देते आप?
1: पानी पिलाना है, खड्डे खुदवाना है, खाद दिलाना है, पानी बाबी सिंचाई करवाना है,
0: ये तो बहुत पुनित काम,
1: सफाई करवानी है,
0: पुनित काम है। श्मशान का आसपास वो हरा भरा कर दिए, स्वर्ग बना दिए, लेकिन गेट टू वे टू हेवन, स्वर्ग जाने के लिए असली रास्ता इधर है। और नरक है, ये स्वर्ग है, इसे उनको मस्त कारण नरक में थे भाई, जंजाल में बंधन, अभी बंधन मुक्त हो गए, मुक्ति धाम
1: अब सही हो गया,
0: हम इसे मुक्ति धाम लिखते हैं, मुक्त होगी शरीर से, अभी फरिश्ता होकर ये आसपास के ऊपर आकर ही देखेगा, जब जाएगा वो आ जाएगा, अभी शरीर से आ नहीं पाएगा, बूढ़ा हो जाने में जब शरीर छूटेगा, जब मन बुद्धि यहाँ आ जाएगा, जब चाहे वो आ जाएगा, और ये आसपास को पूरा हरा भरा वो सहज होगा, आपको डर नहीं लगेगा?
1: डर नहीं लगता,
0: डर
1: तो मेरे को लगता ही
0: नहीं है,
1: इसमें सेवा
0: सज्जन भाई व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति कर सकता है। और नाम जैसे उनका माँ बाप को धन्यवाद, इतना सुंदर नाम रखे हैं, और अभी भी उनका माँ बाप है कि ना चला गए? माँ बाप है,
1: पिताजी आर्मी में थे।
0: ओके, इसका फल मिल रहा है, इसलिए आर्मी में है तो इसका पिताजी का असर रंग तो लगा होगा, गए हैं,
1: गए।
0: इसकी वाली का ही अपनी राशि, तो आप कुछ नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा?
1: नौकरी नहीं मिला।
0: ये नौकरी तो मिल गया,
1: ये नौकरी मिल गई,
0: वृक्षारोपण का नौकरी मिला। नौकरी कोई भी छोटा भी काम करना सबसे बड़ी सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, सज्जन जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। और गांव जब भी और ऐसे प्रोग्राम कभी मौका मिलेगा तो आप देंगे, आएंगे तो
1: देंगे,
0: बहुत अच्छा। और कोई श्रोता मित्र आपका गाँव को देखने के लिए आएगा, कोई भी किसान भाई, कोई वाटिका अपना गाँव में, कोई पंचायत तरफ से हो चाहे कोई गाँव वासी, आप जैसे हमारा शंकर जी जैसे आएंगे तो उनको बता सकते हैं, और बुलाने से भी उनको कुछ बता सकते,
1: आदर भाव भी दे सकते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हम ब्रेक का पहले सुन रहे थे सज्जन जी को और शंकर जी को, जो कि इस किवली ग्राम के समाज सेवी हैं, ऑलराउंडर हैं, जब भी जहां जरूरत पड़ता है सहयोग देते हैं। तो आज रेडियो मधुबन को भी सहयोग दे रहा है और रेडियो मधुबन भी उनको सहयोग, उनका जो काम को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक मंच दिए, उन तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें जो प्रेरणा दी, हमको जो लेकर आए, हमारा जो गोपाल राम पुरत जी श्रीमान जी, तो उनको भी स्वागत करते इस कार्यक्रम में। पहले से परिचित है लेकिन उनका गाँव में क्या गतिविधि हो रही है, तो हमें रेडियो मधुबन को अवगत कराने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाए और सज्जन जी से और शंकर जी से मिलाए हैं, और विजिट करने के पश्चात सभी मिले, देखें क्या क्या जो बात आपको सुनाई होती है, हम प्रैक्टिकल देखें। और ऐसे हर ग्राम पंचायत में करते हैं लेकिन कहीं ऐसे यहाँ पर करते हमको मालूम नहीं था, हो सकता हो कोई गांव में भी कोई ग्राम पंचायत में कर क्या होगा, लेकिन हमें सूचना दीजिए, हमें कॉल करिए और आपका जो एक्टिविटीज, आपका जो कर्म, आपका जो काम जन जन तक हम भी पहुंचाएंगे रेडियो मधुबन। तो इस मंच का माध्यम से हम आपको निवेदन करता हूं, आप भी भले भले अपना गांव को एक सुशक्त बनाइए जिसमें पर्यावरण भी हो, आदर्श गाँव हो, आदर्श वाटिका हो, आदर्श व्यक्ति हो, आदर्श पशु हो, सभी आदर्श हो, रास्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में आदर्श हो, तब जाकर गोकुल गाँव बनेगा। एक का खाली गोकुल गांव बनने लगे, एक का नहीं चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। तो इस कार्यक्रम को सजा निकला हमारा सेवा निवृत्त जो जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल राम पुरेत जी है, तो किवली निवासी है, अभी सेवा निवृत्त का बाद वो जनहित में, जन सेवा में, पर्यावरण हो चाहे सभी में तत्पर रहते, तो वो अपना गाँव का जो कार्यक्रम को देखाने के लिए हमें लाए, तो उनको भी स्वागत करते। सर आपको वेलकम, आप अपना परिचय फिर से
1: बतौर परिचय के रेडियो मधुबन के माध्यम से जो पर्यावरण के संबंध में पवित्रा भाई के साथ में बातचीत करने का जो सिलसिला पिछले एपिसोड से जारी है, उसी क्रम में जब रेडियो मधुबन के पवित्रा भाई ने मुझे तपोवन का दर्शन कराया, तो वहाँ देखा कि किस तरह से व्यवस्थित बिना कीटनाशकों के खेती हो रही है, यौगिक खेती जिसको हम कहेंगे, और जो मल्टी लेयर खेती हो रही है वहाँ पर सब्जी वगैरह ये सारी, और किस तरह से बिना कीटनाशकों के उपयोग के उनका अच्छा उत्पादन वहाँ पर लिया जा रहा है। तो उस हरे भरे वातावरण को देख करके मेरे मन में इच्छा हुई कि रेडियो मधुबन को हमारे गांव तक ले जाया जाए, क्योंकि वहां भी एक वाटिका हमारे ग्रामवासियों के सहयोग से बनी है जो शमशान घाट के अंदर ग्रामीणों के सहयोग से उसको विकसित किया गया है, और बाहर भी बहुत ही अच्छा वाटिका का कैंपस सरकार के सहयोग से भी तैयार किया गया है। इस वाटिका का नामकरण अभी सुशांत वाटिका किया गया है। पिछले 3 वर्षों से लगातार ये काम जारी है और बहुत ही अच्छी स्थिति में ये वाटिका हमारे ग्रामवासियों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से, जहाँ पर की नरेगा के लोग आकर के यहाँ पर नियमित काम करते हैं और उसको व्यवस्थित करते हैं, उसको सींचते हैं, एक एक पौधे के पास जाकर के उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। सर इसकी शुरुआत यूं हुई कि हम शमशान पर एक बार 3-4 लोग इकट्ठे हुए और वहाँ बातचीत हुई, और उसकी जड़ में हम लोग ही हैं। एक भामाशाह को तैयार किया, उसने पूरा उसका बबूल निकाल करके उसको लेवल कर दिया। उसके बाद में हम 3-4 लोग इकट्ठे हुए तो यहाँ पर एक पानी का टैंक बनाया, जलदाय विकास विभाग से पानी की सुविधा ली और फिर ड्रिप सिस्टम सर लगाया। पौधे हम लेने गए तो वहाँ नर्सरी है, शिव नर्सरी, वहाँ से पौधे परचेज करके इधर उधर घूमे तो थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन हम ले आए और ला करके यहाँ पर लगा दिए। और सर वो दिन है कि आज का दिन है, 2 लोगों ने शुरुआत की थी वास्तव में, और ला करके वो फिर पौधे लगा दिए, और फिर ज्यो ज्यो वो चीज बढ़ती गई तो फिर वो कारवां इसके अंदर गाँव वाले फिर इसमें जुड़ते गए। 4-5 बच्चों की एक कमेटी बना दी जो प्रतिदिन यहाँ पर कभी टैंक बनाते, कभी जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम लगा है उसको लगाते, और वो करते करते धीरे धीरे करके उसको डेवलप किया। तो जो शमशान घाट के अंदर वाली वाटिका है वो इस तरह से ग्राम

0: के अलावा जो चौपाये जो जानवर है उनके लिए भी दाना दाने की व्यवस्था है। तो इस तरह से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और वातावरण के प्रति ये गांव की सजगता वास्तव में कहीं न कहीं एक मॉडल प्रस्तुत करती है। कहीं न कहीं ये प्रेरणा आप लोगों से ही हमको मिली है और इस प्रेरणा को लेकर के हर गांव में इस तरह का ये सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। जहां पर मैं पर्यावरण से संबंधित बात करता हूं कि इस तरह की पर्यावरण वाटिका प्रत्येक गांव के अंदर होना आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होना है। और समुदाय वहां बैठेगा तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भी तो बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में इस तरह की अगर वाटिका हो जाए, जिसको समय समय पर हमारे क्षेत्र के उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय भी दौरा करते रहते हैं, मैं तो चाहूंगा कि इस मॉडल को कहीं और भी, अन्य गांव में भी इस तरह के काम हुए हैं, जैसे अनादरा में है और कहीं हमने सुना है वहाँ काम तो हुए हैं, लेकिन इस तरह से खड़ात में हुए ना सर, खड़ात में इस तरह
1: मोडू में भी मैंने गया था, देखा है मोडू भी चल रहा है, थोड़ा सा
0: मोडू में जैसे चल रहा है। तो सर हर गांव में होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर गांव में, और ये नरेगा वाले भाई बंधु करते
1: हैं, उसी को सहज
0: सहज तरीका है। जैसे हमारे यहाँ पर एक भाई है, ये सज्जन सिंह जी, ये दिन रात इसको देखते हैं भाई साहब, शाम को भी, दिन अस्त होने के बाद मैं खुद भी आता हूँ, दिन अस्त होने के समय मैं एक चक्कर काट के जाता हूँ, भाई भी आते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम देखेंगे तो हर एक गांव में इस तरह की वाटिका डेवलप होगी तो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है ये वापस हम उसकी भरपाई कर पाएंगे, तो प्रकृति हमको सहयोग देगी। तो हर एक गांव में ये होना चाहिए
1: जी जी।
0: तो इससे ऑक्सीजन भी मिलती है और भी तरह की सुविधा होती है। वही बात मैं बताता हूँ पर्यावरण पर हमेशा की, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी मैं बात करता हूँ अक्सर की, यहाँ पर भी सर गांव का सूखा और गीला कचरा
1: कर सकते प्लांट
0: नहीं करते हैं सर, करते हैं, ये ट्रैक्टर से आता है, अब जो भी है पंचायत इसमें सहयोग कर रही है, लेकिन इसका छोटा प्लांट
1: चाहिए ना, खाद भी चाहिए, तो खाद तो मिल जाएगा इधर,
0: खाद मिल सकता
1: उसी
0: है
1: प्लांट से,
0: बिल्कुल सर वो, हाँ उसी प्लांट से, वो जो है ना उसका गीला कचरा अगर अपन ढंग से उसको मिट्टी में डाले तो वरना उसका खाद बन जाएगा, तो खाद बनेगा तो वो खाद यहाँ पर काम आ सकता है, तब ये इन पर भी एक अच्छा ग्रोथ में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फल वगैरह भी प्राप्त
1: हो सकता है। लेकिन हमारा जो अंदर में देने का भावना हो तो अब जाकर निस्वार्थ भाव से हो, मन बुद्धि उसमें लगा रहे, तो अपना सोचकर, कोई दूसरा का नहीं, मेरा खुद का ये सोच,
0: हम सब यही सोचे तभी जाकर,
1: एक व्यक्ति ये मेरा है, जैसे
0: तब ही जाकर के
1: आप और हम सोचे ये हमारा है, तो हम सभी लोग हमारा सोचेंगे, मेरा सोचेंगे, तो अपनापन आएगा, अपनापन आएगा तो देने के लिए 5 घंटा देगा, 7 घंटा देगा,
0: जी हाँ जी हाँ, और ऐसा सोच करके इस गांव के लोग काम के लिए तत्पर
1: हुआ, नहीं तो
0: कर भी रहे,
1: दूसरे गाँव में क्यों, कारण यही हुए,
0: तो दूसरे गाँव भी करे। मेरा तो यही संदेश है कि सभी गाँवों में एक वाटिका होनी ही चाहिए और हर पंचायत उसको डेवलप करे।
1: पंचायत में जमीन भी है,
0: जमीन भी है,
1: ग्राम पंचायत का जमीन है,
0: नरेगा के काम वाले लोग भी हैं, गांव के भामा साहब भी है, सब गांव में जितना हो सके उतना
1: पेड़ पौधा भी सरकार दे रहा है,
0: उतना कीजिए जितना हो सके,
1: अपन जो सरकार कर रहा है तो कितना पौधा भी आपको दे रहे हैं,
0: सरकार दे रही है,
1: सरकार दे रहे, नहीं तो कोई भामा साहब भी देते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी 5,000 5 लाख में 1 लाख पौधा लगाने के लिए जब मुहिम चलाया,
0: बिल्कुल
1: आपका गाँव देंगे तो हम दे देंगे,
0: बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है, सब सहयोग मिलता है,
1: सबसे ब्रह्मा कुमारी हर जगह में लगा है, लेकिन ये चीज क्यों नहीं हो पा रहा, इतना देने के बाद केयर टेकर नहीं करेंगे, उसको देखभाल नहीं करेंगे, इसलिए हर साल हम देते हैं,
0: ये केयर टेकिंग से ही हुआ है सर,
1: नहीं तो
0: केयर टेकिंग से ही हुआ है, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए
1: वाटिका को बाउंड्री बनाइए, आप यहाँ पर बड़े निश्चिंत, यहाँ पर बाउंड्री है
0: सर, सर निवेदन करो सर, ये तो बाढ़ लगाई थी, बाउंड्री तो बहुत बाद में बनी है,
1: जो भी
0: पर ये डेवलप होने के बाद बाउंड्री बनी है, बाकी यहाँ तो बाढ़ थी, कांटों की बाढ़ से इसको संरक्षित किया, ये पूरा एरिया सर
1: ट्री गार्ड होना चाहिए, बाढ़ होना चाहिए, वो भी वो खाली रहेगा तो मेरा कहने का मतलब,
0: हाँ नहीं
1: सही, वो आवश्यकता है,
0: तो ये सर लोगों का विचार ही था जो ठीक,
1: हाँ, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए तो इसे पूरा बाउंड्री हो जाएगा, तो मैंने चाहे लकड़ी का हो, झाड़ का भी,
0: जैसा भी है, जैसा
1: तो करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी है, इसका बाद में तो उस पेड़ को उठाकर भी ले लेंगे अपने जगह में,
0: तो प्रभु हरेक गांव के अंदर ये होना चाहिए, हमारा तो ये सोचना है, इस मॉडल को
1: हर गाँव में
0: आवे और देखे,
1: जैसे भोपाल राम जैसा शंकर जैसा आदमी है ही, ऐसे नहीं है
0: सब जगह,
1: लेकिन है, लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे इस माध्यम से वो सुने और आगे बढ़े, और हम तो सबका सहयोग देंगे लेंगे और जरूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हुआ ही पड़ा है, लेकिन आपको एक कदम निकलना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ पर आकर देखिए आसपास आपका गांव किवली है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है, मानसरोवर है, आनंद सरोवर है, यहाँ पर तपोवन है, और आगे जाएंगे तो आपको मेरा गुलजार पार्क कभी लेकर जाएंगे सर, इतना सुंदर खेती हुआ है इस नदी का किनारे में,
0: जी जी,
1: क्या प्लांटेशन किया, वेराइटी केला, केला का जो

0: लगाए हैं, आप देखना अमृत वैरायटी, आम वैरायटी,
1: तो
0: सब जगह मतलब यूं क्यों नहीं होगा, यही जमीन है,
1: यही जमीन है, क्यों नहीं होगा, यही पानी है और यही
0: हो जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से और प्रकृति के साथ प्रेमी बनकर करेंगे तो
1: निश्चित रूप से होगा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते सर को धन्यवाद, सभी को नाम का साथ, शंकर जी, सज्जन जी और भोपाल राम जी, तो है ही भोपाल राम जी जो कि हमारा शिक्षित है और
1: पर्यावरण
0: में करते हैं, और हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कल और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ
1: धन्यवाद। धन्यवाद सर,
0: आभार। कीमती समय निकाल कर हमारा कार्यक्रम को सुंदर में सजाए, ऐसे मौका हमें दीजिए और हम आपका गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत को प्यार करने के लिए उसकी गहराई के साथ साथ एकांत भी आवश्यक है, क्योंकि वहां सप्त सुरों का प्रकाश अविरत चलता रहता है, जैसे सात समंदर, सात रंग, सात दिन और उसके साथ साथ आत्मा रूपी शक्ति के भी सात गुण, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। वैसे ही संगीत के सात सुर को भी हम कभी भी बंधन में बांध नहीं सकते। एक संगीत शिल्पी इसी माधुर्य से अपनी कला प्रदर्शित करता है, इसलिए सात सुरों को जानना, सुनना और परिवेशन करना भी दायित्व हो जाता है। कैसे हो सकता है उनका ये दायित्व एक संगीतकार के लिए? ये हम सुनते हैं हर बार की तरह। श्यामली जी हमारे साथ मौजूद है। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, संगीतकार के दायित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो संगीत शिल्पी जो इतनी मेहनत करता है, संगीत को अपनाता है, उसकी गहराई में जाकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देता है अपना?
1: हाँ जी, वो तो ये है,
0: क्योंकि उसके बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। संगीत को जानना, सुनना,
1: आपने सही किया है।
0: तो सुनने के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि संगीत कला, इसको अगर अपनाना है, सीखना है, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: हाँ, सुनना तो अगर 80% सुनना है,
0: अच्छा
1: 20% हमको परिवेशन करना है।
0: ओके,
1: देखिए पिछले जमाने अगर हम मीराबाई की कहानी सुनते हैं, मीराबाई जैसे एक संगीत जो है झरना जैसी है, झरना को कभी आप रोक नहीं सकते हो
0: जी।
1: अगर संगीत प्रेमी है जो संगीत को जिंदगी बना लिया, उसको कभी आप बंद नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बताया ना कि सात स्वर को हम बंद नहीं सकते, क्योंकि मीराबाई के अंदर सात स्वर की जो है सप्त की जो रचनाई था अंदर की, उसके अंदर में तो कभी बांध नहीं सके,
0: सात सुरों का रस जो उनके अंदर था।
1: तो वही निकल आए थे ना, योगिनी बन गए थे बाद में, राजा की राज दुलारी बाद में योगिनी बन गए। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं कि संगीत एक प्रेमी जो होता है ना, सात स्वर के अंदर ही वो रहते हैं सारा दिन, इसलिए ज्यादा सुनते हैं। किसी के होता है अंदर में छुपा रहते हैं, पिछले संस्कार होते हैं, लेकिन अगर जो प्रेमी होता है जितना गहरे में जा रहे हैं जा रहे तब भी उसका जो प्यास नहीं बुझते हैं
0: जी जी।
1: तो इसलिए ज्यादा सुनना है। अगर कोई अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ, कोई अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं उसको पहले सुनना है।
0: पावर टू लिसन,
1: यस, पावर टू लिसन, श्रुति, इसलिए इसका नाम श्रुति भी है संगीत का नाम, क्योंकि सुनना है। सुनने के बाद उसको अपनाना है, सात सुर का, सारी गामा पाधानी, ये तो सुनने का चीज है, सुन कर अपनाना है।
0: okay.
1: अगर नहीं तो बेसुरा कहते हैं ना। तो इसलिए जो पिछले हम जितने सारे उस्ताद जी ने हमारे सामने दायित्व पेश किए हैं, तो हमारा भी दायित्व है ऐसे कि सुनने के बाद पेश करना है
0: जी,
1: सुनने के बाद जानना, उसके बाद सुनाना।
0: ओके,
1: है ना, पहले हमको सुनना है, जानना है, समझना है, उसके बाद सुनाना है, तब जाके एक संगीत प्रेमी सफल होते हैं।
0: अच्छा श्यामली जी, लास्ट एपिसोड में हमने तिलक कामोद के स्वर लिपि देखी।
1: हाँ जी,
0: और उसकी बंदिश भी छोटी सी देख ली थी। आज आप हमें उसमें क्या सिखाने वाले?
1: हाँ, स्वर लिपि हमने दे दिया, तो अभी बंदिश बाकी है
0: जी,
1: तान बाकी है, वो आज हम दिखा देंगे। ठीक है
0: जी,
1: तो बंदिश अगर लिख लेते हैं लिसनर, बहुत अच्छा है, तीन तल के ऊपर है। नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब,
0: अच्छा
1: राधा कह रहे हैं। आपको बताया ना प्रकृति थोड़ा चंचल है। नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब, डगर चलते मुझे करते रार में।
0: ओके,
1: किशन जी तो रार करते हैं हर टाइम राधा के साथ, तो इसका भाव जो है, नीर भरन कैसे जाऊ सखी अब, डगर चलते मुझे करते रार मैं नीर भरन कैसे जाऊँ अब। अंतरा है ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, तन्ने काहू की बात बिनती करत मैं गैर हार। ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, तन्ने काहू की बात बिनती करत मैं गैर हार। नीर भरन कैसे जाऊ सखी अब, मैं नीर भरन कैसे जाऊ करके सुनाती हूँ।

0: तिलक कमोद की जो बंदिश आपने सुनाई,
1: हाँ जी,
0: इसी के साथ हम भी अपने श्रोता मित्रों को इसी राग का एक सुंदर सा गीत सुनाना चाहेंगे ब्रेक में। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आप सभी ने तिलक कमोद राग से संबंधित गीत का आनंद लिया। श्यामली जी से ब्रेक से पहले हमने बंदिश सीखी, अब श्यामली जी हमें आगे क्या सिखाएंगे?
1: हाँ, बंदिश सिखा दिया तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा बिस्तर सिखाएंगे, थोड़ा तान वगैरह सिखाएंगे। तो करके सुनाती हूँ।

0: बहुत प्रैक्टिस के बाद ही ये कर सकते हैं।
1: हाँ, इसमें थोड़ा इधर उधर थोड़ा है ना जी। स्वर जी हमने प्रयोग किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, करना है, शिक्षा लेना है गुरु के पास
0: जी।
1: ठीक है, मेहनत करना है थोड़ा।
0: ओके, जाते जाते श्यामली जी, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए?
1: आज तो बहुत सुंदर एक गीत हम लाए हैं, आशा जी का
0: जी।
1: सारंग फिल्म का गीत है, सारंगा।
0: सारंगा
1: हाँ, फिल्म का गीत आशा जी का, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है,
0: ओके।

0: गीत के साथ साथ हमको भी चलना पड़ेगा
1: जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: आशा
0: चलने से पहले बहुत सुंदर गीत।
1: आशा जी ने बहुत अच्छा
0: निभाया,
1: इसको, हाँ, निभाया है
0: जी। श्यामली जी, इसी के साथ आज लेते हैं हम इजाजत। पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं संगीत के विषय में या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

इस दौरान कई विषम परिस्थितियों का सामना हमारे जवान हथियारों के साथ आत्मबल से करते रहे और आगे बढ़ते रहे। भारतीय थल सेना और वायु सेना के विभिन्न रैंकों के करीब 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया और देश की सुरक्षा पर बने खतरे को खदेड़ बाहर किया।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई साहब, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई साहब, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं।
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो, पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसी कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मैं वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए, कोई जमाई साहब को तो देखो अब तक आए नहीं, हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप, मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है, वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई साहब, मैं कुछ कहूँ?
2: भैया, आपने तो मुझे

0: शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
1: जमाई सा आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
2: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
0: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
1: जमाई सा आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है वो भी चुपचाप।
2: इसी बात पे अर्ज किया है।
1: बोल भाई बोल।
2: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
1: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
2: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
1: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
3: जमाई सा अब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
4: जमाई सा रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
3: माँ सा मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
5: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
6: दीदी मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
5: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
6: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
5: शांति फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
7: शांति
6: पर पापा ये।
7: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा की भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
6: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
3: और तुझे आती है?
7: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
3: हल चाहिए।
7: तो बस हो गया अब।
8: शांति रागिनी नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
9: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
2: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
4: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
2: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
8: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाईसा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
3: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
4: अरे वाह लाओ लाओ, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
10: वाह राजकुमारी आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
3: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
1: धन्यवाद भगवान का बच गए।
10: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
1: शांति गेट खोलो।
3: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
5: अरे अरे गेट खोलो ना।
6: जाइए गेट खोलिए।
11: कोई तो जाओ।
3: अरे गेट खोलिए।
8: कोई तो जाओ।
1: शांति गेट खोल दो।
6: अरे गेट खोलो तो कोई।
5: हाँ किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते, बस यही तो ऐसे ही
1: है। अरे कोई देखो बाहर कोई है।
4: अरे कौन है गेट पे?
12: पुलिस।
3: हाँ
1: पुलिस?
3: हाँ?
1: अरे
3: हाँ?
1: कौन?
3: पुलिस?
5: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
6: क्या दीदी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
1: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
2: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
0: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
8: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
11: क्या लगता है आपको, पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में, भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता, ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात मेरी परेशानी मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी खम्मा दोस्तों।
12: घरोनेर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

thoughts. My words.

0: through the power of my own divinity, I cooperate with love's task of revealing truth.
1: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 27 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा ज्ञान सुना करके ही पतित से पावन बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम सतयुग में जाते हैं, चक्र घूमता है, अर्थात वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो दो युग तक वहां ज्ञान की प्रालब्ध चलती है। फिर द्वापर के बाद भक्ति आरंभ होती है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी अर्थात एक की ही पूजा होती है, उसको कहते हैं सतो प्रधान भक्ति। और सतो प्रधान भक्ति धीरे धीरे फिर अनेकों की पूजा में, अनेकों की भक्ति में बदलने लगती है। कलयुग में तो अथाह भक्ति की सामग्री हो जाती है, अनेक वेद शास्त्र सब कुछ बढ़ जाते हैं, भक्ति के भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तब बाबा आते हैं और हम बच्चों को इस पुरानी देह और दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, जिस वैराग्य से ही हम सूक्ष्म ते सूक्ष्म वैराग्य को भी धारण कर सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म वैराग्य है मैं और मेरेपन का। इस बेहद के वैराग्य को धारण करते हैं जहां हम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हैं और फिर ज्ञान की बातों को यथार्थ रीति समझते हुए अपने में धारण करते हैं। बाबा कहते तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है, क्योंकि इस समय तुम राज ऋषि बनते हो और राजाई के लिए ही राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं ऐसा कभी कोई कॉलेज देखा कि जहां पढ़ाई अभी हो और प्राप्ति भविष्य में हो? दुनिया के अंदर जो पढ़ाई पढ़ते हैं इसी जन्म के लिए होती है, लेकिन ये एक ही पढ़ाई ऐसी है जिसकी प्राप्ति अगले जन्म में होती है। तो इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए ही राजयोग सीख रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए तुम्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। बाबा कहते तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान है ना, बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं हम सभी बाप है। गाया भी जाता है कि सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है,
ब्रदर होने से तो बाप सिद्ध होता है, लेकिन फादरहुड कह दिया तो बाप सिद्ध ही नहीं होता है। तो ब्रदरहुड होने से तो बाप सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी अथवा पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं। इस बात के लिए ज्ञान मिलता है, सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को, या आत्मा को बुद्धि में

आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है, तीनों लोकों का ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। फिर कहा जाता है मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है, ये सृष्टि चक्कर लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, फिर तीनों कालों का भी ज्ञान है, जिसको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी को कौन जानेंगे, मनुष्य ही जानेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, तीनों कालों को भी जानते हैं। उसमें सबसे पहले बाबा कहते हैं सतयुग, जो संपूर्ण निर्विकारी देवताओं की दुनिया है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी। और अपने को मनुष्य क्या कहते हैं, अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है ये सारी, बाबा कहे मुख्य रूप से भारत की ही बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है, समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था। तो किसी की बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है, यह अच्छी रीति समझना है। हर बात बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या दुनिया में, कभी देखा कि राजाई के लिए पढ़ाई होती है? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएंगे? बैरिस्टर की पढ़ाई से बैरिस्टर बना देंगे, लेकिन बाबा कहते विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके, यहां महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, इसको जरूर आना पड़े। सतयुगी महाराजा महारानी बनाने के लिए किसको तो आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूं तब, तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। बाबा कहते अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का

मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी, और भी जो राजाएं होंगे ना, बाबा कहते और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बाबा कहते विजयंती माला जो है ये निशानी है कि लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होंगी, तो उस समय और राजाएं भी होंगे ना। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अली एक महाराजा महारानी का राज्य नहीं, लेकिन अलग अलग स्थान के राजाएं भी होंगे। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अलग राजधानी का था और राधे अलग राजधानी की थी। अर्थात भले लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी के राज्य में होंगे, लेकिन उसके नीचे अनेक राजाओं के भी राज्य चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। फूल आता है, नमस्ते करेंगे, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहां बाहर ख्यालात न जाए, बुद्धियोग कहीं बाहर न जाए। तो 8 महाराजा महारानी है और 108 ये राजाएं वहां होंगे सत्युग से लेकर के त्रेता युग के अंत तक। इसीलिए उनको पूजते हैं, माला के रूप में सिमरते हैं। बाबा कहते अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करें, जो बहुत पक्के भक्त होंगे वो विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। नौधा भक्ति माना 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो सोचते हैं ये सारी भक्ति करने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी है नहीं, ये एक नाटक है। उसमें सतो प्रदान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहां भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दहली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र के तरफ नहीं होती है, ये बॉम्बे आदि होगी नहीं। राजधानी हमेशा मीठी नदियों के पास होगी, बाबा कहते समुद्र के पास नहीं होंगी, ये बॉम्बे आदि होंगी नहीं। वह तो पहले द्वापर युग के बाद बाबा कहते हैं वो पहले मच्छी मयानी थी, अर्थात मछली फंसाने वाले ही वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी, फिर से वापस इतना महाविनाश होगा और द्वापर के बाद फिर मच्छी मयानी होंगी, यानी मछली फंसाने वाले ही वहां रहेंगे। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं,
वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती है। सतयुग में पहाड़ियां आदि भी नहीं, कहां जाने की दरकार ही नहीं रहती है। यहां मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की तो कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। हाँ, बाबा के सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, होमवर्क होता है, घर का कामकाज भी करते हैं, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहां तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट की पढ़ाई है, और वो पॉइंट है मन मना भव। बस ये एक पॉइंट की पढ़ाई है, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। हॉस्पिटल रहेगी, न डॉक्टर रहेंगे, न कोई क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मुसलधार बरसात पड़ेगी। बाबा कहे मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब बाबा कहे भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, ये तो समझ गए हो, ये चार्ट रखना पड़े। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहां बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं, पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, सतयुग में है महाराजा महारानी, राजाओं के राजा जिसको कहा जाए, त्रेता में है राजा रानी। तो जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूं, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूं, ना ही पुजारी बनता हूं। बाबा न पूज्य बनते हैं न पुजारी बनते हैं, भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं।
लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं। पहले पहले द्वापर में शिव की पूजा आरंभ होती है और उस समय हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है, या तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असुल थे देवी देवताएं, बात कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। देवता धर्म वाले धीरे धीरे जैसे अपवित्र बने, तो बाबा कहते हिंदू नाम रखा लेकिन बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते ये तो समझते हो कि हम आत्मा है, बूढ़ी माताएं भी इतना तो समझती हम आत्मा है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव मामेकम याद करो। एक ही अक्षर है, मन मना भव मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी हम है ब्राह्मण, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पूरा बाबा ने सृष्टि का चक्र ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं
उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहां भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी और कुछ याद नहीं, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।